0: यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके हां हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वो उससे ना आशना थे। फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त उनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना, देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भरकर देता हूं और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूं। अगर तुम उसे न लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी न भटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब उसे भेजने पर राजी हो जाएं और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को इशारा किया कि इन लोगों ने गल्ले के एवज जो माल दिया है वो चुपके से उनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे या इस फयाजी पर एहसान मंद होंगे, और अजब नहीं कि फिर पलटे। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आए और उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं? अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान, और हमें क्या चाहिए? देखिए, ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए रसद लेकर आएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक बारे शुतर और ज्यादा भी ले आएंगे। इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। उनके बाप ने कहा, मैं उसको हरगिज़ तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान न दे दो कि इसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे, इल्ला ये कि तुम घेर ही लिए जाओ। जब उन्होंने उसको अपने अपने पैमान दे दिए तो उसने कहा, देखो, हमारे इस कौल पर अल्लाह निगहबान है।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: और सबसे बढ़कर तो जन्नत का सवाल है, या अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा। सब्र करम, अल्लाह की रहमत चूंकि सब कुछ बदल सकती है, और रहमती वसियात कुल शई, अल्लाह की रहमत हर चीज पर मुहीत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसकी रहमत का ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, उसकी रहमत तलब करें। रहमत तलब करने के साथ साथ मुख्तलिफ आफात और शुरूर मुसीबतों से बचने की दुआ भी साबित है। उनमें से एक दुआ मैं आपको सुनाता हूँ। ए अल्लाह, हम बुरे साथी से तेरी पनाह मांगते हैं। नऊदु बिका मिन साहिब सू। अब बुरे साथी से अल्लाह की पनाह मांगने की क्या वजह हो सकती है? हकीकत तो ये है, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। बुरा साथी गुनाह की तरफ ले जाता है, वक्त के ज़िया, दिल की सख्ती, इसी तरह आखिरत से लापरवाही का सबब बनता है। अच्छा साथी इंसान को ऊपर उठाता है। सलफ सालेहीन की एक और दुआ भी थी, नऊज़ु बिका मिन जारिस सू, यानी अल्लाह बुरे हमसाये से पनाह मांगते हैं। हमसाया अगर अच्छा हो तो जिंदगी आसान हो जाती है, अगर बुरा हो तो घर भी तंग महसूस होता है। और इसी वजह से हमसाया और पड़ोस की अहमियत के मद्देनजर इस्लाम ने भी पड़ोसी के हुकूक बहुत बुलंद रखे हैं। इसी तरह दुआ का अगला जुमला है, ए अल्लाह ऐसे मुनाफिक से बचा जो सामने खैर दिखाए। कुछ लोग जबान से मोहब्बत दिखाते हैं लेकिन दिल में हसद रखते हैं, वो मुस्कुराते हैं मगर नीयत साफ नहीं होती। तो ऐसे मुनाफिक से भी हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं जो सामने खैर दिखाए और अंदर दुश्मनी और शर छुपाए रखते हैं। ए अल्लाह हमें बसीरत अता फरमा और ज़ुकना बसीरा। बसीरत कहते हैं सही पहचान, दिल की समझ, सच और झूठ में फर्क कर पाना। ये बहुत बड़ी नेमत होती है। कैसी नेमत? इस बसीरत के जरिए हम दुश्मन और दोस्त में फर्क कर सकते हैं। ए अल्लाह हमें सालेहीन की मायत नसीब फरमा, यानी हमारे इर्द गिर्द नेक लोगों की कसरत फरमा। नेक लोगों की सहबत आप सब जानते हैं कि ये तो दिल जिंदा करती है, ईमान बढ़ाती है, सीधे रास्ते और सिरात मुस्तकीम पर चलने में हमारे लिए आसानी का सबब बनती है। मजीद आगे ये भी कहा गया कि अल्लाह हमें सालेहीन ही में शामिल फरमा। सिर्फ उनकी सोहबत ही नहीं बल्कि हमें इसके साथ साथ सोहबत से मुस्तफीद होते हुए हमें इन सालेहीन ही में शामिल फरमा। क्योंकि सिर्फ अच्छों के साथ रहना तो काफी नहीं, खुद अच्छा बनना भी जरूरी है। समीन कराम, हमें चाहिए कि हम दोस्त समझ सोच कर दोस्त बनाएं। एक बड़ी बात हमारे आज की दुआ में ये भी है कि सोहबत इंसान को बदल देती है। इस वजह से हम किसको अपना साहिब बनाएंगे, साथी बनाएंगे, ये कोई मामूली सी बात नहीं, बल्कि इस सिलसिले में हमें काफ़ी मोहतात रहना चाहिए। इसी तरह पड़ोस की अहमियत, पड़ोसी जो हमारे बाजू में रहते हैं, इनका इख्तियार भी नहायत ज़रूरी है। साथ साथ मुनाफ़िकाना चेहरों से बचे रहना, अल्लाह से बसीरत मांगना, नेक लोगों के करीब रहना, ये सब ऐसे निकात हैं जो हमारे लिए दीन पर चलने को आसान बना देते हैं। अल्लाह सुबहान व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम व दायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी।
3: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों।

0: दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन्स के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन्स के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअ अर्रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, खाना हमेशा दाहिने हाथ से खाना चाहिए। खाना खाने के लिए बायां हाथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता पीता है और मुसलमान जब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान उसके खाने में शरीक हो जाता है और जब वो बाएं हाथ से खाए पिए तो शैतान के मुशाबे हो जाता है। उसकी दलील अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी बाएं हाथ के साथ हरगिज न खाए न बाएं हाथ से पिए, क्योंकि शैतान बाएं हाथ के साथ खाता है और उसी के साथ पीता है। रावी हदीस कहते हैं कि नाफ़े रहमहुल्लाह इस रिवायत में ये भी इजाफा करते थे, न बाएं हाथ से कोई शय ले न बाएं हाथ से कोई शय दे। सामने कराम, ताज्जुब खेस बात यह है कि शैतान को घरों में दाखिल होने, वहां रात बसर करने, अहले खाना के खाने पीने में शरीक होने का बहुत शौक है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है, वो दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, तुम्हारे लिए यहाँ न रात बसर करने का ठिकाना है और न रात का खाना है। जब वो घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान अपने साथियों से कहता है, तुम्हें रात बसर करने का ठिकाना मिल गया है। और जब वो खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है, तुम्हें रात बसर करने का ठिकाना भी मिल गया और रात का खाना भी। रिवायत है सही मुस्लिम की।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
4: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स के बढ़ते क्रेज के बीच एक नया रियल स्टेट फ्रॉड मार्केट में आया है, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी प्रॉपर्टी का स्कैम। फ्रॉडस्टर्स अब वर्चुअल वर्ल्ड में फेक प्रॉपर्टीज, कमर्शियल लैंड्स और डिजिटल लग्जरी एसेट्स बेच रहे हैं। ये लोग आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करते हैं और बायर्स को झूठे डॉक्यूमेंट्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाकर फंसाते हैं। मासूम इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो किसी बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें मोटा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जब वो पैसा क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी में पे कर देते हैं तो वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही रातों रात गायब हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लूप होल्स निकल आते हैं। 2026 में मेटावर्स ओनरशिप के क्लियर लॉज ना होने की वजह से विक्टिम्स को लीगल हेल्प मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। डिजिटल एसेट्स खरीदते वक्त पूरी रिसर्च और वेरिफाइड प्लेटफॉर्म का ही सिलेक्शन करना आपको इस नए मेटावर्स फ्रॉड से बचा सकता है। कई बार फेक वर्चुअल ब्रोकर्स खुद को बड़े प्लेटफॉर्म के एजेंट्स बताकर सोशल मीडिया पर फेक लिंक्स शेयर करते हैं जो असल में फिशिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, और आपका पूरा डिजिटल वॉलेट लिंक होते ही साफ हो जाता है। दोस्तों, आपको FM 107 पे सॉल्यूशन भी मिलता है। अगर कोई ब्रोकर आपसे आउट ऑफ प्लेटफॉर्म पेमेंट करने को कहे तो तुरंत रुक जाएं, क्योंकि ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। वर्चुअल एसेट्स की मार्केट रिलायबिलिटी चेक करने के लिए उनके कम्युनिटी फोरम और पास्ट ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री को ओपन सोर्स ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर जरूरी है कि वेरीफाई करें। दोस्तों, ये था नए जमाने का नया स्कैम, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी प्रॉपर्टी का स्कैम। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए जमाने के स्कैम के बारे में बात करते हैं।
1: स्कैम अलर्ट।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन, ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। वैसे जनाब, आप हैं मेरे साथ कतर ग्रीन बीट पर। ये खासम खास शो हर हफ्ते हम आपके लेकर आते हैं, और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ग्रीन पल्स की, कि कैसे आपका पैसा और ग्रीन लोन्स हमारे मुल्क को बदल रहे हैं। लेकिन आज आज हम किसी बैंक में नहीं, बल्कि कतर के सुनहरे रेगिस्तान और उन नीली लहरों के पास चलेंगे। हाँ जी, जहाँ सुकून और सुकून और सुकून होता है। वैसे जब हम लग्जरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े मार्बल लॉबीज और ग्लास स्काईस्क्रेपर्स आते हैं, लेकिन एक नई लहर या यूं कहे वेव हमारी मिट्टी में घूम रही है, जिसे हम कहते हैं इको लग्जरी। ये एक ऐसी सोच है जहां दौलत का मतलब ये नहीं कि हमने कितना बनाया, बल्कि ये है कि हमने कुदरत को कितना बचाया। आज हम देखेंगे कि कतर का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कैसे बिना कोई निशान छोड़े हमारे डेजर्ट को एक 5-स्टार सेंचुरी में बदल रहा है।
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: कतर ग्रीन बीट। चलिए सफर शुरू करने से पहले नजर डालते हैं ग्रीन वायर अपडेट्स पर। यस, क्या आप जानते हैं कि कतर टूरिज्म ने होटल्स के लिए एक नया सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम शुरू किया है? अब होटल्स को सिर्फ उनके डेकोर पर नहीं, बल्कि इस बात पर ग्रेड किया जाएगा कि वो कचरे या यूं कहे वेस्ट को कैसे रिसाइकल करते हैं। और एक बड़ी बात, दोहा के कई होटल्स को अब ग्रीन की सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये एक इंटरनेशनल पहचान है जो ये साबित करती है कि वो होटल LED लाइट से लेकर प्लास्टिक बॉटल्स के बैन तक हर जगह असली काम कर रहे हैं। हमारा टूरिज्म सेक्टर सिर्फ बढ़ नहीं रहा, वो ग्रीन हो रहा है। अब बात करते हैं उन रिसॉर्ट्स की जो हमारी शान है। यस, रास अब्रूक के उन मशहूर रिचर्ड सेरा स्कल्पचर्स के पास एक नया रिसॉर्ट बेस है, जहां पर पहाड़ों को काटा नहीं, बल्कि उनके बीच अपने विलास बनाए गए हैं। ये सोलार एनर्जी से चलते हैं और मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और वहीं हमारे कतर रीजन में नॉर्थ में एक ऐसा वेलनेस रिसॉर्ट है जो ट्रेडिशनल अरबिक एंड इस्लामिक मेडिसिन को सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ता है। और इन दोनों का, यूं कहें, इस तरह के और भी रिसॉर्ट्स का सीक्रेट सॉस है।

0: टेबल डाइनिंग. यस, वही मशरूम्स, वही लोकल शहद और हमारी समुंदर की मछलियाँ. यस, जब खाना दूर से नहीं आता ना तो स्वाद बढ़ता है और पॉल्यूशन कम होता है. एग्जैक्टली. और इसीलिए जब आप जाते हैं तो पहली चीज आपको एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा लगता है इन रिसॉर्ट्स में. एट द सेम टाइम जब हम लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट किसी भी चीज के लिए बैठते हैं, कोई भी मील खा रहे होते हैं, हम वो फ्रेशनेस, वो ताजगी महसूस कर रहे होते हैं. यहाँ सिर्फ आपका शरीर ही नहीं बल्कि ये रिसॉर्ट्स जो हैं खुद भी वेलनेस के रास्ते पर चलते हैं. यस, इनका आर्किटेक्चर हमारी विरासत या यूं कहें हेरिटेज को दर्शाता है और पानी के इस्तेमाल से लेकर बिजली की बचत तक हर चीज में सस्टेनेबिलिटी दिखाई देती है. ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारी पुरानी विजडम और आज की टेक्नोलॉजी मिलकर एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं. और थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि जब खाना दूर से नहीं आता तो वो पॉल्यूशन का शिकार कम होता है. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो अपने आप जीरो हो जाता है. और सच तो ये है कि जब खाना इतना ताज़ा होता है तो उसका जो स्वाद है वो दुगना हो जाता है और हमारी हेल्थ भी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है. तो ये हमारी मिट्टी के वो ग्रीन स्टार्स हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि हम बिना कुदरत को नुकसान पहुंचाए भी बेहतरीन लग्जरी का लुत्फ उठा सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कॉन्शियस ट्रैवलर बनने के लिए आपको इन रिसॉर्ट्स में जाना जरूरी नहीं है. यस, आप किसी भी होटल में रहकर कैसे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं ये जानने के लिए अब आपको मैं आगे कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस या यूं कहें सस्टेनेबल टिप्स देने वाली हूँ. तो आप कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर दिल से देसी.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
2: कतर ग्रीन बीट.
0: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर. आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट. यस, तो अभी हमने बातें की उन रिसॉर्ट्स की, उन बड़े रिसॉर्ट्स की जिन्होंने इको लग्जरी की दुनिया में कदम रखा है. लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि अमिता ये सब तो बड़े रिसॉर्ट्स हैं और हम आम लोग कैसे जा सकते हैं. लेट मी टेल यू, इको लग्जरी का लुत्फ उठाने के लिए आपको हमेशा किसी बड़े और महंगे रिसॉर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. सस्टेनेबिलिटी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है. आप अपने किसी भी आम वीकेंड को बिल्कुल ग्रीन स्टेकेशन में बदल सकते हैं. बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है और कुछ टिप्स की. तो सबसे पहली टिप जिसका नाम मैं देती हूँ द टॉवल ट्रिक. यस, ये बहुत सिंपल है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है. सोचिए जब आप अपने घर पर होते हैं तो क्या आप हर बार नहाने के बाद अपना टॉवल धोने के लिए डाल देते हैं? बिल्कुल नहीं ना. तो फिर होटल्स में ऐसा क्यों करते हैं? जब आप होटल में अपना टॉवल फ्लोर पर फेंक देते हैं तो उनका सिस्टम उसे धोने के लिए ले जाता है. लेकिन अगर आप उसे हैंग कर देते हैं तो ये एक साइलेंट इशारा है कि आप इसे दोबारा यूज करेंगे. तो जनाब, कतर जैसे देश में जहाँ पानी की एक एक बूंद बेशकीमती है, ये छोटी सी आदत सैकड़ों लीटर पानी बचा सकती है. एक बार सोचिए आपका ये छोटा सा कदम हमारे समुंदर और हमारे रिसोर्सेस पर कितना बड़ा बोझ कम कर सकता है. दूसरी टिप है डिच द सिंगल यूज. हाँ जी, हम सबको वो होटल के छोटे छोटे शैम्पू और लोशन की बॉटल्स बहुत पसंद आती हैं, है ना? लेकिन वो प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा ढेर बनाती है. हाँ, अगली बार जब आप स्टेकेशंस पर जाएं तो अपना रीयूजेबल वाटर बॉटल और बैम्बू टूथब्रश साथ ले जाएं. आजकल कतर के कई होटल्स ने हॉलवेज में हाई एंड वाटर फिल्ट्रेशन स्टेशंस लगाए हैं. आप अपनी बॉटल वहां से रिफिल कर सकते हैं. इससे ना सिर्फ आप मिनरल वाटर की प्लास्टिक बॉटल्स बचाएंगे बल्कि आप ये भी दिखाएंगे कि आप एक कॉन्शियस ट्रैवलर हैं. प्लास्टिक को अपनी छुट्टियों का हिस्सा मत बनने दीजिए. एंड सोल्यूशन नंबर 3, AC विजडम. यस, बिजली की बचत. तीसरी और सबसे जरूरी टिप है खास तौर पर हमारे गल्फ रीजन के लिए AC विजडम. जब हम होटल रूम में चेक इन करते हैं हमारी आदत होती है AC को 18 डिग्रीज पर छोड़ने की. लेकिन जनाब जब आप पूल पर मजे ले रहे होते हैं या बीच पर सनसेट देख रहे होते हैं तब रूम को इतना ठंडा रखने की क्या जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। जब आप रूम से बाहर निकले तो एसी का टेम्परेचर थोड़ा ऊपर यानी 23 या 24 डिग्रीज पर आप छोड़ दें, रूम तब भी ठंडा रहेगा लेकिन बिजली की बचत कई गुना बढ़ जाएगी। नतीजा पता है क्या होगा, आप लग्जरी भी इंजॉय करोगे और हमारा एनवायरमेंट भी सुकून की सांस लेगा। ये छोटे छोटे चेंजेस ही ना हमारे कल को बेहतर बनाएंगे। कुछ और भी बड़ी मजे मजे की टिप्स है यू नो, जिसे अगर आप अप्लाई करेंगे सो डेफिनेटली आप हमारे कतर को ग्रीन और सस्टेनेबल बना पाएंगे। हाँ तो मैं कहूंगी कि कमरे के अंदर की भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कर्टन्स फॉर कूलिंग। कतर की हमारी दोपहर की धूप काफी तेज हो रही है तो ये हम सभी जानते हैं, तो हमें क्या करना है, जब आप कमरे से बाहर जाएं तो अपने ब्लैकआउट कर्टन्स बंद करके जाएं। ये एक नेचुरल इंसुलेशन की तरह काम करता है जिससे कमरा ठंडा रहता है और आपके एसी को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ जनाब, उसके बाद आप वो मिनी जो टॉयलेट्रीज होती है ना उनको भी अवॉइड करें। कैसे, वो छोटी छोटी शैम्पू लोशन की बॉटल्स जो हम यू नो बड़ी क्यूट लगती हैं, हम खरीद लेते हैं, कभी सेल में खरीद लेते हैं, कभी किसी जगह से खरीद लेते हैं, तो एक काम कीजिए, ये सारी जो बॉटल्स हैं इनको आप साइड कर दीजिए, अपनी खुद की किट बनाएं जिसे आप हर जगह पर कैरी कर सकें। एंड देन हाउस कीपिंग ऑप्ट आउट, यस, अगर आप सिर्फ एक दो रात के लिए रुके हैं तो क्या वाकई हर रोज बेडशीट बदलने की जरूरत है? नहीं ना, तो घर पे तो हम ऐसा नहीं करते ना कि रोजाना ही हम बेडशीट चेंज करते हैं। तो अगर दो दिन में अगर हाउसकीपिंग को आप ऑप्ट आउट करेंगे तो इससे बहुत सारा पानी केमिकल्स सब कुछ बच जाएगा। हाँ जी, तो क्या करना है, अपने दरवाजों पर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगाइए और एनवायरमेंट को बचाइए। प्लस आप डिजिटल एवरीथिंग इस टिप को भी आजमा सकते हैं, मतलब चेक इन से लेकर रूम सर्विस मेन्यू और बिलिंग तक सब कुछ फोन पर आप ले सकते हैं। उन कागज के मोटे मोटे ब्रोशर्स और बिलों की जगह होटल की ऐप का इस्तेमाल करें ताकि इससे आप ट्रीज को भी सेव कर सके, है कि नहीं। तो डिजिटली जैसे कि हम अपने आप को बड़ा कूल समझते हैं ना, तो डिजिटल इन चीजों में जाके डेफिनेटली हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। एक और नई चीज आई है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, दैट इज सस्टेनेबल सनस्क्रीन। यस, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम सन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या करना है, ओजोन फ्रेंडली या रीफ सेफ सनस्क्रीन चुनना चाहिए जिससे आपकी स्किन भी सेफ रहे और

0: बुफेज देखते हैं तो हम एकदम से ना एक्साइटेड हो जाते हैं, हमको लगता है वाह ये भी खा ले वो भी खा ले है कि नहीं, और हमारी प्लेट्स ऐसी भरी होती हैं कि पूछे नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी प्लेट्स में उतना ही लेना है जितना कि हम खा सके, खाने को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है वरना गलत हो जाता है। और हमें अगर हर चीज सेव करनी है ना अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए तो ये छोटे छोटे स्टेप्स से ही काम करना पड़ेगा है कि नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड देन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, इसका जिक्र मैं हमेशा करते आई हूँ लेकिन कई बार क्या होता है भूल जाते हैं, सो डू नॉट मिस इट। अगर आपका होटल बिल्कुल मुशहरब या लुसैल जैसी जगहों पर है या और भी नज़दीक है तो सिंपल है, अपनी गड्डी ना निकालो, दोहा मेट्रो का इस्तेमाल करो, इजीली जाओ, सुरक्षित पहुंचो और अपने स्टेकेशन को इंजॉय करो। तो जनाब आज हमने बहुत सारी बातें की, टॉवल बचाने से लेकर एसी का जो टेम्परेचर है, और मुझे लगता है ये छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स इन सबको अगर हम अवॉइड करते हैं और ये सारे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है हमारे कतर नेशनल विजन 2030 से। ये सिर्फ एक सरकारी विजन नहीं है, ये एक ड्रीम है, एक सपना है, और एक ऐसा सपना है जो हमें ये दिखाता है कि तरक्की का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े करना नहीं होता। हमारा असल मकसद सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें नहीं है बल्कि एक ऐसा टूरिज्म सेक्टर बनाना है जो हमारी कुदरती खूबसूरती को महफूज रखे, प्रोटेक्ट करे। हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये जमीन, ये समुंदर, ये रेगिस्तान हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिले हैं और हमें इसे अगली पीढ़ी के लिए सही सलामत रखना है कि नहीं। हम चाहते हैं कि साल 2050 और 2100 की जो नस्लें आएंगी वो भी यही जादुई और खूबसूरत सनसेट देख सके जो आज हम रास अबरूक की चट्टानों के पीछे देखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रेगिस्तान, हमारी ये जमीन हमेशा ऐसी ही खूबसूरत रहे और हमारी जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक खूबसूरत कल बनाए। याद रखिए, इको लग्जरी सिर्फ एक फैशन नहीं है, ये एक वादा है, एक ऐसा वादा कि कतर ना केवल एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनेगा बल्कि अपनी मिट्टी को महफूज भी रखेगा। जब आप अगली बार किसी होटल में ग्रीन स्टेकेशन चुनेंगे तो आप सिर्फ अपनी छुट्टियों के मजे नहीं लीजिएगा, ठीक है, असल में आप एक ऐसी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेंगे जो हमारे डेजर्ट, हमारे समुंदर और हमारे इंटायर फ्यूचर को वैल्यू करती है। आप उस सोच का हिस्सा बनते हैं जो कहती है कि लग्जरी वो है जो कुदरत के साथ मिलकर चले, है कि नहीं, ना कि उसके खिलाफ। आई एम वेरी सर्टेन कि आज का एपिसोड आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, तो आप हमसे अपने व्यूज भी जरूर शेयर करें 6622107 पर 6622107। और मैं कहूंगी कि कतर ग्रीन बीट हमारा ये सस्टेनेबल सा शो हर हफ्ते आपके लिए इसी वक्त मैं लेकर आऊंगी और कुछ नए नए टिप्स ट्रिक्स के साथ। इनफैक्ट अगर आपके भी कोई फीडबैक्स हैं, आपके भी कोई व्यूज हैं या कोई सजेशंस हैं जो आप देना चाहें हमारे शो को और बेहतर करने के लिए, आप बेशक हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। FM 107 के आर जमीता को भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं एंड वहां पर भी आप अपने सजेशंस, फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, अब आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस पर। तो कतर ग्रीन बीट्स सुनते रहिएगा, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: दोस्तों अरबी जबान की कहावत है जो इंसान के एक आम रवैये की तस्वीर भी तर्रार व तशर्रत यानी मांगने वाला और ऊपर से शर्तें भी लगा रहा है। ये कहावत तब कही जाती है जब कोई मोहताज या साहिल आपसे मदद मांगे और जब उसे कुछ देते हैं तो उसे लेने में तरद्दुद करे या कहे ये कम है ज्यादा चाहिए मैं ये नहीं लूंगा उसकी जगह वो दे दो या शराइत तय करने लग जाए। गोया वो खुद तो मोहताज है मगर मुतालिबे उसके बड़े हैं। अरब इस रवैये को मजाकन और तंजन बयान करते हुए कहते हैं तर्रार व यश्तरित यानी भिखारी और नखरे भी। हमारे यहाँ भी मशहूर मुहावरा है कि भिखारी के नखरे। गोया मांगने वाला शर्तें लगाए तो बहुत ताज्जुब की बात समझी जाती है। ये कहावत हमें ये सिखाती है कि इंसान को अपनी हालत के मुताबिक गुफ्तगु रवैया और तवक्कात रखनी चाहिए। जो मदद ले रहा हो उसमें शुक्रगुजारी होने चाहिए न कि नखरे और मुतालिबे। इसीलिए अरब कहते हैं तर्रार व तशर्रत भिखारी और ऊपर से शर्तें भी लगाता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज हम जिल्द यानी स्किन की सेहत और रोजमर्रा देखभाल के आसान तरीकों पर बात करेंगे, क्योंकि सेहतमंद स्किन ना सिर्फ खूबसूरती के लिए बल्कि बीमारी से बचाव के लिए भी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि हमें जो सनस्क्रीन है वो रोज़ाना इस्तेमाल करनी है, और SPF 30 प्लस आप अगर इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होगा। इसी तरह से जो सनलाइट है यानी आप जैसे बाहर निकलते हैं तो 11 बजे से 3 बजे का जो टाइम है यानी 11 AM टू 3 PM आप अवॉइड कीजिए कि इस पूरे पीरियड में आप कम से कम सन सूरज में निकलें। इसी तरह से जो प्रोटेक्टिव लिबास है और हेड्स हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए, और हाइड्रेशन अपनी स्किन की बहुत ज़रूरी है। इसमें माइल्ड जो क्लींजर हैं वो आप यूज़ कीजिए, क्योंकि क्लीनिंग भी डेली

0: 10 ग्लास आप जरूर पीजिए। इसी तरह से जो हॉट शॉवर्स हैं उन्हें आप अवॉइड कर लीजिए। जो डाइट्स और ऑक्सीडेंट्स उनमें होते हैं और नट्स जो कि हमारे लिए बहुत अहम भी हैं, उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे हम दूर रह सकते हैं। बहुत सारे मसाइल जो स्किन के होते हैं उनसे ओमेगा 3 आपको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करनी है। उससे जो बाज़ूकात हमारी स्किन जो है उसमें स्वेलिंग महसूस होती है या इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो उसे कम करते हैं। और जो ज़्यादा शुगर है, एक्सेसिव जो शुगर है उससे दूर रहना है। और इसके साथ साथ जो फ्राइड चीज़ें हैं उन्हें भी आपने कम से कम करना है। और फिर जैसे ही मौसम बदलता है, यानी जो सीजनल स्किन केयर हैं वो भी बहुत अहम है। जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें पानी आप ज़्यादा पीजिए, और अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो उसकी मैनेजमेंट बहुत अहम है। और अगर सर्दियां हैं, जैसे कि अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं, और उसमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है और अपनी स्किन को ड्राई नहीं रहने देना। इसी तरह से एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है, 1 से 2 जो मर्तबा आप एक वीक में आप कर लीजिए। और जो हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि ओवर एक्सफोलिएशन कर देते हैं, स्किपिंग सनस्क्रीन की, यानी सनस्क्रीन हम इस्तेमाल नहीं करते, कभी कर लेते हैं कभी नहीं। और इसी तरह से जो हार्श केमिकल्स हैं वो अपनी स्किन पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये सब नहीं करना है। और इसी तरह से जो अपना ख़ास ख्याल रखना है अपनी स्किन को बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी बनाने के लिए, तो रोज़ाना के जो मामूलात हैं उनमें थोड़ी सी हमें तब्दीलियां करनी है। अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना है कि वो बहुत अच्छी हो और स्किन हमेशा सेहतमंद और फिर बहुत ही चमकदार और खूबसूरत रहेगी। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: उम्मीद है भाई जनता आ चुकी है टेक के बारे में जानने के लिए, क्योंकि टेक की दुनिया ऐसी है कि इसके बारे में मैं जानता अभी कुछ हूँ, अगले सेकंड में मामला आगे निकल जाता है। तो मुझे जो है रेस लगानी पड़ रही है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी की दुनिया रेस नहीं है, मैराथन है। तो वैसे बिल्कुल बीच बीच में हाँपते हाँपते हो चलो इतना जान लिया काफी है, वैसा वाला सीन। लेकिन आज मैं आपको कुछ यूनिक चीजें बताने वाला हूँ। सो वेलकम टू टेक इनोवेशन। मैं हूँ जी दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड आपको पता है हमारे बहुत सेगमेंट्स इजी हैं। सबसे पहले मैं आपको एप्स बताता हूँ, देन द गैजेट्स, एंड देन द न्यूज ऑफ कोर्स। तो न्यूज हर दुनिया से है, मतलब वो टेक्नोलॉजी की दुनिया हो चाहे गेमिंग की दुनिया हो, दोनों को मिला के बताता हूँ मैं। बट बिफोर आई कंटिन्यू, आज ऐप की दुनिया में AI टूल्स के बारे में बात करूंगा, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है। और AI की दुनिया इंसानों पर कब्जा कर लेगी ऐसा कुछ नहीं है, पर AI को सीखना बहुत जरूरी है, बस अल्टीमेटली आपका ही कंट्रोल रहेगा अगर आप इसे सीख लेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद एप्स दिस वीक। ट्रेंडिंग एप्स, ट्रेंडिंग एप्स। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट, ये बहुत कमाल की ऐप है, ये AI टूल है, इसका नाम है नोट GPT। अब देखिए, आप चैट GPT यूज करते हैं, उसके लिए आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, एंड यू पे अ गुड अमाउंट ताकि आपको उसका प्लस वर्जन मिल जाए, जो कि पेड वर्जन है। फ्री वर्जन काम करता है, मगर फिर भी वो ऐसा ही है। तो फिर आप उसके लिए पेड वर्जन लेते हैं, एंड माइंड यू, अगर चैट GPT का पेड वर्जन आप पूरी तरह से सीख लेते हैं, देन इट्स वेल एंड गुड। पर अगर आपको उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन चाहिए जो फ्री है, जो आपके बहुत बहुत काम आ सकता है, देन दिस इज द वन, नोट GPT। इसमें क्या क्या है, इसमें माइंड मैपिंग है। फर्ज कीजिए कि आपने कोई एग्जांपल के तौर पे आपने यूट्यूब का कोई वीडियो, उसका लिंक उठाया, इस पे अपलोड किया, उसके बाद आपने पूछा, हाँ जी 10 मेनू इस वीडियो में क्या क्या है, तो आपको वो समराइज करके भी देगा, उसके अलावा माइंड मैपिंग करके देगा कि किस तरीके से वीडियो को बनाया गया होगा। और साथ साथ इसमें एक फीचर है ट्रांसक्रिप्शन का। मेनली कुछ वीडियोज में ऐसा नहीं होता कि आपको उसके कैप्शन मिल जाए, बट देन अगेन ट्रांसक्रिप्ट का इसका वर्जन बहुत बहुत कमाल का, एंड इट वर्क्स अमेजिंगली स्मूथली। एंड इसमें एक फंक्शन है AI चैट का। तो आपने कोई भी चीज तैयार करनी है, आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक PPT बनाने में लगे हुए हैं, तो आपकी मदद जरूर जरूर करेगा। समराइज का जो ऑप्शन है, वॉइस टूल का जो ऑप्शन है, बड़ा कमाल का है। काफी काफी हद तक मुझे लगता है कि ये फ्री वर्जन होने के नाते चैट GPT को करारी टक्कर देता है। एंड दिस इज अ डेस्कटॉप वर्जन, तो आप डेस्कटॉप वर्जन तो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आई हैवंट यूज्ड द मोबाइल वर्जन, जो मैं चेक करूंगा अगले हफ्ते बताऊंगा, बट फॉर नाउ आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन ऑन योर लैपटॉप्स और योर PC, और आपको सच में बहुत काम का लगेगा। ये लोगों को पता नहीं है, पता नहीं कैसे, क्योंकि इसलिए वो चैट GPT को बहुत अच्छा खासा रियाल लुटा रहे हैं, बट ट्राई दिस वन मेरे कहने पे, यू विल लव इट। नोट GPT, ओके, नोट GPT, ट्राई दिस वन, ओपन सोर्स है, फ्री है, एंड बहुत बहुत काम का। जैसे मैंने कहा, माइंड मैपिंग हो, समराइजिंग हो, AI चैट हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, and not just that, for example आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कोई किताब जो है उसका पहला ही पन्ना या कोई चैप्टर जो है इस पे अपलोड कर दिया फोटो खींच के, और आपने पूछा कि इस चैप्टर में क्या है, और आपने बता दिया उसको एक बारी कि ये बुक है या ये चैप्टर का नाम है, तो ये आपको पूरी तरह से समराइज करके बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आर्टिकुलेट वे में बताएगा, एंड इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने एक चीज ट्राई करी थी, मैंने इस पे चीज अपलोड करी और मैंने कहा कि एक्सप्लेन दिस टू मी लाइक आई एम अ 5-year-old, एंड इसने बहुत बहुत अच्छे से बताया। सो डेफिनेटली ऑन द लिस्ट, नोट GPT, ये जरूर जरूर ट्राई करें। ओके, मूविंग ऑन। अगला जो है ये है मेटा AI। मैं अक्सर ऑफिस में बात करता हूँ उस AI की, जो इमेज जनरेट कर सके, जो आपको रीस्टाइलिंग कर सके, जो आपको एनिमेशन दे सके। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर एक सेलिब्रिटी या फिर एक नामी ग्रामी हस्ती जो है वो माइक के आगे गा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं, एंड यू टेंड टू बिलीव कि यार ये पैसे दे के बनाया होगा, ये फ्री में नहीं बन सकता, बट लेट मी टेल यू, बन सकता है। AI टूल का नाम है मेटा AI। अक्सर लोग इसको यूज नहीं करते हैं, बहुत अंडररेटेड है, आई हैवंट सीन इट अराउंड मी, आपने शायद देखा हो तो बहुत बढ़िया बात है। मेटा AI में आप इमेज जनरेट कर सकते हैं बहुत बहुत इजीली। नॉट जस्ट दैट, जब आप एक इमेज का प्रॉम्प्ट देते हैं और इमेज क्रिएट होती है, उसके बाद आप इमेज की रीस्टाइलिंग कर सकते हैं। आपको किस तरीके का चाहिए, आपको कार्टूनिश चाहिए, कॉमिकल लुक चाहिए, कैसा भी चाहिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड नॉट जस्ट क्रिएटिंग इमेज बट एडिटिंग इमेजेस एज वेल, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद आती है वो चीज जिसकी तलाश रहती है आपको, वो है एनिमेशन, जिसके लिए आप बहुत खर्च कर सकते हैं, पॉइंट्स खरीदने पड़ते हैं, 200-200 पॉइंट्स आपको $19 से मिलते हैं। बट विद दिस मेटा AI यू कैन एनिमेट योर फोटोज फॉर फ्री, और क्या चाहिए। ट्राई दिस वन आउट एंड आई एम प्रिटी श्योर आपका आधा काम आसान हो जाएगा एंड इसके जरिए आप एक लिटरली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक अकाउंट भी बना सकते हैं वेयर इन यू कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स एंड हो सकता है कि इसके जरिए आपका सोशल मीडिया का करियर भी ऑन हो जाए बिकॉज ये डेफिनेटली आपकी बहुत बहुत मदद करने वाला है. नॉट जस्ट दैट, अगर आप एक वीडियो बनाते हैं, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं एंड इफ यू वॉन्ट इनपुट्स इन बिटवीन, आप कुछ चीज समझाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ. अगर मैं किसी पानी के जहाज की कहानी सुना रहा हूँ और मुझे बीच में एक इमेज चाहिए जो थोड़ी एनिमेटेड हो और उसमें पानी का जहाज हो, तो रादर देन फाइंडिंग इट आउट फ्रॉम अदर प्लेसेस, मैं सिर्फ इसको बताऊंगा और ये मुझे बना के दे देगा और वो मैं यूज कर सकता हूँ अपने वीडियो में. एंड वर्टिकल लैंडस्केप जैसा भी चाहें, इस इमेज को आप क्रिएट कर सकते हैं मेटा एआई से. ट्राई दिस वन आउट, क्योंकि ये बहुत बहुत सही किस्म का एआई टूल है, काफी अंडररेटेड. ऑलराइट, मूविंग ऑन. अभी जो थर्ड ऐप है, जो एआई टूल है, ये उन लोगों के लिए जो कंपनीज बना चुके हैं, बनाने वाले हैं, या फिर एक मार्केटिंग मैनेजर की तलाश में जो उनके आइडिया के लिए एक कैंपेन तैयार कर सके. ये कैंपेन तैयार करना कोई आसान काम नहीं है, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसमें, आपको कई मरतबा एक दो नहीं दर्जनों मार्केटिंग मैनेजर्स की सलाहें लेनी पड़ती हैं उनमें से कौन सी चीज काम करेगी कौन सी नहीं, एंड यू गेट कंफ्यूज एंड वो काम कभी शुरू भी नहीं हो पाता है. बट इफ यू ओन अ कंपनी, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग अप समथिंग, ये आपके लिए बेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं, आप कोई कॉन्टेंट है जिसके लिए आपको एक कैंपेन तैयार करनी, हाउ डू वॉन्ट टू डू इट, ये है ऐप. इसका नाम है Pomely, Pomelli, Pomelli. ये आपका पर्सनल मार्केटिंग मैनेजर है. ये क्या करता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. मान लीजिए आपने कोई उसे इमेज दिखाई जो आपकी और आपको कंटेंट क्रिएट करें, आपने समझाया कि मेरा कंटेंट इस तरीके का है, नाउ आई नीड अ कैंपेन. ये आपको लोगो से लेकर लोगों के बाद आपको हफ्ते भर में क्या कैंपेन करना चाहिए, कैसे अपलोड करना चाहिए, ये सब आपको बताएगा. इट इज डेफिनेटली वर्थ इट. थोड़ी बहुत मेहनत प्रॉम्प्ट्स में लगेगी आपको, पर वो करते करते जब आप सीख जाएंगे, भाई साहब आपका कोई तोड़ी नहीं होगा मार्केट में, बढ़िया छा जाओगे आप, धुआं उठा दोगे, बता रहा हूं मैं. तो ये ऐप डेफिनेटली अप ऑन द लिस्ट. नाम है Pomely, Pomelli. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू गैजेट्स दिस वीक.
1: कूल गैजेट्स.
0: नंबर वन गैजेट. अब ये नंबर वन कहने का मतलब ये नहीं कि आई एम रैंकिंग देम, नंबर वन ऑन द लिस्ट बेसिकली. तो कई बार जब आप रिंग तलाश करते हैं जो आपकी नींद को ट्रैक करते हैं, आपके पल्स को ट्रैक करते हैं, मगर वो काम नहीं करते, इधर दे डोंट वर्क और दे आर नॉट गुड इनफ. लेकिन एक रिंग है जो एक्चुअली में अच्छी दिखती है और एक्चुअली में काम करती है. इसका नाम है रिंगकॉन, RINGCONN, रिंगकॉन. ये इसका दूसरा वर्जन आ चुका है, गेंट 2, ठीक है. और ये आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा. मैंने गेंट 2 बोल दिया, जेन 2 पंजाबी निकल गई मेरी. तो रिंगकॉन जेन 2 एयर स्मार्ट रिंग, ये रीड करेगी आपकी पल्स को, ये रीड करेगी आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को. अंडर वाटर यूज कीजिए, कोई मसला नहीं है, आराम से स्विमिंग कीजिए, एंड इट इज वंडरफुल. मतलब ये मैं इसलिए भी जानता हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त ने सलाह दी मुझे, इज एन इंजीनियर और उस पर मुझे भरोसा है. तो उसके भरोसे पे मैं भरोसे पर हूँ और आप मुझे भरोसा कर सकते हैं. ये रिंग अगर आप कहीं पे मिले, ऑब्वियसली ऑन अमेजोन या फिर कहीं और, तो अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिलती है. You can get this one. अगर आपको रिंग सच में चाहिए ऐसी कोई, ये मुझे पता है बहुत हाई डिमांड चीज़ है, इसलिए मैं बता देता हूँ. Next on the list is Mesdio Smart Flower Pot, MASDIO Smart Flower Pot IV. अब ये जो है, ये एक गमला है कहने को, मगर ये स्मार्ट है. जब इसमें आप पौधे लगाएंगे तो पौधे की हालत कैसी है, बहुत ही इंटरैक्टिव वे में बताएगा कि अभी पानी की जरूरत है, अभी धूप ज्यादा लग रही है, धूप ज्यादा चाहिए, वॉट एवर द कंडीशन इज, ये बताएगा. स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि गार्डनिंग का कल्चर आपके घर में रहे और बच्चों को भी प्लांट्स की तरफ एक रुख करवाना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट डिवाइस टू हैव. ऑलराइट, सो Mesdio स्मार्ट फ्लावर पॉट आई वी इज द थिंग, इज द स्मार्ट वे टू लिव. All right, let's move on. Third gadget on the list, इसका नाम है Soundcore AI. Soundcore AI. अब ये एक डिवाइस है जो आपके फोन के पीछे क्लब हो सकती है अगर आप मैग्नेटिक चिपक जाता है पीछे तो. ये मल्टीलिंगुअल AI टेक्स्ट और वॉइस सब कुछ तैयार करके देता है. मान लीजिए अपने फोन के पीछे लगाया और आप किसी से बात कर रहे हैं, फोन पे नहीं, सामने आमने सामने बात कर रहे हैं, तो ये आपको उसकी पूरी स्क्रिप्ट बना के देगा, उसको ट्रांसलेट करके देगा एंड उसको समराइज करके देगा. इट इज डेफिनेटली वर्थ इट. अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, जस्ट पुट इट ऑन एंड आपकी सारी की सारी मीटिंग विल बी रिकॉर्डेड एंड उसको समराइज करके भी आपको बता देगा कि क्या क्या मेन पॉइंट्स रहे, क्या क्या जरूरी था, क्या क्या दूसरी लैंग्वेज में था, बट इट विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द स्मार्टेस्ट वे पॉसिबल. एंड ये जो साउंड कोर AI है, ये फोन के पीछे लगा सकते हैं ऐसे मैंने कहा, बट इन केस आपके फोन के पीछे मैग्नेटिक चिपकन नहीं है, चिपकन वो नहीं है, तो आप इसे टेबल में भी ऐसे भी रख सकते हैं आपके हाथों में, हैंड हेल्ड भी है ये, और ये डिवाइस बहुत बहुत काम का है. साउंड कोर AI, SOUNDCORE, साउंड कोर AI, बहुत कमाल का डिवाइस है. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन. खबरें भी तो बतानी है आपको. So, इस हफ्ते की खबरों में बहुत सारी चीजें हैं. नंबर वन ऑन द लिस्ट इज एप्पल, ऑफ कोर्स उसका जो इवेंट है उसकी कवरेज आपको पूरी पूरी दूंगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि काफी कुछ लॉन्च होने वाला है और काफी कुछ बातें करनी है. मगर एप्पल ने टीज किया है एक चीज को, उन्होंने बताया कि वो काम कर रहे हैं अपने AI इंटेलिजेंस पे और सीरी पे. अभी तक बड़ा ही मैकेनिकल सा रिप्लाई आता है एप्पल का, एंड मेरी शिकायत एप्पल से ये रहती है कि क्यों एप्पल की कंपनी अपने सीरी पे काम नहीं करती, उससे कहीं गुना आगे बाकी AIs निकल चुके हैं, बहुत माइल्स अहेड, एंड एंड्रॉइड तो बहुत ही आगे निकल चुका है. तो नाउ दे आर वर्किंग ऑन द इंटरेक्शन, कि ताकि आपको एक रियल और नेचुरल इंटरेक्शन मिले AI से. पर ये कब तक आएगा वी डोंट नो, बट दे हैव टीज्ड इट एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट. सो पॉसिबिलिटी है कि इस बार की इवेंट में दे माइट टॉक अबाउट इट मोर, दे माइट रिवील समथिंग, और ये सब कुछ आपको पता लगेगा, तो आपकी कॉन्वर्सेशंस विद द AI ऑफ एप्पल विल बी स्मूदर आई बिलीव, और थोड़ा और आसानी हो सकती है. आई स्ट्रॉन्गली बिलीव एंड आई होप सो कि एप्पल इस बात को सीरियसली ले, बिकॉज दो चीजों की शिकायत रहती है कि एक तो कतर में एप्पल के मैप्स काम नहीं करते हैं, और दूसरी चीज उसका AI अभी भी देसी भाषा में कहूं तो काफी बंडल है. तो दे रियली नीड टू वर्क ऑन इट. ओके, अगली दो खबरें गेमिंग से. नंबर वन, सबसे पहले सोनी ने लॉन्च किया स्टेट ऑफ प्ले. बहुत बहुत भारी भरकम गेम्स के बारे में बात की गई और लॉन्च की गए. गॉड ऑफ वॉर का इंतजार था सबको. गॉड ऑफ वॉर में क्रेटोस की वाइफ बन के आप प्ले कर सकते हैं, फाइनली समथिंग फ्रॉम गॉड ऑफ वॉर. एंड टूम रेडर का ट्रेलर देख के माय भाई दीवाना हो गया. लारा क्रॉफ्ट इज फाइनली बैक एंड आई कैन नॉट वेट टू प्ले दिस वन. वुल्वरीन इज ऑल्सो कमिंग अप. सबके सब डरे हुए हैं, सब लॉन्च हो रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, बिकॉज नवंबर में GTA 6 आने की चांसेस हैं. चांसेस इसलिए क्योंकि मुझे रॉकस्टार पे दो रियाल का भरोसा नहीं है, बट दैट इज व्हाट वी विल सी इन नवंबर. दूसरी खबर, कंपटीशन में उतरा एक्सबॉक्स, और एक्सबॉक्स का शोकेस लाइनअप था, बहुत लंबा लाइनअप था, उसमें भी सेनुआ जैसे बड़े बड़े गेम्स एंड मेटल गियर, ये सारे गेम्स का लॉन्च किया गया है. कुछ गेम्स जो हैं वो बिल्कुल बताए गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव है टू एक्सबॉक्स, एंड बाकी गेम्स विल कम टू PS5 एज वेल. बट PS5 में जो मेजर लॉन्च रहा वो था रेसिडेंट ईविल कोड वेरोनिका. 2027 में आएगा हालांकि, मगर सबसे पहला यही गेम लॉन्च हुआ, एंड भाई मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब मैंने ये देखा. सो गेमर्स आउट देयर वॉच आउट फॉर दिस वन, बिकॉज कैपकॉम इज कुकिंग ब्रो. बाकी इस खबरों इन खबरों के बाद सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, अगर आपने भी हाथ साफ किया है बहुत सारी एप्स पे और AI पे, एंड यू वांट टू डिस्कस, यू वांट टू टेल, अपना ज्ञान आप दुनिया को देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं दोहा वाला कबीर के नाम से, मैं आपको मिल जाऊंगा. ओके, अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी. बहुत बड़ा इवेंट कवर करने वाला हूं मैं अगले हफ्ते, एंड इंशाल्लाह टेक इनोवेशन के अगले एपिसोड में उस बारे में खुल के बात होगी. बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मास्सलाम.
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि स्मोकिंग छोड़ने के जो फायदे हैं और उन तरीकों के बारे में जो इस सफर को आसान बना सकते हैं। बहुत से अफराद समझते हैं कि अगर वो कई सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं तो अब छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। स्मोकिंग छोड़ने के फायदे तकरीबन फौरन शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो उसके चंद मिनट के बाद दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर मामूल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। चंद हफ्तों में ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की जो गर्दिश है वो बेहतर होने लगती है और सांस लेने में आसानी महसूस होती है। चंद माह बाद खांसी और सांस फूलने जैसी अलामत में कमी आ सकती है, जबकि फेफड़ों की कारकर्दगी बेहतर होना शुरू हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की।

0: कैपिटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? दोस्तों, इसका मतलब है लोगों की स्किल्स, नॉलेज और कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना। कतर का विजन 2030 का फोकस सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है, बल्कि लोगों पर भी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स के बगैर डेवलपमेंट तो पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए एजुकेशन, ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसका एक कोर हिस्सा है। जब लोग एजुकेटेड और स्किल्ड होते हैं तो वो बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। स्किल्ड वर्कफोर्स किसी भी इकोनॉमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज रैपिडली चेंज हो रही हैं। नए स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है, जैसे डिजिटल स्किल्स, मैनेजमेंट एबिलिटीज और खास करके स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज। अगर वर्कफोर्स अपडेटेड ना हो तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस काफी स्लो हो सकती है। कतर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, फिर चाहे यूनिवर्सिटीज हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो या फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। इससे कहीं ना कहीं यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कम्पीट कर सकें। दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल किसी भी मुल्क का सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है। जब लोग स्ट्रॉन्ग, स्किल्ड और कॉन्फिडेंट होते हैं तभी तो इकोनॉमी सस्टेन करती है। कतर का नेशनल विजन 2030 ये फोकस करता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कैपिटल से है। तो बस इसीलिए आपको मैंने इस टर्म को समझाने की कोशिश की है, और जैसे मैंने कहा था कि मैं आने वाले दिनों में और ज्यादा डीपली आपको ये टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी रेलेवेंस के बारे में डिटेल पर बात करूंगी। बट बिफोर दैट, मुझे लगा कि पहले हमें ये टर्म्स आपके साथ इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। तो आज हमने ह्यूमन कैपिटल पे बात की, कल आऊंगी तो एक और नए टॉपिक को लेकर आऊंगी, उस पर छोटी सी हल्की सी नॉलेज आपको मैं दूंगी। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और प्रैक्टिकल और डेली लाइफ से रिलेटेड सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। यहाँ हम बात करते हैं उन हैबिट्स की जो हमारी रोजमर्रा की शॉपिंग को ज्यादा स्मार्ट बनाती हैं और साथ ही एनवायरमेंट और बजट दोनों को बेनिफिट करती हैं। देखिए आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग की। भाई ये तो मेरी फेवरेट चीज है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं इसको फॉलो करती ही करती हूँ। चलिए एक बहुत ही रिलेटेबल सीन के साथ शुरू करते हैं कि भाई यूं समझ लें कि आप सुपरमार्केट गए हैं सिर्फ 5 चीजें लेने के लिए। ये मेरी अम्मा करती हैं असल में, 5 चीजें 4 चीजें लेने जाएंगी लेकिन लेकर 40 चीजें आ जाएंगी। होता ये कि हाथ में एक लिस्ट बनी हुई होती है लेकिन जैसे जैसे आप आयल्स में चलते जाते हैं हर शेल्फ पर आपको कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव नजर आता रहता है ना, चॉकलेट्स, स्नैक्स, ऑफर, बाय वन गेट टू फ्री या बाय टू गेट वन फ्री, होता ये आपको नजर आ रही है डील्स। और जो आइटम आपने 5 आइटम लेने थे ना, आप तो 5 आइटम लेने गए थे, होता ये है कि उन 5 आइटम्स के साथ साथ और मजीद शॉपिंग कर लेते हैं और हमारी कार्ट फुल हो जाती है। घर वापस आकर आप अपना सर खुजा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि भाई ये देखो कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा नहीं आ गई और कुछ जरूरी आइटम्स रह नहीं गए। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं, ये हम सबके साथ होता है। देखिए अनप्लान्ड ग्रोसरी शॉपिंग का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अननेसेसरी आइटम्स खरीद लिए जाते हैं जो या तो वेस्ट हो जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ आपके वॉलेट पर नहीं पड़ता भाई बल्कि फूड वेस्ट और एनवायरमेंटल लोड पर भी होता है। देखिए यहाँ इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में मैं आपको बता देती हूँ। आइडिया बड़ा सिंपल है, सोच समझ कर ग्रोसरी शॉपिंग करें, मतलब प्लान बनाना, लिस्ट फॉलो करना। लिस्ट लेकर तो जाते हो, आधा दर्जन लोग लिस्ट लेकर जाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते। लिस्ट फॉलो करना और कॉन्शियस बाइंग डिसीजंस लेना। अब बात करते हैं कि भाई स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग से क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा तो फूड वेस्ट रिडक्शन होती है। जब आप सिर्फ जरूरी आइटम्स खरीदते हैं ना तो घर में खाना खराब होने के चांसेस नहीं होते ना। अब आपने लेनी एक पालक है, पालक लेने गए हैं आप, फॉर एग्जाम्पल सब्जी लेने गए, पालक लेने गए, उसके साथ आप 5 से 6 सब्जियां और उठाकर लेकर आ जाते हैं, फ्रेश फूड तो और ज्यादा जल्दी एक्सपायर होता है। तो भाई दूसरा फायदा है बजट कंट्रोल। अननेसेसरी शॉपिंग से बच कर आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। तीसरा फायदा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होना। देखिए कम वेस्ट का मतलब होता है कम लैंडफिल्स प्रेशर और कम रिसोर्सेज वेस्टेज। इसी के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट और भी बहुत सारे फायदे हैं लेकिन इसको मैं लास्ट कहूंगी कि टाइम सेव होता है ना। देखिए फोकस शॉपिंग से आप जल्दी काम कंप्लीट कर लेते हैं और अननेसेसरी ब्राउजिंग से बच जाते हैं। ब्राउजिंग सिर्फ इंटरनेट पर नहीं होती साथियों, ये कभी कभी प्रैक्टिकल भी होती है और प्रैक्टिकल वे में, फिजिकल वे में आपने कभी ब्राउजिंग देखनी हो ना, आप शॉपिंग मॉल्स चले जाएं, आप ग्रोसरी शॉपिंग करने चले जाएं, आपको हजारों लोग ऐसे ही नजर आएंगे जो इररिलेवेंट सी शॉपिंग कर रहे होंगे। अच्छा भाई अगर मैं आपको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल दूं ना इसकी, तो जरा सोचिए आप फ्रिज चेक किए बगैर ग्रोसरी शॉपिंग करने चले गए, आपने ये देखा ही नहीं कि आपके फ्रिज में क्या पड़ा हुआ और क्या नहीं पड़ा हुआ। वहां जाकर आप वही चीज दोबारा ले लेते हैं जो घर में पहले से मौजूद होती है। तो फिर ऑफर के चक्कर में 3 बॉटल जूस और ले आते हैं जबकि जो घर में बॉटल पड़ी होती है वो यूज होने वाली होती है या वो एक्सपायरी के पास आ रही होती है। तो रिजल्ट क्या होता है, फ्रिज ओवरलोड जाता है और कुछ चीजें वेस्ट हो जाती हैं। देखिए दोहा जैसी सिटी में जहां सुपरमार्केट्स मॉडर्न अट्रैक्टिव है ना, जहां मार्केटिंग और ऑफर्स बहुत स्ट्रांग है, दिल ललचाए रहा न जाए ये वाला सीन है। इसीलिए यहां स्मार्ट शॉपिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि आप मार्केटिंग ट्रैप्स से बचकर रियल नीड्स पर फोकस करें ना। अच्छा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हूं मैं आपको जो मेरे लिए बहुत काम करती हैं, मैं इनके ऊपर चलती हूँ। हमेशा शॉपिंग लिस्ट बनाएं, घर से निकलने से पहले क्लियर लिस्ट तैयार करें और उसी पर डटे रहें, स्टिक टू इट। देखिए एम्प्टी स्टमक कभी भी शॉपिंग ना करें। जब आपका पेट खाली होता है ना तो भूख में आप इम्पल्सिव बाइंग करते ही करते हैं। तीसरी चीज है फ्रिज और पैंट्री अपनी हमेशा चेक करें शॉपिंग पे जाने से पहले। शॉपिंग से पहले देखें कि घर में ऑलरेडी क्या क्या अवेलेबल है और ऑफर्स को क्रिटिकली देखें। मतलब ये कि हर डिस्काउंट यूजफुल नहीं होता, सिर्फ वही लें जो जरूरत है। लाजमी नहीं कि एक चीज के ऊपर ऑफर लगी हुई, अरे भाई ऑफर लगी है उठा लो उठा लो उठा लो। नहीं भाई, जरूरत है तो उठाओ ना, वरना तो नहीं उठाओ। और हाँ, वीकली प्लानिंग करें, एक प्रॉपर वीकली प्लान, अपना मील का जो प्लान होता है ना वो बनाएं और उसके मुताबिक ग्रोसरी खरीदें, उससे ज्यादा मत करें। ये बड़ी ऑर्गेनाइज चीज आपको ऑर्गेनाइज रखती है ये चीज। अच्छा, इसका इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये कि स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग सिर्फ सेविंग टेक्निक नहीं है बल्कि सस्टेनेबिलिटी हैबिट है। जब आप अननेसेसरी बाइंग खत्म करते हैं तो आप इनडायरेक्टली प्रोडक्शन डिमांड को भी कंट्रोल करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंटल प्रेशर कम करती है। अच्छा, अगर एक इससे और ज्यादा रिलेटेड बात करूं तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम जस्ट इन केस वाली चीजें उठा लेते हैं, जस्ट इन केस, क्या पता अगर क्या पता जरूरत पड़ जाए। लेकिन वो जस्ट इन केस आइटम ना अक्सर नेवर यूज्ड आइटम बन जाते हैं। जैसे मुझे बड़ा शुरू शुरू में शौक था भाई, वो जो कैन फ्रूट होते हैं ना भाई, मुझे बड़े लजीज लगते थे वो कैन फ्रूट। मैं कहती कैन फ्रूट उठा लो, पाइनएप्पल कैन है उठा लो, कोई भी मिक्स फ्रूट है उठा लो। मैंने एक दिन खोल कर देखा कैबिनेट, भाई 4-5-6 और आधा दर्जन तो वैसे ही कैंस एक्सपायर हो गए, पता नहीं वो कब से पड़े हुए थे। तो फिर उस दिन के बाद से मैंने भी ये सीखा कि जस्ट इन केस वाला, अगर कोई मेहमान आ जाए तो भाई ये चीज बना कर दे दो, उस चीज से अगर कुछ हो जाए तो जस्ट इन केस उठा लेता हूँ, ये वाला नहीं। नो नो नो, डोंट डू दैट। स्मार्ट शॉपिंग का मतलब ये है कि फ्यूचर गेस करने के बजाय प्रेजेंट नीड को प्रायोरिटाइज करें ना। अब अगर थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज एंगल के बारे में बात करें तो जब आप स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग अडॉप्ट करते हैं ना, तो आप अपनी कंजम्पशन हैबिट्स को डिसिप्लिन में लेकर आ रहे होते हैं। आप इंपल्सिव बायर से प्लान्ड बायर बन रहे होते हैं और इसका इको स्विच बड़ा सिंपल है। ग्रोसरी शॉपिंग को प्लान्ड और स्मार्ट बनाएं। तो भाई इसी के साथ आज के चैलेंज पे हम आ गए, और आज का चैलेंज ये है कि आज या नेक्स्ट शॉपिंग ट्रिप से पहले एक प्रॉपर ग्रोसरी लिस्ट बना लो ना बाबू प्लीज, और सिर्फ उसी पर डटे रहो, उसके अलावा कुछ नहीं लेना। अपने फ्रिज पर या कहीं पर भी एक स्टिक नोट लगा लो, एक पेपर चिपका लो मैग्नेट से कि जब कोई चीज खत्म हो तो उसके अंदर लिखो और बस वही लेकर आओ। और अगर आप ऑलरेडी लिस्ट बेस्ड शॉपिंग करते हैं मेरी तरह, तो किसी और को भी इस हैबिट के लिए एनकरेज करें, जैसे मैं आजकल अपनी अम्मी को एनकरेज कर रही हूँ कि मामा प्लीज अब हम लिस्ट से शॉपिंग करेंगे। तो भाई साथियों, शॉपिंग सिर्फ खरीदारी नहीं होती बल्कि डिसीजन मेकिंग होती है। जब हम स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग अडॉप्ट करते हैं तो हम सिर्फ पैसा नहीं बचाते बल्कि फूड वेस्ट कम करते हैं और एनवायरमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है। तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूव करती हैं कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है।
1: दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हिम्मत वो चाबी होती है जो बंद दरवाजे खोल देती है। अगर आप दरवाजा खोलना चाहते हैं तो उठिए, पहला कदम बढ़ाइए और अपने लिए नए दरवाजे खोलिए।
2: इस बार उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं नाज़िया एफएम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इंस्पायरिंग वुमेन। दोस्तों, इस शो का हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हर उन लेडीज की स्टोरीज को हम आप तक पहुंचाएं जो हिम्मत जज्बे की मिसाल है। फिर चाहे बात छोटी हो या बड़ी, चाहे कामयाबी छोटी हो या बड़ी, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हर किस्सा किसी न किसी के लिए रोशनी का सबब बनता ही बनता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड का आगाज करते हैं और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, फाउंडर है फैमिली बॉन्ड की। लेट्स वेलकम आलिया मसूदी ऑन एफएम 107। होप शी इज डूइंग गुड एंड ग्रेट, हाउ आर यू डूइंग?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग वेल।
1: अल्हम्दुलिल्लाह। तो आलिया, सबसे पहले आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस, आपकी अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहूंगी, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में जानना चाहूंगी और किस तरह से सोशल वर्क को करने का जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ, कब पैदा हुआ?
3: जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं अक्सर इस बात को बोलती हूँ, मैं बचपन से ही ना बहुत रेबेलियस चाइल्ड रही हूँ। सो और विद डैट मैं बहुत ज़्यादा कंपैशनेट थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। तो एकदम से मुझे फील होता था लाइक अगर मैं पेन किसी को पेन में देखती थी या कुछ भी, जब बचपन से लाइक आई यूज टू फील अलॉट। तो बचपन से जो मेरा ये रेबेलियस अंदर मेरा नेचर था लाइक अराउंड लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, चाहे पेरेंटिंग स्टाइल्स हो, चाहे जहाँ मुझे ऐसे लगे कि एक मतलब किसी एक आवाज़ को ज़्यादा पावर दिया गया है देन दूसरी आवाज़ को साइलेंस किया गया है, स्पेशली अबाउट गर्ल्स बीइंग साइलेंस्ड। तो डॉवरी सिस्टम जहाँ पे मैं देखती थी कि लड़कियों का लाइक देयर वर्थ इज वो बिल्कुल वो मटेरियल थिंग्स पे डिसाइड किया जाता है, एजुकेशन सिस्टम कंपेयरिंग चिल्ड्रन क्लास रूम में बच्चों को, तो आई वॉज देयर ऑलवेज। तो इसके रिलेटेड मेरे अंदर हमेशा क्वेश्चंस हुआ करते थे और मुझे पता था लाइक आई यूज टू फील लाइक जज्ड व्हेन आई यूज टू स्पीक, लाइक ये कहीं सही नहीं है, तो आई यूज टू बी जज्ड लाइक के शी इज टू टॉकेटिव, शी इज समटाइम्स रूड, लाइक यू नो, क्योंकि मेरे अंदर वो फायर था कि मैं जहाँ बोलूँ मैं पूछूँ, मैं सवाल करूँ कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, दिस इज समथिंग।
1: आलिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाउ ऑफन यू हैव बीन सप्रेस्ड?
3: वेरी ऑफन, सो इट्स वेरी ऑफन, इट्स वेरी कॉमन, लाइक
1: इन क्लासरूम और
3: इन क्लासरूम इन आर फैमिलीज, लाइक यू नो व्हेन यू हैव अ चाइल्ड हु इज समबडी हु इज रेबेलियस, हु विल आस्क क्वेश्चंस, हु विल क्वेश्चन द सिस्टम्स दैट आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, दैट child will be labeled. So I was often labeled, but I always knew ki ye cheez jo main andar se soch rahi hu kar rahi hu ye galat nahi hai. So I had that whatever I'm doing it's very right, it's not wrong jo main kar rahi hu. लेकिन इसके साथ साथ मैं, मेरे अंदर कंपैशन था, आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, तो मुझे माइक दे दो, मुझे स्टेज दे दो, आई यूज टू फील लाइक यू नो अलाइव, सो इसका मुझे बहुत पैशन था। सो क्या था कि मुझे हमेशा लगता था लाइक आई वाज बॉर्न टू यूज माय वॉइस फॉर चेंज, तो मुझे हमेशा एंड आई वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सो एज अ चाइल्ड आई इवन ड्रीम्ड कि मैं एक पॉलिटिशियन बनूं, तो मुझे लगता था पॉलिटिशियंस जो है ना दे आर लाइक दे ब्रिंग सोशल चेंज, सोसाइटी में हेल्प करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट मुझे लगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी अ मीडिया पर्सनैलिटी, आई डू सम रिपोर्टिंग अबाउट कि यहाँ पे ये गलत चीज़ हो रही है, कि बस मुझे उठना है गलत चीज़ के खिलाफ, मुझे बोलना है। सो मुझे लगता था कि लाइक मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म जो है जो वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो जो मेरा बचपन था इट वॉज लाइक इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ रेबेलियन एंड कंपैशन, तो मैं कहीं चीज नहीं देख सकती थी, अनफेयरनेस कहीं पे कुछ हो रहा है तो मुझे बस उसके बारे में बोलना है. तो उसकी वजह से लाइक मेरी जर्नी है ना वो सोशल चेंज की वहाँ पे शुरू हो गई. तो मैं बोलती हूँ कि लाइक इट शेप मी द पर्सन हु आई एम टुडे, दैट फायर यू नो व्हिच वाज इनसाइड मी फ्रॉम माय अर्ली चाइल्डहुड. तो जो कि बिकॉज नाउ आई यूज माय वॉइस एंड माय वर्क टू चैलेंज सिस्टम्स, टू क्रिएट चेंज एंड टू बिल्ड बेटर स्पेसेस फॉर चिल्ड्रन, फॉर फैमिलीज एंड टू एम्पावर देम.
4: ब्यूटिफुल, रियली इंस्पायरिंग स्टोरी. बहुत कम ऐसा होता है कि छोटी उम्र में आपको जो है ना ये सिस्टम नॉर्म्स और

0: चीजें जो है अनोइंग लगे, कुछ गलत हो और आपको समझ में आए कि गलत हो रहा है, मुझे आवाज उठानी है
1: exactly.
0: तो आई एम श्योर किसी ना किसी का ऐसा हाथ होगा, कोई ना कोई ऐसा आपका मेंटर जरूर रहा होगा जिसको आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करती रही होंगी ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड डेज. तो कौन आपका रोल मॉडल?
1: वो भी सही है, लेकिन एक चीज है कि वही मैंने कहा ना, कंपैशन की बात मैंने कही. हाँ. तो हर किसी, मेरे अंदर बहुत कंपैशन था, तो जितना
0: कहीं से तो आया होगा कोई
1: रोल मॉडल लाइक. हाँ जी बिल्कुल, मेरे फादर मेरे रोल मॉडल रहे हैं. ही अभी हम लोग जेंटल पेरेंटिंग, कॉन्शियस पेरेंटिंग की बात करते हैं आजकल, मेरे फादर तो उस जमाने में कॉन्शियस पेरेंट थे. तो लाइक ही यूज्ड टू कनेक्ट विद चिल्ड्रन बिफोर करेक्टिंग देम. तो ही वाज द एग्जांपल. मैं अक्सर बोलती हूँ इफ आई एम टुडे, मैं कॉन्शियस पेरेंटिंग पाथ लिया है एंड आई एजुकेट पीपल अबाउट कॉन्शियस पेरेंटिंग, इट्स ड्यू टू माय फादर बिकॉज ही हैज बीन अ कॉन्शियस पेरेंट दोज डेज. तो ही वाज डिफरेंट, ही वाज पेरेंटिंग डिफरेंटली. एंड सो या, माय फादर हैज बीन माय रोल मॉडल एंड पब्लिक स्पीकिंग इट्स ऑल्सो इन अवर ब्लड, सो इट्स फ्रॉम हिम.
0: ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड,
1: ही इज अ वेरी गुड स्पीकर.
0: ओके फैंटास्टिक. सो टेल मी आलिया, व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर?
1: जी एक्चुअली दिस जो फैमिली बॉन्ड है, इट्स माय लिव्ड एक्सपीरियंस. सो ये मेरी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, ये मेरे लिव्ड एक्सपीरियंस से शुरू हुई है. इट बिगेन फ्रॉम माई मदरहुड एंड बिकॉज मैंने जो देखा कि आई वॉज पेरेंटिंग माई चिल्ड्रन द डिफरेंट वे, नॉट एज कि जैसे मेरी पेरेंटिंग हुई है या मेरी फ्रेंड्स को मैं देख रही हूँ अपने बच्चों की पेरेंटिंग करते हुए. सो वो था कि आई फेल्ट लाइक आई एम डूइंग थिंग्स डिफरेंटली. ठीक है, जो बॉन्डिंग मेरी बच्चों के साथ है, द वे आई एम रेजिंग देम, वर्किंग ऑन देयर सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियस, यूजिंग द पाथ ऑफ कॉन्शियस पेरेंटिंग अपने बच्चों को बड़ा करने में, तो दैट समथिंग यू नो एवरी सिंगल डे जो मैं करती थी, दैट इंस्पायर्ड मी टू you know create this family bond and educate the community regarding the family wellness, conscious parenting, family bonding, emotional intelligence. So ye differences, embracing the differences, accepting your children the way they are. So ye tha ki meri khud ki jo journey rahi hai motherhood ki, that has been very inspiring. So that made it possible, this creating this family bond.
0: Right. Okay Alia, we do know that ki challenges are part and parcel of a life.
1: Ji.
0: तो जब आप फैमिली बॉन्ड को एक्सपैंड कर रही थी या जिसको इनिशियली एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, किस तरह के चैलेंजेस को आपने फेस किया?
1: बहुत सारे चैलेंजेस को. सबसे पहले फैमिली बॉन्ड, आई स्टार्टेड फ्रॉम माय रूम एक्चुअली, यू नो विद माय फ्रेंड्स चिल्ड्रन, बट उनके बच्चों के साथ, उनके साथ कि मैं उनको एजुकेट करूँ इमोशनल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, लाइफ स्किल के रिलेटेड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन आई यूज टू गिव इन माई कम्युनिटी. देन आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माई फ्रेंड, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, शी इज फ्रॉम कश्मीर, शी केम एंड शी स्पेंड सम टाइम विद अस एंड शी पुश्ड मी, शी सेड कि आप जो कर रही है अपने बच्चों के साथ अपनी कम्युनिटी में, यू शुड कम आउट फ्रॉम योर हाउस एंड यू नीड टू एजुकेट द पीपल इन द कम्युनिटी एट लार्जर. तो आई वुड लाइक टू गिव हर क्रेडिट फॉर पुशिंग मी उस टाइम पे. लेकिन इट वॉज नॉट ईजी, देर लॉट ऑफ चैलेंजेस. सो पहला चैलेंज मेरा खुद का हेल्थ था, सो आई वुड से माई ओन हेल्थ. सो आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ हेल्थ, जहाँ पे मुझे आई, क्योंकि जो बात करना मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो माई वॉइस इज़ माई पावर्स, जहाँ पे मुझे बात, डॉक्टर ने बात करने से मना कर दिया. सो या, सो आई, इट जस्ट, इट वॉज लाइक अ वेरी शॉकिंग टू मी. मैंने कहा कुछ भी बता दो, बस बात करना बंद ना कर दो, क्योंकि बस इसी बात से आई कैन हील द पीपल, आई एजुकेट पीपल. सो दैट वॉज अ वेरी बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, इनिशिएटेड दिस जर्नी. तो एंड दैट, उसके बाद उससे वजह से मेरा मेंटल हेल्थ पे टॉल आ गया. आई वेंट इनटू अ स्ट्रेस पीरियड, आई लॉस्ट माई वेट, आई कुडंट स्लीप इन द नाइट बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू दिस फेज कि नहीं मुझे बोलना है, मेरी आवाज़ बंद हो गई, लाइक आई कॉन्ट, आई हैव टू तो स्पीक, आई हैव टू एजुकेट पीपल. तो दैट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज जब मैंने ये स्टार्ट किया. एंड प्लस उसके बाद मदरहुड, आई वुड से नॉट मच, अक्सर ऐसे करते जब लेडीज़ बाहर निकलती है, दे इनिशिएट टू क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन, कोई कुछ किसी भी तरह से, तो उनके बोलती कि हमें मदरहुड के चैलेंजेस आते हैं.
0: right.
1: मेरे लिए वो चैलेंज कम था, ज़्यादा नहीं था. मैं बताऊँगी, क्योंकि लाइक माई चिल्ड्रन वी, हमारा जो बॉन्डिंग था, दे वेर द वे आई रेज देम, सेल्फ अवेयर एंड कंपैशनेट. सो आई टोल्ड देम आई एम गोइंग टू डू दिस, इट्स समथिंग आउट ऑफ कंपैशन, आई एम गोइंग टू हेल्प पीपल. सो दे वेर वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. सो दे हेल्प मी, दे हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट इन मेकिंग थिंग्स ईजी फॉर मी. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड से द माई हेल्थ हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट चैलेंज. और हमारे अक्सर चैलेंजेस हमारा फाइनेंशियल होता है चैलेंजेस. सो इन माई इनिशियल डेज आई हैव यूज माई पॉकेट मनी. so to just organize some few workshops, and with that my husband helped me a lot. He supported me financially in my initial days a lot, seeing my passion towards family bond jo main kar rahi hu. Aur uske baad हाँ देर आर दे फ्यू लाइक ये जो सोसाइटी में जजमेंट्स लाइक यू नो तो वी विल फेस कि जब ऐसा हो सबसे बड़ा जजमेंट तो था कि तीन बच्चों की माँ लाइक शी इज कमिंग आउट ऑफ हर हाउस एंड शी इज डूइंग समथिंग लाइक
2: एंड स्ट्रॉन्ग तीन बच्चों की माँ
1: आई वुड से समथिंग हियर आई यूज्ड टू मैं साइकिल चलाती थी व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग लाइक मैं साइकिल चलाती थी अपने कम्युनिटी मतलब जस्ट अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर यू नो टू कम आउट ऑफ द हाउस तो मैं थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करूँ अकेले विदाउट बच्चों के एज अ एक सेल्फ केयर का तो पीपल यूज टू जज लाइक सेइंग दैट तीन बच्चों की माँ साइकिल चलाती है लाइक यू विल हियर सच कमेंट्स इन आवर सोसाइटी इट्स वेरी कॉमन सो देयर वर जजमेंट्स या रिगार्डिंग माय होमस्कूलिंग आई वाज होमस्कूलिंग माय किड्स रिगार्डिंग लॉट ऑफ थिंग्स माय डिसीजंस बट दैट्स फाइन कहते हैं ना कि किसी का रिजेक्शन आपको ज्यादा वो फ्यूल देता है क्योंकि फायर तो था अंदर से तो ज्यादा फ्यूल हो गया फ्यूल मिलता था तो इट यूज्ड टू इग्नाइट मी मोर एंड आई डिडंट बॉदर एट ऑल वही कहते हैं ना कि पैशन जब हो ना तो Nothing can stop you.
2: That's true. We salute you, Alia, for this. और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप कर रही हैं हमारे listeners के साथ share कर रही हैं ये सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा short song break के उस पार भी

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं शो इंस्पायरिंग वुमेन और आज हमारे साथ एक बहुत ही कमाल की इंस्पायरिंग वुमेन मौजूद हैं, आलिया, जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी लाइफ के साथ मेल खाती है और हमें एहसास और महसूस होता है कि हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्ट्रांगली कम बैक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें आलिया सिखा रही हैं, बता रही हैं। तो आलिया, आपसे मैं जानना चाहूँगी किस तरह से आपको लगता है कि आपके काम ने लोगों को एक्चुअली मुतासर किया, या कोई स्टोरी है खास जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ?
2: जी बिल्कुल, देखिए ये चीज़ है कि व्हाट आई बिलीव इन कि वी हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक। तो जब भी हम कुछ बताएं, सच हो, रॉ हो और ऑथेंटिक हो, क्योंकि सोशल मीडिया की आजकल की दुनिया में लोग बहुत वो रील पे ज़्यादा बिलीव करते हैं देन रियल। तो इस चीज़ में यहाँ पे मैं आई ट्राई टू एजुकेट पीपल by educating them like you know raw and मैं authentic content दूँ। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि क्या थिंक वट आई नो आई एम डूइंग डिफरेंटली दैट इज इंस्पायरिंग पीपल इज दैट आई एम कहते ना वो ट्रूथ बॉम्ब्स थ्रो करना, तो मैं वो चीज़ कर लेती हूँ। तो मैं क्या कहूँगी, मैं ये नहीं बताऊँगी कि आपको ये चीज़ ठीक करनी है, ठीक है, ये सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। मैं बताऊँगी ये गलत हो रहा है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। आई वुड लाइक टू आई वॉन्ट टू गिव दम रियलाइजेशन, ठीक है, कि कहाँ जी गलत कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद मैं उनको क्वेश्चन करते हैं, आप बताइए सोच के कि इसको हम कैसे सोल्यूशन करें, हम किससे इसको आंसर करें, इस प्रॉब्लम को हम कैसे, जैसे हमारी काउंसलिंग सेशन होते हैं फैमिलीज के साथ, लेडीज़ के साथ, तो वो प्रॉब्लम्स लेके आती है अपनी फैमिली वेल्थ के बच्चे का। देखिए बच्चे स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे रिड्यूस करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँगी तो प्रॉब्लम क्या है कि आप बताइए आपका स्क्रीन टाइम कितना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना फोन खोलिए, आप देखिए आपका स्क्रीन टाइम कितना है। तो बच्चे तो रोल मॉडलिंग देखते हैं, तो आप बच्चों की यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक टू योर चिल्ड्रन। तो वो होगा हील होना, रियल हील होना। तो मैं वो चीज करती हूँ कि मैं उनको ना लुक बैक रियली वेयर द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग एंड यू वोंट बिलीव नाउ दे कम अप विद द सॉल्यूशंस देमसेल्व्स। खुद वो सोल्यूशन लेके आ रही, क्योंकि वो अपने आप के अंदर ना वो देख के देखते हैं कि कहाँ पे गलती है, क्योंकि जो चीज़ शुरू होता है ना वो हमसे ही शुरू होता है। इट्स ऑलवेज फ्रॉम अस, नोबडी इज़ गोइंग टू कम टू हेल्प अस एंड नोबडी इज़ डूइंग एनीथिंग टू अस, इट्स वी ओनली जो हम करें ना, लोगों को इफेक्ट होने दे रहे हम पे, इट्स वी जो है जो हमसे है। तो ये है मुझे क्योंकि आई हैव सीन लेडीज़, मैं आपको स्टोरीज बताऊँगी, जैसे एक like it may कोई मुझे ये बताए, somebody will I will meet somebody at an event and they will tell me thanks I would like to thank you because I came out from a toxic relation just because of you, because you taught me how to say no. तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, तो जब किसी ने ऐसा बोला लाइक इट वाज इट्स रियली मेक्स अस हैप्पी।
1: कितना टाइम लगता है कि उस बंदे या बंदी को उस हैबिट से बाहर निकाल के लाने में, कितना टाइम लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस है आपका?
2: देखिए मैं वही कह, जितना रियलाइजेशन जल्दी होना उतनी जल्दी हीलिंग और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जल्दी। तो इसलिए आई ट्राई टू वर्क ऑन द रियलाइजेशन, आई विल थ्रो द ट्रुथ बॉम्ब एंड दे विल बी लाइक यस दिस इज द थिंग।
1: कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव लगा हो क्या?
2: दैट इज वो तो होगा। देयर वाज सम पीपल आई हैव वर्कड विद फैमिलीज, आई वर्क कांस्टेंटली लाइक 2-3 मंथ्स एंड एट द सम टाइम दे विल बी टायर्ड, क्योंकि दे विल गिव अप लाइक यू नो टू वर्क किसी भी चीज में, जो भी फैमिलीज में इशू हो या कोई चीज, तो दे विल गिव अप। But at the end they know that actually they are the problem because that's why they give up. वो खुद पे चेंज नहीं लाना चाहते,
1: नहीं लाना चाहते।
2: लेकिन हमें खुद में ही चेंज लानी है। तो जो चीज़ है हम ही अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, nobody is going to change us. तो बात वहीं आती है that we have to realize कि कहीं हम में क्या चीज़ है जो that we need to change. For example अगर हम लोग, मैं जैसे एक मदर थी, फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्पीच दूँ, कोई मैं कहीं पर स्पीच देती हूँ या मैं कोई कॉन्टेंट दूँ, they will come up and they will send me a message, they will make a call to me and they will say ki I was about to do this, main apne bacche pe chilane wali thi, main apne bacche ke sath aisa karne wali thi, jo speech came, your content came and I just maine apne aap ko stop kar diya, like it's a constant reminder, like you know if you, to ye sab cheeze hai. Once maine social media pe challenge diya tha mothers ko, ki one mother came to me and she said I have this habit of punching my child, you know, hitting my child. So I introduced a pillow to her, I said आप अपने घर में हर पिल्लो जो है, जितने भी पिल्लोज है सोफा पे, काउच पे, आप उन पे सब पे लिख दो हिट मी, ठीक है। उसको पता लगा ये मुझे क्या कह रही है, लाइक व्हाट इज शी टेलिंग मी।

0: कि इतनी आदत पिल्लों को, क्योंकि हम उसकी फीलिंग को भी इनवैलिडेट नहीं कर सकते. गुस्सा तो उसको आ रहा है, कोपिंग स्किल उसको है नहीं कि वो रेगुलेट करे खुद को, तो उसको तो मारना है टू फील मेक हरसेल्फ फील बेटर. तो वो तो बच्चे को तो हम मारने नहीं देंगे, तो ले लो पिल्लों को ही मार दो बेचारे को. तो शी इज डूइंग दैट, शी इज डूइंग दैट. आफ्टर 3 वीक्स शी इज फीलिंग सो बेटर एंड शी सेड आई वांट टू लर्न नाउ हाउ टू रेगुलेट माय इमोशंस. आई सेड दिस इज द थिंग यू हैव टू रिप्लेस, इंस्टेड ऑफ हिटिंग योर चाइल्ड यू हैव टू हिट समथिंग एल्स. तो आप पेपर क्रम्बल कर दो, आप किसी और चीज पे अपना गुस्सा निकाल दो, लेकिन इंसान भी नहीं, किसी को बच्चों को हर्ट ना करे विद योर वर्ड्स नॉर योर एक्शंस. तो आपके बच्चे भी देखेंगे हर सन दे यूज टू कम एंड हग हर, लाइक दे सीइंग हर कि शी इज बीटिंग द पिल्लो. सो दैट वाज सच अ वंडरफुल थिंग, यू नो, व्हेन आई हर्ड दिस, आई वाज, मैं बहुत ही इमोशनल हो गई. आई वाज लाइक आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम ऑन द राइट पाथ. एंड व्हेन यू आर ऑन द राइट पाथ नाजिया, व्हाट आई हैव सीड, यू विल द अच्छे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे. जो आपके लिए दरवाजे मेंट नहीं ना, दे विल बी क्लोज्ड. सो सिंस आई स्टार्टेड फैमिली बॉन्ड, आई हैव ओनली मेट द गुड पीपल इन माय लाइफ. आई हैव हैड इंटरेक्शन, लाइक कुछ ऐसे इंटरेक्शंस नेगेटिव, बट दे वर द लेसंस, दे वर द लेसंस वेरी पॉजिटिव, जिसने मुझे इफेक्ट नहीं किया. तो लेकिन देवस जब मतलब ऐसी इतनी सारी स्टोरीज है ना, कि जहाँ पे मदर खुद को हील कर रही है, शी इज गेटिंग रेडी.
1: कॉमन इश्यूज क्या है फैमिलीज ज्यादातर, क्या फीमेल्स के साथ ज्यादा इश्यूज आप देख रही हैं?
0: नहीं ऐसा नहीं
1: या
0: है,
1: और कोई भी मेंबर है फैमिलीज के,
0: आपके
1: साथ
0: फैमिलीज दोनों पेरेंट्स के साथ इश्यूज है, ठीक है. अगर इन लॉज के साथ रहते उनमें भी इश्यूज है, सबके इश्यूज है, लाइक एवरीबडी इज कैरिंग देयर ओन ट्रॉमा एंड लाइक यू नो स्ट्रगल्स. सो इश्यूज तो सबके पास है, लेकिन क्या है, एक औरत को टारगेट किया जाता है बिकॉज शी इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू कि आपको आपको ही इस फैमिली की आप वेलबींग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल, बट दैट इज नॉट ट्रू, राइट. तो जितनी माँ रिस्पॉन्सिबल है उतने फादर भी रिस्पॉन्सिबल है, उतने ग्रैंड पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है. फैमिली में जो भी रहते हैं दे हैव टू कंट्रीब्यूट. सो फीमेल को टारगेट किया जाता है, एक मदर को टारगेट किया जाता है, एक तो वो मैं चीज क्योंकि सबके इश्यूज है, सबके इशूज है, और मदर ही काम करना चाहती है.
1: मतलब आप कहते हैं सॉफ्ट टारगेट जो है वो मदर,
0: शी इज मदर ऑलवेज, शी इज मदर ऑलवेज. सो ऐसा नहीं है, दे ऑल एवरीबडी हैज देयर इश्यूज.
1: डू यू सिट विद अदर मेंबर्स आल्सो?
0: यस, आई हैव डन काउंसलिंग, आई हैव डन काउंसलिंग विद द फादर्स मेनी. सो आई यू,
1: हाउ वाज द रिस्पांस इनिशियली, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया
0: और दे वर रिलक्टेंट? नो, इट्स दे वर रिलक्टेंट, इट्स नॉट इजी टू एक्सेप्ट फॉर अ मैन, लाइक यू नो दे हैव दैट ईगो, एक तो अपना अपना एक ईगो मैन का, और उसके बाद पेरेंटल ईगो भी जब आ जाता है ना, वो माँ को भी होता है और फादर्स को तो ज्यादा है कि नहीं जी वी आर नॉट गोइंग टू. मदर्स को बहुत लाइक मम्स वांट टू चेंज. आई हैव सीन लाइक अगर मैं अपना रिसर्च करूँ, अगर मैं अपना देखूँ जितने केसेस हमने देखे हैं, तो उसमें से लाइक आई हैव सीन लाइक मदर्स विल ओनली कम टू यू नो लाइक वी वांट चेंज दिस, हमारे ये इशू ठीक
1: है,
0: सो दे टेक द फर्स्ट स्टेप. वो देखा क्योंकि उनमें वो हमेशा गिल्ट होता है ना कि बच्चे के साथ या कुछ भी इश्यूज फैमिली में हो जाए, तो दे वांट टू हैव लाइक पीस घर में रहे पूरी तरीके से. सो है तो सब में इश्यूज, तो बट वेरी रेयरली द फैमिलीज आर कि सारे मेंबर जहाँ इन्वॉल्व हो जाए कि हम लोग अपनी फैमिली का वेलबींग के बारे में सोचे, इट्स वेरी रेयर. कहीं पर मदर्स का रोल ज्यादा होता है एंड फादर्स आर टोटली एबसेंट, वहाँ पे तो काम नहीं होगा. इट्स things will not improve there totally, वहाँ पे बिल्कुल भी things improve नहीं होगी, क्योंकि it needs to be ना involvement of every member.
1: तो very well
0: said. That's very important. So it's this was an story जो मैं आपके साथ share की.
1: बहुत ही अच्छी.
0: ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस screens का screen को reduce करना, like you know that is also there are a lot of moms like जो ने खुद अपने screens के reduce के, and then they will be sharing the screenshots in the group, our family bond group, like see how much हमारा screen reduction हो गया है, and they're spending more time, they're being more present. तो स्क्रीन जब रेड्यूस हो गया बच्चों के साथ प्रेजेंटली वो ज्यादा है, और दे आर एंजॉयिंग देयर चिल्ड्रन. एक माँ जो कहती है आई डोंट लाइक माई चाइल्ड, यू नो देयर इज वन मम केम टू मी वंस एंड शी सेड आई डोंट लाइक माई चाइल्ड, मुझे पसंद नहीं है इसके साथ टाइम स्पेंड करना, यू नो आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद हर एंड शी गिव्स मी एंग्जाइटी, शी गिव्स मी स्ट्रेस, तो आई वॉन्ट टू सेंड हर टू द स्कूल, आई वॉन्ट टू सेंड हर टू सम बेबी सिटर. इस तरीके से बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है. तो एक कॉमन फैमिली जो ना उनके केसेस मैं आपको बता रही हूँ. तो लाइक उसके सबसे बड़ा मेरा चैलेंज था उसके अंदर उसके बच्चे का भी मोहब्बत पैदा कर देना, वो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद हर, तो मैंने उसको समझाया कि एंड नो वी वर्क्ड ऑन लॉट थिंग, आई गिव हर सम एक्सरसाइजेस, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, एंड आई मीन लाइक जस्ट like in a one month you would see a drastic change in her, you know, she started loving her child and you know, you'll see saying spending because positive, she was not change, she was not present in the moment. Wo bachche ke sath baithti to thi, theek hai, wo uske sath activity to koi cheez karti thi, but she was not mentally present there, so that's why she was not enjoying that moment. To usko present rehne ka wo training dena, that is very important to be present us

0: मोमेंट में, तो जैसे वो प्रेजेंट होने लगी ना, शी बिकेम हैप्पी. सो वी कहते ना कि लिव टुडे, तो वो मोमेंट, लिव द मोमेंट. तो उस मोमेंट को आप लिव करो बाय ब्रिंग द प्रेजेंट. सो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज टू शेयर.
1: माय गॉड, आई एम लाइक सो सो हैप्पी. इतना अच्छा लग रहा है मुझे. ऐसा लगता होगा कि एक टास्क कंप्लीट हो गया, नाउ जस्ट डन विद दिस वन टास्क. और एक और प्रोजेक्ट मिला, फिर उस पर काम करना. और एक सुनने में शायद थोड़ा सा आसान है, लेकिन इट्स वेरी टफ.
0: इट इज टफ, बट
1: जब आप फैमिली के साथ हैं और आप कंटिन्यूअसली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट, उन्हें समझाया जाए कि कैसे उनके घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन सके.
0: बिल्कुल बिल्कुल टफ है, बट ये है कि this is what I love to do, helping people, social change. Mashallah. That's why I'm social entrepreneur. More than profits, I care about impact. That is the difference. That's so the difference. मैं बिल्कुल अपने आप को differentiate करती हूँ from other entrepreneurs. I always say I'm a social entrepreneur. For me, impact is more important than making profits. So that's what I believe in.
1: Beautiful. Hats off, Alia. बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप कर रही हैं, हमारे listeners के साथ share कर रही हैं. ये सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा short song break के उस पार भी.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: FM 107.
4: दिल से देसी.
5: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
6: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का. आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान. बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है. आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरा

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं शो इंस्पायरिंग वुमेन और आज हमारे साथ एक बहुत ही कमाल की इंस्पायरिंग वुमेन मौजूद हैं, आलिया, जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की।
2: उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है।
1: अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी, फैमिली बॉन्ड और कॉन्शियस पेरेंटिंग को किस तरह से आप देखती हैं और ये किस तरह से एक अच्छी सोसाइटी के फ्यूचर के लिए अहम है?
3: ये तो है, देखिए फैमिली जो है, फैमिली ही सब कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग। जो फैमिली तो हमारे सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो पहले से ही स्ट्रॉन्गर फैमिली कनेक्शंस होने

0: बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी फैम कनेक्शंस इंपॉर्टेंट होंगे आपके बच्चों के से बच्चों में फैमिली वैल्यूज आएंगे बच्चों में कैरेक्टर बिल्ड होगा बच्चों में हैबिट ट्रेनिंग डेवलप हो जाएगी लाइफ स्किल्स डेवलप हो जाएंगे आपके कनेक्शंस बच्चों के साथ नहीं होंगे तो बच्चा आपकी बात नहीं मानता होगा यू आर नॉट एबल टू सेट द बाउंड्री तो ये तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट कि फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे डिसोबीडिएंट है बच्चे ओबे नहीं करते हैं बच्चे रूड बन गए हैं तो दिस इज जस्ट बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन द फैमिली बॉन्डिंग दैट नर्चर दैट कनेक्ट नर्चरिंग दैट फैमिली कनेक्शन दैट इज इम्पॉर्टेंट सो वी हैव टू यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में नहीं तो अगर हम लोग ये नहीं करेंगे क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है ना इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ में ऊपर से फिर स्क्रीन जो एडिक्शन हमारा पूरा ए आई एंड इस वक्त इस टाइम पे ये ए आई फैमिली को रिप्लेस नहीं कर सकता है बिलीव मी यू कैन टॉक विद द चैट जीपीटी विद ए आई एंड यू कैन टेल हिम दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड हेल्प मी टू ही विल गिव यू लॉट ऑफ सॉल्यूशंस बट ही इज नॉट योर हीलर इज योर फैमिली आजकल हमारे क्यों आजकल की दुनिया में हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज है क्यों हमें एंग्जाइटी होती है क्यों हमें लोनलीनेस फील होता है चाहे मर्द हो या औरत मोस्टली लेडीज को तो ये क्यों होता है क्योंकि हमारे पास फैमिली अराउंड नहीं है लोग अगर हैं भी लेकिन दे आर नॉट प्रेजेंट पुराने वक्तों में क्यों नहीं थेरेपिस्ट की नीड पड़ती थी वहाँ क्यों नहीं जरूरत पड़ती थी वहाँ तो कोपिंग कितना ईजी था कोप करने के लिए बिकॉज वी यूज्ड टू हैव फैमिली अराउंड जिनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था सबसे बड़ी चीज उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था सो दे यूज टू गिव यू फुली देयर टाइम एंड बी प्रेजेंट देयर फॉर यू तो आजकल वो मिस है क्योंकि स्क्रीन्स ने फैमिली को फैमिली बॉन्डिंग को रिप्लेस कर दिया है सो दैट इज माई वही मैंने आपको कहा ना कि मैं ये फैमिली बॉन्ड जो है ये मेरी पर्सनल जर्नी है कि मैंने अपने फैमिली में फैमिली बॉन्डिंग को प्रायोरिटी दिया देन टू स्क्रीन देन टू स्पेंडिंग टाइम ऑन गिविंग माई किड्स iPads and gadgets and spending time on screen. So we were always together. So ye cheez important hai. So then you are going to preserve this institution. Nahi to waqt hoga ki they would be ek bhai apne bhai ke liye nahi hoga, ek behan apni behan ke liye nahi hogi kyunki itna wo family values hi miss kar rahe hain. Kyunki hum log itne busy ho gaye.
1: Emotional connection hi nahi ban payega.
0: Exactly. Haan, bilkul.
1: Uske liye you need to spend some time with them. Understand, sit back with them, spend little quality time.
0: And people say ye hamesha main sunti hu quality time yeah, this is but I believe that quantity time is also important aap main chahti hu jo bhi hamare listeners abhi sun is baat pe mere ghar pe ek thought le ki main kya kehna cha rahi hu ki with quality time quantity is also important 10 minute mein bacche ke sath kya karne ka bolenge 10 minute hi ho lekin ekdam se present ho lekin nahi bacche ko to thoda sa time aur chahiye behan ko to thoda sa time zyada hona chahiye usko kitni sari baatein karni hoti hai like apni behan se bhai ko kitni sari so we need each other so this how we have to preserve this institution apne bachchon ke liye taki they will carry it on you know like so like hum log traumas pass karte generations let's pass family bonding through generations so let's preserve this institution
1: bahut acha laga ali aap se baat karte hue waqt kahan nikal gaya hame bilkul idea hi nahi laga aur jaate jaate main chahungi ki hamari jitni bhi aap khud ek inspiring women hai to hamari jitni female audience hai jo apne passions ko pursue karna chahti hain to wo kis tarah se kar sakti hain unke liye aap क्या मैसेज देना चाहेंगी
0: बिल्कुल मैं तो ये मैसेज दूंगी जो मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ सबको ये बताती हूँ जिनसे भी मैं लाइक दे आस्क मी सम सजेशन सम एडवाइसेस तो मैं बोलती हूँ जो सबक पढ़ा है ना आपने उस सबक को थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए और उसमें से थोड़ा सा कुछ ले लीजिए जो आपको आपको सर्व करता है आज के ज़माने में उस सबक में से और अपने वैल्यूज जो आपकी खुद की वैल्यूज है बिलीव्स है उसके साथ एक नया सबक पढ़िए इसको पूरा अपने कस्टमाइज बनाइए तो कस्टमाइज बना के कुछ साइकिल्स को ब्रेक करे कुछ नए चीजें बनाए नए कैसे लाइक नए नॉर्म्स हाँ एग्जैक्टली प्लीज तो इनको बना के आप यू कैन परस्यू योर पैशन लाइक यू नो तो अपने आप पे बिलीव करे सो सेल्फ डाउट जज्बाती होना going through a mental health bad phase koi bhi cheez this is fine this will not stay with you always
1: temporary.
0: This is all temporary what you need is that you need to believe in yourself ke your resilience you can aap fail ho jaye aap baithe aap roye beshak roye us failure pe afsos kare apne thoughts write down kare lekin uske baad aap fir se uthe क्योंकि ख्वाब जो होते हैं ना वो कभी मरते नहीं है तो मैं एक चीज यहाँ पे आपको अपना एक किस्सा बताना चाहती हूँ जब आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी दिस बैड हेल्थ फेज तो मेरा वोकल रेस्ट डॉक्टर ने एडवाइस किया था एंड आई वाज नॉट टॉकिंग फॉर वन और टू मंथ्स आई यूज टू रीड बुक्स दोस डेज लॉट ऑफ एंड वाइल रीडिंग अ बुक हाई फाई हैबिट बाय मेल रॉबिन्स आई वुड रिकमेंड टू दोज लेडीज जो परस्यू करना चाहते हैं दे वॉन्ट टू कम बैक मेक अ कम बैक तो मैं पढ़ रही थी वो

0: and she mentioned in that book ke I was going through this bad phase, same like I was going through this bad phase, to uske baad main wo kis Oprah se mili, wo during some show, Mel Robbins, and she told her ke, she said, I want to be a public speaker, I want to be a life coach, I want to educate people, but I don't have a certification or something. Like she said, you have a voice, you know, you have a voice, go ahead, that's what you need. So jab main ye kitab padh rahi thi to main I was like, मुझे पता नहीं है मेरे कपड़े गीले हो गए थे रोते रोते, लाइक आई वॉज इन दैट मोमेंट, यू नो, मैं पूरा उसमें, क्योंकि इट वॉज माई स्टोरी, तो मैं एवरीथिंग एंड माई क्लोज एवरीथिंग वॉज वेट, आई वॉज क्राइंग एंड देन यू नो आई मैं बिल्कुल ज़ोन आउट हो गई, आई वाज लाइक यस दिस इज ट्रू, माई वॉइस इज ऑल्सो माई पावर, नथिंग, कुछ नहीं, आई हैव टू गो, इट्स ओके, आई हैव बीन एडवाइज दिस वोकल, इट्स ओके आई कांट टॉक फॉर सम टाइम, इट्स ओके बट आई कैन मेक अ कमबैक, मैं कोई और चीज कर लूँ कुछ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कहते ना वो अपने आप ही बिलीव करना हील कर देता है, एंड मैं हील हो गई अल्हम्दुलिल्लाह विद अल्लाह विल बेशक और अपने विल पावर से, सो दैट्स इम्पोर्टेंट,
1: और अल्लाह भी आपकी नीयत के साथ है, आपकी अच्छी नीयत,
0: इंटेंशनल लिविंग इज वेरी इम्पोर्टेंट, इज वेरी इम्पोर्टेंट, ये मेरी जिंदगी का ये है कि आई लिव आई डू एवरीथिंग इंटेंशनली, तो अल्लाह इज ऑलवेज यू नो विद यू, ही विल, ही इज गोइंग टू गाइड यू.
1: बहुत ही खूबसूरत बात, थैंक यू सो मच आलिया, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और बहुत सारी अच्छी अच्छी इंस्पायरिंग बातें हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की, थैंक यू सो मच.
0: It was my pleasure. Thank you so much.
1: Well, दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का. इंशाल्लाह नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107, दिल से DC.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: जो देखा गया कि 5.8 मिलियन जो हैं वो मर्द हजरात हैं और 3.7 मिलियन ख्वातीन उसमें शामिल हैं और 1.2 मिलियन जो बच्चे भी इस बीमारी में मुब्तला हैं और पूरी दुनिया में जो डेथ रेट है उसमें 1.23 मिलियन जो डेथ्स हैं वो जो हैं वो हो जाती हैं और इसी तरह से और जो इन्फेक्शंस हैं वो 25% जो रफली पूरी जो इन्फेक्शंस की वजह से ये बीमारी होती है तो उसमें है ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और ये तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या ऐसा ही है कि जो सर्वे या जो ग्लोबली इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो अफराद हैं वो क्यों इस बीमारी में मुबतला होते हैं या हैं और लिसनर्स आप अपने इस प्रोग्राम में आ सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं 666-221-07 इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए 443-443-77 और अगर आप QMC Now ऐप डाउनलोड करेंगे तो फिर हमारे साथ साथ होंगे
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
0: कैलिसंस हमारे साथ होते हैं डॉक्टर सहबान तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजहर मजीद जो कि इमरजेंसी कंसल्टेंट हैं HMC में वेलकम करूंगी मैं अपने तमाम लिसनर्स के साथ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब
2: वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब और रेडियो कतर के सभी सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम
0: जी वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब जैसे मैंने आज जैसे हम बहुत एक अहम जो है मौजू उस पर बात करने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह हमारी मालूमात में इजाफा होगा और हमारे लिसनर्स जो भी सवाल जो हैं वो पूछेंगे इस बारे में तो उन्हें जवाब भी दिए जाएंगे जी डॉक्टर साहब ये ट्यूबरकुलोसिस की बात की और इतनी बड़ी तादाद में जो अफराद हैं वो इसमें पूरी दुनिया में मुबतला हैं
2: जी डॉक्टर साहब ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि मैं सबसे पहले तो ये बताना पसंद करूँगा कि ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली एक इन्फेक्शस डिजीज़ है यानी ये एक मुतअद्दी मर्ज़ है इसका मतलब ये होगा कि ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को लगने वाला मर्ज़ है
0: जी
2: तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है लेकिन जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं यानी वो डिजीज़ जो कि एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को लगती हैं उनमें से सबसे कॉमन जो इन्फेक्शस डिजीज़ है वो यही है
0: जी
2: तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और दूसरी बात है कि जो इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं उनमें से जो डिजीज़ डेथ काज करती हैं उनमें से वन ऑफ द लीडिंग काज है
0: जी
2: तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसके मतलब जानना जो बहुत ज़रूरी है ख़ासतौर पे उन लोगों को जो कि हमारे इलाके से तल्लक रखते हैं यानी साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ
0: तो इसका मतलब ये बात कि जैसे कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज हुई उनमें ये बीमारी जो है वो ज़्यादा आम है
2: जी ये बिल्कुल सही बात है कि इसको डिजीज़ ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है कि ये उन इलाकों में ज़्यादा कॉमन होती है जहाँ पर गुर्बत जो है वो ज़्यादा होती है
0: जी
2: इसलिए कि ये डिज़ीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो सोसाइटी सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से है यानी ये उन इलाकों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन होगी जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होगी जहाँ पे मेल नरिशमेंट ज़्यादा होगी जहाँ पे ओवर क्राउडिंग ज़्यादा होगी और जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो कंपेरेटिवली जो है वो कम्प्रोमाइज़ होंगे तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली जाएँ तो ये डिज़ीज़ जो है ये इसको ये ज़्यादा बढ़ावा दे देती है और चूँकि अनफॉर्चुनेटली हमारे इलाके में ये सभी चीज़ें ज़्यादा कॉमन है इसलिए डिज़ीज़ भी हमारे यहाँ ज़्यादा कॉमन है
0: ठीक और जैसे आपने कहा कि तमाम ये चीज़ें अगर लिस्ट करें तो बिल्कुल यही चीज़ें आएंगी जब हम आपसे कॉजेज़ भी पूछेंगे कि इसकी वजूहत जो हैं वो क्या हो सकती है मगर सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि ये है क्या जैसे हम मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या जिसे हम उर्फ़ आम में TB कहा जाता है तपेदिक है तो ये क्या है
2: डॉक्टर साहब मैं सबसे पहले अपने जो सामीन है उनको चंद एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगा
0: जी ज़रूर
2: वो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इंसानियत के साथ तल्लक बहुत पुराना है हज़ारों साल पुराना तल्लक है यानी जो फराइना की जो ममियाँ जो हैं दरियाफ्त हुई हैं उनसे भी सबूत मिलता है कि उनके ज़माने में भी ये डिज़ीज़ जो थी ये मौजूद थी तो ये 4,000 साल पुरानी हिस्ट्री तो इसकी मौजूद है और दूसरा ये कि ये डिज़ीज़ जो इस वक्त हमारे इलाके में ज़्यादा कॉमन नज़र आ रही है ये 16वीं और 17वीं सदी में सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शस डिज़ीज़ थी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में
0: अच्छा ठीक।
2: और वहाँ पे हर चार में से एक मौत इस बीमारी की वजह से हुआ करती थी,
0: टबरकलोसिस
2: की वजह से। ये इतनी कॉमन थी और इसको वहाँ पे वाइट प्लेग के नाम से जाना जाता था।
0: अच्छा, जैसे प्लेग है तो वाइट प्लेग। अच्छा,
2: इसको वाइट प्लेग के नाम से जाना जाता था। तो ये इतनी कॉमन थी
0: जी।
2: और इसको इलाज नहीं था।
0: अच्छा,
2: ये 1880 के राउंड अबाउट जो था पहली दफ़ा दरियाफ्त हुआ कि ये बीमारी जो है ये एक जरसूमे की वजह से फैलती है
0: जी।
2: और कॉक के नाम से एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये बीमारी जो है ये इनहेरिटेड नहीं है, ये इन्वायरमेंटल नहीं है, बल्कि एक जरसूमा जो है वो इसको काज करता है। और उसको उन्होंने उसको फिर साबित किया।
0: ठीक है,
2: तो ये 1880 से पहले तो उसका पता ही नहीं था कि होती क्यों है। फिर 1920-1921 के दरमियान जो है वो इसकी वैक्सीनेशन जो है वो दरियाफ्त हुई और वैक्सीनेशन लोगों ने करना शुरू की, लेकिन तब भी इसका इलाज नहीं था। इसका इलाज यही था कि अभी भी हमारे सामने जानते होंगे कि बहुत सारी जगह पर सैनिटोरियम्स कायम हैं। इसका इलाज वही इलाज ये था कि सैनिटोरियम में आदमी को भेज दिया जाए, इसलिए कि वहाँ पे वो सूरज की रोशनी हो, ताज़ा हवा हो, करने को कि काम ना हो
0: और तो उसकी डाइट अच्छी हो,
2: उसकी डाइट अच्छी हो तो सेहत जो है वो बरकरार हो जाएगी। तो ये सैनिटोरियम जो हमें नज़र आते हैं पूरी दुनिया में फैले हुए, ये उसी ज़माने की यादगारें हैं।
0: अच्छा ठीक ठीक।
2: 1943 वाज अ ईयर कि जब पहली एंटीबायोटिक जो थी वो दरियाफ्त हुई जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट अफेक्टिव थी।
0: ठीक।
2: 1943 में दवाई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन।
0: जी।
2: तो ये पहली दवा थी कि जो इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो थी वो इफेक्टिव साबित हुई। और वहाँ से फिर एक जो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना
0: वो
2: शुरू हुई।
0: ठीक।
2: तो ये तब से फिर बात आगे चलती चली गई।
0: जी।
2: मैं अपने सामने को सबसे पहले एक अच्छी खबर ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि टोटली प्रिवेंटेबल है
0: जी,
2: टोटली ट्रीटेबल है, टोटली क्योरेबल है
0: जी। ठीक।
2: यानी इससे बचा भी जा सकता है, इसका इलाज भी किया जा सकता है और इससे छुटकारा भी हासिल किया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब ये एक कॉल है, हम अपने रिसर्च की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, प्रोग्राम हेल्थ गाइड। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बात कर रहे हैं, क्या पूछेंगे? जी जी जी जी, आज हम बात कर रहे हैं टीबी के बारे में, क्या पूछना चाहेंगे?
3: नहीं, मेरा टीबी का मतलब नहीं है, मेरा एक दूसरा फंगल का मतलब है, अगर तो आप थोड़ा बता सकते हैं तो।
0: अभी तो आज हम जो है इसी पर बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी भी प्रोग्राम में होंगे तो ज़रूर हम आपकी जो है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ज़रूर आप कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर जी।
2: ओके
0: ठीक है जी डॉक्टर साहब, जो है
2: अच्छा ये तो मैंने एक बहुत जो एक अपने एक पॉजिटिव मैसेज अपने सामीन को दिया है
0: जी,
2: कि इस बीमारी से बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, इस बीमारी के ऊपर पूरी तरह काबू किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
2: इसीलिए इस साल का जो WHO का टीबी के बारे में जो स्लोगन है वो है ये कि यस वी कैन एंड टीबी।
0: ओके,
2: यानी स्लोगन ही है कि वी कैन एंड टीबी, दैट वी कैन कॉन्कर टीबी एंड इट्स कॉन्करेबल एक्चुअली। अब हम आगे जाके बात करेंगे तो थोड़ी सी तफसीलात सामने आ जाएंगी।
0: जी ठीक।
2: अच्छा, अब चूँकि बात हुई थी कि ये जो टीबी का जब मर्ज है ये एक जरसूमे की वजह से फैलता
0: जी,
2: है।
0: जैसे आपने बताया कि माइक्रोबैक्टीरियम ये डिस्टेंस नाम है इस जरासीम का, ये बैक्टीरिया कहेंगे जी।
2: तो ये वो जरसूमा है जो कि इसका काज बनता है, लेकिन ये जरसूमा बाकी दूसरे जितने भी जरासीम हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है
0: जी।
2: इसके इर्द गिर्द एक वाल होती है जो कि इसको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देती है
0: जी।
2: और उस प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट की वजह से ज़्यादा लंबे अरसे के लिए जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर भी और इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो मौजूद रह सकता है
0: जी। ठीक।
2: अच्छा, अब इसमें होता ये है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये हमारे सांस लेने से हमारे जिस्म के अंदर इसका जो वो दाखला मुमकिन होता है। यानी चंद बातें अगर मेरे सामने समझ लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी कि फ़र्ज़ कीजिए कि किसी एक जगह के ऊपर एक मरीज़ है जिसको कि ट्यूबरकुलोसिस का मर्ज़ है। अब जब वो खांसी करता है या वो स्नीजिंग करता है या वो ज़ोर से बोलता है तो उसके मुँह से जो آواز کے ساتھ جو ہوا نکلتی ہے اس ہوا کے اندر یہ مائکرو بیکٹیریم ٹبرکلوسس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے
0: جی بالکل
2: اور یہ اب انوائرمنٹ میں آ گیا اب وہ لوگ جو اس کے ارد گرد رہ رہے ہیں اور زیادہ عرصے کے لیے رہ رہے ہیں مثلا اس کے بچے ہیں اس کی بیوی ہے اس کا بھائی ہے جو کہ زیادہ عرصے کے لیے اسی مائکرو بیکٹیریم ٹبرکلوسس کو جو کہ مریض سے نکل رہا ہے اور انوائرمنٹ میں آ رہا ہے اس کو ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ اس کو انہیل کر لیتے ہیں
0: جی
2: یعنی وہ اس کو اپنے اندر لے جاتے ہیں
0: جی
2: تو اب یہ مائکرو بیکٹیریم ٹبرکلوسس یہ جراثیم جو ہے یہ اب ایک دوسرے صحت مند انسان کے اندر یہ منتقل ہو گیا
0: جی
2: تو یہ ہے
0: سر ڈاکٹر یہاں تھوڑا وہ میں تھوڑا ایڈ اگر آپ چاہیں تو میں کر سکتی ہوں تو کئی بار انہوں نے کہا کہ اس کو لیٹنٹ ٹبرکلوسس کہتے ہیں کہ
2: نہیں نہیں نہیں
0: وہ الگ سے
2: نہیں وہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے وہ اس کی اگلی اسٹیج ہے ابھی یہ جراثیما ایک مریض سے صحت مند آدمی کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے
0: انٹر ہو گیا
2: انٹر ہو گیا
0: ٹھیک ہے
2: تو یہ ہے وہ موڈ آف ٹرانسمیشن یعنی کہ جس کی وجہ سے یہ جراثیم پھیلتا ہے اور یہ بیماری پھیلتی ہے
0: جی
2: اب جب یہ دوسرے صحت مند آدمی کے جسم کے اندر چلا گیا تب ہم اس جسم کے تو وہ جسم جو ہے وہ اس کا ریزسٹ کرتا ہے اب چار مختلف صورتیں ممکن ہیں
0: جی
2: پہلی صورت یہ ہے کہ جس انسانی جسم میں یہ جراثیم منتقل ہوا ہے
0: جی
2: وہ انسانی جسم اپنی امیونٹی کے ذریعے اس جراثیمے کو ختم کر دے
0: ٹھیک ہے
2: یہ پہلی صورت ہے بہت اچھی صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کو ختم تو نہ کر سکے لیکن وہ اس کو کنٹین کر دے
0: جی
2: محدود کر دے اور تیسرا یہ ہے کہ نہیں جراثیمہ اتنا طاقتور نکلا کہ اس نے انسان کے ڈیفینس سسٹم جو ہے اس کو اوور پاور کر لیا اور بیماری کاز کر دی
0: جی ٹھیک
2: اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ انیشلی لنگس میں گیا تھا
0: جی
2: لیکن اب لنگس سے باہر نکل کے خون کے ذریعے جسم کے دوسرے حصوں میں چلا گیا
0: ٹھیک
2: تو یہ چار صورتیں ممکن ہیں پہلی صورت ٹی بی نہیں ہوگی ٹی بی ہوئی نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ جراثیمہ موجود ہے لیکن کنٹینڈ ہے
0: ٹھیک ہے
2: یہ ہے وہ کنڈیشن جس ہم لیٹنٹ ٹوبرکلوسس کہتے ہیں یعنی کہ جراثیمہ موجود ہے
0: میں کہ وہ بیماری وہ سمپٹمس وغیرہ اس میں نہیں
2: وہ سمپٹمس پیدا نہیں کر رہا
0: ٹھیک
2: موجود ہے فیکٹر موجود ہے لیکن انسانی جسم کی مدافعت نے اس کو پریزن میں رکھا ہوا ہے
0: یہاں امیونٹی جو سسٹم ہے ہمارا وہ کام کرتا ہے جو اسٹرانگ ہیں وہ اس کو دبا دیتے ہیں
2: یعنی سمپٹمس کو کاز کرنے نہیں دیتا بیماری کو اگرچہ ختم نہیں کر سکا ختم نہیں کر سکا لیکن یہ کہ اس نے بہرحال اس کو کنٹین کر دیا ہوا اب یہ مشکل ایک بیلنس رہتا ہے اگر ڈیفینس سسٹم اسٹرانگ رہے گا بیماری کبھی نہیں ہوگی لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ڈیفینس سسٹم کمزور ہو گیا تو بیماری ہو جائے گی
0: ٹھیک
2: تو یہ پہلی قسم کمپلیٹ نو ٹبرکلوسس دوسری قسم لیٹنٹ ٹبرکلوسس تیسری جو قسم ہے وہ یہ کہ مدافعت تھی کمزور جراثیمہ جو تھا وہ اوور پاور کر گیا بیماری ہو گئی
0: ٹھیک ہے
2: اور چوتھی صورت یہ ہے لیکن بیماری لنگز تک محدود ہے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ لنگز یا لنگز کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے جو ہیں وہ انوالو ہو سکتے ہیں
0: ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہاں پوچھنا چاہوں گی جیسے آپ نے لنگز کی بات کی تو کیا جو ٹبرکلوسس ہے وہ عام طور پر تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لنگز کی ہی بیماری ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمارے لسنر ہیں ان کی طرف چلیں گے جی السلام علیکم ہلو
4: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام ہیلتھ گائیڈ کیا پوچھنا چاہیں گے آج ہم بات کر رہے ہیں ٹبرکلوسس کے بارے میں ٹی بی کے بارے میں
4: ٹی بی کا بالکل ڈاکٹر صاحب کو بھی دعا سلام السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام
0: جی
4: ہاں یہ جو ٹی بی بیماری جو ہے تو مطلب اس سے ہم لوگ ہم کو نہیں مطلب ہمارے کزن میں یا کس میں ہو نا
0: جی
4: تو ہم لوگ اس سے ان کا برتن میں یا سب کچھ بھی کھانا پینا تو اس سے دور رہنا چاہیے نا
2: اچھا چلیں بہت اچھا کہ آپ نے اس موضوع کو اسی کا چھیڑ دیا
4: مطلب کچھ بھی ہے نا مطلب
2: جی جی جی جی
4: یا کچھ بھی
2: آپ کا کوئی اور سوال تو نہیں ہے یہ ہے نا صرف
4: نہیں بس میں
2: چلیں ٹھیک ہے اس کا میں جواب ابھی اس میں جواب میں ہم آپ کو بھی دیتے ہیں اچھا دیکھیے جیسے ہم نے ابھی شروع میں بات کی تھی کہ یہ جو مائکرو بیکٹیریم ٹبرکلوسس ہے یہ ایئر کے ذریعے پھیلتا ہے کھانسی کے ذریعے سنیزنگ کے ذریعے زیادہ زور سے بات کرنے کے ذریعے اور یہی اس کا طریقہ کار ہے
0: جی
2: باقی جتنی بھی چیزیں جو کہ ہمارے معاشرے میں جو سوچ پریویل کرتی ہے کہ ہاتھ ملانے سے یا کپڑے پہننے سے یا ایک برتن میں کھانا کھانے سے یہ پھیل جاتا ہے تو یہ نہیں پھیلتا
0: अच्छा
2: ये नहीं फैलता ये एक मिथ है कि इन चीजों से फैलता है इन चीजों से नहीं फैलता ये फैलेगा सिर्फ उसी वक्त कि वो
0: हम एयर ड्रॉपलेट
2: जी जी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है कि वो बट सिर्फ एक और रीजन होती है कि जब अनपास्चराइज्ड मिल्क जो है वो अगर आप इंजेस्ट कर लें तो एक बिल्कुल अलग है लेकिन बहुत रेयर होता है लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फैक्टर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बाकी चीज़ों की वजह से ये नहीं फैलता तो हाँ ये एक अलग इशू है कि अगर किसी जगह के ऊपर ड्रॉपलेट आप ड्रॉपलेट जो है वो सेटल हुए हुए थे आपने वहाँ पे हाथ लगाया और फिर हाथ को इनहेल कर लिया तो एक बिल्कुल अलग इशू है लेकिन इसकी जो एंट्री है जिस्म के अंदर वो थ्रू द एयर है
0: ठीक ठीक इसलिए ये नहीं कोई इशू कि आप खाना पीना जो है या बर्तन जो है या कोई भी जो चीज़ आप यूज़ करने वाली दूसरे शख्स से करें तो उससे जो है वो टबरकुलोसिस होने के चांसेस
2: जी नहीं होंगे बर्तन शेयर करने से या खाना शेयर करने से या कपड़े शेयर करने से नहीं होंगे अच्छा। लेकिन अगर उसके अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की अगर किसी वजह से चली जाएगी तो वो फिर होगा
0: ठीक ठीक है जैसे आपने क्या खांसी अगर कोई कर रहा है या जो स्नीजिंग कर रहा है तो इस तरह से जी ठीक
2: ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा है गुस्से में बोल रहा है
0: अच्छा
2: बल्कि अगर बहुत ऊंचे सुर में गाना गा रहा है तो तब भी होगा लेकिन यानी जब भी एयर का मामला आएगा तभी होगा
0: ठीक ठीक जी डॉक्टर साहब इसमें अच्छा, जैसे जी
2: अच्छा इसमें हमने चूँकि हमने बात शुरू में की थी कि बेसिकली किन कम्यूनिटीज़ में ये ज़्यादा कॉमन तो चूंकि अब मामला जो है वो ड्रॉपलेट की इन्फेक्शन के होने का और इम्यूनिटी के होने का इन दो फैक्टर्स के ऊपर जो है ये बेस कर रहे हैं
0: जी
2: तो वो कम्युनिटीज़ जहाँ पे कंटेक्ट्स यानी ओवर क्राउडिंग होगी वहाँ पे इसके ज़्यादा चांसेस होंगे
0: जी
2: जहाँ पे ज़्यादा एक्सपो एक घर में ज़्यादा लोग रह रहे हैं और वहीं पे मरीज़ रह रहे हैं तो जो हाउस होल्ड कंटेक्ट्स है उनका इम्कान ज़्यादा है होने का
0: जी
2: उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें इंसान के अंदर इन्फेक्शन जो है वो कम जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है
0: बिल्कुल
2: उनमें से सबसे फैक्टर जो है पहला फैक्टर जो है जो आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा है स्मोकर्स है
0: जी
2: कि स्मोकर्स जो है इम्यूनिटी जो है इम्यूनिटी भी कम होती है और जो लंग्स का डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी इम्पेयर हुआ होता है तो स्मोकर्स में इसके होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं
0: जी
2: फिर वो लोग जिनमें इम्यूनिटी किसी और वजह से कम होती है मतलब डायबिटिक्स हैं उनमें ज़्यादा चांस होगा ऐसे लोग जिनमें एड्स का मर्ज होगा उनमें ज़्यादा होगा ओल्ड एज और बच्चों में इम्यूनिटी जो है वो कम होती है उनमें ज़्यादा
0: एक्सट्रीम एजेस जो हैं
2: जी एक्सट्रीम ऑफ एजेस जो होंगे या अगर आपको एक प्रॉपर गज़ा नहीं मिल रही और आप मेल नरिश्ड हैं तो ये वो सारे ग्रुप्स हैं जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बीमारी जो है वो ज़्यादा कॉमन होगी
0: ठीक ठीक रुख साहब ये तो आपने बता दिया डिटेल में कि क्या है ये कॉमन होगी मगर इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं

0: रीजन वो है
1: कुछ रीजन जैसे
0: हाँ ये वो रीजन है अगर आप इन सबको देखेंगे इन सब में कॉमन फैक्टर्स वही आते हैं जिनका हम जिक्र कर चुके हैं
1: जी
0: बाकी जो फिर से कम होते चले जाते हैं सबसे कम जो है इसको नॉर्थ अमेरिका कनाडा यूरोप में आ रहा है इसलिए कि वहां के सिचुएशन जो है उनसे डिफरेंट हो गया लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे होती नहीं है होती है लेकिन कम होती है
1: जी
0: अच्छा इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है एक ऐसा जरसूम है
1: जी
0: कि जो इंसानी जिसमें बहुत लंबे अरसों के लिए रह लेता है साल हर साल बल्कि बाद का 10-10 साल 20-20 साल भी मौजूद
1: अच्छा।
0: रहते हैं यानी कि एक साहब जो है फॉर एग्जांपल जगह वो साउथ ईस्ट एशिया से वो थे और लेटेंट उनमें ट्यूबरकुलोसिस थी और वो किसी ज़्यादा बेहतर जगह पे चले गए हैं तो हो सकता है कि 10 साल के बाद जब उनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो तो वहाँ पर उनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाए
1: अच्छा
0: बीमारी 10-15 साल पहले उन्होंने वो ली थी इजहार उसका जो 10-15 साल के बाद हुआ
1: है मगर ये कि आपकी हेल्थ कंडीशन
0: यानी ये वो ये थी वो जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस थी कि एक ऐसी
1: जरासीम मौजूद थे मगर वो बीमारी जो है वो नहीं हुई थी
0: जी वो मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी अच्छा यहाँ पे हम इस इम्पोर्टेंट जगह पे पहुँच जाते हैं कि ये बीमारी जो अपने आपको प्रेजेंट किस तरह से करती है
1: जी ये बात अहम है क्योंकि आमतौर पर यह ख्याल है कि किसी को अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उसे खांसी ही है खांसी की वजह से मतलब अगर है तो आप कैसे प्रेजेंट करती है
0: देखें इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये जो सबसे पहली जो प्रेजेंटेशन होती है वो कफ होती है
1: जी
0: और कफ के मतलब हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा मौजूद रहे 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा मौजूद रहे तो फिर आपको सोचना चाहिए कि ये इस काबिल है कि इसके मतलब मशवरा किया जाए
1: ठीक
0: यानी 2 हफ्ते तक तो हम गौर नहीं करते लेकिन 2 हफ्ते तो सबसे जो कॉमन प्रेजेंटेशन होती है वो कफ होती है
1: ठीक
0: लेकिन कफ के बाद जब अगर फ़र्ज़ करें ये कफ जो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से पैदा हो रही है तो और चीज़ें जो इसके साथ देखने को मिलती हैं उनमें से एक तो फीवर होता है
1: ठीक है
0: और दूसरा जो होता है वो नाइट स्वेट हम उसे कहते हैं यानी नाइट स्वेट का मतलब ये होता है कि शाम के वक्त या रात के वक्त इतना पसीना आता है इतना पसीना आता है कि कपड़े जो हैं उससे शराबोर हो जाते हैं और बिस्तर जो है वो भी शराबोर हो जाता है
1: ठीक
0: इतना पसीना जो है वो निकलता है तो खांसी बुखार नाइट स्वेट्स और उसके बाद होता यह है कि एक आदमी जो है उसके अंदर से लैक ऑफ एनर्जी वो अपने आपको कमज़ोर महसूस करता है
1: थकन जैसे जी
0: फटीक होनी चाहिए उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है
1: जी
0: उसकी भूख ख़त्म हो जाती है
1: ठीक
0: यानी वो आपकी चाहत के बगैर किसी भी इरादे के बगैर अगर आपका वज़न कम होता चला जा रहा है मुस्तकिल और आपके अंदर जो है वो लैक ऑफ एनर्जी है काम करने की लगन ख़त्म होती चली जा रही है और साथ बुखार भी है खांसी भी है तो ये लीडिंग सिम्टम्स हैं कि जो इशारा कर रही होती हैं कि ये शायद ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो
1: ठीक ठीक इस तरह जी डॉक्टर साहब ये इसमें कोई एज डिपेंड करती है कि सब एजेस में जैसे ही अगर ये ट्यूबरकुलोसिस है तो इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं
0: देखें ये वो सिम्टम्स हैं जिनमें एक आदमी जो है वो अपने आप को बता सकता है या महसूस कर सकता है डेफिनेटली एक बच्चों में तो बिल्कुल एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन होगी
1: जी
0: और ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर हम ज़्यादा चूँकि पल्मोनरी या लंग्स की टीबी जो है ज़्यादा कॉमन है उनसे रिलेटेड है
1: जी।
0: लेकिन अगर टीबी जो है बच्चों में हो रही है तो बच्चे तो इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे
1: जी।
0: बच्चे तो बुखार की वजह से प्रेजेंट करेंगे या लैक ऑफ एपिटाइट की वजह से पसंद करेंगे या वो उनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही या अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है तो वो हेड के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेंगे तो बच्चों में प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी और इसी तरह अगर तो हमने चूँकि बात की थी कि टीबी जो है वो लंग्स में भी रह सकती है और मेजोरिटी ऑफ द टाइम लंग्स में ही होती है लेकिन लंग्स के अलावा टीबी जो है वो लिम्फ ग्लैंड्स में भी जा सकती है
1: जी
0: टीबी जो है वो बोन्स में भी जा सकती है टीबी ब्रेन में और ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं उनमें भी चली जाती है टीबी जो है स्पाइन में भी चली जाती है टीबी इंटेस्टाइन में भी चली जाती है यानी जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि जो टीबी के जरासीम से बच सकता हो तो फिर उनकी जो प्रेजेंटेशन होंगी वो डिफरेंट होंगी लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशंस हैं
1: ठीक ठीक तो टाइप्स हैं तो इस तरह से जैसे आपने बताया कि डिफरेंट जो हैं वो ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसमें फिर ये है कि उनकी जो अलामतें हैं وہ بھی کچھ ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہوں گی.
0: لیکن جو سب سے کامن پریزنٹیشن وہی ہوگی کہ وزن کم ہوتا چلا جائے گا, لیک آف انرجی ہو جائے گی, لیک آف ایپیٹائٹ ہوگا, آدمی اپنے آپ کو گریجولی میں

0: ज्यादा से ज्यादा बीमार महसूस करता चला जाएगा।
1: ठीक,
2: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
3: दिल से देसी।
4: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: अरे मौसी जी कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107 दिल से देसी
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: जनरल आज हम बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी तबीदिक या टीबी के बारे में। आमतौर पर उसे ये कहा जाता है। डॉक्टर ने बताया कि अलामत जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन जो है जैसे कि लंग्स की जो टीबी है या खांसी, आमतौर पर हम यही जो हैं वो जानते भी हैं और इसी पर बात भी डॉक्टर कर रहे हैं मोस्ट कॉमन जो है। मगर ये कि और भी जैसे बोन्स की जो ट्यूबरकुलोसिस है वो भी बहुत आम है और बाकी जो हैं और बच्चों में थोड़ा वो प्रेजेंट अलग करते हैं। डॉक्टर साहब इसको भी डायग्नोज कैसे किया जाता है?
4: जी डॉक्टर साहब इसमें जैसे यानी सबसे पहली बात तो ये कि अगर ज़रा सा भी कुछ शुबा हो या अगर आप इन सिम्टम्स अगर ये परसिस्ट करें हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं।
3: जी
4: तो सबसे पहले तो वही कि एक जो आपका इंटरव्यू होता है जो आपका हिस्ट्री होता है जिसमें वो आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उसमें बेसिकली ये असेस करने की कोशिश की जाती है कि क्या कोई आप किसी ऐसे टीवी वाले मरीज के साथ इन टच तो नहीं है, किसी के साथ कंटेक्ट में तो नहीं है, या आपका माहौल तो ऐसा नहीं है कि जहाँ भी ये बीमारी जो मौजूद हो तो। और उसके बाद आप में कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो आ रहे होते हैं तो सबसे पहली तो बात जो है वो एक इंटरव्यू या हिस्ट्री होती है
3: जी।
4: उसके बाद फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर लंग्स का मामला है तो लंग्स को सुना जाएगा, देखा जाएगा छाती को। अगर लिम्फ नोड्स का मामला है तो लिम्फ नोड्स को पल्पेट किया जाएगा, देखा जाएगा कौन सा ग्रुप है। तो ये हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले आ जाते हैं
3: जी।
4: बाकी जहाँ तक इसकी डायग्नोसिस की बात होती है तो कुछ टेस्ट हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो हमें कंफर्म कर देते हैं जिस डिजीज़ को, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमें सपोर्ट करते हैं कि हो सकता है। तो कंफर्म करने के लिए तो हमें साबित करना होता है कि ये जो बैक्टीरिया ये वाकई इंसान के जिस्म में मौजूद है
3: जी।
4: तो उसके लिए जो हमसे अगर हम लंग्स की ही बात कर रहे हैं तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है कि वो जो स्पूटनम एग्जामिनेशन होता है
3: जी
4: वो लिया जाता है। उसके मतलब ये हदायत होती है कि ये अर्ली मॉर्निंग सैंपल हो और अंदर से डीप डीप लंग्स के से खांसी करके

0: कि इसको निकाला जाए और कम से कम इसके दो या तीन सैंपल जो लिए जाए
1: जी ठीक
0: ये जो स्पूटनम एग्जामिनेशन होता है इसको फिर फर्दर जो इसके टेस्ट किए जाते हैं उनमें से एक टेस्ट ये होता है कि इसको स्लाइड्स तैयार करके और उसको बाकायदा स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है उसकी पर्टिकुलर स्ट्रेन होती है पर्टिकुलर पैटर्न होता है वो नज़र आ जाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है तो ये तो पहला हो गया
1: ठीक है
0: दूसरा ये होता है कि स्पूटम जो है उसको लेबॉरेटरी के अंदर जो है वो ग्रो किया जाता है
1: ठीक
0: कि देखा जाता है कि ये ग्रोथ में इस ग्रोथ में माइकोबैक्टीरियम आता है कि नहीं आता तो ये तो दो बहुत कॉमन है
1: जी
0: इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो चल रहा है वो ये है जिसे हम PCR कहते हैं
1: जी ठीक
0: ये PCR होता है इसमें बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं या सामीन की आसानी के लिए कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर का जो जीनियाती मादा होता है DNA जो होता है उस DNA जो है उसकी स्टडी की जाती है
1: ठीक
0: यानी उस स्टडी उसकी DNA की रेप्लिकेशन बनाई जाती है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है
1: जी तो अगर आम अगर में कहा जाए तो इन्फेक्शन उसमें जो है वो देखते हैं
0: जी जी यानी ये बेसिकली उसी स्पूटम में से
1: जी
0: आपने उस स्पूटम को यानी जो भी उसका प्रोसेस है उसमें से गुजारा और उसमें ये देखा कि इस स्पूटम के अंदर इस माइकोबैक्टीरियम का DNA मौजूद है या नहीं और अगर ये साबित हो गया कि इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का DNA मौजूद है और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में मौजूद है तो इसका मतलब कि डिजीज़ है
1: ठीक
0: तो ये इस वक्त जो है वो लेटेस्ट जो है वो यही चल रहा है इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं लेकिन बेसिकली जो बेसिक जो फिलॉसफी है वो इसकी यही है
1: ठीक
0: तो सबसे जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो तो इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को जिस्म के अंदर से किसी भी टिश्यू से लेना और उसको साबित करना है
1: ठीक
0: तो इसके अलावा जो बाकी टेस्ट जो है इस जो हम किए जाते हैं उसमें से अगर ब्लड लेंगे तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस आएगी ESR बड़ा होगा CRP बड़ा होगा या एक टेस्ट होता है जिसे हम क्वांटिफिरोन कहते हैं जो कि इंटरफिरोन को बताता है
1: लेकिन ये सब ब्लड टेस्ट वगैरह
0: जी ब्लड टेस्ट
1: ठीक है
0: ये सपोर्ट करते हैं ये कंफर्म नहीं करते कंफर्म करने के लिए जो पहला सेट है टेस्ट का उसी को हमें करना पड़ता है
1: ठीक इसमें लोग एक्सरे वगैरह भी जो है वो भी करवाते हैं एक्सरे का भी कोई रोल है क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व हैं तो एक्सरे वो उसमें हो सकते हैं
0: डॉक्टर साहब इसमें ऐसा है कि एक्सरे के ज़रिए कंफर्मेशन तो नहीं होती
1: जी ठीक है
0: एक्सरे के ज़रिए हमें दो चीज़ें पता चलती हैं एक एक्सरे के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि टबर अगर किसी में किसी भी मरीज में अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है या लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस है
1: जी।
0: तो वो एक्सरे में एक ख़ास किस्म की चेंजेस लेकर आता है एक ख़ास किस्म उन चेंजेस को हमें हम जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये जो एक्सरे है ये वो चेंजेस शो कर रहा है जो कि TB में होती है
1: ठीक है
0: तो एक तो हमें उस कि वो कौन सा लंग इन्वॉल्व है लंग का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है उसमें किस तरह की चेंजेस हैं उनको हम पहचान लेते हैं तो उस हिसाब से ये प्रेजेंट हमें इसको और दूसरा इससे फ़ायदा ये होता है कि कितना लंग इन्वॉल्व हुआ है और या उसके अलावा कोई और तब्दीली तो नहीं है ये इन दो चीज़ों को यानी प्रोग्नोसिस और असेसमेंट और किसी भी दूसरी जो है वो पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए लंग्स हमें मददगार होते हैं
1: ठीक ठीक इसमें ये इसमें आमतौर पर जो आजकल बहुत है कोई MRI कोई स्कैन कोई क्या वो भी इसमें करवाए जाते हैं या वो नहीं
0: हाँ इस बीमारी के लिए तो नहीं होंगे लेकिन फॉर एग्जांपल अगर बोन की इन्वॉल्वमेंट है
1: जी
0: तो बोन की इन्वॉल्वमेंट के लिए हम CT scan या MRI के बारे में सोच सकते हैं
1: जी
0: या जैसे अगर लिम्फ ग्लैंड्स की इन्वॉल्वमेंट है तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड के लिए बारे में सोच सकते हैं
1: जी
0: अगर लिम्फ नोड्स है तो उसमें हम टिश्यू बायोप्सी के लिए भी सोच सकते हैं तो वो बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी या लंग्स के अलावा जितनी भी दूसरी किस्म की TB होती है उनके मुताबिक जो है हमें अपनी जो चीज़ें हैं उनको
1: इन्वेस्टिगेट
0: करना पड़ता है
1: डॉक्टर साहब इसमें एक आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर जो है वो बेसिक स्टार्ट है जैसे डिफरेंट और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं तो क्या पहले उन्हें किसी भी पेशेंट को लंग्स इन्वॉल्व होंगे या जो ट्यूबरकुलोसिस है वो फेफड़ों में ही होगी या किसी भी और ऑर्गन में हो सकती है
0: ڈاکٹر صاحب اس میں دونوں صورتیں ہی ممکن ہیں
1: جی,
0: یعنی کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لنگس بھی انوالوڈ ہوں اور لنگس کے بعد جو ہے وہ دوسرے

0: जो है वो हमें देनी पड़ती है।
1: इसकी कोई खास वजह होती?
0: उसमें चंद एक फैक्टर्स हैं इसके कि माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस में जो है जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से होती है
1: जी,
0: तो हम किसी के बारे किसी भी दवा के बारे में 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये इफेक्टिव हो जाएगी
1: जी।
0: तो चुनाचे इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए हमें पूरा स्पेक्ट्रम जो है ना वो देना पड़ता है
1: जी। ठीक।
0: और दूसरा इसमें ये होता है कि माइकोबैक्टीरियम जब बहुत स्लो जो है ना वो ग्रो करता है, यानी दूसरे बैक्टीरिया की निस्बत इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, चुनाचे इसके लिए जो हमें मेडिसिन देनी पड़ती हैं वो एक लंबे अरसे के लिए देनी पड़ती है। जैसे अमूमी तौर के ऊपर कहा जाता है कि एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो 7 दिन के लिए कर लो या 10 दिन के लिए कर लो या 2 हफ्ते के लिए कर लो और दैट्स इट। लेकिन इसके अंदर जो है जो मिनिमम कोर्स मेडिसिन का होता है वो मिनिमम 4 मंथ्स का होता है।
1: अच्छा।
0: सो 4 महीने 6 महीने 9 महीने तो ये इसके कोर्स की ड्यूरेशन होती है मेडिसन्स की।
1: ठीक है।
0: यानी 4 महीने से कम तो का तो कोई सोचा ही नहीं जा सकता। अब ये 4, 6, 9 महीने में से कौन सा कोर्स आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह की ट्यूबरकुलोसिस जो है वो सस्पेक्ट की जा रही है, स्टेज कौन सी है वगैरह वगैरह वगैरह, और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन जो असली बात है वो ये है कि मल्टीपल ड्रग्स होंगी और बहुत लंबे अरसे के लिए होंगी।
1: ठीक।
0: तो ये 2 बातें होंगी। जो 4 प्राइमरी ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके नाम तो बड़े अजीब से हैं लेकिन जस्ट आप लोगों के लिए कि आइसोनियाज़िड होती है, रिफेम्पेसिन होती है, इथेम्ब्यूटाल होती है और पाइरोजेनामाइड होती है। तो ये 4
1: ये तो नाम है
0: ये तो मेडिसिन के नाम
1: है। ये कि मेन ये कि इस तरह से 3 या 4 मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं जिनके ट्रीटमेंट में जैसे दी जाती हैं। ठीक।
0: और इनकी जो डोज होती है मेडिसिन की वो पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से जो मॉनिटर की जाती है कि जितना वेट होगा पेशेंट का उसके हिसाब से डोज जो है वो एडजस्ट की जाएगी
1: जी। ठीक।
0: तो ये 3 बातें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मल्टीपल ड्रग्स होंगी, बहुत सारे महीनों के लिए होंगी, डोज जो है वो वेट के हिसाब से होगी, और आखिरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया जाए उसके ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है।
1: ठीक।
0: कि जो दवाई आपको लिखी जाए
1: और जितनी उसकी डोज से जितने कैसे लेनी है वो सब
0: जी बिल्कुल, और कितने अरसे के लिए लेनी है
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट जी डॉक्टर साहब। इसमें जैसे आपने कहा कि
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Urdu Radio, FM 107, naab se mukhatib hai. तलहा अशरफ जमान से समाअत कीजिए आज की खबरें। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। जेनेवा में वाकई अक्वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में रियासत कतर के मुस्तकिल मिशन ने उर्दन और ब्राज़ील के मुस्तकिल मिशन्स और कतर डिबेट सेंटर के तआवुन से एक खसूसी ज़िमनी नशस्त का इनेकाद किया है। अक़्वाम मुत्तहिदा ने मग़रिबी सूडान की रियासत शुमाली कुर्दफान के दारुलहुकूमत अलबियज़ में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। सऊदी अरब ने अक़्वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामे इजलास में गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद फौरी मुस्तकिल और बग़ैर किसी रुकावट के पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। म्यांमार के लिए अक़्वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी एलची जूली पिशप ने फौजी हुकाम पर जोर दिया है कि वह हज़्ब इख्तिलाफ़ की रहनुमा आंग सान सूची को फौरी तौर पर आज़ाद करें। और अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में वाक़े लिंकन फाइनेंशियल फील्ड स्टेडियम में खेले गए ग्रुप सी के अहम मैच में ब्राज़ील ने हाइटी को 3-0 से शिकस्त दे दी है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां और बापुर्दो रेडियो FM 107 पर समाप्त कीजिए आज का पहला मुफस्सिल नशरिया।

केलिए रियासत कतर के मुस्तकिल मिशन ने उर्दन और ब्राज़ील के मुस्तकिल मिशन्स और कतर डिबेट सेंटर के ताउन से एक खुसूसी ज़मनी नशिस्त का इनकाद किया है, जिसका उन्वान था इंसानियत की अगली नस्ल बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून में नौजवानों का कायदाना किरदार। ये तकरीब इंसानी हकूक काउंसिल के 62वें इजलास के साइड लाइन पर मुनाकिद की गई, जिसमें सफारत मिशन्स, बैन अल-अक़वामी और इलाकाई तंजीमों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, अमन साजी के माहिरीन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने से वाबस्ता मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर जनेवा में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में कतर की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर हिंद अब्दुर्रहमान अल-मफ्ताह ने अपने खिताब में कहा कि बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून के नफाज में मौजूद खामियों और चैलेंजेस से निपटने के लिए नए सियासी अज़्म और मुश्तरक आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून का एहतराम करना और उसके नफाज को यकीनी बनाना बुनियादी तौर पर रियासतों की जिम्मेदारी है और आलम बिरादरी को इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को मजीद मौसर अंदाज में अदा करना होगा। अक़वामे मुत्तहिदा ने मगरबी सूडान की रियासत शुमाली कुर्दफान के दारुल हुकूमत अलबियज में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो शहरी आबादी के तहफ़ को यकीनी बनाएं और सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए फौरी इकदाम करें। अक़वामे मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम मुतल्लिका फरीक ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो इस संगीन इंसानी बहरान की शिद्दत में मजीद इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता रोज़ भी ड्रोन हमलों की इत्तला'आत मौसूल हुई हैं, जबकि अलबियज़ और उसके गिर्द नवाह के इलाके अब भी इमदादी इदारों के लिए बड़ी हद तक नाकाबिल रसाई हैं। अक़वामे मुत्तहिदा ने एक बार फिर जोर दिया कि शहरियों के खिलाफ किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी या हमले की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए और बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि अक़वामे मुत्तहिदा और मुतअद्दिद मग़रिबी ममालिक इससे कबल अलबियज़ पर मुमकिन हमले के हवाले से खबरदार कर चुके हैं। इधर गजा शहर में आज आला सुबह इसराइली फ़ौज की जानिब से किए गए एक हमले में एक खातून और एक बच्चे समेत दो फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद दीगर अफराद ज़ख्मी हुए। गजा के तिब्बी ज़राए के मुताबिक इसराइली हमलों में शहर की असलासिनी स्ट्रीट पर वाक़ एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। हमले के फौरन बाद इमदादी और तिब्बी टीमें मौके पर पहुंची और शुहदा की मैयतों और ज़ख्मियों को अशफा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब गजा की वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली फौजी कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 73,018 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की मजमू तादाद 1,73,273 तक पहुँच चुकी है। इंसानी सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी के मुख्तलिफ ऐलानात और सफारती कोशिशों के बावजूद गजा के शहरी मुसलसल हमलों, नकल मकानी और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद फौरी, मुस्तकिल और बग़ैर किसी रुकावट के पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि इमदाद को इज्तमाही सज़ा या सियासी दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सलामती काउंसिल के इजलास में अरब ग्रुप की जानिब से खिताब करते हुए सऊदी अरब ने कहा कि मसला फ़लस्तीन आज भी मशरिक़ वस्ती के तनाज़े का बुनियादी महवर है और ख़त्ते में मुनसिफाना और पायदार अमन का क़याम उसी वक्त मुमकिन है जब दो रियासती हल पर अमल दरामद किया जाएगा। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि 4 जून 1967 की सरहदों की बुनियाद पर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ी अल-क़ुद्स होगा। म्यांमार के लिए अक़वामे मुत्तहिदा की ख़ुसूसी एलची जोली बिशप ने फौजी हुकाम पर जोर दिया है कि वह हिजब इख्तिलाफ़ की रहनुमा आंग सान सूची को फौरी तौर पर आज़ाद करें जो 2021 में फौजी इकतदार संभालने के बाद से ज़ेर हिरासत हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से ख़िताब करते हुए जोली बिशप ने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से आंग सान सूची

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमरास ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बाइस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आज नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
0: आप सुन रहे हैं FM 107।
1: दिल से देसी
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकेंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। तो आज हम जिस सुन्नत पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है हया। हया ईमान का जेवर है। जिस दिल में हया नहीं वो गुनाहों के करीब हो जाता है और जिस दिल में हया हो वो बुराइयों से बचा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान की शाख करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली नबुवतों के कलिमात में से ये भी है, जब तुम्हें हया न रहे तो जो चाहो करो। यानी अगर दिल से हया निकल जाए तो इंसान बुराइयों में पड़ जाता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं। सबसे आला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, सबसे अतना रास्ते से तकलीफ देह चीज हटाना है और हया ईमान की एक शाख है। तो सामीन, अपनी गुफ्तगू, लिबास और रवैये में हया अपनाना, ऐसे आमाल से बचना जिन पर अल्लाह और बंदों के सामने शर्मिंदगी हो, बच्चों नौजवानों को हया की अमली तरबियत देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ईमान का एक अहम शोबा, एक अहम शाख करार दिया है। तो सामीन, आज की सुन्नत थी हया। آئیے ہم سب اپنی زندگی کو باحیا بنائیں تاکہ ایمان کی شاخ باقی شاخوں کو سوار دے اور ہماری دنیا و آخرت نور اور عزت سے بھر جائے۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم

0: हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में, हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: दीवारों से कमर लगी हैं, आंखें हैं दरवाजों पर, आज भी चौंक उठता हूँ हाफी मैं तेरी आवाजों पर। तुझको कोई और ना चाहे, दुआ करूंगा, रो पड़ूंगा,

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। तारिक सलमान भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं इस कतर फुटबॉल स्क्वाड में, जो कि फीफा वर्ल्ड कप में दे आर रिप्रेजेंटिंग। तारिक सलमान कतर के सबसे भरोसेमंद डिफेंडर्स में शुमार होते हैं। उनका फुटबॉल का जो सफ़र है एस्पर एकेडमी से शुरू होता है और फिर वो असद और कतर नेशनल टीम का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तारिक की खासियत उनकी डिफेंसिव डिसिप्लिन, एरियल एबिलिटी और लीडरशिप है, और 2019 एएफसी एशियन कप की कामयाबी में उनका किरदार बहुत अहम था, जब कतर ने टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल कंसीड किया। एज अ सेंट्रल डिफेंडर तारिक सलमान ने टीम को मजबूती देते हैं और मुश्किल मैचेस में भी पुरसुकून नजर आते हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल और एएफसी कॉम्पिटिशंस में उनका तजुर्बा कतर के लिए कीमती एसेट है, और तारिक सलमान को कतर फुटबॉल के सबसे मुस्तकिल और मेहनती डिफेंडर्स में से एक माना जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें कि आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बच्चों, नौजवानों और बड़ों सबकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है और वो है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम से मुराद मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर, टीवी और जो दूसरे डिजिटल आलात के सामने गुजारा जाने वाला वक्त है। अगरचे टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सेहत के मुख्तलिफ मसाइल पैदा कर सकता है। सबसे आम मसला आंखों की थकन है। तवील वक्त तक स्क्रीन देखने से आंखों में खुश्की, जलन, धुंधलापन और सर दर्द हो सकता है। इस हालत को हम डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। स्क्रीन के सामने मुसलसल बैठने से गर्दन, कंधों और कमर का दर्द भी पैदा हो सकता है। गलत अंदाज में मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करने से हमारे मसल्स पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा ज्यादा स्क्रीन टाइम जिस्मानी सरगर्मियों में कमी का बायस बनता है। जब हम ज्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं तो हमारा वजन बढ़ने लगता है, यानी मोटापे की तरफ माइल हो जाते हैं। डायबिटीज और दिल की बीमारियों के खतरात में इजाफा हो सकता है। बच्चों में जरूरत से ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करना जिस्मानी खेल कूद को कम कर देता है, जिससे उनकी जिस्मानी नशोनुमा मुतासर होती है। तो अहम बात यह है कि हम अपनी सेहत का तहफ्फुज कैसे करें। तो लिसनर्स, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए तकरीबन 20 फुट दूर किसी चीज को देखिए। इसे हम 20-20-20 रूल कहते हैं। स्क्रीन इस्तेमाल करते वक्त आप सीधा बैठिए, मोबाइल या कंप्यूटर को आंखों की मुनासिब सतह पर रखिए और हर घंटे के बाद चंद मिनट के लिए खड़े होकर आप वॉक कीजिए। बच्चों को रोजाना जिस्मानी सरगर्मियों और बैरूनी खेलों की तरगीब देना भी बहुत जरूरी है। और ये याद रखना भी कि टेक्नोलॉजी हमारी मददगार है, लेकिन उसका मतवाजन इस्तेमाल ही सेहतमंद जिंदगी की जमानत है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107
2: दिल से देसी।
3: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
4: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर, विद आरजे सरवर।
3: वजारत दाखला की जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस ने कोहोर्ट ऑफ इनमेट्स के पहले ग्रुप की ग्रेजुएशन की तकरीब का एहतमाम किया, जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करके कम्युनिटी कॉलेज ऑफ कतर से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा हासिल किया। इस तकरीब में अंडर सेक्रेटरी वजारत अल औकाफ वल शुऊन अल इस्लामियात और वाइस चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन गालिम अल सानी, हिज एक्सीलेंसी सिक्योरिटी जनरल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी सुल्तान बिन हसन अल जमाली, मेजर जनरल डायरेक्टोरेट जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस नासिर मोहम्मद ईसा अल सईद, प्रेसिडेंट कम्युनिटी कॉलेज डॉक्टर खालिद मोहम्मद अल होर और मेजर जनरल डायरेक्टोरेट पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट वजारत दाखला अब्दुल्ला खलीफा और वजारत दाखला के मेजर जनरल डायरेक्टोरेट पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट खलीफा अल मुफ्ता ने शिरकत की, जबकि कई अफसरान और स्टैंडिंग कमेटी फॉर पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस के अरकान भी मौजूद थे। ये ग्रेजुएशन वजारत दाखला की इस कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद इसको मजबूत बनाने और कैदियों के लिए तालीमी मौके बढ़ाना है जो उनकी तालीमी और पेशवराना तरक्की में मददगार साबित होती हैं और मुआशरे में मुस्बत तौर पर दोबारा शामिल होने के उनके इम्कानात को बढ़ाते हैं। ये कदम जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटी कॉलेज ऑफ कतर के दरमियान जारी तआवुन की भी एक मिसाल है जो कैदियों के तालीमी इस्लाही सफर को सपोर्ट कर रहा है। बराह करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले, मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोजिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। मेहतराज ऐप के जरिए रिहायशी अफराद अपने रिन्यू किए गए पासपोर्ट की तफसीलात को आसानी और सहूलत के साथ अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं होती। इस अमल को शुरू करने के लिए होम स्क्रीन पर रेसिडेंसी सेक्शन पर जाएं, फिर चेंज डेटा सिलेक्ट करें और उसके बाद चेंज पासपोर्ट पर टैप करें। इसके बाद अपना QID नंबर या उस स्पॉन्सर शुदा फर्द का QID नंबर एंटर करें जिसका डेटा अपडेट करना हो, फिर नया पासपोर्ट का पहला सफा स्कैन या अपलोड करें और साथ ही एक पर्सनल फोटो भी अपलोड करें। इसके बाद तमाम मालूमात को दोबारा चेक करें ताकि ये यकीन हो जाए कि सब कुछ दुरुस्त है। मुकम्मल होने के बाद अपना पसंदीदा पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें और पे पर टैप करें। आपकी दरख्वास्त कामयाबी के साथ सबमिट हो जाएगी और अपडेटेड QID सीधा कतर पोस्ट के जरिए आपको डिलीवर कर दी जाएगी। गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग इन्फोर्समेंट ने तआवुन को मजबूत बनाने और तजुर्बे का तबादला बढ़ाने की कोशिशों के तहत मलेशियन पुलिस के अफसरान के एक वफ्द का इस्तकबाल किया। उनका खैर मकदम करने में कर्नल असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ड्रग इन्फोर्समेंट तारिक अली अल मालकी ने उनका खैर मकदम किया, जिनके साथ चंद अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान मलेशियन वफ्द को जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारियों और बुनियादी किरदार के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। साथ ही नशीली अशिया के खिलाफ उसकी कोशिशों से भी आगाह किया गया। वफ्द को उन आगाही और इंतहाई बरनामे के बारे में भी बताया गया जो डायरेक्टोरेट मुआशरे के तहफ्फुज के लिए लागू करता है। इसके अलावा वफ्द को नशीली अशिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद तरीकों और टेक्नोलॉजी के हवाले से मालूमात भी फराहम की गई। जबकि इस शोबे में बैनुल अक्वामी तआवुन को फरोग देने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी रोशनी डाली गई। स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार

0: ना कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए। उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट और अथॉरिटी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने फोर्थ गल्फ गेम्स दोहा 2026 की सिक्योरिटी इंतजामात में हिस्सा लेने वालों के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया। इस तकरीब में डायरेक्टर जनरल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी शेख खलीफा बिन खालिद अल्फानी, डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस मेजर जनरल हमद उसामा अल दहीमी, डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट एंड अथॉरिटीज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट स्टाफ ब्रिगेडियर खालिद बिन अहमद अल्फानी और चेयरमैन सिक्योरिटी कमेटी फॉर द टूर्नामेंट मेजर सईद जुमा अल हितमी ने शिरकत की। इसके अलावा कई अफसरान, सिक्योरिटी एजेंसीज के नुमाइंदे और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के ममालिक से ताल्लुक रखने वाले चंद एथलीट्स भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई जिसमें टूर्नामेंट के दौरान सिक्योरिटी और इंतजामी कोशिशों को उजागर किया गया। इसके साथ वजारत दाखिला के मुख्तलिफ इदारों, सिक्योरिटी एजेंसीज और शिरकत करने वाले अफसरान को सिक्योरिटी जिम्मेदारियों की अंजामदेही पर तकरीम से नवाजा गया। ये कोशिशें टूर्नामेंट की कामयाबी का सबब बनी और रियासत कतर की बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट्स को आला तरीन सिक्योरिटी और सेफ्टी मयार के मुताबिक मुनज्जम और महफूज बनाने की सलाहियत और महारत को जाहिर करती हैं। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों।

दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स के बढ़ते क्रेज के बीच एक नया रियल स्टेट फ्रॉड मार्केट में आया है, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी प्रॉपर्टी का स्कैम। फ्रॉडस्टर्स अब वर्चुअल वर्ल्ड में फेक प्रॉपर्टीज, कमर्शियल लैंड्स और डिजिटल लग्जरी एसेट्स बेच रहे हैं। ये लोग आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करते हैं और बायर्स को झूठे डॉक्यूमेंट्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाकर फंसाते हैं। मासूम इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो किसी बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें मोटा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जब वो पैसा क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी में पे कर देते हैं तो वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही रातों रात गायब हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लूपहोल्स निकल आते हैं। 2026 में मेटावर्स ओनरशिप के क्लियर लॉज ना होने की वजह से विक्टिम्स को लीगल हेल्प मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। डिजिटल एसेट्स खरीदते वक्त पूरी रिसर्च और वेरीफाइड प्लेटफॉर्म का ही सिलेक्शन करना आपको इस नए मेटावर्स फ्रॉड से बचा सकता है। कई बार फेक वर्चुअल ब्रोकर्स खुद को बड़े प्लेटफॉर्म के एजेंट्स बताकर सोशल मीडिया पर फेक लिंक शेयर करते हैं जो असल में फिशिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, और आपका पूरा डिजिटल वॉलेट लिंक होते ही साफ हो जाता है। दोस्तों, आपको FM 107 पे सॉल्यूशन भी मिलता है। अगर कोई ब्रोकर आपसे आउट ऑफ प्लेटफॉर्म पेमेंट करने को कहे तो तुरंत रुक जाएं, क्योंकि ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। वर्चुअल एसेट्स की मार्केट रिलायबिलिटी चेक करने के लिए उनके कम्युनिटी फोरम और पास्ट ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री को ओपन सोर्स ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर जरूरी है कि वेरीफाई करें। दोस्तों, ये था नए जमाने का नया स्कैम, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी प्रॉपर्टी का स्कैम। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए जमाने के स्कैम के बारे में बात करते हुए।
1: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और डिलिशियस और क्रिएटिव एपिसोड। अच्छा, आप कहेंगे ये क्या हो गया भाई। देखिए, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले उन हैबिट्स की जो सिर्फ एनवायरनमेंट को सेव नहीं करती बल्कि किचन को भी ज्यादा स्मार्ट और फन बनाती हैं। तो भाई, हम आज बात करने वाले हैं लेफ्ट ओवर फूड से नए डिशेस बनाने की। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे बहुत पसंद है ये चीज। चलिए अब जरा एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, घर में अक्सर ये होता है कि भाई डिनर बनाना है या लंच बनाना है, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या बना लिया, बिरयानी बना ली, रोटी, सब्जी या पास्ता, एक्सरसाइज कुछ भी बना लिया आपने, ठीक है। सबने खा लिया लेकिन थोड़ा सा खाना बच जाता है, कभी कभी होता है, मोस्टली हो जाता है। और फिर फ्रिज में रख दिया जाता है वो बचा हुआ खाना, ये सोचकर कि भाई कल देखेंगे कि इसके साथ करना क्या है, खराब ना हो। लेकिन जब कल फ्रिज खोला जाता है ना, तो वही लेफ्ट ओवर्स या तो इग्नोर हो जाते हैं या फिर वो किसी फ्रिज के कोने में चले जाते हैं और हमें नजर नहीं आते और फिर एंड में वो वेस्ट हो जाते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होती है फूड वेस्ट की साइलेंट स्टोरी। देखिए, अब थोड़ा सा रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेफ्ट ओवर फूड्स का मतलब ये नहीं कि वो खराब है, अक्सर वो बिल्कुल सेफ और एडिबल होते हैं, बस उसे दोबारा क्रिएटिव तरीके से यूज करने की जरूरत होती है। दुनिया भर में एक बड़ी क्वांटिटी में फूड सिर्फ इसलिए वेस्ट होता है कि भाई उसे नई डिश में कन्वर्ट नहीं किया जाता। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई इसके अंदर इको स्विच सिचुएशन में क्या है, तो सफा आपको आइडिया दे रही है। आइडिया बड़ा सिंपल है, लेफ्ट ओवर फूड को फेंका ना करें बल्कि उसे नए डिश में ट्रांसफॉर्म करें ना, मतलब किचन में क्रिएटिविटी यूज करना और खाने को वेस्ट होने से बचाना। देखिए, अब बात करते हैं कि लेफ्ट ओवर फूड को रियूज करने से क्या फायदा होता है। देखिए, सबसे पहला फायदा तो ये है कि फूड वेस्ट रिड्यूस होता है। फूड इज अ ब्लेसिंग, तो उसका वेस्टेज रिड्यूस होना इज अ गुड थिंग। हर रीयूज्ड मील का मतलब है एक प्लेट खाना लैंडफिल में जाने से बच जाता है। दूसरा फायदा यह है कि बजट सेविंग हो जाता है। आप नए इंग्रेडिएंट्स खरीदने के बजाय एग्जिस्टिंग खाना जो आपका होता है उसको रीयूज कर लेते हैं। तीसरा फायदा है टाइम सेविंग। लेफ्ट ओवर फूड से डिशेज जल्दी रेडी हो जाती हैं, स्पेशली बिजी डेज में। अब ये मेरे साथ परसों हुआ था। क्या हुआ था कि भाई सफेद चावल और दाल बनाई थी, दाल तो खत्म हो गई, चावल थोड़े से ज्यादा बन गए। अब वो एक ग्लास चावल जो ज्यादा बन गया था, उसका अगले दिन अगली सुबह को मैंने पता है क्या किया, रात को तो वो चावल रख दिए फ्रिज में। सुबह उठकर ऑफिस जब आने लगी, भाई 12 बजे सबको भूख लगती है दोपहर को, तो मैंने कहा ऑफिस के लिए कुछ नया।

ट्राई करते हैं। तो भाई हमने क्या किया, लेमन राइस बना ली उस व्हाइट चावल की। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वॉज वेरी टेस्टी। तो ये जल्दी बनाने वाली चीज हो जाती है, जल्दी बनने वाली चीज हो जाती है कि मुझे वापस से चावल कुक करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई जस्ट डिड सम सॉटे ऑफ इट विद सम वेजिटेबल्स और वो बन गया लेमन राइस। चौथा फायदा है क्रिएटिव बूस्ट, आप किचन में नए एक्सपेरिमेंट्स और रेसिपीज ट्राई करते हैं। जैसा कि मैंने कहा लेमन राइस बनाए थे, मैंने कभी सुना नहीं था लेमन राइस, लेकिन वो लेमन राइस है अब, वो है तो मैंने कभी खाए नहीं थे, बट ट्रस्ट मी इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। अच्छा अगर इसकी एक और रिलेटेबल एग्जांपल दी जाए, जरा सोचिए आपके पास रात का लेफ्ट ओवर चावल जैसे मेरे पास थे वैसे आपके पास हैं, अगर आप उसे सिंपली इग्नोर कर देते हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं, चावल जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी चावल को थोड़ा वेजिटेबल एग्स स्पाइसेस वगैरह डालकर, या तो फिर आप अपनी मर्जी के वो चाइनीज फ्राइड राइस टाइप कुछ बना लें तो वो भी बहुत जल्दी से बन जाता है। या लेफ्ट ओवर रोटीज जो होती है ना, चपाती जो होती है, उसको छोटे छोटे पीसेज में कट करके उसे रोल या रैप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मजे के बनते हैं। मैं तो अक्सर ये करती हूँ कि अगर कभी कभी मैं तंदूर की रोटी बाहर से लेती हूँ ना, तो मैं उसको थोड़ा सा अगले दिन थोड़ा सा पानी लगाकर, थोड़ा सा घी लगाकर फ्राई कर और वो खाती हूँ नाश्ते में। इट इज ऑसम, इट इज वेरी ऑसम। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं करना, उस रोटी को आपने हल्का सा पानी लगाना है और उसके ऊपर मस्त आपने देसी घी लगाना है और उसे आपने गर्म कर लेना है। ओ भाई ऐसी मजे की बनती है ना वो रोटी। तो भाई सेम फूड लेकिन कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होता है। तो भाई दोहा जैसे बिजी लाइफस्टाइल वाली सिटी में लोग अक्सर टाइम सेविंग मील्स प्रेफर करते हैं, इसीलिए लेफ्ट ओवर फूड को रीयूज करना यहाँ और भी प्रैक्टिकल और हेल्पफुल हैबिट बन जाती है। अच्छा भाई अगर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर की जाए तो आपके घर में आप इन्हें इजीली यूज कर सकते हैं। पहली टिप है प्रॉपर स्टोरेज करें लेफ्ट ओवर फूड को, जो लेफ्ट ओवर खाना है आपका उसको हमेशा कवर्ड और फ्रिज सेफ कंटेनर में रखें। लेबल प्रैक्टिस करें भाई, देखिए फ्रिज में रखे हुए जो खाने होते हैं उन पर डेट किसी तरह से आप लिख दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्रिएटिव थिंकिंग अडॉप्ट करें, हर लेफ्ट ओवर को नई डिश इंग्रेडिएंट्स मतलब न्यू डिश इंग्रेडिएंट्स की नजर से देखने की कोशिश करें। और चौथी बात यह है कि मिक्स एंड मैच करें ना, राइस वेजिटेबल्स ब्रेड ये चीजें नई नई डिशेज में कंबाइन करने की कोशिश करें, बहुत बहुत क्रिएटिव बनती हैं इनसे चीजें। और भाई सेफ ड्यूरेशन फॉलो करें, यानी कि लेफ्ट ओवर जो खाना होता है उसको लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर कंज्यूम करें ताकि फ्रेशनेस मेंटेन रहे। तो भाई इसी के साथ अगर हम किसी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो कई प्रोफेशनल शेफ्स भी ना, आप माने ना माने मैं आपको बता रही हूँ, कई प्रोफेशनल शेफ्स भी लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट्स को यूज करके नई डिशेस बनाते हैं, यानी किचन वेस्ट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना एक प्रोफेशनल स्किल भी है। अच्छा आपने अपनी फेवरेट डिश, मेरी भी फेवरेट है बटर चिकन की स्टोरी सुनी है आपने कभी? नहीं सुनी? अभी वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन बटर चिकन की कभी आप जाकर स्टोरी चेक कीजिएगा कि बटर चिकन एग्जिस्टेंस में कैसे आया था। तो भाई बटर चिकन भी इसी चीज की एक मिसाल है प्रॉपर। अब एक रिलेटेबल बात ये कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि कल का खाना बोरिंग होगा, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन और स्टाइल चेंज कर दिया जाए ना तो वही फूड एक नई डिश बन जाती है जो इक्वली एंजॉयबल होती है। एंड भाई इसके अंदर मेरी अम्मी बड़ी एक्सपर्ट है। हमारे घर में जो एक तहलका मचा हुआ होता है ना कि भाई ये खाना मैंने कल वाला खाना नहीं खाना, कल जो बनाया था आपने वो नहीं खाऊंगा, हमारी अम्मी ऐसे प्रेजेंटेबल करके देती हैं कि भाई मजाले कोई पता लगा ले कि कल का खाना है। तो हैट्स ऑफ टू मदर्स। भाई अब थोड़ा सा बिहेवियर चेंज की एंगल की तरफ चलते हैं। देखिए जब आप लेफ्ट ओवर फूड को रीयूज करते हैं ना तो आप अपनी कुकिंग और कंजम्पशन माइंडसेट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं। आप खाने को सिर्फ कंजम्पशन आइटम नहीं देखते बल्कि वैल्यूएबल रिसोर्स समझने लगते हैं। तो भाई इसी के साथ इको स्विच बड़ा सिंपल है, लेफ्ट ओवर जो खाना होता है ना आपका बचा हुआ खाना उसको वेस्ट ना करें बल्कि उसे नई डिशेस में कन्वर्ट करें, शेफ बन जाएं, मास्टर शेफ। तो भाई आज का चैलेंज ये है कि आज या नेक्स्ट मील के बाद अपने लेफ्ट ओवर खाने को डिस्कार्ड करने के बजाय उसे एक न्यू डिश में कन्वर्ट करने की कोशिश तो करो बाबू, कोशिश तो करो। और अगर आप ऑलरेडी ये हैबिट फॉलो करते हैं ना तो किसी और को भी तो इंस्पायर करो ना। तो भाई किचन में क्रिएटिविटी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होती बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए भी होती है। जब हम लेफ्ट ओवर फूड को रिसोर्स रीयूज करते हैं ना उसको एज अ रिसोर्स, तो हम सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं।
तो भाई मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। वैसे जनाब, आप हैं मेरे साथ कतर ग्रीन बीट पर। ये खासम खास शो हर हफ्ते हम आपके लेकर आते हैं, और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ग्रीन पल्स की, कि कैसे आपका पैसा और ग्रीन लोन्स हमारे मुल्क को बदल रहे हैं। लेकिन आज आज हम किसी बैंक में नहीं, बल्कि कतर के सुनहरे रेगिस्तान और उन नीली लहरों के पास चलेंगे। हाँ जी, जहाँ सुकून और सुकून और सुकून होता है। वैसे जब हम लग्जरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े मार्बल लॉबीज और ग्लास स्काईस्क्रेपर्स आते हैं, लेकिन एक नई लहर, या यूं कहे वेव, हमारी मिट्टी में घूम रही है, जिसे हम कहते हैं इको लग्जरी। ये एक ऐसी सोच है जहां दौलत का मतलब ये नहीं कि हमने कितना बनाया, बल्कि ये है कि हमने कुदरत को कितना बचाया। आज हम देखेंगे कि कतर का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कैसे बिना कोई निशान छोड़े हमारे डेजर्ट को एक 5-स्टार सेंचुरी में बदल रहा है।
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट। चलिए सफर शुरू करने से पहले नजर डालते हैं ग्रीन वायर अपडेट्स पर। यस, क्या आप जानते हैं कि कतर टूरिज्म ने होटल्स के लिए एक नया सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम शुरू किया है? अब होटल्स को सिर्फ उनके डेकोर पर नहीं, बल्कि इस बात पर ग्रेड किया जाएगा कि वो कचरे, या यूं कहे वेस्ट को कैसे रिसाइकल करते हैं। और एक बड़ी बात, दोहा के

0: कई होटल्स को अब ग्रीन की सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये एक इंटरनेशनल पहचान है जो ये साबित करती है कि वो होटल एलईडी लाइट से लेकर प्लास्टिक बॉटल्स के बैन तक हर जगह असली काम कर रहे हैं। हमारा टूरिज्म सेक्टर सिर्फ बढ़ नहीं रहा, वो ग्रीन हो रहा है। अब बात करते हैं उन रिसॉर्ट्स की जो हमारी शान है। यस, रास अब्रूक के उन मशहूर रिचर्ड सेरा स्कल्पचर्स के पास एक नया रिसॉर्ट बेस है, जहां पर पहाड़ों को काटा नहीं बल्कि उनके बीच अपने विलास बनाए गए हैं। ये सोलार एनर्जी से चलते हैं और मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और वहीं हमारे कतर रीजन में नॉर्थ में एक ऐसा वेलनेस रिसॉर्ट है जो ट्रेडिशनल अरबिक एंड इस्लामिक मेडिसिन को सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ता है। और इन दोनों का, ये यूं कहें, इस तरह के और भी रिसॉर्ट्स का सीक्रेट सॉस है फार्म टू टेबल डाइनिंग। यस, वही मशरूम्स, वही लोकल शहद और हमारी समुंदर की मछलियां। यस, जब खाना दूर से नहीं आता ना तो स्वाद बढ़ता है और पॉल्यूशन कम होता है। एग्जैक्टली, और इसीलिए जब आप जाते हैं तो पहली चीज आपको एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा लगता है इन रिसॉर्ट्स में। एट द सेम टाइम जब हम लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट किसी भी चीज के लिए बैठते हैं, कोई भी मील खा रहे होते हैं, हम वो फ्रेशनेस, वो ताजगी महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ सिर्फ आपका शरीर ही नहीं बल्कि ये रिसॉर्ट्स जो हैं खुद भी वेलनेस के रास्ते पर चलते हैं। यस, इनका आर्किटेक्चर हमारी विरासत या यू कहें हेरिटेज को दर्शाता है। और पानी के इस्तेमाल से लेकर बिजली की बचत तक हर चीज में सस्टेनेबिलिटी दिखाई देती है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारी पुरानी विजडम और आज की टेक्नोलॉजी मिलकर एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि जब खाना दूर से नहीं आता तो वो पॉल्यूशन का शिकार कम होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो अपने आप जीरो हो जाता है। और सच तो ये है कि जब खाना इतना ताज़ा होता है तो उसका जो स्वाद है वो दुगना हो जाता है और हमारी हेल्थ भी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये हमारी मिट्टी के वो ग्रीन स्टार्स हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि हम बिना कुदरत को नुकसान पहुंचाए भी बेहतरीन लग्जरी का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कॉन्शियस ट्रैवलर बनने के लिए आपको इन रिसॉर्ट्स में जाना जरूरी नहीं है। यस, आप किसी भी होटल में रहकर कैसे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, ये जानने के लिए अब आपको मैं आगे कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस या यूं कहें सस्टेनेबल टिप्स देने वाली हूँ। तो आप कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट। यस, तो अभी हमने बातें की उन रिसॉर्ट्स की, उन बड़े रिसॉर्ट्स की जिन्होंने इको लग्जरी की दुनिया में कदम रखा है। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि अमिता, ये सब तो बड़े रिसॉर्ट्स हैं और हम, मतलब हम आम लोग कैसे जा सकते हैं? लेट मी टेल यू, इको लग्जरी का लुत्फ उठाने के लिए आपको हमेशा किसी बड़े और महंगे रिसॉर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सस्टेनेबिलिटी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। आप अपने किसी भी आम वीकेंड को बिल्कुल ग्रीन स्टेकेशन में बदल सकते हैं। बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है और कुछ टिप्स की। तो सबसे पहली टिप, जिसका नाम मैं देती हूँ द टॉवल ट्रिक। यस, ये बहुत सिंपल है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। सोचिए, जब आप अपने घर पर होते हैं तो क्या आप हर बार नहाने के बाद अपना टॉवल धोने के लिए डाल देते हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो फिर होटल्स में ऐसा क्यों करते हैं? जब आप होटल में अपना टॉवल फ्लोर पर फेंक देते हैं तो उनका सिस्टम उसे धोने के लिए ले जाता है। लेकिन अगर आप उसे हैंग कर देते हैं तो ये एक साइलेंट इशारा है कि आप इसे दोबारा यूज करेंगे। तो जनाब, कतर जैसे देश में जहाँ पानी की एक एक बूंद बेशकीमती है, ये छोटी सी आदत सैकड़ों लीटर पानी बचा सकती है। एक बार सोचिए, आपका ये छोटा सा कदम हमारे समुंदर और हमारे रिसोर्सेज पर कितना बड़ा बोझ कम कर सकता है। दूसरी टिप है, डिच द सिंगल यूज। हाँ जी, हम सबको वो होटल के छोटे छोटे शैम्पू और लोशन की बॉटल्स

0: स्टिक का एक बहुत बड़ा ढेर बनाती है। अगली बार जब आप स्टेकेशन पर जाएं तो अपना रीयूजेबल वाटर बॉटल और बैम्बू टूथब्रश साथ ले जाएं। आजकल कतर के कई होटल्स ने हॉलवेज में हाई एंड वाटर फिल्ट्रेशन स्टेशन लगाए हैं। आप अपनी बॉटल वहां से रिफिल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आप मिनरल वाटर की प्लास्टिक बॉटल्स बचाएंगे, बल्कि आप ये भी दिखाएंगे कि आप एक कॉन्शियस ट्रैवलर हैं। प्लास्टिक को अपनी छुट्टियों का हिस्सा मत बनने दीजिए। एंड सॉल्यूशन नंबर 3, एसी विजडम। यस, बिजली की बचत। तीसरी और सबसे जरूरी टिप है, खास तौर पर हमारे गल्फ रीजन के लिए, एसी विजडम। जब हम होटल रूम में चेक इन करते हैं, हमारी आदत होती है एसी को 18 डिग्रीज पर छोड़ने की। लेकिन जनाब, जब आप पूल पर मजे ले रहे होते हैं या बीच पर सनसेट देख रहे होते हैं, तब रूम को इतना ठंडा रखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। जब आप रूम से बाहर निकले तो एसी का टेम्परेचर थोड़ा ऊपर, यानी 23 या 24 डिग्रीज पर आप छोड़ दें, रूम तब भी ठंडा रहेगा, लेकिन बिजली की बचत कई गुना बढ़ जाएगी। नतीजा पता है क्या होगा? आप लग्जरी भी इंजॉय करोगे और हमारा एनवायरनमेंट भी सुकून की सांस लेगा। ये छोटे छोटे चेंजेस ही ना हमारे कल को बेहतर बनाएंगे। कुछ और भी बड़ी मजे मजे की टिप्स है, यू नो, जिसे अगर आप अप्लाई करेंगे सो डेफिनेटली आप हमारे कतर को ग्रीन और सस्टेनेबल बना पाएंगे। हाँ, तो मैं कहूंगी कि कमरे के अंदर की भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कर्टन्स फॉर कूलिंग। कतर की हमारी दोपहर की धूप काफी तेज हो रही है, तो ये हम सभी जानते हैं। तो हमें क्या करना है? जब आप कमरे से बाहर जाएं तो अपने ब्लैकआउट कर्टन्स बंद करके जाएं। ये एक नेचुरल इंसुलेशन की तरह काम करता है, जिससे कमरा ठंडा रहता है और आपके एसी को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ जनाब, उसके बाद आप वो मिनी जो टॉयलेट्रीज होती है ना, उनको भी अवॉइड करें। कैसे? वो छोटी छोटी शैम्पू लोशन की बॉटल्स जो हम बड़ी क्यूट लगती हैं, हम खरीद लेते हैं, कभी सेल में खरीद लेते हैं, कभी किसी जगह से खरीद लेते हैं, तो एक काम कीजिए, ये सारी जो बॉटल्स हैं इनको आप साइड कर दीजिए। अपनी खुद की किट बनाएं जिसे आप हर जगह पर कैरी कर सकें। एंड देन हाउस कीपिंग ऑप्ट आउट। यस, अगर आप सिर्फ एक दो रात के लिए रुके हैं तो क्या वाकई हर रोज बेडशीट बदलने की जरूरत है? नहीं ना, तो घर पे तो हम ऐसा नहीं करते ना कि रोजाना ही हम बेडशीट चेंज करते हैं। तो अगर दो दिन में अगर हाउसकीपिंग को आप ऑप्ट आउट करेंगे तो इससे बहुत सारा पानी, केमिकल्स, सब कुछ बच जाएगा। हाँ जी, तो क्या करना है? अपने दरवाजों पर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगाइए और एनवायरमेंट को बचाइए। प्लस आप डिजिटल एवरीथिंग इस टिप को भी आजमा सकते हैं, मतलब चेक इन से लेकर रूम सर्विस, मेन्यू और बिलिंग तक सब कुछ फोन पर आप ले सकते हैं। उन कागज के मोटे मोटे ब्रोशर्स और बिलों की जगह होटल की ऐप का इस्तेमाल करें, ताकि इससे आप ट्रीज को भी सेव कर सकें, है कि नहीं? तो डिजिटली, जैसे कि हम अपने आप को बड़ा कूल समझते हैं ना, तो डिजिटल इन चीजों में जाके डेफिनेटली हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। एक और नई चीज आई है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, दैट इज सस्टेनेबल सनस्क्रीन। यस, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम सन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या करना है? ओजोन फ्रेंडली या रीफ सेफ सनस्क्रीन चुनना चाहिए, जिससे आपकी स्किन भी सेफ रहे और आपका एनवायरमेंट और समुंदर भी बच सके। अच्छा, हमने बात की थी कि ईट क्लीन की, कि भाई देखो, जब भी हम रिसॉर्ट्स वगैरह में जाते हैं तो हमें लोकल खाना बड़ा अच्छा मिलता है। इनफैक्ट जब आपको मैंने कहा कि बिल्कुल कूल हम होटल्स में जा रहे हैं और कम दाम में हम अपना स्टेकेशन भी इंजॉय करना चाहते हैं और सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस करना चाहते हैं, तो इस पर भी आप ध्यान दें, दैट इज ज़ीरो फूड वेस्ट। हाँ, जब भी हम होटल्स में जाते हैं, बुफेज देखते हैं, तो हम एकदम से ना एक्साइटेड हो जाते हैं, हमको लगता है वाह, ये भी खा ले, वो भी खा ले, है कि नहीं? और हमारी प्लेट्स ऐसी भरी होती हैं कि पूछे नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी प्लेट्स में उतना ही लेना है जितना कि हम खा सकें, खाने को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, वरना गलत हो जाता है. और हमें अगर हर चीज सेव करनी है ना अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो ये छोटे छोटे स्टेप से ही काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे. एंड देन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, इसका जिक्र मैं हमेशा करते आई हूँ लेकिन कई बार क्या होता है भूल जाते हैं, सो डू नॉट मिस इट. अगर आपका होटल बिल्कुल मुशहरब या लुसैल जैसी जगहों पर है या और भी नज़दीक है, तो सिंपल है, अपनी गड्डी ना निकालो, दोहा मेट्रो का इस्तेमाल करो, ईजिली जाओ, सुरक्षित पहुंचो और अपने स्टेकेशन को इंजॉय करो. तो जनाब, आज हमने बहुत सारी बातें की, टॉवल बचाने से लेकर एसी का जो टेम्परेचर है, और मुझे लगता है ये छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स, इन सबको अगर हम अवॉइड करते हैं और ये सारे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है हमारे कतर नेशनल विजन 2030 से. ये सिर्फ एक सरकारी विजन नहीं है, ये एक ड्रीम है, एक सपना है, और एक ऐसा सपना है जो हमें ये दिखाता है कि तरक्की का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े करना नहीं होता. हमारा असल मकसद सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूरिज्म सेक्टर बनाना है जो हमारी कुदरती खूबसूरती को महफूज रखे, प्रोटेक्ट करे. हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये ज़मीन, ये समुंदर, ये रेगिस्तान हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिले हैं और हमें इसे अगली पीढ़ी के लिए सही सलामत रखना है, है कि नहीं? हम चाहते हैं कि साल 2050 और 2100 की जो नस्लें आएंगी वो भी यही जादुई और खूबसूरत सनसेट देख सके जो आज हम रास अबरूक की चट्टानों के पीछे देखते हैं. हम चाहते हैं कि हमारे रेगिस्तान, हमारी ये जमीन हमेशा ऐसी ही खूबसूरत रहे और हमारी जनरेशंस के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए एक खूबसूरत कल बनाए. याद रखिए, इको लग्जरी सिर्फ एक फैशन नहीं है, ये एक वादा है, एक ऐसा वादा कि कतर ना केवल एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनेगा बल्कि अपनी मिट्टी को महफूज भी रखेगा. जब आप अगली बार किसी होटल में ग्रीन स्टेकेशन चुनेंगे तो आप सिर्फ अपनी छुट्टियों के मजे नहीं लीजिएगा, ठीक है, असल में आप एक ऐसी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेंगे जो हमारे डेजर्ट, हमारे समुंदर और हमारे इंटायर फ्यूचर को वैल्यू करती है. आप उस सोच का हिस्सा बनते हैं जो कहती है कि लग्जरी वो है जो कुदरत के साथ मिलकर चले, है कि नहीं, ना कि उसके खिलाफ. आई एम वेरी सर्टेन कि आज का एपिसोड आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, तो आप हमसे अपने व्यूज भी जरूर शेयर करें 6622107 पर 6622107. और मैं कहूंगी कि कतर ग्रीन बीट, हमारा ये सस्टेनेबल सा शो, हर हफ्ते आपके लिए इसी वक्त मैं लेकर आऊंगी और कुछ नए नए टिप्स ट्रिक्स के साथ. इनफैक्ट अगर आपके भी कोई फीडबैक्स हैं, आपके भी कोई व्यूज हैं या कोई सजेशंस हैं जो आप देना चाहें हमारे शो को और बेहतर करने के लिए, आप बेशक हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. FM 107 के आर जमीता को भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं एंड वहां पर भी आप अपने सजेशंस, फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकते हैं. फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, अब आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस पर. तो कतर ग्रीन बीट्स सुनते रहिएगा, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी.

पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरत

और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार

0: दोस्तों, डिसेबिलिटी वाली पार्किंग स्पेसेस का इस्तेमाल ट्रैफिक का वायोलेशन और बेअदबी है। ट्रैफिक के कानून और गाइडलाइंस को फॉलो करना अमन और दूसरों के हुकूक की हिफाजत करता है। याद रखिए, डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड पार्किंग स्पेसेस का गलत इस्तेमाल ट्रैफिक का ऑफेंस है और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन स्पेसेस का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से मुतासिर हैं, उन्हें आसानी से अपने जरूरी कामों को अंजाम देने का मौका मिले। ये पार्किंग स्पेसेस उन्हें कन्वीनियंस और सहूलत देने के लिए रिजर्व्ड होती हैं और उनका गलत इस्तेमाल उनके लिए अननेसेसरी मुश्किलात का सबब बन सकता है। ये जरूरी है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतरीन और अमन पसंद ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें ताकि सबको बराबर के हुकूक मिल सकें और किसी को भी अपने हक से महरूम ना होना पड़े। FM 107 इस बात की ताकीद करता है कि मुआशरे में हर एक का बराबरी से ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पे ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने की कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुई और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं कहानी, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशन, इंसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से है, FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। दोस्तों, आज हम चलकर एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें दोहा के एक आइकॉनिक लैंडमार्क की तरफ ले जाता है। एक ऐसी जगह जो कभी फिल्मों के जादू, हंसी और तालियों से गूंजती थी, गल्फ सिनेमा। दोस्तों, ये सिर्फ एक थिएटर ही नहीं था, ये एक लैंडमार्क था, एक कल्चरल हब जहां कतरी और एक्सपैट्स दोनों की यादें बनती थी। सालों तक गल्फ सिनेमा ने एक नया तजुर्बा दिया, स्क्रीन के सामने बैठकर फिल्म देखना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और फैमिली के साथ वो शाम जो यादगार बन जाती थी। मेरे साथ वो लोग खास तौर पे जुड़ेंगे जिन्होंने वो वक्त देखा था कि जब गल्फ सिनेमा के बाहर लाइन लगी होती थी टिकट के लिए हल्की सी बेचैनी, लेकिन उसके पीछे छुपी खुशी, अंदर जाकर डिम लाइट के साथ ही पूरी दुनिया बदल जाती थी। फिल्म के डायलॉग्स, हंसी की आवाजें और तालियों की वो गड़गड़ाहट सब मिलकर एक ऐसी याद बन जाती थी जो जिंदगी भर दिल में रहती। दोस्तों, गल्फ सिनेमा सिर्फ स्क्रीन और खुशियों का नाम ही नहीं था बल्कि एक ऐसे जज्बात का मरकज था जो अब भी उन लोगों की यादों में जिंदा है जिन्होंने वहां अपनी जिंदगी के वो खूबसूरत लम्हे गुजारे। चलिए आज फिर उन यादों को ताजा करते हैं जहां हम जानेंगे गल्फ सिनेमा की कहानी। दोस्तों, 1970 का दौर था जब दोहा के एरिया नजमा में गल्फ सिनेमा ने अपने दरवाजे खोले। उस वक्त कतर में एंटरटेनमेंट ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड थे और ऐसे में गल्फ सिनेमा ने लोगों को एक नया तजुर्बा दिया। देखते ही देखते

जानते हैं ये सिनेमा फैमिलीज, नौजवानों और वर्कर्स का एक मशहूर गैदरिंग पॉइंट बन गया। दोहा सिनेमा उस वक्त शहर के सेंट्रल एरिया में था, लेकिन गल्फ सिनेमा की अपनी अलग पहचान बन गई, खासकर इसलिए कि यहाँ इंडियन, पाकिस्तानी और अरबिक मूवीज स्क्रीन होती थी। यही वजह थी कि कतर के खारजियों की एक बड़ी तादाद के लिए गल्फ सिनेमा एक कल्चरल हब बन गया। लेकिन असल कहानी तो और भी पहले शुरू होती है। 1950 में कतर में फिल्म स्क्रीनिंग्स का आगाज हुआ। उस वक्त लोग कार गैरेज वर्कशॉप्स में मूवीज देखने के लिए जमा होते। 1960 के आते आते ये सिलसिला बढ़ गया और डिस्ट्रीब्यूटर्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से फिल्में और प्रोजेक्टर्स लेकर कतर आते, और जहां भी सुइटेबल जगह मिलती वहां एक छोटा सिनेमा बन जाता। ग्रेजुअली रिएक्शंस और स्पोर्ट्स क्लब्स में भी सिनेमा के सेटअप्स बनने लगे, और फिर आया 1970 का साल जब कतर सिनेमा एंड फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एस्टेब्लिश हुई। इसी के जरिए मुल्क के पहले दो ऑफिशियल सिनेमा बने, दोहा सिनेमा और गल्फ सिनेमा। भाई उस वक्त की जो कैपेसिटी थी इस थिएटर की वो 2000 सीट की थी। हर शो में लोगों का हुजूम होता और ये क्रेज इतना था कि घरों में टेलीविजन आने के बावजूद सिनेमा की चाम कम नहीं हुई। लेकिन फिर 1980 में इंडस्ट्री को एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ा, और वो था VHS टेप्स का। अब लोगों के पास घर घर फिल्में देखी जाने लगी और आसान तरीके भी मिल गए, मगर फिर भी गल्फ सिनेमा ने लोगों के दिलों में जो मकाम बनाया था वो सिर्फ एक बिल्डिंग का ही नहीं बल्कि कतर की कल्चरल हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा था। दोस्तों ये सिलसिला 90s तक जारी रहा। उस वक्त तक सिनेमा ने नई नई रिलीज्ड फिल्में दिखाना शुरू कर दी थी जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आती थी। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज भी गल्फ सिनेमा की स्क्रीन पर चलते वक्त हॉल में तालियों की गूंज होती थी। साथ ही वेस्टर्न मूवीज भी दिखाई जाती थी जिन्होंने ऑडियंस को एक नई वैरायटी और एक नई सोच दी। कौदिनो हजरत, पहले के दौर में तो बहुत कम फिल्में रिलीज हुआ करती थी, आप जानते ही हैं, और जब फिल्में नहीं होती थी तो स्टेज पर मुख्तलिफ प्लेज अपनी रूहानी छाप छोड़ जाते थे। थिएटर के दरवाजों पर फिर भी वो ही रश होता था क्योंकि गल्फ सिनेमा ने अपनी लॉयल ऑडियंस को कभी मायूस नहीं किया था। भाई दरअसल फिल्में देखने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि गल्फ सिनेमा की 1093 सीट्स एक वक्त पर काफी नहीं रही। फिर क्या था, मजीद 400 चेयर्स ऐड करनी पड़ी ताकि हर शौकीन को जगह मिल सके। दोस्तों गल्फ सिनेमा का नाम सिर्फ फिल्मों तक ही महदूद नहीं था, ये एक सोशल और कल्चरल हब था, एक ऐसा मीटिंग पॉइंट जहां मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग एक साथ आते, अपनी कहानियां और इमोशंस शेयर करते और एक दूसरे से जुड़ जाते। 70s, 80s और फिर 90s का दोहा अपनी डाइवर्सिटी के साथ गल्फ सिनेमा के स्क्रीन पर भी नजर आता था। भाई यहाँ पर तो कई वर्कर्स के लिए सिनेमा ही उनका वीकेंड एंटरटेनमेंट था, और उन एक्सपेक्ट्स के लिए जो अपने घरों से दूर थे। गल्फ सिनेमा एक कम्युनिटी बॉन्डिंग का सिंबल बन गया। यहाँ की सीट्स पर बैठकर वो अपनी थकान भूल जाते, अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराहट बांटते और कुछ घंटों के लिए अपने मुल्क की यादों से दूर होकर एक नई दुनिया में चले जाते। दोस्तों वक्त गुजरा, दौर गुजरे, माशाल्लाह कतर ने तरक्की की राह अख्तियार करी। वही सिनेमा घर जो कभी हंसी और तालियों से गूंजता था अब खामोशी में डूबा हुआ है। गल्फ सिनेमा जैसे इंतजार कर रहा हो कि एक दफा फिर से जिंदा हो, एक दफा फिर से कतर की यंगर जनरेशन को वही खुशी दे जो कभी उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने महसूस की थी। दोस्तों माजी में नजर डालें और आज के दौर में कदम रखें तो कतर की सिनेमा जर्नी में सबसे काबिले तारीफ किरदार उस नई नस्ल का था जो फिल्म और सिनेमा की आर्ट्स और साइंसेस सीखकर अब्रॉड से वापस आए। इन यंग फिल्म मेकर्स ने सिनेमा को उन रिस्ट्रिक्शन से आजाद करना शुरू किया जिन्होंने इसे काफी अरसे तक

बांध कर रखा था। ये फिल्म मेकर्स अपनी फ्रेश सोच, नए नजरिए और क्रिएटिव जज्बे के साथ वापस आए थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट नैरेटिव मूवीज बनाकर सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन ही नहीं किया, बल्कि उन प्रोजेक्ट्स को सक्सेस भी दिलाई। और फिर क्या था, उनकी मूवीज ने अवार्ड जीते, रिकॉग्निशन हासिल की और सबको दिखाया कि अगर यूथ को सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिले तो वो कतर को इंटरनेशनल सिनेमा मैप पर ला सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। एक छोटे से मुल्क की नई नस्ल ने साबित कर दिया कि उनका टैलेंट किसी से कम नहीं है। अब अगर हम सिनेमेटिक कल्चर की ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ देखें तो पहले 3 दशकों में कतर ने एक लाजवाब सफर तय किया है। भाई एक वक्त था जब सिनेमा ऑडियंस वेग और पैसिव थी, जो भी स्क्रीन पर दिखाया जाता वही देख लेती थी। लेकिन वक्त के साथ अवेयरनेस और एक्सपोजर बढ़ गया। अब यही ऑडियंस एक एक्टिव और एंगेज्ड ऑडियंस बन गई है, जो इंटरनेशनल फिल्म्स को दुनिया के साथ ही ओपनिंग डेट पर एंजॉय करती है। यानी सोचिए, एक वक्त था जब कतर के लोग गैरेजेस और छोटे हॉल में फिल्में देखते थे, और आज ऐसा वक्त है कि दोहा के सिनेमा में वही मूवीज रिलीज होती हैं जो न्यूयॉर्क, लंदन या मुंबई के स्क्रीन पर चल रही होती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही नहीं बल्कि एक कल्चरल इवोल्यूशन है। दोस्तों, दोहा के शहर में सिनेमा जाना अब एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। पिछले 2 डिकेड्स में ये कल्चर और मजबूत हुआ है। जब बड़ी बड़ी फिल्म कंपनीज ने दोहा में अपनी ब्रांचेस खोलनी शुरू की तो इस ट्रेंड ने नया रंग पकड़ा। अब दोहा में सिनेमा हॉल्स की तादाद लगभग 200 तक पहुंच गई है। हर मॉल, हर कॉमर्शियल हब के अंदर एक मॉडर्न सिनेमा हॉल अपनी जगह बनता नजर आता है। तो दोस्तों, यहाँ एक कोट याद आती है जो सिनेमा की असल रूह को बयान करती है। मशहूर राइटर और क्रिटिक हेनरी फोरमैन कहते हैं, सिनेमा मेक्स चिल्ड्रन। मतलब ये है कि सिनेमा इंसान की सोच और पर्सनैलिटी को शेप करता है। ये सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक इनफॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम है, एक सोशल विंडो है जहां से इंसान दुनिया को देख सकता है। कहानियां जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो हमें नए आइडियाज, नए इमोशंस और नए जज्बात से रोशन करती हैं। इस तरह गल्फ सिनेमा से शुरू होने वाली कतर की सिनेमा जर्नी आज एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। पास्ट की वो नॉस्टैल्जिक यादें और आज के ये ग्लोबल सिनेमेटिक एक्सपीरियंसेस दोनों मिलकर कतर के कल्चर को एक नई पहचान देते हैं। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। तो दोस्तों, 1970 में जब गल्फ सिनेमा की ग्रैंड ओपनिंग हुई थी, उस वक्त दोहा की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। और फिर 2016 तक गल्फ सिनेमा ने कतर को वो सिनेमैटिक यादें दी जो शायद ही कभी भुलाई जा सके। ये सिर्फ एक हॉल ही नहीं था, बल्कि एक स्टेज था जहां कल्चर्स मिले, हंसी गूंजी और स्क्रीन पर चलती कहानियों ने सपनों को जिंदा कर दिया। आज चाहे मॉडर्न मल्टीप्लेक्सेस ने अपनी जगह बना ली हो, लेकिन गल्फ सिनेमा हमेशा कतर के एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का एक गोल्डन चैप्टर रहेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, पर्दे एक दफा फिर उठने वाले हैं। गल्फ सिनेमा अपनी सेकंड एक्ट के साथ वापस आ रहा है और ये रिटर्न एक ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होगा। भाई, पुरानी बिल्डिंग को रीस्टोर किया जा रहा है और साथ ही एक 360 डिग्री रिवाइवल प्लान बनाया गया है, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन उस कल्चरल एसेंस को भी प्रिजर्व किया जाएगा जो गल्फ सिनेमा की रूह है, यानी इसकी पुरानी बिल्डिंग। भाई, आपको वाजे कर दूं कि आज के दौर के लिए कतर म्यूजियम ने कतर सिनेमा और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि इस हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स को दोबारा जिंदा किया जा सके। प्लान ये है कि गल्फ सिनेमा को एक स्टेट ऑफ द आर्ट एंटरटेनमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो नए दौर की जरूरतों को भी पूरा करे और पुरानी यादों की रूह को भी साथ लेकर चले। चलिए दोस्तों, अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके ख्याल में पहली चीज क्या होनी चाहिए जो आप गल्फ सिनेमा की रिवाइवल में देखना चाहेंगे, या फिर अगर आपको मौका मिले तो आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा करते हैं? अपने जवाब हमें टेक्स्ट करके भेजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22107। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं तक था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी और एक नया टॉपिक लेकर आपको अपडेट करेंगे, जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज। तो हमारे साथ प्रोग्राम कतर फर्स्ट में जरूर जुड़िएगा। तो इसी के साथ प्रोग्राम कतर फर्स्ट से साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।

0: one hit music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360. जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107.
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
4: बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है. आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें. गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें. सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है. हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके. किसी भी किस्म का एक्सप्लोजिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें. और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है. याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
6: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे. सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड. आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
0: दिल से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें।

0: और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए। उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें, ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है, ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें, ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें, ताकि इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें, ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107।
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बच्चों, नौजवानों और बड़ों सबकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, और वो है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम से मुराद मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर, टीवी और जो दूसरे डिजिटल आलात के सामने गुजारा जाने वाला वक्त है। अगरचे टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सेहत के मुख्तलिफ मसाइल पैदा कर सकता है। सबसे आम मसला आंखों की थकन है। तवील वक्त तक स्क्रीन देखने से आंखों में खुश्की, जलन, धुंधलापन और सर दर्द हो सकता है। इस हालत को हम डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। स्क्रीन के सामने मुसलसल बैठने से गर्दन, कंधों और कमर का दर्द भी पैदा हो सकता है। गलत अंदाज में मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करने से हमारे मसल्स पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा ज्यादा स्क्रीन टाइम जिस्मानी सरगर्मियों में कमी का बायस बनता है। जब हम ज्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं तो हमारा वजन बढ़ने लगता है, यानी मोटापे की तरफ माइल हो जाते हैं। डायबिटीज और दिल की बीमारियों के खतरात में इजाफा हो सकता है। बच्चों में जरूरत से ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करना जिस्मानी खेल कूद को कम कर देता है, जिससे उनकी जिस्मानी नशोनुमा मुतासर होती है। तो अहम बात यह है कि हम अपनी सेहत का तहफ्फुज कैसे करें। तो लिसनर्स, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए तकरीबन 20 फुट दूर किसी चीज को देखिए। इसे हम 20-20-20 रूल कहते हैं। स्क्रीन इस्तेमाल करते वक्त आप सीधा बैठिए, मोबाइल या कंप्यूटर को आंखों की मुनासिब सतह पर रखिए और हर घंटे के बाद चंद मिनट के लिए खड़े होकर आप वॉक कीजिए। बच्चों को रोजाना जिस्मानी सरगर्मियों और बैरूनी खेलों की तरगीब देना भी बहुत जरूरी है। और ये याद रखना भी कि टेक्नोलॉजी हमारी मददगार है, लेकिन उसका मुतवाजन इस्तेमाल ही सेहतमंद जिंदगी की जमानत है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो,
3: ठाकुर तो
2: FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगाम।

0: अमात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और ये शो है द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महमूद खान। इस शो में मैं आपको सुनाती हूं हमारे नबियों की कहानियां। एक ऐसा शो है जो हमारे अजीम अंबिया कराम की जिंदगियों के सुनहरी वाकयात से रोशनास कराता है। ये कहानियां सिर्फ तारीखी वाकयात नहीं बल्कि ईमान, सब्र, हिम्मत और अल्लाह के ऊपर भरोसे की ऐसी अजीम मिसालें हैं जो हमारी जिंदगियों को रोशनी से भर देती हैं। हर किस्त में हम एक नबी की जिंदगी, उनके इम्तिहानात, उनकी जद्दोजहद और उनकी फतह के बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने अल्लाह के अहकामात पर कैसे अमल किया, किस तरह मुश्किलात का मुकाबला किया और हमें क्या सबक सिखाया। ये किस्से और कहानियां हमें आज के दौर में भी अपनी जिंदगियों में सब्र, ईमान और हमदर्दी जैसे अजीम औसाफ अपनाने की तरगीब देती हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम हस्ती की जिन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, जिन्होंने सदियों तक दावत का सिलसिला जारी रखा और जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर एक ऐसी कश्ती बनाई जो तारीख का एक अजीम मौजजा बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हिम्मत, सब्र और अल्लाह पे यकीन की एक अजीम मिसाल है। तो चलें हम शुरू करते हैं आज के एपिसोड जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के गिर्द घूमती हुई।
0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी ईमान की मजबूती, दावत की इस्तकामत और अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मल भरोसे की एक अजीम दास्तान है। आज हम उनकी जिंदगी के पसे मंजर को देखेंगे, उनके अहम वाकयात को तरतीब से जानेंगे और ये सीखेंगे कि उनकी कहानी हमारी आज की जिंदगी से कैसे जुड़ती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबियों में से एक हैं। कुरान पाक में उनका जिक्र मुतादद बार आया है और एक पूरी सूरा यानी सूरह नूह उनके नाम से मंसूब है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले इब्तिदाई अंबिया में से थे। बास रिवायात के मुताबिक वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए। उनकी कौम एक ऐसी कौम थी जो बुत परस्ती और गुमराही में डूबी हुई थी। वो लोग अल्लाह की वहदानियत को भूल चुके थे और बुतों की पूजा करते थे जिनके नाम वद, स्वा, यकूस, याऊक और नसर थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कौम की तरफ रहनुमाई के लिए भेजा। उनका पैगाम वाज़े था, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन उनकी कौम ने उनके पैगाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और वो अपनी गुमराही पे अड़े रहे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को मजाक समझा। अगर हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अहम वाकयात को देखें और उसकी तरतीब को देखें तो हमें ये एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जो सब्र, इस्तकामत और अल्लाह पे यकीन की अजीम मिसाल है। आइए इन वाकयात पे थोड़ी नजर डालते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। कुरान पाक में सूरह नूह में इनके अल्फाज हैं, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया लेकिन मेरी दावत ने उनकी सरकशी को और बढ़ा दिया। उन्होंने अपनी कौम को मुख्तलिफ अंदाज में दावत दी, कभी रात के वक्त छुपकर, कभी दिन के उजाले में खुलेआम, कभी नर्म लहजे में, कभी तंबीह के साथ। लेकिन उनकी कौम ने हर बार उनकी बात को मुस्तरद कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ना सिर्फ उनके पैगाम को कबूल करने से इनकारी थी बल्कि वह उन पर तंज करते, उनका मजाक उड़ाते और उन्हें झूठा कहते। वो कहते कि नूह, तू तो हम जैसा ही एक इंसान है, हम पर तुम्हें कैसी फौकियत हासिल है। सूरह हूद

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स। हजरत नूह अलैहि सलाम की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि एक ऐसी अजीम दास्तान है जो हमें जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फरहम करती है। ये कहानी हमें ईमान की मजबूती, सबर की अजमत और अल्लाह पर कामिल भरोसे की अहमियत सिखाती है। इस कहानी से हम कुछ अहम सबक सीख सकते हैं, तो देखते हैं कि हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह अपना सकते हैं। हजरत नूह अलैहि सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया। सोचें, 950 साल की कोई मामूली मुद्दत नहीं। इस तवील अरसे में उन्होंने हर किस्म की मुश्किलात का सामना किया। कौम की तानाजनी, उनका मजाक, उनकी सरकशी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत ना हारी। ये सबक हमें सिखाता है कि जब हम जिंदगी में मुश्किलात का सामना करें, चाहे वो जाती हो, पेशा वराना हो या माशरती, हमें साबित कदम रहना चाहिए। आज हमारी जिंदगियों में बहुत सी आजमाइशें होती हैं। कभी हमारे ख्वाब पूरे होने में वक्त लगता है, कभी लोग हमारी बात को समझने से इनकार कर देते हैं, या कभी हालात हमें मायूस कर देते हैं। लेकिन हजरत नूह अलैहि सलाम की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि सबर के साथ अगर हम अपने मकसद पे डटे रहें तो अल्लाह जरूर हमारे लिए रास्ता निकालता है। जब आप कोई मुश्किल घड़ी देखें तो एक गहरा सांस लें और अपने आप से कहें, अगर हजरत नूह अलैहि सलाम 950 साल तक सबर कर सकते थे तो मैं भी इस मुश्किल से गुजर सकता हूँ। अपने लिए छोटे छोटे एम्स बनाया करें जो आपको बड़े मकसद की तरफ ले जाएं, और हर मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगे। अपने इर्द गिर्द के लोगों को सबर की अहमियत बताएं, खास तौर पे बच्चों को, ताकि वो भी इस अजीम सिफत को अपनाएं। हजरत नूह अलैहि सलाम ने जब सहरा में कश्ती बनाने का उनको हुक्म मिला तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वो जानते थे कि अल्लाह का वादा सच्चा है। उनकी कौम उनका मजाक उड़ाती रही कि सहरा में कश्ती का क्या फायदा, लेकिन हजरत नूह अलैहि सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह जो कहता है वो होता है। ये सबक हमारी जिंदगियों के लिए बहुत अहम है। हम अक्सर हालात को देखकर परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये काम कैसे होगा या इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन हजरत नूह अलैहि सलाम हमें सिखाते हैं कि जब अल्लाह पर भरोसा हो तो हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। जब आप किसी मुश्किल फैसले का सामना करें तो अल्लाह से दुआ मांगें और उस पर भरोसा रखें कि वो आपके लिए बेहतरीन रास्ता निकालेगा। अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मामलात में भी अल्लाह पर तवक्कुल रखें। मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ अल्लाह पे भरोसे की अहमियत पे बात करें और उन्हें बताएं कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है। हजरत नूह अलैहि सलाम ने अपनी कौम को मुख्तलिफ अंदाज में दावत दी। कभी वो रात के वक्त छुपकर लोगों से बात करते, कभी दिन के उजाले में खुलेआम, कभी नर्म लहजे में, कभी तंबी के साथ। उन्होंने हर तरीका अपनाया कि शायद उनकी कौम हिदायत कबूल कर ले। ये हमें सिखाता है कि अच्छाई की दावत देना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसे हिकमत और मोहब्बत के साथ देना चाहिए। आज हमारे माशरे में भी बहुत से लोग गुमराही का शिकार हैं। कभी वो गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, कभी वो ईमान की अहमियत को भूल जाते हैं। हजरत नूह अलैहि सलाम हमें सिखाते हैं कि हमें उन लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना चाहिए, लेकिन इस अंदाज में कि वो हमारी बात सुने, ना कि हमसे दूर भागे। अपने खानदान, दोस्तों या मोहल्ले के लोगों के साथ अच्छाई की बात करें। मिसाल के तौर पे, अगर आपका कोई दोस्त गैर जरूरी बहस में पड़ता है तो तो उसे सबर और मोहब्बत से समझाएं। सोशल मीडिया पर हमेशा पॉजिटिव पैगाम फैलाएं। कोई कुरानी आयत या हदीस शेयर किया करें जो लोगों को अच्छाई की तरफ रागिब करे। अगर कोई आपकी बात ना माने तो मायूस ना हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह कोशिश जारी रखें, क्योंकि दावत का अजर अल्लाह के यहाँ महफूज है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये यकीन दिलाती है कि अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है। जब अल्लाह ने उनसे कहा कि कसीम तूफान आएगा और कश्ती बनाने का हुक्म दिया, तो वो वादा पूरा हुआ। इसी तरह जब अल्लाह ने उनके मानने वालों को निजात देने का वादा किया, तो वो भी पूरा हुआ। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हमारी जिंदगियों में भी कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही या हमारी मुश्किलात खत्म नहीं हो रही, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि अल्लाह का वक्त और उसका मंसूबा हमेशा बेहतर होता है। हमें बस उस पर यकीन रखना है। जब आप दुआ मांगे तो यकीन रखें कि अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है, चाहे नतीजा फौरन नजर आए या ना आए। अपनी जिंदगी के मुश्किल लम्हात में कुरान पाक पढ़ें, खास तौर पे सूरह नूह या सूरह हूद, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी बयान करती हैं। अपने बच्चों को अल्लाह के वादों की सच्चाई के बारे में बताएं, ताकि वो भी अल्लाह पर भरोसा करना सीखें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआएं मांगी, हत्ता कि जब उन्होंने उनकी बात ना मानी, वो अपनी कौम की हिदायत के लिए फिक्रमंद रहे। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने माशरे के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द के लोग अगर मुश्किल में हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमें बुरा भला ही क्यों ना कहें। आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत से लोग गुर्बत, बीमारी या तन्हाई का शिकार हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमदर्दी के साथ उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। अपने मोहल्ले में किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करें, चाहे वो खाना देने से हो या उनकी बात सुनने से। अपने खानदान के साथ मिलकर किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चंदा जमा करें या किसी दूसरे सोशल वर्क के काम में हिस्सा लें। अगर कोई आपसे नाराज है तो उसके लिए दुआ करें, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर मुश्किल के बाद अल्लाह की रहमत जरूर आती है। जब तूफान थमा तो कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी और अल्लाह ने जमीन को दोबारा आबाद होने का मौका दिया। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के तूफान हमेशा आर्जी होते हैं और अल्लाह की रहमत हमेशा करीब होती है। जब आप मुश्किल से गुजरें तो अपने आप को याद दिलाएं कि ये वक्त गुजर जाएगा और अल्लाह की रहमत आपके लिए नए दरवाजे खोल देगी। अपने दोस्तों या अहले खाना के साथ अपनी जिंदगी के वो लम्हात शेयर करें जब अल्लाह ने आपको मुश्किल से निकाला, ताकि दूसरों का ईमान भी मजबूत हो। हर दिन शुक्र अदा करें, चाहे छोटी छोटी नेमतों पर भी, क्योंकि ये शुक्र हमें अल्लाह की रहमत से जोड़ता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हर दर्मी के बावजूद अपनी दावत जारी रखी। ये इस्तकामत हमें सिखाती है कि हमें अपने अहदाफ पर डट के मुकाबला करना चाहिए, चाहे लोग हमारा मजाक उड़ाएं या हमें नाकाम समझें। अपनी जिंदगी में एक वाज़े मकसद तय करें, चाहे वो तालीम हो, करियर हो या कोई ज़ाती ख्वाब, और इसके लिए मुसलसल कोशिश करें। अगर लोग आपकी कोशिशों को सराहने से इनकार कर दें तो मायूस ना हो, अपने मकसद पर तवज्जो रखें, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किया। अपने बच्चों या स्टूडेंट्स को इस्तकामत की अहमियत सिखाएं और उन्हें बताएं कि कामयाबी के लिए मुसलसल मेहनत जरूरी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और तूफान अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा था। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत लामहदूद है, वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। आज हमारी जिंदगियों में भी अल्लाह के मौजज़ात मौजूद हैं,

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और डिलिशियस और क्रिएटिव एपिसोड। अच्छा, आप कहेंगे ये क्या हो गया भाई। देखिए, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले उन हैबिट्स की जो सिर्फ एनवायरमेंट को सेव नहीं करती बल्कि किचन को भी ज्यादा स्मार्ट और फन बनाती हैं। तो भाई, हम आज बात करने वाले हैं लेफ्ट ओवर फूड से नए डिशेस बनाने की। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे बहुत पसंद है ये चीज। चलिए अब जरा एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, घर में अक्सर ये होता है कि भाई डिनर बनाना है या लंच बनाना है, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या बना लिया, बिरयानी बना ली, रोटी, सब्जी या पास्ता, एक्सरसाइज कुछ भी बना लिया आपने, ठीक है। सबने खा लिया लेकिन थोड़ा सा खाना बच जाता है, कभी कभी होता है, मोस्टली हो जाता है, और फिर फ्रिज में रख दिया जाता है वो बचा हुआ खाना, ये सोच कर कि भाई कल देखेंगे कि इसके साथ करना क्या है, खराब ना हो। लेकिन जब कल फ्रिज खोला जाता है ना, तो वही लेफ्ट ओवर्स या तो इग्नोर हो जाते हैं या फिर वो किसी फ्रिज के कोने में चले जाते हैं और हमें नजर नहीं आते, और फिर एंड में वो वेस्ट हो जाते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होती है फूड वेस्ट की साइलेंट स्टोरी। देखिए, अब थोड़ा सा रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेफ्ट ओवर फूड्स का मतलब ये नहीं कि वो खराब है, अक्सर वो बिल्कुल सेफ और एडिबल होते हैं, बस उसे दोबारा क्रिएटिव तरीके से यूज करने की जरूरत होती है। दुनिया भर में एक बड़ी क्वांटिटी में फूड सिर्फ इसलिए वेस्ट होता है कि भाई उसे नई डिश में कन्वर्ट नहीं किया जाता। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई इसके अंदर इको स्विच सिचुएशन में क्या है, तो सफा आपको

या दे रही है। आइडिया बड़ा सिंपल है, लेफ्ट ओवर फूड को फेंका ना करें बल्कि उसे नए डिश में ट्रांसफॉर्म करें ना, मतलब किचन में क्रिएटिविटी यूज करना और खाने को वेस्ट होने से बचाना। देखिए हम बात करते हैं कि लेफ्ट ओवर फूड को रियूज करने से क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा तो ये है कि फूड वेस्ट रिड्यूस होता है। फूड इज अ ब्लेसिंग, तो उसका वेस्टेज रिड्यूस होना इज अ गुड थिंग। हर रीयूज्ड मील का मतलब है एक प्लेट खाना लैंडफिल में जाने से बच जाता है। दूसरा फायदा ये है कि बजट सेविंग हो जाता है। आप नए इंग्रेडिएंट्स खरीदने के बजाय एग्जिस्टिंग खाना जो आपका होता है उसको रीयूज कर लेते हैं। तीसरा फायदा है टाइम सेविंग। लेफ्ट ओवर फूड से डिशेज जल्दी रेडी हो जाती हैं, स्पेशली बिजी डेज में। अब ये मेरे साथ परसों हुआ था। क्या हुआ था कि भाई सफेद चावल और दाल बनाई थी, दाल तो खत्म हो गई, चावल थोड़े से ज्यादा बन गए। अब वो एक ग्लास चावल जो ज्यादा बन गया था उसका अगले दिन अगली सुबह को मैंने पता है क्या किया, रात को तो वो चावल रख दिए फ्रिज में। सुबह उठकर ऑफिस जब आने लगी, भाई 12 बजे सबको भूख लगती है दोपहर को, तो मैंने कहा ऑफिस के लिए कुछ नया ट्राई करते हैं। तो भाई हमने क्या किया, लेमन राइस बना ली उस व्हाइट चावल की। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वॉज वेरी टेस्टी। तो ये जल्दी बनाने वाली चीज हो जाती है, जल्दी बनने वाली चीज हो जाती है कि मुझे वापस से चावल कुक करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई जस्ट डिड सम सॉटे ऑफ इट विद सम वेजिटेबल्स और वो बन गया लेमन राइस। चौथा फायदा है क्रिएटिव बूस्ट। आप किचन में नए एक्सपेरिमेंट्स और रेसिपीज ट्राई करते हैं। जैसा कि मैंने कहा लेमन राइस बनाए थे, मैंने कभी सुना था लेमन राइस, लेकिन वो लेमन राइस है अब वो है, तो मैंने कभी खाए नहीं थे, बट ट्रस्ट मी इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। अच्छा अगर इसकी एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल दी जाए ना, जरा सोचिए आपके पास रात का लेफ्ट ओवर चावल जैसे मेरे पास थे वैसे आपके पास हैं, अगर आप उसे सिंपली इग्नोर कर देते हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं, चावल जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी चावल को थोड़ा वेजिटेबल एग्स स्पाइसेस वगैरह डालकर या तो फिर आप अपनी मर्जी के वो चाइनीज फ्राइड राइस टाइप कुछ बना लें तो वो भी बहुत जल्दी से बन जाता है। या लेफ्ट ओवर रोटीज जो होती है ना, चपाती जो होती है, उसको छोटे छोटे पीसेज में कट करके उसे रोल या रैप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मजे के बनते हैं। मैं तो अक्सर ये करती हूँ कि अगर कभी कभी मैं तंदूर की रोटी बाहर से लेती हूँ ना, तो मैं उसको थोड़ा सा अगले दिन थोड़ा सा पानी लगाकर थोड़ा सा घी लगाकर फ्राई कर और वो खाती हूँ नाश्ते में। इट इज ऑसम, इट इज वेरी ऑसम। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं करना, उस रोटी को आपने हल्का सा पानी लगाना है और उसके ऊपर मस्त आपने देसी घी लगाना है और उसे आपने गर्म कर लेना है। ओ भाई ऐसी मजे की बनती है ना वो रोटी। तो भाई सेम फूड लेकिन कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होता है। तो भाई दोहा जैसे बिजी लाइफस्टाइल वाली सिटी में लोग अक्सर टाइम सेविंग मील्स प्रेफर करते हैं, इसीलिए लेफ्ट ओवर फूड को रीयूज करना यहाँ और भी प्रैक्टिकल और हेल्पफुल हैबिट बन जाती है। अच्छा भाई अगर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर की जाए तो आपके घर में आप इन्हें इजीली यूज कर सकते हैं। पहली टिप है प्रॉपर स्टोरेज करें लेफ्ट ओवर फूड को। जो लेफ्ट ओवर खाना है आपका उसको हमेशा कवर्ड और फ्रिज सेफ कंटेनर में रखें, लेबल प्रैक्टिस करें। भाई देखिए फ्रिज में रखे हुए जो खाने होते हैं उन पर डेट किसी तरह से आप लिख दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्रिएटिव थिंकिंग अडॉप्ट करें, हर लेफ्ट ओवर को नई डिश इंग्रेडिएंट्स मतलब न्यू डिश इंग्रेडिएंट्स की नजर से देखने की कोशिश करें। और चौथी बात यह है कि मिक्स एंड मैच करें ना, राइस वेजिटेबल्स ब्रेड ये चीजें नई नई डिशेज में कंबाइन करने की कोशिश करें, बहुत बहुत क्रिएटिव बनती हैं इनसे चीजें। और भाई सेफ ड्यूरेशन फॉलो करें, यानी कि लेफ्ट ओवर जो खाना होता है उसको लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर कंज्यूम करें ताकि फ्रेशनेस मेंटेन रहे। तो भाई इसी के साथ अगर हम किसी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो कई प्रोफेशनल शेफ्स भी ना, आप माने ना माने मैं आपको बता रही हूँ, कई प्रोफेशनल शेफ्स भी लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट्स को यूज करके नई डिशेस बनाते हैं। यानी किचन वेस्ट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना एक प्रोफेशनल स्किल भी है। अच्छा आपने अपनी फेवरेट डिश, मेरी भी फेवरेट है बटर चिकन की स्टोरी सुनी है आपने कभी? नहीं सुनी? अभी वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन बटर चिकन की कभी आप जाकर स्टोरी चेक कीजिएगा कि बटर चिकन एग्जिस्टेंस में कैसे आया था। तो भाई बटर चिकन भी इसी चीज की एक मिसाल है प्रॉपर। अब एक रिलेटेबल बात ये कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि कल का खाना बोरिंग होगा, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन और स्टाइल चेंज कर दिया जाए ना तो वही फूड एक नई डिश बन जाती है जो इक्वली एंजॉयबल होती है। एंड भाई इसके अंदर मेरी अम्मी बड़ी एक्सपर्ट है। हमारे घर में जो एक तहलका मचा हुआ होता है ना कि भाई ये खाना मैंने कल वाला खाना नहीं खाना, कल जो बनाया था आपने वो नहीं खाऊंगा, हमारी अम्मी ऐसे प्रेजेंटेबल करके देती हैं कि भाई मजाले कोई पता लगा ले कि कल का खाना है। तो हैट्स ऑफ टू मदर्स। भाई अब थोड़ा सा बिहेवियर चेंज की

0: कोशिश तो करो बाबू, कोशिश तो करो। और अगर आप ऑलरेडी ये हैबिट फॉलो करते हैं ना, तो किसी और को भी तो इंस्पायर करो ना। तो भाई किचन में क्रिएटिविटी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होती, बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए भी होती है। जब हम लेफ्ट ओवर फूड को रिसोर्स रीयूज करते हैं ना उसको एज अ रिसोर्स, तो हम सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो भाई मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें एफएम 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107 दिल से।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे किसी को खाना खिलाने की फजीलत के बारे में। किसी भूखे को खाना खिलाना इस्लाम में बहुत बड़ी नेकी है। ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि इंसानियत का सबसे खूबसूरत इजहार है। सोचिए, अगर आप भूखे हों और कोई आपको खाना दे तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। इसी तरह जब आप किसी दूसरे को खाना खिलाते हैं तो उसका दिल खुश होता है और अल्लाह भी आपसे राजी होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस अमल को बहुत पसंद फरमाया और हमें सिखाया कि लोगों के साथ खाना शेयर करें। आज का अमल ये है कि किसी ज़रूरतमंद को खाना दें या किसी के साथ अपनी मील शेयर करें। ये छोटा सा अमल आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बरकत ला सकता है। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बरकत FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
3: नूर अला नूरी यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
4: इंसानों के मसले मसाइल और रोजमर्रा के मामलात पर रोशनी के लिए सुनते रहिए नूरे इस्लाम।
5: हर जुमा शाम 4 बजे ओनली ऑन

0: FM 107 दिल से देसी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
4: वन स्टेप टू 2030।
5: वेलकम टू आवर सेगमेंट कॉल वन स्टेप टू 2030। मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
4: वन स्टेप टू 2030।
5: आज मैं बात करने वाली हूँ एक और नए टर्म पर और ये है टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स। वेल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ग्रोथ करना लेकिन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए। यानी ग्रो करो लेकिन आपकी ग्रोथ की वजह से एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कतर का नेशनल विजन 2030 एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने पर बहुत ज्यादा जोर देता है। आज के टाइम में इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस एनवायरमेंट पर बहुत असर डालते हैं, जैसे पोल्यूशन है, एनर्जी है, यूज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इन सारी चीजों को अब समझना गहराई से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसे में एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट में और वो टर्म है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना आज के टाइम में चॉइस नहीं, इट हैज बिकम मैंडेटरी। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जरूरी हो गई हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज सेफ रहें। वहीं पर एक और वर्ड है ग्रीन इनिशिएटिव्स। ये क्या है? देखिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स में रिन्यूएबल एनर्जी, रीसाइक्लिंग और एनर्जी यानी इफिशिएंट सिस्टम्स शामिल हैं। जब कंपनीज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं तो वो सिर्फ प्लैनेट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती बल्कि अपनी सस्टेनेबिलिटी भी इम्प्रूव कर रही होती है। कतर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और एनवायरमेंटल पॉलिसीज के जरिए सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है। इससे ग्लोबल लेवल पर भी कंट्री की इमेज स्ट्रॉन्ग बन रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सस्टेनेबिलिटी अब चॉइस नहीं है, जरूरत बन चुकी है। जो कंट्रीज और जो बिजनेसेस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं यानी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म विजन से बाहर है। तो कतर का नेशनल विजन 2030 कहीं ना कहीं ग्रीन इनिशिएटिव्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर जोर देता है। कतर का विजन 2030 की ये अप्रोच जो है वो रिस्पॉन्सिबल और फॉरवर्ड थिंकिंग का एक खूबसूरत नतीजा भी है, जो कहीं ना कहीं इस बात पर जोर देता है कि हमें इन रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करना है, सेव करना है। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज मैं इस टर्म को आपके साथ शेयर करके कुछ हद तक थोड़ा बहुत समझाने में कामयाब रही हूँ। मुझे बताइएगा जरूर कि क्या वाकई आप मेरे इन सेगमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, क्या किसी तरह से कोई आपको इससे फायदा मिल रहा है। इफ यस, टू लेट मी नो ऑन द नंबर 666-22107। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि कोई और ऐसी टर्म या टर्मिनोलॉजी है जिसे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ, तो मैं भी पढ़ूंगी, आपको भी थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगी। बट फिलहाल के लिए यहाँ से जाऊंगी, मेरा मतलब है इजाजत लूंगी। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
4: One step to 2030।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
4: FM 107
6: दिल से देसी।
2: दोस्तों, ट्रैफिक साइन का ख्याल करने से सड़क की हिफाजत बढ़ती है और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

0: ट्रैफिक साइंस को समझना और उन पर अमल करना सड़क पर सफर को ज्यादा सिक्योर और आसान बना देता है। ये साइंस हमें स्पीड, रास्ता और खतरे के बारे में आगाही देते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अगर हम इन निशानियों का एहतमाम करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम अपनी मंजिल पर आसानी से और कम वक्त में पहुंच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ट्रैफिक साइंस का इस्तेमाल करना ना सिर्फ हमारे सफर को आसान बनाता है बल्कि ये हमारी जिंदगी की हिफाजत भी करता है। हर साइन का अपना एक मकसद होता है, जैसे कि स्पीड लिमिट, नो एंट्री या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो हमें सड़क पर हो रही हर हालात के लिए तैयार रखती है। अगर हम इन साइंस को ध्यान से देखें और इनके मुताबिक चलें, तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खतरा कम कर सकते हैं। ये सफर को ना सिर्फ आसान बल्कि ज्यादा अमन और मुश्किलात से बचाने वाला बना देता है। हर एक ट्रैफिक साइन का अपना अहम रोल है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: जानते हैं कि जिंदगी में हम सब मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हैं और अच्छे और बुरे वक्त दोनों से हमारा वास्ता पड़ता है। वक्त के समझाने का अंदाज उमूमन सख्त और तकलीफ दे होता है, मगर इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त की समझाई हुई बात हतमी होती है, जो पूरी जिंदगी के लिए काफी होती है। अच्छा वक्त तो अच्छी तरह से गुजर जाता है, लेकिन बुरे वक्त में भी एक अच्छाई जरूर होती है, क्योंकि जैसे ही बुरा वक्त आता है मतलबी और फालतू लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में रहते हुए मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है, जिसके नतीजे में कोई तो संवर जाता है तो कोई बिखर जाता है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हर किसी को बुरे वक्त से महफूज रखे।
1: पैगाम ऑन FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। कतर में आकर एक्सपेक्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है। सुनिएगा जरूर इकोनॉमिक लेंस, इकोनॉमिक लेंस हर सैटरडे 1:30 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। सिर्फ
1: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो चाहे आप बाजार जा रहे हों, बिल पे कर रहे हों, या अपनी फैमिली के लिए मंथली खरीदारी कर रहे हों, भाई आज के दौर में ये चीज हर जगह आपको महसूस होती है, और वो क्या है? वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। भाई महंगाई एक ऐसा लफ्ज है जो हर इंसान के दिल में हल्का सा डर पैदा कर देता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो चीज कल 10 रुपए की थी वो आज 12 की हो गई और कल शायद 15 की हो जाए। ये सिलसिला चलती हुई जिंदगी का एक हिस्सा तो है, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा आम आदमी की ही जेब पे पड़ता है।
0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: आपने देखा होगा दोस्तों, बाजार में एक छोटी सी सब्जी या फल के भाव बढ़ने से पूरे घर के खर्चे उलट जाते हैं। स्कूल की फीस, पेट्रोल की कीमत, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, हत्ता के एक कप चाय की प्राइस भी बढ़ जाती है, और फिर हम सब कहते हैं अरे भाई महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो चलिए आइए आज इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये इन्फ्लेशन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी बात हम अपनी जिंदगी में इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। आज का हमारा पूरा प्रोग्राम इसी पे फोकस्ड है। मैं आपको सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि सिंपल जिंदगी से जुड़े मसाइल भी बताऊंगा। हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में फर्क क्या है, और ये किस तरह से बाजार और घर दोनों पर असर डालता है। साथ ही हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जब आप अपना मंथली बजट प्लान करते हैं। दोस्तों प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस, मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर अ हैप्पी लिविंग। और दोस्तों इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत है। हैंडल हमारा इसी नाम से है FM 107। दोस्तों कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपने एपिसोड में डिस्कस करेंगे, तो चलिए एक छोटी

सबसे पहले ये जानिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI क्या है। भाई ये बताता है कि रोजमर्रा की चीजों, खाना, कपड़े, सर्विस की कीमतों में कितनी तब्दीली आई है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है। दूसरे नंबर पर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी PPI, ये मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स के लेवल पर प्राइस की तब्दीली को मेजर करता है। इससे फ्यूचर महंगाई का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है। नंबर 3 पे है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI। ये चीजों की कीमतों को होलसेल लेवल पर ट्रैक करता है। रिटेल प्राइसेस का आगाज अक्सर यहीं से होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो क्या होता है। इन्फ्लेशन बेसिकली एक रेट है जिससे चीजों की कीमत हर साल बढ़ जाती है। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो इसका मतलब ये है कि जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल 106 की हो जाएगी। मतलब जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपको इन्फ्लेशन को बीट करना होता है। अगर आपका पैसा इस रेट से ग्रो नहीं कर रहा तो असल में आपका पैसा कमजोर हो रहा है। भाई मान लीजिए आपके पास 500 रियाल हैं और आज आप उसमें एक ग्रोसरी फुल ऑफ बास्केट ले सकते हैं, लेकिन एक साल बाद वही बास्केट अगर 550 की हो गई तो ऑब्वियसली आपके 500 रियाल से अब वो नहीं आएगी। मतलब पैसा उतना ही है पर उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई। यही इन्फ्लेशन का असल इम्पैक्ट है। पैसा वैल्यू लूज करता है और जिंदगी महंगी होती जाती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कीजिए आप अपना पैसा एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देते हैं। वहां आपको 5% रिटर्न मिलता है और आप सोचते हैं कि आपको बिना रिस्क के हर साल 5% का रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आप 100 रियाल डालते हैं तो अगले साल वो 105 हो जाएगा। लेकिन असल मसला ये है कि वो 100 रियाल की चीज जो पहले मिल रही थी अगले साल 106 की हो जाएगी। तो यहाँ पैसा बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी हैसियत घट गई है। यानी असल में आप 1% घाटे में चले गए। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला नंबर आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। भाई जब डिमांड ज्यादा हो जाती है लेकिन सप्लाई उतनी फास्ट नहीं बढ़ पाती तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर लोगों की इनकम अचानक बढ़ गई और सब नए मोबाइल फोन खरीदने के लिए निकल गए लेकिन मार्केट में उतने फोन अवेलेबल ही नहीं है तो नेचुरली उनकी कीमत बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पे है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पर रॉ मटेरियल महंगा हो गया, भाई पेट्रोल के दाम बढ़

गए या मजदूर की सैलरी ज्यादा देनी पड़ी तो कंपनीज अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देती हैं। और वहीं तीसरे नंबर पर है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये एक साइकिल होती है, जब लोग देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो वो अपनी सैलरी और ज्यादा मांगते हैं, और जब सैलरी बढ़ जाती है तो कंपनीज प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देती हैं और फिर चीजें और महंगी हो जाती हैं, मतलब एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये तीन मेजर तरीके होते हैं इनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इन्फ्लेशन मेजर करने का क्या तरीका होता है। इन्फ्लेशन को समझने के लिए हम फिर एक बास्केट ऑफ गुड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब सरकार एक लिस्ट बनाती है, जैसे चावल, दाल, दूध, तेल, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह, जो आम इंसान की डेली लाइफ का हिस्सा है। फिर देखा जाता है कि इस बास्केट की टोटल प्राइस लिस्ट पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी है। अगर बास्केट 1000 रियाल की थी और अब 1070 की हो गई, मिसाल के तौर पे, तो मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन 7% है। इसको कैलकुलेट करने के लिए CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज होता है। CPI बताता है आम कंज्यूमर के लिए प्राइस कितनी बढ़ी है और WPI बताता है होलसेल लेवल पे कितना बदलाव आया है। अब यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मसलन अगर इन्फ्लेशन 6% है तो इसका मतलब ये है कि आपके पैसों की वैल्यू हर साल 6% घट रही है। मतलब आपके 100 रुपए की ताकत एक साल बाद सिर्फ 94 रुपए के बराबर रह जाती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे वो कौन से इम्पैक्ट्स हैं इन्फ्लेशन के जो हमारी जिंदगी को मुतासिर करते हैं। भाई सबसे पहला इफेक्ट होता है सेविंग्स पर। अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में रख रहे हैं और इंटरेस्ट रेट 4% है लेकिन इन्फ्लेशन 7% है तो आप असल में 3% लॉस में हैं। मतलब पैसा तो बैंक में बढ़ रहा है लेकिन उसकी खरीदने की ताकत कम हो रही है। दूसरा असर होता है लोन्स पर। अगर आपने लोन लिया और इन्फ्लेशन हाई है तो आपके लिए लोन चुकाना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है क्योंकि आप फ्यूचर में जो पैसा देंगे उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन ये बैंक्स के लिए नेगेटिव होता है। तीसरा इम्पैक्ट होता है डेली लाइफस्टाइल पर। भाई जब पेट्रोल, दूध, सब्जी, एजुकेशन और हेल्थ केयर सब महंगा हो जाता है तो आम आदमी की सैलरी उसके खर्च के साथ मैच नहीं करती और रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन। तो इसीलिए सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है ताकि इकॉनमी स्टेबल रहे। तो दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि आखिर इन्फ्लेशन होता क्यों है। सबसे बड़ी वजह है मनी सप्लाई का बढ़ना। जब मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाता है लेकिन गुड और सर्विसेज उतनी फास्ट नहीं बढ़ती तो नेचुरली चीजों की कीमत बढ़ जाती है। भाई मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई मुल्क की सरकार ने अचानक बहुत सारा पैसा छाप दिया और लोगों के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या होगा, सब के पास ज्यादा पैसा है, सब ज्यादा खरीदारी करने निकलेंगे, इससे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी नहीं होगी और आखिरकार प्राइस शूट अप कर जाएंगी। दूसरी वजह होती है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। अगर कोई रॉ मटेरियल जो हम बाहर से लेते हैं, दूसरे ममालिक से लेते हैं, उनकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाए तो उसका डायरेक्ट असर हमारे मुल्क में भी होता है। और तीसरी वजह होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज। मसलन अगर टैक्सेस ज्यादा हो गए या सब्सिडीज कम हो गई तो भी चीजों की प्राइस बढ़ जाती है। तो मतलब ये है दोस्तों कि इन्फ्लेशन एक सिंपल चीज नहीं, ये अलग अलग फैक्टर्स का कंबाइंड रिजल्ट है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। सबसे पहला टूल होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है ताकि लोग कम लोन लें और कम खर्च करें। जब डिमांड्स कम होती हैं तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आने लगती हैं। दूसरा टूल होता है फिस्कल पॉलिसी। मतलब सरकार अपने खर्चे और टैक्सेस एडजस्ट करती है। अगर गवर्नमेंट खर्च कम करे या टैक्सेस ज्यादा लगा दे तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा और डिमांड कम हो जाएगी।
और इसी के चलते इन्फ्लेशन स्लो हो जाता है। तीसरा तरीका होता है सप्लाई बढ़ाना। अगर एसेंशियल चीजें जैसे अनाज, दूध, सब्जी, फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइसेस स्टेबल हो जाती हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक डेलिकेट बैलेंस है। अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना दी तो ग्रोथ स्लो हो जाती है, और अगर पॉलिसी लूज नहीं तो इन्फ्लेशन रन अवे हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। आइए दोस्तों अब ये जानते हैं कि आम आदमी इन्फ्लेशन से कैसे बच सकता है। भाई सबसे पहला रूल है सिर्फ सेविंग नहीं इन्वेस्ट भी करिए। अगर आप पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं जहां 5-6% रिटर्न मिलता है लेकिन इन्फ्लेशन 7% है तो आप लॉस में हैं। इन्वेस्टमेंट्स जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देते हैं, मतलब आपके पैसों की वैल्यू सिक्योर रहती है। दूसरा रूल, अपने खर्च को स्मार्टली प्लान करिए। हर साल अपना बजट रिवाइज करिए और देखते रहिए कि महंगाई के हिसाब से आपकी इनकम और एक्सपेंसेस बैलेंस हो रहे हैं या नहीं। और तीसरा रूल, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए, यानी सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड मत रहिए। साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग या पैसिव इनकम सोर्स बना के आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। तो खातिनो हजरात ये याद रखिए कि इन्फ्लेशन से बचने का बेस्ट तरीका ये है कि आपके पैसों का ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से हमेशा ज्यादा हो। आइए सामीन प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में नजर डालते हैं वर्ल्ड वॉच पे, और उसमें एक अहम बात कि सरकार के ज्यादा नोट छापने से पैसे की कीमत गिर जाती है और ये एक बहुत ही खतरनाक वजह है। ये चीज हाइपर इन्फ्लेशन भी ला सकती है जो कि आजकल वेनेजुएला में हो रहा है और 2008 में जिम्बाब्वे में भी हुआ था। अगर किसी मुल्क का इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 10% तक भी पहुंच जाए तो लोग कहने लगते हैं कि चीजें बहुत तेज महंगी हो रही हैं। लेकिन वहीं वेनेजुएला में 2016 से 2019 तक इन्फ्लेशन रेट 5% से भी ज्यादा था। वहीं जिम्बाब्वे की मिसाल लेते हैं, 2008 के करीब जिम्बाब्वे की करेंसी इतनी तेज गिर रही थी कि सरकार ने $1 मिलियन और $1 बिलियन के नोट छापना शुरू कर दिए और वहीं $1 ट्रिलियन का नोट भी मौजूद था। और क्या आप जानते हैं कि उस $1 ट्रिलियन नोट की असल कीमत क्या थी? भाई सिर्फ $1। ये है वो हद जहां हाइपर इन्फ्लेशन की सूरत में पैसा अपनी कीमत खो देता है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन को इग्नोर करना एक बड़ी गलती है। अगर आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इसे अकाउंट नहीं किया तो आपको लगता रहेगा कि आपके पास सेविंग है लेकिन असल में उनकी वैल्यू घट रही होगी। इसीलिए अपने गोल्स जैसे घर खरीदना, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट वगैरह सब

कैलकुलेट करते वक्त इन्फ्लेशन को जरूर इंक्लूड करा कीजिए। भाई आज 10 लाख का जो गोल लगता है 15-20 साल बाद वो 30 से 40 लाख भी हो सकता है, तो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से ही ये होता है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप बेटर प्लानिंग कर पाएंगे और फ्यूचर में शॉर्टेज का स्ट्रेस नहीं होगा। तो दोस्तों याद रखिए, इन्फ्लेशन पैसों की वैल्यू खत्म करता है। सिर्फ सेविंग्स पर ही भरोसा मत कीजिए, हमेशा इन्वेस्टमेंट भी कीजिए और आखिर अपने फाइनेंशियल गोल्स को इन्फ्लेशन एडजस्टेड सोच कर ही प्लान करिए। मैं हूं सरवर मिर्जा, साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी के साथ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए। सुनते रहिए FM 107।

0: जी सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी, दिल से देसी।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: हेलो ऑल मूवी बफ्स, अटेंशन, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और मैं हूँ आपकी अमिता, आपकी अपनी फिल्मी गाइड, जहाँ मैं आपको लेकर चलूंगी हर हफ्ते सिनेमा की दुनिया के एक रोमांचक सफर में। नई रिलीज का जलवा हो या पुरानी फिल्मों का जादू, हम देंगे आपको हर फिल्म का पूरा रिव्यू, फिर चाहे वो लेटेस्ट रिलीज हो या मैजिक हो क्लासिक्स का।
1: अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी फरमीता, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन द शो रिव्यू ऑफ द वीक।
0: हेलो ऑल मूवी बफ्स, अटेंशन।
1: तो जनाब, आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में, एक ऐसी मूवी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं कि जिसे जब मैं देखने के लिए गई तो दिल बड़ा भारी हो गया, है ना, और उसके बाद मतलब थोड़ी सी आंखें नम हो गईं पर एक सुकून भी मिला। इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा सिर्फ एक मूवी नहीं है, मुझे लगता है कि एक एहसास है, एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है जो आपको किसी खास की याद दिला

0: मैंने देखा कि थिएटर में जो आखिरी 30 मिनट थे ना, वो शायद थोड़े से ऐसे थे कि हर किसी की आंखें ना डेफिनेटली नम हो गई थी. और ये माइंडलेस एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, मतलब लिटरली ये फिल्म बहुत ब्यूटीफुल फिल्म है. ये कैसी खामोशी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ चलती है, खास तौर से उन फैमिलीज के लिए, उन परिवारों के लिए जिन्होंने पार्टीशन को फील किया, पार्टीशन का दर्द महसूस किया है. ये फिल्म एक जेनरेशनल नॉस्टैल्जिया है और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है या देखने जाने की सोच रहे हैं, उन्हें जरूर पसंद आएगी.
1: वो मेरे एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे, पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोधा जाना. और आप सबको पता है कि सरगोधा तो है
2: मॉडर्न के उस साइड.
0: वेल, इस फिल्म की रेटिंग्स को लेकर काफी डिस्कशंस चल रहे हैं कि भाई ये फिल्म, मतलब इम्तियाज अली ने वही स्टोरी को अलग अंदाज में पेश किया या इम्तियाज अली को कुछ नया करना चाहिए. देखो, जो क्रिटिक्स हैं ना, जो कि बड़े ही नामी फिल्मी क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि इस फिल्म को वो 3.5 स्टार्स तक दे देंगे क्योंकि पेसिंग थोड़ी स्लो है. और वहीं जो इम्तियाज अली फैंस हैं, उफ, वो तो इसे 5 स्टार देने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उन्हें ये फिल्म क्लासिक लगेगी. वेल, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया, दैट वाज नसीरुद्दीन शाह साहब की एक्टिंग. इट वाज अ मास्टर क्लास एक्टिंग. मतलब बिना बोले अपनी आंखों से इतना दर्द बयां कर देना, उफ, अनबिलीवेबल. मुझे लगता है कि वो यही कर सकते थे.
3: कहाँ है मैच?
4: चांद पे
3: मैच है. अच्छा, मून पे है, ठीक
4: है.
3: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे.
0: वेल, आगे बढ़ने से पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा. और वो सवाल आपसे ये है कि क्या आपने कभी कोई ऐसा

0: कैसे उस प्रॉमिस को, कैसे उस वादे को पूरा किया जाए। डेफिनेटली आप इस फीलिंग को, इस सवाल के जवाब को मुझसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ, और बताइए मुझे कि क्या आपने कभी कोई ऐसा वादा किया जिसने आपको सालों बाद भी सोने नहीं दिया। ठीक है, मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगी।
1: जो सर पर रह गया भूल जाओ उसे, चलो वापस।
2: आपके पैर पर तो जा रहे थे,
1: मैं जाऊंगा।

अब आते हैं इस फिल्म की स्टोरी पर. तो जनाब, सरहदों का बंटवारा और उससे जुड़ा जो ये दुख है, ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है. हिंदी और पंजाबी सिनेमा में कई

0: ये फिल्म सिर्फ पार्टीशन की बात नहीं करती, ये उस इंसानियत की बात करती है जो सियासी मुद्दों से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस फिल्म में एक ऐसी तहजीब है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सरहदें वाकई दिलों को बांट सकती हैं।
1: शहर है, लोग हैं, भीड़ है, काम है।
0: कहानी का मेन कैरेक्टर है ईशर सिंह गरेवाल।
2: कहाँ है मैच?
3: चांद पे
2: मैच है। अच्छा मून पे है, ठीक है।
0: जिन्हें लेजेंडरी नसीरुद्दीन शाह साहब ने निभाया है। भाईशर सिंह अब 90 प्लस है और उन्हें एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी कि वो अपना आज भूल जाते हैं, आज की बातों को भूल जाते हैं, लोगों को नहीं पहचानते। लेकिन अक्सर ऐसे मरीजों के साथ एक अजीब बात होती है, उन्हें अपना पास्ट एकदम शीशे की तरह साफ याद होता है। ईशर सिंह की आंखों में आज भी 1947 से पहले का वो सरगोदा बसा हुआ है जो कि अब पाकिस्तान में है। उनकी यादें उनके लिए एक सेंचुरी है, एक सुकून की जगह है और इसी याददाश्त के पीछे छुपी है एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। उन्हें याद है वो कीनू जिसे वेदांग रैना ने बड़ी और बेहद मासूमियत से निभाया है। तो कीनू जो एक सिख परिवार से होते हैं और जिया एक मुस्लिम परिवार से होती हैं, इनका इश्क इंस्पायर्ड बाय पोएट्री था।
4: शायर की जुबानी अच्छी लगती है।
0: कीनू ने अपनी पहली मोहब्बत से एक वादा किया था, वादा कि चाहे कुछ हो जाए वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा।

भूलेंगे। जैसे जिया का हर मुलाकात पर कीनू को कहना कि अब जाओ, नाउ लीव, यस, एक प्यारी सी जिद, एक मीठा एहसास।

0: चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन जनाब जब वो बॉर्डर पोस्ट पहुंचते हैं और वहां की अथॉरिटीज उन्हें रोक कर समझाती है कि भाई 1947 के बाद से अब तो अलग मुल्क हो चुके हैं, वो मंजर दिल को तोड़ देने वाला होता है। नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग कमाल है, वहां वो कोलैप्स हो जाते हैं, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि रूह से भी। उन्हें एहसास होता है कि वो वादा जो उन्होंने 70 साल पहले किया था वो आज भी उनके सीने में एक बोझ बनकर बैठा है। अब इस बीच एंट्री होती है उनके पोते निर्वैर की, जिसका किरदार निभाया है दिलजीत दोसांझ ने। अब दिलजीत जो है उस फिल्म में एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं जो अमेरिका में अपनी तीसरी नौकरी भी डिससैटिस्फैक्शन की वजह से छोड़ चुके हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उसके दादा की हालत नाजुक है तो वो इंडिया भाग कर चले आते हैं। अब यहाँ पर निर्वैर उनके दादा से बातें करते हैं। निर्वैर को धीरे धीरे एहसास होता है कि उनके जो दादा हैं एक अनफिनिश्ड मिशन पर हैं, और वो मिशन है सरगोधा।
1: लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हैं हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
2: समझ में कैसे आएंगी? ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी।
3: वो नहीं।
4: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78

यादों की परत दर परत खोलने लगते हैं। हाँ, फिल्म का आखिरी हिस्सा बेहद बेहद सोलफुल है। इम्तियाज अली साहब ने यह एक बहुत ही आर्टिस्टिक चॉइस ली है। उन्होंने एक ओपन एंड दिखाया है। यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह को गुजरते हुए नहीं दिखाया गया, बल्कि उनके तसव्वुर में, उनके इमेजिनेशन में उनकी वही जिया नजर आती है जो उन्हें वही पुराने इशारे से कहती है, अब जाओ। ये जस्ट

उन्हें क्लोजर मिल गया है. तो जनाब ये है मैं वापस आऊंगा फिल्म की कहानी. बेहद संजीदा, बेहद खूबसूरत. अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो मैं कहूंगी एक इमोशनल एक्सपीरियंस को आपने मिस किया है. सो डिसाइड एंड गो एंड वॉच. ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं. इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातें हैं जिसका जिक्र करना तो बनता ही है कि नहीं. तो अब बात करेंगे इस फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में. सो इम्तियाज अली और मयानिका महतानी ने मिलकर ये स्क्रिप्ट लिखी है. उसमें एक अलग ही नजाकत फील होती है. इस स्क्रिप्ट में ब्रिटिशर्स ने जो पार्टीशन की

खूबसूरती से दिखाया गया है कि सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, उनके गले में एक दर्द का एहसास होगा. और जनाब, ये स्क्रिप्ट सिर्फ रोने धोने वाली नहीं है,

फिल्म के जरिए दिखाया गया है। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही इतनी प्यारी है, वो सीन याद कीजिए अगर आपने ये फिल्म देखी है, और नहीं देखी तो मैं इसका जिक्र कर रही हूँ। वो सीन है जब नसीरुद्दीन शाह टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि न्यूज रीडर उन्हीं से बात कर रही है। वहां से ये जो कनेक्शन बनता है ना, वो फिल्म के आखिर तक चलता रहता है। अब बात करते हैं परिवार की। अक्सर पार्टीशन मूवीज में सिर्फ कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो अनबेरेबल होती हैं।

एक्टर्स में आता है। रजत कपूर ने एक सिनिकल सन का रोल निभाया है और अंजना सुखानी ने एक ऐसी बहू का जो हमेशा पैसे के बारे में ही सोचती रहती है। शुरू में उन्हें अपने दादा की बातें बड़ी फिजूल लगती हैं, पर जैसे जैसे निर्वैर सच की तलाश में निकलता है, ये दोनों भी धीरे धीरे उनके मिशन में जुड़ जाते हैं। स्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा और क्लियर मैसेज है, फैमिलीज मस्ट रिमेन फैमिलीज। मुश्किल वक्त में सिर्फ

वही इम्तियाज अली का मैजिक है। स्क्रिप्ट में इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि अगर मैं उन्हें बताने बैठूंगी तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, हर एक छोटा सा डायलॉग एक पुरानी तस्वीर के पीछे की कहानी है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने बहुत सी ट्रैजिक लव स्टोरीज देखी हैं, ऐसी कहानियाँ जहाँ पर प्यार अधूरा रह जाता है, अक्सर आपको दुखी कर देती है। हाँ, लेकिन ये एक ऐसी अनोखी दास्तान है जो भले ही रुलाती है, थोड़ा सा आपको सैड फील कराती है, पर जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं ना तो आपके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट भी होती है, एक ऐसी स्माइल जो कहती

0: लिखी गई है। वैसे कहीं आप भूले तो नहीं है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था बिल्कुल शो की शुरुआत में कि ऐसा कोई वादा है जो आपने कई सालों पहले किसी को किया और आज भी उस वादे को पूरा करने की जो बात है वो आपको चैन से सोने नहीं देती, क्योंकि समहाउ उसे आप पूरा नहीं कर पाए। तो ज़रूर शेयर करें 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने नाम के साथ, और उसे हम अपने शो पर ज़रूर शामिल करेंगे। आगे हम इस फिल्म के डायरेक्शन और म्यूजिक पर भी बात करेंगे, तो स्टे ट्यून विद अस।
1: हेलो ऑल मूवी बफ्स, अटेंशन, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूँ आपकी अमिता, आपकी अपनी फिल्मी गाइड, फिल्मी गाइड, जहाँ मैं आपको लेकर चलूंगी हर हफ्ते सिनेमा की दुनिया के एक रोमांचक सफर में।
0: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता, रिव्यू ऑफ द वीक आज बड़ी कमाल की फिल्म पर हम कर रहे हैं, एंड द फिल्म नेम इज मैं वापस

well, इस फिल्म के डायरेक्शन और म्यूजिक के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके मैसेजेस की तरफ जरा रुख कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे एक सवाल पूछा है और वो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वादा है जो आपको सालों साल बाद भी सोने नहीं देता? जो वादा आपने शायद किसी से किया, आप उसे पूरा करने की कोशिश आज भी कर रहे हैं या फिर वो अधूरा रह गया? तो हमें यहाँ समीर का मैसेज आता है, कहते हैं कि अमिता, ये जो फिल्म है मैं वापस आऊँगा, इसकी कहानी बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह है और मेरी शादी, मेरा निकाह जोया से होने वाला था और उस वक्त मैंने उनसे ये वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, लेकिन 10 साल हो गए और हमारी शादी नहीं हो पाई, मेरी शादी किसी और से हो गई। और वो वादा मैं कहूँ तो आज भी मुझे सोना

होता है वही होता है, लेकिन इस वादे का बोझ अपने ऊपर ना लेकर चले, ठीक है? वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है, इसका जरूर ख्याल रखें, ओके? और यहाँ पर मुझे अर्श का मैसेज है, वो कहते हैं कि अमिता मैंने अपनी अम्मी को एक वादा किया था कि मैं एक बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, जब मैं स्कूल में था तब मैंने कहा था, एंड डेफिनेटली मैंने बहुत मेहनत की, मैं बहुत सक्सेसफुल रहा एंड आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। और जाहिर सी बात है कि मैंने ये वादा तो पूरा किया, लेकिन इस वादे को

कोई भी बयां नहीं कर सकता. सो यस, हैट्स ऑफ टू यू टू. और आप भी अपने दिल को भारी ना करें. अच्छा, ये मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया और जिसके लिए मैं ज़रूर अपनी राय भी दूंगी. तो फरहान का मैसेज है कि उनका एक बेस्ट फ्रेंड था अनवर. ओके, बेस्ट फ्रेंड था अनवर. ओके, और कहते हैं कि मैंने उसको कहा था कि भाई लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, मुश्किल से मुश्किल घड़ी आए, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, मैं कभी भी तुझसे जुदा नहीं होऊंगा. लेकिन एक गलत फहमी की वजह से आज हम दोनों अलग हो गए. फरहान को आज भी अपने दोस्त अनवर की बड़ी याद आती है. देखो फरहान, मैं कहती हूँ ना, ये जो दोस्ती वाली चीज़ होती है ना, ये कभी पुरानी नहीं होती, ये कभी, वो कहते हैं ना, आउट ऑफ पिक्चर नहीं होती. हाँ, अब बस एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, छोटा सा स्टेप है. आप कॉल कर लीजिए ना, बस बात करिए कि मुझे मिलना है तुमसे. एक बार आप अनवर से बात करेंगे तो आई एम वेरी सर्टेन फरहान, ये गलतफहमी दूर हो जाएगी और ये जो सीने में चुभन है ये भी कम हो जाएगी. अब यहाँ पर ये जो एक मैसेज है ये थोड़ा सा फनी है, बट इसमें भी एक बात है. तो मेहर कहती हैं कि अमिता, मैंने अपनी बहन को एक वादा किया था कि मैं तुम्हारा राज हमेशा अपने दिल में छुपा के रखूँगी. आज वही जो राज है मेरे सीने में ना एक बोझ बन गया है और मुझे चैन से जीने नहीं देता. देखो मेहर, सीक्रेट्स ऐसे ही होते हैं और तभी तो सीक्रेट्स को अपने दिल में कैद करके रखना बड़ा मुश्किल होता है. बट यू डूइंग अ गुड जॉब. ठीक है, तो इस तरह से अपने दिल

मजा आया आपके मैसेज देखकर. और भी कई सारे मैसेजेस हैं जिसको मैं पढ़ूंगी और जरूर आपको रिप्लाई करूंगी. और मैं कहना चाहती हूँ कि ये शोज हैं जो बेहद खूबसूरत शोज हैं, हम इनके जरिए आपसे जुड़ते हैं. और जब आप आगे आकर सामने से हमें मैसेजेस करते हैं, हमारे साथ जुड़कर अपनी दिल की बात करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है. बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं वापस आऊँगा फिल्म के डायरेक्शन और म्यूजिक पर बात करते हैं.

तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं. तो अगर हम फ्रैंकली बात करें तो इम्तियाज अली का जो करियर ग्राफ है और उसकी तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो ये किसी बड़े से पहाड़ की तरह लगता है कि नहीं, जहाँ पर हम ट्रैकिंग करने गए हैं और हमको ऊबड़ खाबड़ और फिर कभी ऊंची, कभी गहरी, कभी लंबी ऐसी हाइट्स से गुजरना पड़ता है. चलिए, उन्होंने शुरुआत की थी एक मास्टरपीस डेब्यू के साथ, सोचा ना था.

सख्त रिस्पॉन्स मिला. उसके बाद एक लंबा फेज आया जहाँ बहुत बड़ा ब्रेक था और फिर हुआ जोरों का शोर. फिल्म आई रॉक स्टार और तमाशा, और इन दोनों ही फिल्मों ने लोगों के दिलों पर राज किया. एंड देन एकदम से इम्तियाज अली

थी, लेकिन फिर लव आजकल टू ने उनके सारे फैंस का दिल फिर से तोड़ दिया. ऐसा लग रहा था कि शायद इम्तियाज अली अपनी पुरानी चमक खो रहे हैं. लेकिन वो कहते हैं ना कि जो असली आर्टिस्ट होता है, जो असली कलाकार होता है, वो गिर कर भी उठना सीख ही जाता है. और पिछले साल उनकी एक फिल्म

मिक्स्ड व्यूज मिक्स्ड रिव्यूज मिलते जा रहे हैं, बट देन अगेन इसकी तारीफ जरूर से हो रही है. ये फिल्म मूवी नहीं है, ये मोहब्बत पर लिखी गई एक कविता है, एक पोयम है, एंड इट इज अ पोयम ऑन ब्यूटिफुल लव. इम्तियाज ने जिस नज़ाकत से 1947 और आज के वक्त को जोड़ा है, उसमें वर्चुअली नथिंग टू क्रिप, मतलब बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ये क्या देख लिया हमने, और कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. लेकिन हाँ, एक प्रेजेंटर होने के नाते मुझे ये कहना पड़ेगा कि फिल्म में एक दो जगह डायरेक्शन में ना थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा. तो कुछ गाने इतने अब्रप्टली यानी अचानक खत्म हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि आखिर ये क्यों. जब फिल्म की लेंथ इतनी लंबी है तो एक दो मिनट और सही और उन गानों को ढंग से पूरा कर देते तो क्या चला जाता. हाँ, ये इलॉजिकल एंडिंग्स थोड़ी सी ना खट्टी डकार वाली फीलिंग दे के गई, मतलब आपको लगा कि नहीं यार थोड़ा सा ये अब्रप्ट नहीं होना चाहिए, अच्छी एडिटिंग हो सकती थी. अब आते हैं म्यूजिक के महारथी A.R. रहमान साहब पर. वैसे रहमान साहब जब भी फिल्मों में अपना म्यूजिक देते हैं तो सिर्फ तारीफों के पुल बनते हैं, और इस फिल्म में भी उनका बैकग्राउंड स्कोर बिल्कुल मैजिकल था. वो फिल्म की सोल है जो आपको हर सीन में ना महसूस होती रहेगी. लेकिन एक चीज़ है जो इस फिल्म के गानों की तरफ मुझे ले जाती है, तो मैं कहूँगी कि शायद वो जो मैजिक है यार A.R. रहमान साहब का, वो थोड़ा सा कम दिखाई दिया. अक्सर रहमान के गाने स्लो पॉइजन होते हैं, मतलब आपको लगता है वाह मतलब क्या गाने हैं, क्या धुन है, ओहो मजा आ गया. वो फैक्टर इस फिल्म में मिसिंग लगा. वेल, इरशाद कामिल साहब के लिरिक्स की बात करें तो वो सटीक और गहरे थे. हाँ जी, और इस सब के मुश्किलों के बीच, मतलब म्यूज़िक के बीच वो झूल रहे थे कि भाई अगर म्यूज़िक सही होता और कुछ ऐसी बात होती तो शायद उन गानों में भी जान डल जाती. एक गाना है क्या कमाल है जिसे दिलजीत दोसांझ ने गाया है, ये एक लिरिकल मास्टरपीस लगा. और सिर्फ सुनने में नहीं, इसके विजुअल्स इतने ब्रिलियंट हैं और यूनिक हैं कि आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाएंगे. ये गाना आपको एक अलग ही ग्रिप में ले जाता है. एंड देन अदर वन मस्कारा.

0: इतना। वो गाना जो आजकल हर सोशल मीडिया की रील्स पर बज रहा है, मस्कारा, सुनने में कैची है, हुक लाइन अच्छी है, बट सच तो ये है कि इसका सिर्फ मुखड़ा ही है जो आपको याद रह जाएगा, एंटायर सॉन्ग आप याद नहीं रख पाएंगे। तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हमें सुनने और देखने को मिली कि डायरेक्शन में कुछ जगह पर लगा कि चीज़ें अब्रप्ट हैं, और म्यूज़िक में एआर रहमान साहब के लिए लगा कि कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी, क्योंकि रहमान साहब और इम्तियाज साहब की जो दोस्ती है वो बड़ी पुरानी है। रॉकस्टार, तमाशा जैसी फिल्में उन्होंने दी हैं जहाँ पर ओवरऑल क्या कमाल का म्यूज़िक था, है कि नहीं। तो मैं वापस आऊँगा, फिल्म का रिव्यू चल रहा है और रिव्यू ऑफ द वीक में आज हम बातें कर रहे हैं कि भाई इस फिल्म के जो स्टार्स हैं, जो बड़े कमाल के एक्टर्स हैं, उन्होंने आखिर अपने परफॉर्मेंसेस से कैसे लोगों का दिल जीता। और वहीं संजय सूरी और रजत कपूर की बात करें तो रजत कपूर ने निर्वैर के उस दौर और थोड़े सख्त फादर का रोल इतनी संजीदगी से निभाया है कि आपको उनसे नफरत भी होगी और हमदर्दी भी। और हाँ, कुछ और नाम है जो स्पेशल मेंशन डिजर्व करते हैं, मनीष चौधरी एज मुजफ्फर, डॉली आलूवालिया एज कीनू की दादी, और देवश्री घोष जो इशर की नर्स बनी है। इन सब ने मिलकर इस फिल्म को एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाया है। तो जनाब, एक्टिंग के मामले में ये फिल्म एक गोल्ड माइन है। नसीरुद्दीन शाह से लेकर वेदांत रैना तक हर कोई अपनी जगह पर ना चमक रहा है। और मैं ये कहूँगी कि ये फिल्म रिव्यू वाकई में करते करते मुझे, मैं वापस आऊँगा, फिल्म की एंटायर स्टोरी मेरी आंखों के स्क्रीन के सामने चल रही थी। वेल, मुझे लगता है कि ये फिल्म एक ऐसी खासम खास फिल्म है जिसके लिए अगर आप रेटिंग की बात करेंगे तो रेट देना बड़ा मुश्किल होगा, बट देन आई विल स्टिल ट्राई। और मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगी 3.5 out of 5। तो ये फिल्म आप ज़रूर देखने जा सकते हैं बिना सोचे कि इसे क्या रेटिंग्स मिल रही हैं या लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपको एक इमोशनल ड्राइव पर जाना है, एक इमोशनल एक्सपीरियंस करना है, देन मैं वापस आऊँगा इज जस्ट फॉर यू। ज़रूर जाएं, देखें, इन्जॉय करें, और अगर थोड़ा बहुत रोना भी आ जाए तो सिसकने से, आंखें नम करने से घबराइएगा नहीं। वेल, रिव्यू ऑफ द वीक, इस शो में आपको इस फिल्म का रिव्यू कैसा लगा आप बेशक हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स FM 107 से भी जुड़ सकते हैं, और अपनी आर जमिता को भी वहीं ढूंढ सकते हैं। अगले एपिसोड में भी एक नई फिल्म होगी जिसका रिव्यू होगा, एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिला जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। तारिक सलमान भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं इस कतर फुटबॉल स्क्वाड में, जो कि फीफा वर्ल्ड कप में दे आर रिप्रेजेंटिंग। तारिक सलमान कतर के सबसे भरोसेमंद डिफेंडर्स में शुमार होते हैं। उनका फुटबॉल का जो सफ़र है एस्पर एकेडमी से शुरू होता है और फिर वो असद और कतर नेशनल टीम का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तारिक की खासियत उनकी डिफेंसिव डिसिप्लिन, एरियल एबिलिटी और लीडरशिप है, और 2019 एएफसी एशियन कप की कामयाबी में उनका किरदार बहुत अहम था, जब कतर ने टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल कंसीड किया। एज अ सेंट्रल डिफेंडर तारिक सलमान ने टीम को मजबूती देते हैं और मुश्किल मैचेस में भी पुरसुकून नज़र आते हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल और एएफसी कॉम्पिटिशन में उनका तजुर्बा कतर के लिए कीमती एसेट है और तारिक सलमान को कतर फुटबॉल के सबसे मुस्तकिल और मेहनती डिफेंडर्स में से एक माना जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।
2: दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स के बढ़ते क्रेज के बीच एक नया रियल स्टेट फ्रॉड मार्केट में आया है, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी प्रॉपर्टी का स्कैम। फ्रॉडस्टर्स अब वर्चुअल वर्ल्ड में फेक प्रॉपर्टीज, कमर्शियल लैंड्स और डिजिटल लग्जरी एसेट्स बेच रहे हैं। ये लोग आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करते हैं और बायर्स को झूठे डॉक्यूमेंट्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाकर फंसाते हैं। मासूम इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो किसी बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें मोटा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जब वो पैसा क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी में पे कर देते हैं तो वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही रातों रात गायब हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लूपहोल्स निकल आते हैं। 2026 में मेटावर्स ओनरशिप के क्लियर लॉज ना होने की वजह से विक्टिम्स को लीगल हेल्प मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। डिजिटल एसेट्स खरीदते वक्त पूरी रिसर्च और वेरीफाइड प्लेटफॉर्म का ही सिलेक्शन करना आपको इस नए मेटावर्स फ्रॉड से बचा सकता है। कई बार फेक वर्चुअल ब्रोकर्स खुद को बड़े प्लेटफॉर्म के एजेंट्स बताकर सोशल मीडिया पर फेक लिंक्स शेयर करते हैं जो असल में फिशिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, और आपका पूरा डिजिटल वॉलेट लिंक होते ही साफ हो जाता है। दोस्तों, आपको FM 107 पे सॉल्यूशन भी मिलता है। अगर कोई ब्रोकर आपसे आउट ऑफ प्लेटफॉर्म पेमेंट करने को कहे तो तुरंत रुक जाएं, क्योंकि ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। वर्चुअल एसेट्स की मार्केट रिलायबिलिटी चेक करने के लिए उनके कम्युनिटी फोरम और पास्ट ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री को ओपन सोर्स ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर जरूरी है कि वेरीफाई करें। दोस्तों, ये था नए जमाने का नया स्कैम, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी प्रॉपर्टी का स्कैम। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, एक नए जमाने के स्कैम के बारे में बात करते हैं।
1: स्कैम अलर्ट।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ आरजे सफा और आप सुन रहे हैं शो जिसका नाम है जूनियर जनाब। भाई आप सभी को मेरी जानिब से वेरी गुड डे और उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन वंडरफुल जा रहा होगा। साथियों वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जूनियर जनाब, जहाँ हर हफ्ते मैं यानी सफा करवाती है आपकी मुलाकात एक ऐसे यंग अचीवर से जिसकी बातें सुनकर आपको लगता है कि भाई इनका तो अलग ही लेवल का बूस्ट है, जो आपको आपके ख्वाब पूरा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। क्यों ना करें भाई, उनकी अपनी अचीवमेंट भी इतनी ज्यादा होती हैं कि उन्हें सुनकर आपको खुद ब खुद बूस्ट मिल जाता है। आज जो अचीवर हमारे साथ हैं उनकी ऐसी कहानी है जो ना सिर्फ इंस्पायर करती है बल्कि ये भी दिखाती है कि इंसान के अंदर अगर पैशन हो, मेहनत करे और डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करे तो उनके ख्वाब जरूर पूरे हो सकते हैं। हमारी आज की मेहमान हैं एक यंग अचीवर जिनका नाम है वैष्णवी। वैसे तो मैं इनका इंट्रोडक्शन इन्हीं से लूंगी लेकिन इनके बारे में थोड़ी बहुत आपको मैं बातें बता देती हूँ कि ये फुटबॉल फील्ड की शाइनिंग स्टार हैं भाई, स्कूल कॉम्पिटिशन्स की चैंपियन हैं और स्टेज पर फैशन और म्यूजिक की भी रोशनी बिखेरती हैं। वैष्णवी ने इतनी छोटी सी उम्र में कामयाबी की इतनी लंबी लिस्ट बना ली है कि आप उनको सुनकर वाह वाह करेंगे, चाहे वो फर्स्ट प्लेस इन एजुकेशन अबव ऑल फुटबॉल चैंपियनशिप हो या फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड एट स्कूल क्लस्टर्स हो। वैष्णवी ने हमेशा अपना बेस्ट ही दिया है। नॉट जस्ट दैट साथियों, उन्होंने एक्सपो 2023 फैशन शो QIAF अवार्ड भी जीता है और हाँ ये कैसे भूल सकते हैं भाई, एबास्कस कंपटीशन में टॉप किया है भाई इन्होंने और DPSMIS स्कूल की ये आवाज भी बनी है। और ये सारी चीजें अलग अलग लोगों ने नहीं की, इनका चेहरा एक ही है और इन्होंने ही एज अ इंडिविजुअल ये सब कुछ अचीव किया है। आज के शो में हम उनसे बात करेंगे कि कैसे उनकी ये जर्नी रही, उनको क्या चैलेंजेस फेस हुए और उन्होंने कैसे उन चैलेंजेस को फेस किया और अपने ख्वाबों के बारे में भी बताएंगी कि भाई उनके दिल में क्या चल रहा है। सो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसे इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन के लिए जहां आप सुनेंगे वैष्णवी की कहानी उन्हीं की जबानी। तो भाई मैंने तो बहुत कुछ बोल लिया, अब आई वैष्णवी की बारी। वैष्णवी हाउ आर यू?
3: I'm fine, how are you?
2: Alhamdulillah, all good. अच्छा भाई ये बताएं कि अभी हमसे मैंने इनसे पूछा था कि इंग्लिश के उर्दू मिक्स मैच चलेगा?
3: हाँ
2: मिक्स मैच चलेगा। अच्छा कैन यू टेल आवर लिसनर्स अ बिट अबाउट योरसेल्फ, अबाउट हाउ योर जर्नी एज अ यंग अचीवर स्टार्टेड? चलिए पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं।
3: Hi, I'm Vaishnavi. I'm 13 years of age and my journey as a young achiever, it started when I was in 5th grade. When I was in 5th grade 2022, Qatar mein FIFA ho raha tha. FIFA dekh ke mujhe ye inspiration aaya ki agar main bhi aise kuch competitions win kar sakun, agar mujhe bhi awards aur medals mile to kitna acha lagega. Mummy aur papa ke chehre pe wo proud feeling bhi aayi.
2: सही सही सही सही। अच्छा मोस्टली हम एज अ चाइल्ड एज अ किड हमारा यही होता है कि बस किसी तरह से ना अम्मी अब्बू को इम्प्रेस कर दें। आपका भी यही मामला रहा है?
3: जी
2: somehow just fit into some box so that we could make them proud of us.
3: Yeah
2: right. अच्छा ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया मुझे कि ये फीफा के दौरान ये फुटबॉल का माशाल्लाह से पूरा एक हमने इवेंट कतर ने होस्ट किया और हमने इसे विजुअली हमने इसको एक्सपीरियंस किया, तो ये बताएं कि उससे पहले कभी भी सोचा था कि फुटबॉल वुड बी समथिंग कि जिसके लिए आपको कि भाई आई विल लिव फॉर दिस?
3: एक बार मैंने सोचा था और वो भी फीफा 2018 के टाइम में था. हाँ, जब मम्मी और पापा ने टीवी का नया सेट लिया था देखने के लिए.
2: ओके. अच्छा, कोई फुटबॉल का कोई ऐसा प्लेयर है जिसे इंस्पायर? अक्सर लोग कहते हैं अब मैं हूँ, बेशक मुझे टूटी फूटी फुटबॉल खेलना आती है, लेकिन एक होता ना CR7, तो आपके दिमाग में कोई ऐसा है?
3: एक्चुअली मैं काफी फीमेल फुटबॉलर्स को भी देखती हूँ. एक मैरी अर्ब्स गोली, और मेल में तो हाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरा फेवरेट.
2: अरे भाई, हमारी दोस्ती हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? CR7 के नाम पे हमारी दोस्ती हो सकती है. ओके, अच्छा भाई, जैसा कि मैंने लिसनर्स को भी बताया था कि आपने एजुकेशन अबव ऑल में भी पार्टिसिपेट किया. गोल आई बिलीव इट वाज गोल्स फॉर गुड, राइट? तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं, क्या था, कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या चीज थी?
3: गोल्स फॉर गुड एक्चुअली हुई थी जब मैं सिक्स ग्रेड में थी, 2023 में हुई थी. कतर फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज की थी. इट वॉज अ चैरिटी इवेंट जो एजुकेशन फंड कर रहा था.
2: सही.
3: तो हमारे सब एज ग्रुप्स के फुटबॉल कॉम्पिटिशन थी, और जब हमें सेकेंड प्लेस मिला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. और वेन आई लिफ्टेड द ट्रॉफी बिफोर दे वेन दे वर गिविंग मी द मेडल, फिर हमें पता चला कि क्वीन मदर शेखा मोजा हमें खुद मेडल दे रही थी.
2: ओह, दैट वुड बी ह्यूज. अच्छा, मुझे सुनकर गूज़बम्स आ रहे हैं. तो फील कैसा हो रहा होगा? आई कैन इमेजिन. मतलब इट्स समथिंग स्पीचलेस, राइट?
3: या टू बी सो क्लोज टू हर, टू फील दैट यस आई एम नेक्स्ट टू द क्वीन मदर, शी इज अवार्डिंग मी फॉर समथिंग आई हैव डन. इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस.
2: ओह, इट वाज अ वेरी, ओहो, मुझे भी सुनकर ऐसा वाह वाह. अच्छा, ये बताएं कि Do you think it was a big deal for you to win that thing? Yeah, आपने कहा कि अच्छा चीज है, next achievement भी आएंगी, I will do something else also.
3: No, see, that was the first medal of football competition I had won. That was the first one I had participated in. मतलब ये पहली अवार्ड जीती थी मैंने जब मैं स्टार्ट ही कर रही थी इसके साथ. तो हाँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी डील थी कि आप पहले टाइम में ही सेकेंड आ गए.
2: ओहो. अब लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर. सुनते रहिए FM 107.
0: हर बच्चा एक स्टार होता है, और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
2: टेल मी, यू हैव वन मेडल्स एज द बेस्ट प्लेयर in evolution sports twice, I believe, right? So ye bataye ki what do you think makes you stand out from on the field, ki aapko ke nahi bhai main alag se nazar aati hu, and this is why jaise hum apne aap ko sell karte hai na jab hum workplace pe jaate the, you should hire me because I have these qualities. So what is that thing in you that you can say bhai proudly I stand totally मैं बिल्कुल क्लियरली मैं फील्ड पे अलग से नजर आऊंगी, क्यों? बिकॉज आई हैव दिस स्किल.
3: आई थिंक दैट वाज बिकॉज जब मैंने ये मेडल जीता था, हमारा समर कैंप चल रहा था एक वीक का, और वो समर कैंप में एक दूसरे को जानते नहीं कोई, तो इट्स लाइक यू हैव टू मेक फ्रेंड्स ओवर देयर. सो योर फ्रेंडलीनेस एंड योर एटीट्यूड डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट. सो आई थिंक कि जो व्हाट मेड मी स्टैंड आउट वाज फर्स्ट वाज माय फ्रेंडलीनेस, एंड आई थिंक हाउ आई फेयरली प्लेड इन गेम्स. I supported my team, but I wasn't mean to the other team either.
2: अच्छा, मुझे
3: स्पोर्ट्समैनशिप
2: सही ऐसा जितना बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं. मतलब
3: जी,
2: फ्रेंड्स बना लेती हैं जल्दी से, इंट्रोवर्ट टाइप की नहीं है.
3: एक्चुअली इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन माई मदर हैज फोर्स्ड मी इनटू पब्लिक स्पीकिंग.
2: अच्छा, ये भी होता है, बट डू यू थिंक इट वॉज, एक तो होता है ना, बच्चे कहते हैं कि भाई अम्मा अब्बा ने फोर्स कर दिया. आपको लगता है ये फोर्सफुलनेस पॉजिटिव थी?
3: जी,
2: ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. चलें अब इस बात पे तो फिर कोई हमारा डिस्कशन हो ही नहीं सकता कि हम कहें अम्मा अब्बा बेटा हमेशा सही होते हैं. ठीक है. अच्छा भाई ये बताइएगा इन फुटबॉल विच रोल और पोजिशन डू यू लव प्लेइंग द मोस्ट एंड वाई.
3: आई फील लाइक आई लव प्लेइंग डिफेंडर द मोस्ट बिकॉज इट गिव्स मी अ चांस टू मतलब इट गिव्स मी लाइक आई कैन गिव द टीम अ चांस टू स्कोर अ गोल और आई कैन मतलब पीछे से डिफेंड कर सकते हैं और आई कैन प्रोटेक्ट आवर गोल. सो या आई थिंक डिफेंडर इज अ वेरी नाइस पोजिशन.
2: बहुत मैं कहूँ कि बहुत कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजिशन है बेटा ये. मतलब आप कहो कि पूरी टीम मेरे ऊपर रिलाय कर रही है, मुझे कोई कभी खड़ा करे मैं तो वैसे ही डर से कांप जाऊं कि भाई पूरी टीम मेरी तरफ देख रही है कि आप ऐसी पोजीशन पर हो.
3: एक्चुअली मैंने तो पहले स्ट्राइकर से ही स्टार्ट किया था लेकिन तब मुझे पता चला कि मुझे स्ट्राइकर अच्छा नहीं लगता, उसमें ज्यादा ही दौड़ना पड़ता है नीचे ऊपर नीचे. मेरे पास इतना स्टैमिना नहीं था, मतलब मुझे इतना मतलब ये भी नहीं था स्ट्राइकर का. तो जब कोच ने मुझे एक बार डिफेंडर में डाला अरे ये तो बहुत अच्छी है.
2: गुड
3: या
2: हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है. कोच वाह वाह अच्छे कोच भाई, ऐसे कोच अल्लाह ताला सबको दे जो आपका हिडन टैलेंट ढूंढ ले. कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि व्हेन यू गो फॉर ट्रेनिंग्स एंड स्टफ तो कोच आपको साइड, अगर आप सीनियर हो तो आपको साइड पे कर देते हैं.
3: जी
2: ऐसा होता है. बट योर कोच आई बिलीव फाउंड आउट समथिंग स्पेशल इन यू कि नहीं अच्छा बच्चा एक जगह नहीं खड़ा हो पा रहा तो दूसरी जगह ट्राई करके देखा जाए.
3: या क्योंकि हमारे जो ट्रेनिंग्स रहते हैं उसमें हमारे परमानेंट पोजीशंस नहीं रहते अभी.
2: सही
3: तो चेंज करते हैं हम लोग.
2: हां गुड नाइस दैट मींस दे आर मेकिंग यू लर्न
3: न्यू पोजीशंस.
2: ओके अच्छा ये बात बताइएगा कि फुटबॉल जो है ना हम सबको पता है कि फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट.
3: या
2: एक दूसरे के आप कह लें कि इशारों से आंखों के इशारों से वर्बल वॉइसेस से मतलब टीम ही काम कर रही होती है सारा. तो आपको क्या लगता है हाउ डू यू बैलेंस पर्सनल अचीवमेंट विद टीम स्पिरिट्स.
3: आई फील लाइक वी शुडंट ब्रिंग दैट, वी शुडंट बोस्ट लाइक आवरसेल्फ व्हाट वी हैव डन व्हेन वी एज अ टीम बिकॉज यू या यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम बट देन व्हाट वुड यू बी विदाउट गोली without the striker who would score goals who would protect your goal.
2: sahi
3: to matlab team sport hoti hai, everybody plays a role, you can't single yourself out and say that yahan I'm the best over here.
2: ha ye bhi badi achhi thought hai, ye aksar mostly logon ke andar nahi hoti kyunki unko ye lagta hai ki agar maine koi cheez defend kar li ya maine chalo for example keeper bhi ho to maine kuch defend kar liya ya defender ho to meri wajah se me it was me, you don't have that thing in you work as a team.
3: वो तो जोक में मतलब दोस्तों में कर लेते
2: हैं, जता लेते हैं अगर मैं देखिए हमने अपनी क्या कहते हैं हमने अपने शो ऑफ भी तो करने होते हैं ना.
3: जी जी उस समय क्रेडिट तो नहीं लेना चाहिए वैसा.
2: अच्छा चलिए भाई एज अ टीम वर्कआउट करना चाहिए लेकिन लाइक पुलिंग दोस्तों में चलती रहती है. खैर है वो तो एक फन पार्ट का हिस्सा है. अच्छा ये बताइएगा व्हाट डू यू थिंक हु हैज बीन योर बिगेस्ट सपोर्टर इन योर फुटबॉल जर्नी, योर फ्रेंड्स योर फैमिली योर कोच, हु डू यू गिव दिस क्रेडिट टू. अगर मैं बोलूं कि एक या दो मेंशन करें लोग जिनको आप प्राउडली कहेंगे हाँ अगर ये नहीं होते ना तो माई जर्नी वुड हैव एंडेड ऑलरेडी.
3: I feel like one would be my coach and then second would be my mother. My coach because in school he has coached me through all of these competitions mein unhone coach kiya hai and he's matlab improvement pe bhi points diye hain. Aur mummy pehle mujhe boli thi ki she was the one who first made me join a football club.
2: I like it.
3: Okay. She's the one paying for everything. So the one paying for me to go to competitions, all the new boots, the equipment, everything. So
2: you are grateful. Gratitude. Amma kabhi show kiya hai? Amma, I love you. Thank you. Bola hai. Because aksar jo na bache confuse hi kar jate hain bhai. Jitna pyar amma abba ko jatana chahiye na, dikhana chahiye. You will always remember this. You will always be their baby. आप चाहे 50-60 years के क्यों ना हो जाओ, if they are alive, they will always look towards you as a toddler. ये होता है. अच्छा भाई I'm very impressed माशाल्लाह. अच्छा ये बताएं कि फुटबॉल एक ऐसा गेम है कि जिसके बारे में अभी भी एक हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है जो कहता है लड़कियां और फुटबॉल. आपका कभी ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, कभी आपके पेरेंट्स को आपने कभी देखा है आपको सपोर्ट करते हुए अगेंस्ट दीज स्टीरियोटाइप्स?
3: माय पेरेंट्स हैव मतलब हाँ उन्होंने सपोर्ट दिया है. आई थिंक ऐसे ज्यादा आपको मिलेंगे स्कूल में
2: मिलेंगे
3: स्कूल में मेरे क्लास में लड़कों का लाइक जब आप बताते उन्हें कि हाँ फुटबॉल खेलती देयर फर्स्ट रिएक्शन इज नेवर हाँ पी के क्लास में हमारी टीम में आ जाओ इट्स नेवर दैट दे विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट फुटबॉल Aditya, how well do you know football?
2: They have insecurities. लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती वो वाला सिनेरियो एक आ जाएगा अच्छा मोस्टली फिर आप उसको कैसे डील करती
3: इग्नोर और यूजुअली क्या होता है कि हमारे स्कूल कॉम्पिटिशन में दे सी मी प्लेइंग तो उसके बाद मतलब पहला जो कंपटीशन था हमारा उसके बाद तो कभी किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं
2: अरे वाह ये तो वही वाली बात हो गई मुझे आपकी बात सुन के बात याद आ रही है हम कहते हैं ना एक कोट था कि वर्क इन साइलेंस लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस स्पीक फॉर यू ओ माय गॉड दैट वुड हैव बीन टू मच लाउड जब जीत कर आओ ना तो सबको एक ऐसा शट अप कॉल मिलता है ना पहले इग्नोर करो और फिर दिखाओ कि मेरे पास टैलेंट क्या है एंड देन योर सक्सेस सेज इट ऑल वेरी गुड वेरी गुड अच्छा ये टेक बहुत अच्छा है अच्छा ये बताइएगा कि जब आपने एक अपनी प्लेस बनाई स्कूल इंटर हाउस फुटबॉल कॉम्पिटिशन में ठीक है वॉज इट मोर देन अ चैलेंज प्लेइंग अगेंस्ट योर क्लासमेट्स या आपके कोई फेलोज होंगे आपके साथ जो अगेंस्ट वाली टीम में थे
3: जी हमारे जो इंट हाउस हैं उसमें मतलब सब जो स्कूल टीम पे हैं वो सब कंबाइंड हाउसेस हैं
2: ओके
3: तो हर एक प्लेयर मतलब कोई प्लेयर डिवाइडेड रहेंगे
2: सही
3: फोर हाउसेस थे हमारे सही और प्लेयर्स तो हर जगह डिवाइडेड थे तो ऐसा भी होता था कि वी वर प्लेइंग अगेंस्ट आवर ओन टीममेट्स फ्रॉम द स्कूल टीम
2: तो इसमें ये बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो होता है इमोशनली है ना आप जुड़े हुए होते हो दोस्तों के साथ लेकिन खेलना अपनी टीम के साथ होता है तो ये कैसे बैलेंस होता है
3: फिर मतलब व्हेन यू आर अगेंस्ट दैट टीम मतलब आपको मन भी नहीं होता कि हाँ उससे बॉल ले लें उनके सामने जीत जाए लेकिन हो जाता है मतलब There is some like personal like this, but then it's all like fun, you know. It's all
2: sportsmanship.
3: Yeah, sportsmanship. मतलब okay, fine, we won against you, लेकिन we're still on the same team as the school ना. It's there's nothing personal.
2: अच्छा इसकी एक बड़ी सिंपल सी और अच्छी सी मिसाल मुझे कभी किसी ने दी थी कि for example, let's say if it's games, तो अगर आप कभी ऐसा होता है ना कि अगेंस्ट यूर प्लेइंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स तो मेक श्योर यू टॉक टू देम अबाउट इट कि भाई आई एम वेयरिंग अ कैप फॉर माय टीम ये मेरी टीम की पर्सनालिटी है जो आई एम नॉट प्लेइंग अगेंस्ट यू आई एम जस्ट अ प्लेयर डोंट टेक इट पर्सनली यू शुड हैव फ्रेंड्स लाइक दिस टू अंडरस्टैंड हाँ उनको टीज करना बाद में कि आई वन अगेंस्ट यू वो तो हमारे हमें करना ही करना है वो तो अच्छा ये चलो चलो जाओ जाओ मैं तो फलानी गेम में तुमसे ऐसे जीत गया था चलो मैं ये भी इट्स अ बैलेंस एंड इट्स इंटरेस्टिंग अच्छा भाई ये बताइएगा जब आपको आपकी कोई अचीवमेंट होती है जब आपको कोई अवार्ड फॉर एग्जांपल आपकी फुटबॉल में मिला तो द मोस्ट

0: मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जब आपको अवार्ड मिला है ना, आपको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का, तो ये बताइएगा कि एट स्कूल क्लस्टर्स फुटबॉल आपको कैसा कैसा फील हुआ, आपको रिएक्शन क्या था लोगों का, और वो एक होता है ना जब आप अपने आप को बिल्कुल शाहरुख खान वाली पर्सनालिटी में लेकर आते हैं, आप कहते हैं ओह माय गॉड आई फील लाइक अ सुपरस्टार, ऐसा था?
1: एक्चुअली मेरे साथ ना हर एक गेम में, हर एक स्पोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मिला था. तो मुझे मिला था फुटबॉल पे, मेरे साथ स्टेज पे आई थिंक 4 और थे, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और स्पोर्ट्स के लिए थे, और प्रिंसिपल मैम हमें दे रही थी अवार्ड्स. तो हाँ ऑफ कोर्स मुझे लगा था कि हाँ मुझे आई एम सो गुड एट फुटबॉल, हमें मुझे
0: कॉलर चढ़ा करो. अच्छा फिर ये होता है कि जब आपको कोई अवार्ड मिलता है ना तो स्कूल में आपकी चाल चलन भी चेंज हो जाते हैं, द वे वी वॉक, द वे वी थिंक, ओह माय गॉड आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एट द स्कूल राइट नाउ.
1: आई थिंक द बेस्ट मोमेंट इज जब आपकी जो ट्रॉफी है उस पर वो नाम लिख के अराइव होती है, फिर आप क्लास मतलब क्लास जाते हो हाथ में पकड़ के आते.
0: दैट्स द बेस्ट मोमेंट ऑफ कोर्स. You achieved this because of me and it's going to be there for the rest of the time. Wow, good. अब लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर. सुनते रहिए FM 107.
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
0: अच्छा ये बताइएगा कि ऐसा कोई लेसन है जो आउटसाइड द फील्ड आप कहें आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको सिखाया आपकी गेम ने, आपके स्पोर्ट ने?
1: आई थिंक ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आई थिंक द मोस्ट क्लीशे वन इज डोंट नेवर गिव अप, लेकिन दैट ऑल्सो इट लाइक गोज इन टू लाइक डीपर भी, एज इन इफ यू रियली लाइक आई कोट क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेड दिस, इफ योर लव फॉर द गेम or the work you are doing is it should be greater than the fear you have of failure. So agar aapko itna game pasand hai or you love what you're doing so much, you wouldn't be scared of what if I fail.
0: Sahi. Acha ye bhi ek baat hai and it is true. Ye sunne mein baat bahut choti lagti hai ki never give up. It's always about you reach the finish line. It's not about which आप कह लें कि आप 1, 2, 3 कौन से लेवल पर आप आते हो. द पीपल, देर आर सम पीपल, हमें ये चीज याद रखनी चाहिए, हु नेवर स्टार्टेड बिकॉज दे वर स्केयर्ड. तो इफ यू आर स्टार्टिंग एंड यू आर फिनिशिंग, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये मत सोचो जब आप शुरू करते हो ना, इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, if you really want to achieve something na, if it goes bad it was just an experience. If you are capable of finishing it without having a clouded mind ki nahi mujhe first second ya third aana tha, main competition ka hissa tha, you're going nowhere.
1: Yeah,
0: your biggest competition is you yourself. If you're getting out of your comfort zone, if you're doing things like you said you're introvert, but you pushed yourself, you pushed your limits and you went for public speaking, and I believe जैसा आपने पहले दिन स्टार्ट किया होगा, when you look yourself in the mirror now, you would be a totally different person.
1: Yes, I think so.
0: It was a hard journey.
1: Yeah.
0: You came out of your comfort zone. You were embarrassed. People made fun out of you. But in the end, now you feel achieved. Ah, मैंने कुछ तो किया. Life में कुछ तो किया ही है बाबू. कुछ तो सीखा है. So I also believe this strongly कि हम कहते हैं ना कि जब जीतता वही है जिसको ना हारने का डर होता है ना जीतने की लालच होती है. I am my biggest competition. You cannot judge me. You don't know me. अपना माइंड सेट ऐसी क्लियर रखना चाहिए भाई. वेरी गुड, आई लाइक दिस. अच्छा भाई ये बताइएगा कि यू हैव ऑल्सो वन आई बिलीव QIAF अवार्ड इन एक्सपो, इज इट 2023 का जो था फैशन शो.
1: या दैट वाज इन एक्सपो जो बिगदा पार्क में आई थिंक हुआ था. It was for the Qatar International कुछ फेस्टिवल था उनका से. तो I had gone from school. तो स्कूल से हमें सब कॉस्ट्यूम्स और वो सब दिए गए थे.
0: सही.

0: over there, ये मेरा था because there was press and there everything, it was a full on event. So TV पे news पे भी था वो. So I felt really, मतलब that was a different way of, you know, showing confidence. हाँ, you show confidence on the field, but that was a whole different way you show yourself.
1: सही, so, सही. अच्छा, आपने tell us about the experience. कैसा experience था, क्या किया था, और उसके अंदर कुछ ऐसा था कि आप कहें कि भाई confusion थी, there was something which I did not know, but yet I overcome it.
0: I had a problem with how on the, like the fashion show, the ramp, you have to present yourself. You have to look confident. You have to look the part. I had a problem with being confident. So
1: everybody, all eyes on me, and yeah. I'm still.
0: And you know how they have to maintain that very serious face. मतलब maintain करना पड़ता है. मेरे से नहीं हो रहा था वो. I kept laughing. मेरी teacher ने एक दो बार मुझे मतलब ये
1: आंखें दिखाई.
0: हाँ, आंखें दिखाई.
1: सही.
0: तो फिर मतलब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद फिर मतलब I was still trying my best not to laugh on the ramp.
1: अच्छा, सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है. सम पीपल लुक गुड वाइल देयर सीरियस फेस, मतलब हम कहते हैं ना बिल्कुल पोकर फेस बनाकर आप यूं करके यू ट्राई टू एक्ट लाइक अ माचो. और कुछ लोग जो होते हैं वो इफ दे बिकम सीरियस तो मजा नहीं आता उनको देख कर. ऐसा नो थे नॉट
0: बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन लगता
1: है. इट इज देयर. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट ऑल्सो. ये भी एक बड़ी बात होती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से कैरी करते हो, कहाँ पर. आई थिंक कि हम कहते हैं ना कि अपनी डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, बी हु यू आर. तो यू आर हु यू आर, नॉट चेंज फॉर एनीबॉडी. आई एडमायर दैट. मैं जैसी हूँ मैं ऐसी हूँ, अपनी फेवरेट हूँ. अच्छा भाई, अच्छा ये बताइएगा कि अभी आपसे शो शुरू होने से पहले मैं बात कर रही थी, तो ये जो बैलेंस है स्पोर्ट्स का और एकेडमिक प्रेशर का कैसा चलता है?
0: कभी कभी
1: सच बताना, सच सच.
0: हाँ, कभी कभी मुझसे हैंडल नहीं हो पाता वो, क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिस रहते हैं उनका अलॉटेड टाइम नहीं रहता कभी. खाली इफ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन, जैसे मैंने बोला अभी क्लस्टर्स भी आ रहा है हमारा, तो वो सुबह को बुलाते हैं स्कूल के पहले.
1: सही.
0: तो वो ठीक हो जाता है. लेकिन कभी कभी जो ये गोल्स फॉर गुड थे और ये चैरिटी इवेंट्स, वो लास्ट थ्री पीरियड्स स्कूल के ही ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए. तो मेरा वो नोट्स और वो जो जितना भी मैम उस मतलब पीरियड पे पराठी पढ़ाती हैं, वो कैचअप करने में थोड़ा टाइम लगता है.
1: टाइम लगता है. हाँ. अच्छा, now the question which I am going to ask you, I am going to be very clear about it. Listeners से मैं बिल्कुल clear हो जाती हूँ. हर इंसान का ना अपना living standard होते हैं और अपना एक दिमाग होता है. ठीक है, there have been footballers as well, there have been many successful people around us जिन्होंने ये सोचा कि जो मेरा interest है ना, जो मेरी hobby है ना, मैं उसको पढ़ाई छोड़कर उसके पर चले गए. ठीक है, तो आपको क्या ऐसा लगता है, इज इट द राइट थिंग कि अगर आपको कभी लाइफ में ये बोला जाए कि वैष्णवी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, अपना स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, तो डू यू थिंक इट इज द राइट थिंग टू डू?
0: आई थिंक दैट आई वुड यूज इट, मतलब एज फार एज गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर इट. सो मतलब अगर मतलब आई एम गुड एट फुटबॉल, दैट्स वन थिंग आई नो. तो अगर मुझे उसके लिए स्कॉलरशिप मिल जाए कॉलेज में, तो दैट इज गुड. बट देन आई वॉन्ट टू फोकस ऑन एकेडमिक्स ऑल्सो. Because like I don't have that much aag that I want to do it. I want to become
1: passion, that desire ki aapko bhai nahi mujhe wo apni football hi join karni hai. You have a passion for studying as well, right?
0: Yes, I have a passion to become a lawyer.
1: Mashallah. So I'll keep in touch with you. कुछ थोड़े बहुत सालों में इंशाल्लाह, फिर मैं जब कॉल करूंगी मैं साल गिन लूंगी कि कितने सालों वालों मैं पूछूंगी फिर फोन करके. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मे गॉड ब्लेस यू विद अचीविंग योर गोल्स इंशाल्लाह.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. दोहा कतर में शाम के 7 बजे हैं, आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर FM 107। फुरकान शाहिद से समात कीजिए आज की ताज़ा तरीन खबरें। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए कतर की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। अक़वामे मुत्तहिदा के जनेवा दफ्तर में कतर के मुस्तक़िल वफ़द ने दोहा इंटरनेशनल फैमिली इंस्टीट्यूट के तआवुन से तनाज़ुआत के दौरान ख़ानदानी फलाह व बहबूद और इस्तिक़ामत के उन्वान से एक ज़िमनी तकरीब का इनेकाद किया। कतर ने नाइजर के दारुल हुकूमत नियामी के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर होने वाले हमले की शदीद मज़म्मत की। ईरान ने अमरीकी और इसराइली जानिब से मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों के रद्द अमल में आबनाए हुरमुज बंद करने का ऐलान किया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियाँ। अब समाप्त कीजिए उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफसल नशरिया।

0: यूपी में जहाँ से हम लोग हैं, तो वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होती. कभी कभी बरसात में थोड़ी बहुत बढ़ जाती है तो हो जाती है, वरना हम लोगों ने इस मौसम को इंजॉय नहीं किया. तो सबसे ज्यादा मुझे जो मुश्किल हुई, पहली आती जो बड़ा मुश्किल मरहला लगा, वो गर्मी और ह्यूमिडिटी थी.
1: क्या बात है सर. चलिए अब थोड़ा इमोशनल और स्ट्रगल के क्वेश्चन की जानिब आ जाते हैं. क्या कभी आपको दोहा में तन्हाई या घर की शदीद याद महसूस हुई?
0: बिल्कुल महसूस हुई. उसकी वजह यह है कि जब हम शुरू में आए तो 6-7 महीने यहाँ जॉब नहीं थी, बस वीजा था, आ गए थे और फिर यहाँ स्ट्रगल किया और बड़ा वक्त है कैसा गुजारा. तो हर आदमी गुजारता और गुजारना भी चाहिए, तभी आपको नेमत की कदर भी होती है जब आपको मेहनत के बाद मिलती है. वरना तो अगर साजी हुई थाली में कोई चीज मिल जाए तो वो मेरे ख्याल में इतनी अहम नहीं रहती. तो जब यहाँ आए हैं शुरू में तो काफी वक्त जो है वो, चूंकि शादी हो चुकी थी, बच्चे थे मेरे दो, तो और सब में बच्चे हिंदुस्तान में थे, वालदा हयात थी, वालिद नहीं थे. तो बहरहाल जब शाम होती थी और जब थककर हम जिस्म मतलब कि लेट जाते थे बिस्तर पर, तो बिस्तर की शिकनों में कहीं हम अपना वतन तलाश करते.
1: क्या बात है. तो सर इसी सिलसिले से जब घर की याद आती थी तो आप खुद को कैसे संभाला करते थे?
0: दो चीजें बड़ी मतलब उम्दा हैं. एक तो जिक्रुल्लाह तो है ही, बहरहाल अल्लाह का जिक्र आप करें तो सबसे ज्यादा मतलब तत्मईनुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से कल्ब को इत्मीनान मिलता है. लेकिन मैंने दो चीजों का बहुत सहारा लिया, जिक्र के अलावा शायरी और किताबें. ये मेरे ख्याल में सबसे बहुत जबरदस्त आपके साथी हैं.
1: वाह वाह. और यही आप हमें भी हमेशा सिखाते और समझाते आए हैं. आपके इस सफर में आपके खानदान का क्या किरदार रहा?
0: देखिए खानदान का जो मसला है ना, ये ऐसी है जैसे कि आपके पास पेट्रोल हो, गाड़ी ना हो, या आपके पास गाड़ी और पेट्रोल ना हो. तो ये बड़ा मुस्बत और पॉजिटिव रहा. अगर खानदान का और या आपकी फैमिली का अगर आपके साथ वो ना हो किरदार, तो फिर आप कुछ सफर तन्हा नहीं कर सकते. ये अल्लाह ने निजाम बनाया है और मैं इसका क्रेडिट अपने वालदा, मेरी वालदा हयात थी उस वक्त वालदा को रहा, और मेरी बीवी को जाता है, मेरे बच्चों को जाता है, कि इन लोगों का बड़ा पॉजिटिव मेरे साथ किरदार रहा. चूंकि वही मैं फिर एक बार मिसाल दूं कि भाई पेट्रोल आपके पास कितना ही हो और गाड़ी ना हो तो पेट्रोल बेकार, और गाड़ी कितनी कीमती हो पेट्रोल ना हो तो गाड़ी बेकार. लिहाजा खानदान पर आप दोनों मिलकर एक ये इकाइयों से मिलकर एक दहाई बन जाती है, और इन इकाइयों को अलग कर दें इन दहाइयों से तो फिर ये इकाइयां रह जाती
1: हैं. वाह बहुत खूब बहुत खूब. सर दोहा में आपकी जिंदगी का अहम मोड़ या यूं कह लीजिए कि टर्निंग पॉइंट क्या रहा?
0: यूं तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं यहाँ आया, चूंकि अलीगढ़ से मैंने पास आउट किया 93-94 में. उसके बाद फिर मैं वहाँ पर मैंने फ्रीलांसिंग की, मैंने अखबार में भी लिखा, मैंने मदरसे में पढ़ाया और मैंने मदरसे में काम भी किया. लेकिन यहाँ आना मेरा एक टर्निंग पॉइंट रहा, और यहाँ आने के बाद मेरा टर्निंग पॉइंट ये रहा कि मैं अदबी सिलसिले से वाबस्ता हुआ, अदबी तंजीम खासतौर से अंजुमन शुरा उर्दू हिंद से वाबस्ता हुआ, और उसी के साथ साथ पैरेलली मैं अलीगढ़ ओल्ड बॉयज से और अलीगढ़ वालों से मिला. तो बस मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि भाई पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर. हम अलीगढ़ से निकल के भी अलीगढ़ में आ गए.
1: बहुत अच्छे सर. आज अगर पीछे मुड़कर देखते हैं, या आपसे ये जानना चाहूं कि जो नए लोग आ रहे हैं इस वक्त, जो नए लोग आए हुए हैं जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, उन सब के लिए क्या सीख हासिल हुई, क्या पैगाम देना चाहते हैं उनके लिए, खास तौर पे आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं?
0: बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये. देखिये जिंदगी हर कदम पर एक नया सबक देती है, बस याद रखना जरूरी है उस सबक को कि जिंदगी में हमें सबक क्या दिया.
1: क्या
0: आपका हर दिन आपके लिए एक नया सबक लेकर आता है, कहीं ऊंच नीच होती है, कहीं मुस्बत कहीं मनफी, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, कोई खराब मिलता है आदमी, कोई अच्छा मिलता है, कोई मोतदिल मिलता है. तो आपका दिन हमेशा एक सा नहीं रहता. वो मुझे याद है कि वो गालिबन महमूद गजनवी के बारे में आता है कि उसने अपने दरबार में एक मरतबा ऐलान किया कि मुझे कोई एक ऐसा जुमला बताओ कि जो मुझे रुलाए भी और हंसाए भी. सब परेशान हो गए कि क्या लिखा जाए. एक गुलाम ने कहा जाता अयाज ने या किसी और गुलाम ने एक जुमला लिख के दिया और महमूद गजनवी सर पकड़ कर बैठ गया, और वो जुमला ये था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा.
1: वाह वाह वाह.
0: तो अगर अच्छा है तो गुजरेगा और बुरा है तो गुजरेगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा. तो मैं यही कहता हूँ कि भाई जिंदगी हर कदम नया सबक देती है, बस याद रखना जरूरी है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा.
1: क्या बात है. बहुत अच्छे सर. यादों और कहानियां कुछ अगर हम जोड़ें और उसके हिसाब से कुछ सवाल करूं, तो आज आपके लिए दोहा क्या मायनी रखता है?
0: देखें, दोहा आज मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सब कुछ है। इसकी वजह ही कि अल्लाह ने हमें यहाँ एक बेहतर जिंदगी दी, एक अच्छा रोजगार फराहम किया, अल्लाह ताला ने हमें पुरअमन और पुरसुकून जिंदगी दी। पांचों वक्त हमारे कानों में अजान की आवाज आती है, यहाँ मजहबी आजादी है और यहाँ की क़यादत, यहाँ की हुकूमत आवाम के लिए इतना सब कुछ करती है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो दोहा आज हमारे लिए सब कुछ है, हम ये कहते हैं
1: सब कुछ है। क्या बात है। काम की जगह या रोजमर्रा जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो आज भी यादगार हो?
0: मेरे ख्याल में अमली जो जिंदगी है आपकी, चूंकि आप भी जॉब करते हैं, जो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो उसका हर दिन यादगार ही है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ने आपको उसे रोजगार वाबस्ता किया है, आपके अहलो अयाल को अल्लाह ने उस रोजगार के जरिए मरबूत कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमली जिंदगी जो है ना आपकी, उसका हर दिन आपके लिए यादगार ही होता है। यूँ तो बहुत सारे ऐसे यादगार पल होंगे, लेकिन मेरे नजदीक तो हर दिन एक यादगार ही रहता है।
1: क्या बात है, हर दिन नया होता है और एक सबक देखे जाता है, क्या ही कहने। क्या आप किसी ऐसे शख्स से मिले जिन्होंने आपकी सोच या जिंदगी के सफर पर गहरा असर डाला?
0: देखिए, यूँ तो हमारे प्यारे आका से ज्यादा कोई शख्सियत है ही नहीं इस कायनात में। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, सबसे बेहतर तो आपकी जिंदगी, आपके लिए अमली जो नमूना है वो वही है हमारे लिए। लेकिन जहाँ तक किसी ऐसे शख्स की बात है, तो मेरा एक जुमला है, मैं कहता हूँ कि मैं रोज खुद से मिलता हूँ और मैं खुद से सीखता हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। दोहा में आपकी रोजमर्रा जिंदगी की सबसे पसंदीदा चीज क्या है?
0: मैं सही बताऊँ, दोपहर का खाना खाने के बाद सैलूला करना, जो मेरी बेगम को बैठना पसंद है।
1: बहुत अच्छे। ओके,
0: अलीगढ़ वाला जवाब
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, आगे बढ़ जाता हुआ। अगर आप अपनी जिंदगी की डायरी लिखें तो उसका उन्वान क्या होगा? बींग नदीम माहिर ये सवाल कर रहा हूँ मैं।
0: देखिए, मैं उसका नाम रखूंगा बिला उन्वान। दो मेरे जहन में नाम है, एक तो बिला उन्वान यानी कोई उन्वान ही नहीं, नो सब्जेक्ट। ओके, दूसरा है खुशबू इत्रदान में कैद।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या पढ़ा लिखा उन्वान है। बहुत अच्छे सर, आगे बढ़ते हैं सर, और कुछ और सवाल और फिर इंशाल्लाह ताला हम प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। कुछ ऐसे लाइटर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या कभी आप गलत रास्ते पर निकल गए और बाद में वो एक दिलचस्प याद बन गया? ये यूजुअली हम लोगों के साथ होता आया है, जो भी दोहा नए आते हैं या इवन पुराने भी हो जाते हैं, तो कुछ ऐसी याद आपको जो शेयर करना चाहें?
0: नहीं बिल्कुल, देखें साहब, ये जो खास तौर से जो गवर्नमेंट ऑफ कतर ने माशाल्लाह 2019-20 के बाद जो ये रोड्स का जो नेटवर्क बनाया ना, खास तौर से जो हाईवे से जो कनेक्ट किया है, और इस कनेक्टिविटी में कई बार फंसे हैं और ऐसे फंसे हैं। एक मरतबा हम गए थे अपनी फैमिली के साथ, तो हम वापस निकला और मिशाप गए थे हम लोग बुकैद, तो अब वहाँ रास्ते में हमारी बेगम को याद आया कि वो फोन भूल गई है, अब वापस हम गए। अब हमने क्या करा, वो हमने लोकेशन ऑन कर दी, मुझे रास्ता मालूम था, लेकिन मैंने कहा हो सकता है अंदर से रास्ता निकल जाए कोई, बस वही हमारी सबसे पहली और आखिरी गलती थी। और वो हमें जो काम चल रहा था इजराइल का, और यकीन जानिए सरवर साहब, एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल मेरी गाड़ी फंस गई चौड़ाई में, और फिर जब बच्चों को उतारा, आधा घंटा हमें तकरीबन लगा।
1: मैं आपकी बात, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक्चुअली मेरा अगला सवाल भी इसी से ही रिलेटेड है नदीम साहब। क्या कभी अजनबी ने जरूरत के वक्त आपकी मदद की? क्योंकि कतर में हम ये सिलसिला बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, मैं तो खैर कह सकता हूँ कि बचपने से ही, तो इसमें आप कोई पर्सनल ऐसा कोई वाकया या ऐसी, जैसा आपने बताया कि अभी गाड़ी फंस गई, तो कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया या इसी सिलसिले से जो अभी गाड़ी फंसी, क्या किसी ने करी आपकी जब?
0: हाँ जी जी बिल्कुल भाई, ये लोग एकदम फौरन जो है वो यहाँ पर निकल आते हैं, और उससे भी बड़ी बात ये है कि खास तौर से अगर हाईवेज वगैरह पर एक दोबारा ऐसा हुआ कि जो है वो पंक्चर हुआ और बस गाड़ी साइड में लगाई है, 3-4 मिनट भी नहीं हुआ हमके कि अल्फाजा की गाड़ी आ गई, और मतलब मैं इत्तेफाक से शॉप में और स्मिता कतरे में ऑफिस से लौट रहा था, धूप बहुत ज्यादा थी, तो बस बेचारों ने मतलब मेरी सफेद पोशी का या जो भी कहिए आप, उन्होंने फौरन को पुलिस वाले ने जैक निकाला और स्टबनी निकाली, और चंद मिनट के अंदर उसने मुझे बोला शेख रो, बस ये ऐसी चीजें हैं जो वाकई कहीं नजर नहीं आती। इवन यहाँ पर अवामी एतबार से भी आप देखें तो लोग यहाँ तआवुन करते हैं एक दूसरे का और मदद करते हैं और खुशी महसूस करते हैं।
1: हम लोग की जिंदगी का एक हिस्सा नदीम साहब ये भी होता है कि हम लोग ऑफ रोडिंग पे जाते हैं यहाँ आने के बाद, तो वहाँ पे भी अगर देखा जाए

0: तो कितने हमारे माशाल्लाह लोकल कतरीज भी कभी गाड़ी रेत में फंस जाती है, बीच के पानी में फंस जाती है, तो वो लोग किस तरीके से अपने कपड़ों का बगैर ख्याल करें
1: जी।
0: बिल्कुल ये चीज
1: याद है, वो भी ऐसे भी दो तीन बार वाक्य हुए हमारे, उन सहित में गाड़ी फंस गई थी, नई गाड़ी हमारे एक दोस्त ने ली क्रूजर, अब बेचारे हिंदुस्तानी, अब उनसे तो क्रूजर अब इतनी ज्यादा वो नहीं थे, वो अब वो लेके गए, उनसे क्रूजर फंस गई बताइए। अब वहां पर कतरी सब हंसे लड़के कि भाई बताओ या इन द क्रूजर, और फिर उसके बाद फंस गई, फिर उन्होंने बहरहाल वो जल्दी जल्दी बांध बूंद के और 10 मिनट में उन्होंने निकाली गाड़ी इधर एक तरफ। बहुत कमाल के लोग हैं इस मामले में,
0: बिल्कुल अल्लाह
1: खुशी महसूस करते हैं ये लोग,
0: वाकई अल्लाह ताला खुश रखे और इसी तरह कामयाब
1: और इंजॉय करते हैं पता इन चीजों को।
0: जी जी
1: खासतौर से ये देखा,
0: बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। सर वो कौन सा लम्हा था जिसने आपको दिल से खुश या जज्बाती कर दिया?
1: कुछ दोस्तों की जुदाई हुई पिछले दिनों, कुछ लोगों की जुदाई हुई और कुछ लोगों की बेवफाई।
0: ओहो हो,
1: कुछ की जुदाई और कुछ की बेवफाई,
0: अनफिल्टर्ड नवीन माहिर। चलिए अच्छी बात है। अब एक आप के कहना चाहिए सिलसिले से ही, अगर आप दोहा को एक खत लिखें नदीम साहब, तो उसमें क्या लिखेंगे या क्या लिखना पसंद करेंगे?
1: देखिए अगर मैं दोहा को खत लिखूंगा तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा कि मेरे अजीज दोहा, तुमसे मेरी पहली मुलाकात ऐसे हुई जैसे किसी मुसाफिर को लंबे सफर के बाद अचानक समंदर दिखाई दे जाए। मैं तुम्हें एक शहर समझकर आया था मगर तुम तो एक एहसास निकले।
0: वाह।
1: नमकीन हवा में घुला हुआ एक ख्वाब जो रात की रोशनियों में सांस लेता है। तुम्हारी शामें अजीब जादू रखती हैं। जब सूरज खलीज के पानी में सुनहरा अक्ष छोड़कर रुखसत होता है तो यूं लगता है जैसे आसमान ने तुम्हारे माथे पर मोहब्बत का बोसा रख दिया हो। दोहा, तुम्हारे साहिलों के किनारे चलते हुए अक्सर महसूस होता है कि हवा कोई पुराना मोहब्बत नामा पढ़ रही है। तुम्हारी गलियों में दुनिया के बेशुमार चेहरे हैं मगर हर चेहरे के पीछे एक ही आरजू छुपी और दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं अपना घर ढूंढ लेने की आरजू। शायद इसीलिए तुम इतने लोगों के दिल में बसते हो। मुझे तुमसे मोहब्बत इसलिए नहीं कि तुम खूबसूरत हो बल्कि इसलिए मोहब्बत है कि तुम हजारों ख्वाबों की ताबीर हो।
0: वाह वाह।
1: तुम वो फूल हो जिसकी खुशबू उफक की वसतों में गुम है। अगर शहरों की भी धड़कन होती तो मुझे यकीन है तुम्हारा दिल समंदर की लहरों के साथ धड़क रहा होता। हमेशा खुश रहो,
0: शुक्रिया ये आपकी
1: मोहब्बत की बात है।
0: नदीम साहब
1: एक बात और बताया तुम्हें आपकी, आपने फिल्टर ये अनफिल्टर्ड है भाई, आपने मुझे अपना उस्ताद उस्ताद बता दिया तो भाई ज्यादा ऐसी बात है ना, बस कभी कभी हमारे छोटे भाई हैं कुछ पूछ लेते हैं तो बात अलग है, लेकिन भैया हम साधु साध नहीं, ये हमारे उस्ताद है माशाल्लाह। आज तक तो इन्होंने तेलते मचाया है दोहा में।
0: सर ये आपकी मोहब्बत है, बड़प्पन है, आप सभी को ऐसे ट्रीट करते हैं अपने जूनियर्स को, हमेशा से हम ये देखते हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सर जो नए लोग दोहा आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है?
1: तो बहुत अच्छा सवाल है भैया सरवर साहब, मैं ये कहूँगा कि भाई आप खुशकिस्मत हैं कि दोहा आपका इंतखाब है, बल्कि यूं कहिए कि आप इसलिए खुशकिस्मत हैं कि आप दोहा का इंतखाब, तो ये अल्लाह की तरफ से आपको इनाम है कि आपको दोहा जैसी सरजमीन और कतर जैसा मुल्क अल्लाह ने जो है वो इनायत किया। आप इसकी कदर कीजिए और जितनी कदर करेंगे यहाँ के कवानीन का एहतराम करेंगे, यहाँ के लोगों का एहतराम करेंगे, तो अल्लाह ताला इतना ही आपको सुकून और इत्मीनान और बरकत वाली जिंदगी अता करेगा।
0: क्या बात है सर, आखिर में क्या कहना चाहेंगे कि दोहा ने आपको ज्यादा बदला या आपने दोहा को?
1: साहब आखिर में मैं ये कहूँगा, देखें कि ये तो दो तरफा इश्क है सर, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई।
0: क्या बात है,
1: तो ये आग तो दोनों तरफ है। दोहा ने हमें बहुत बदला है, हमारा लाइफ स्टाइल बदल दिया, हमारे हालात बदल दिए, हमारी बच्चों को बेहतर यहाँ रहकर हमें अच्छी तालीम हमने अपने बच्चों को दी, अच्छी तरबियत दी और हमें एक अच्छी और पुर अमन पुर सुकून और इज्जत वाली जिंदगी इस दोहा कतर ने हमें अता की है। यकीनन ये अल्लाह की तरफ से नेमत है हमारे ऊपर, लेकिन बहरहाल इस मुल्क का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, तो हम यही कहेंगे, मैं तो यही कहता हूँ कि ये तो दोनों तरफ आग बराबर है और इश्क जब दो तरफा हो तो मजा देता है।
0: क्या बात,
1: तो दुआ کو ہم سے عشق ہے اور ہمیں دو حق سے عشق ہے اور لوگوں سے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ بھئی خوش رہیے مسکراتے رہیے ایک دوسرے کا خیال رکھیے کبھی کبھی فون کیجئے کسی کی خیریت لے لیجئے میسج بھیجئے ایک دوسرے کا خیال رکھیے دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے

0: हब है, तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं?
1: ये आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया है। उसकी वजह यह है कि हम लोग जो खासतौर से जब यहाँ आते हैं, मतलब हम लोग जब महाजरीन हैं, हम लोग तो क्या, हमने हिजरत की है और हम रोजगार के लिए यहाँ जब आए, तो हमारे जहन में भी यही सवाल होता है कि भाई हमें माहौल कैसा मिलेगा, हमारी तहजीब, हमारी जबान जिंदा रहेगी नहीं रहेगी, जो उमूमन एक सवाल होता है आपके जहन में जब आप मुल्क क्रॉस करते हैं। जब आप अगर मुल्क में रहते हैं कोई मसला नहीं, तो वहाँ तो सब कुछ है। तो जब हम यहाँ आए तो हमारे भी जहन में यही सवाल थे कि भाई हमारी तहजीब, जो उर्दू तहजीब है, जो हमारा अलीगढ़ का कल्चर है, हमारी जो जबान है, वो यहाँ रहे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं वाकई, मैं आपको बताऊं कि मैं चूंकि 2000 में आया और 2001 में मैं यहाँ अदबी हलकों से मुतारफ हो गया था, तो दोहा कतर अगर कल्चर के एतबार से देखें तो जो सकाफत और कल्चर के लिए कतर गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो मेरे ख्याल में बहुत कम ममालिक के हिस्से में आता है। और गालिबा 17 या 18 में, या मुझे कुछ सन याद नहीं आ रहा, लेकिन कतर ने बाज़ाब्ता एक स्लोगन रखा था कि कतर जो है दोहा हासिमत सकाफा, ये कल्चर जो कल्चरल हब है और कल्चरल कैपिटल है ये कतर। और ये उसकी बहुत बड़ी मिसाल अगर आप यहाँ जाते हैं तो मौससत कतर है, कतर फाउंडेशन है, इतने सारे वहाँ पर तालीमी इदारे एक ही उन्होंने कंपाउंड के अंदर रख दिए हैं। दुनिया के बड़े तालीमी इदारे आपको वहाँ मिल जाएंगे जहाँ पर इल्म, सकाफत, तहजीब सिखाई जाती है। दूसरी यहाँ का आप जाएं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी जो QNL है, खतर नेशनल लाइब्रेरी, वो यहाँ की क़यादत का और यहाँ का जो इल्मी ज़ौक है और जो तहजीबी और जो अदबी ज़ौक है, उसका सबसे बड़ा तर्जमान यहाँ की खतर नेशनल लाइब्रेरी है, जो दुनिया की टॉप लाइब्रेरीज का मुकाबला कर सकती है। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमने देखा कि जबान के लिए बड़ा काम है। मैं आपको बताऊं सरवर साहब, आप रेडियो के हवाले से अब तक तकरीबन यहाँ पर मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक मैंने इस मौजू पर काम भी किया है, और मैं जद्दा भी मैंने एक अपना मकाला पढ़ा था इसी मौजू पर सेमिनार में कि दोहा में जो अदबी सरगर्मियां हैं, तो मैंने जो हिसाब निकाला था तकरीबन 300 किताबें अब तक दोहा से उर्दू की छप चुकी है।
2: वाह वाह वाह।
1: तो ये किसी ऐसे मुल्क के लिए नामुमकिन है कि जहाँ पर आपको सकाफती आजादी ना हो। तो यहाँ जो सकाफती जो माहौल है और खासतौर से मुशायरों का जो माहौल है, किताबों का जो माहौल है, वो बड़ा अमेजिंग है। साल में कितने 4 से 5-6 मुशायरे होते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं। एक तंजीम से मेरा भी ताल्लुक है, अंजुमन मोहिबान उर्दू से, पाकिस्तानी तंजीम आलमी मजलिस फरोग उर्दू अदब, वो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कतर से दिया जाता है उर्दू का, एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी अदीब को। 1959 की बज़्म उर्दू कतर यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश है। तो यहाँ ये कल्चरल और कल्चरल एक्टिविटीज का कैपिटल और हब दोहा कतर है। और मुझे सबसे ज्यादा इस बात की खुशी होती है कि हम यहाँ रहते हैं तो हमें वतन नहीं महसूस होता कि हम वतन से दूर हैं। थोड़ी देर के लिए हमें अपनी गलियां तो याद आती हैं, वहाँ की सौंधी मिट्टी की खुशबू भी हमें जो है याद आती है, वहाँ की पतली पतली गलियां याद आती हैं, वहाँ धड़कते हुए इंसान और वहाँ पर चलते फिरते लोग याद आते हैं। लेकिन जब हम सकाफत की तहजीब की बात करते हैं तो हमें दोहा में जरा बराबर महसूस नहीं होता कि हम हिंदुस्तान में हैं या कतर।
0: क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर है आपसे जब भी बात होती है तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलता है। नदीम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करी, अपने जज्बात और अपनी लर्निंग हमारे साथ शेयर करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं चाहूँगा कि कुछ आप शेर से भी हमें नवाजे और जो भी आप कहना चाहते हैं।
1: बहरहाल सबसे पहले तो मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सरवर साहब आपका शुक्रिया और रेडियो उर्दू कतर का शुक्रिया कि उन्होंने एक अच्छा दोहा डायरीज के नाम से एक ऐसा अट्रैक्टिव प्रोग्राम निकाला, क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हमें कुछ जानने का मौका मिले, बारे में पता चले, जो लोग यहाँ पुराने रहते हैं। तो अब हमें इस दश्त में आए 26 साल हो गए, तो यकीनन जो नए सहरा नवर आ रहे हैं उनके लिए हम जैसे लोगों की शायद कुछ बातें काम में आ जाए। और मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक दो गजल के जो दो दो तीन तीन शेर सुना देता हूँ।
0: जी जी सर प्लीज।
1: एक मेरी बड़ी मशहूर गजल है कि बस इतनी बात थी कहते तो हम तरमीम कर लेते, बस इतनी बात थी कहते तो हम तरमीम कर लेते, सफर को बांट लेते हम थकन तकसीम कर लेते। सफर को बांट लेते हम थकन तकसीम कर लेते, अगर हमसे शिकायत थी तो फिर इजहार करना था। अगर हमसे शिकायत थी तो फिर इजहार करना था, माफी मांग लेते हम खता तस्लीम कर लेते।
0: क्या बात है।
1: माफी मांग लेते हम खता तस्लीम कर लेते, और

अर्ज है, कुछ मजनू बने कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आर यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
2: टॉप 10 काउंटडाउन।
3: अब वक्त है उस सेंटेंस का जो मैं बहुत देर से बोल रहा था जब हम ये शो तैयार कर रहे थे, मेरा वाला गाना। भाई मेरा वाला गाना तो मैं क्या कहूँ, इतने सारे गाने इस हफ्ते रिलीज हुए हैं, बहुत सारे गानों ने बस बनाई है, कौन सा गाना इस लिस्ट से निकाला जाए कि इसमें रखा जाए, बहुत परेशानी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफ 107 पे एंड वेलकम टू टॉप 10। तो देखो शो शुरू करता हूं मैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सोशल मीडिया पे आ जाइए करें, सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 कतर, वहां आके बताइए FM 107 कतर पे कि कौन सा गाना आपको लगता है कि लिस्ट में होना चाहिए। हमने आपस में मिल बांट के, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी किए, उसके बिना पर हमने लिस्ट तैयार करी है और पूरी लिस्ट ऊपर से नीचे तक बदल गई है, दो तीन गानों को छोड़ के, एंड इट्स अ फ्रेश लिस्ट। ये सारे गाने तबाही है भाई, मैं तो कह रहा हूँ टॉप 10 तो हम कह रहे हैं, इसमें टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को किधर कहाँ रखें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट एंड प्रेजेंटिंग द होल लिस्ट ऑफ दिस वीक। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, एज यू ऑल नो 10 से शुरू करेंगे एंड देन वील गो टू द टॉप ट्रैक ऑफ दिस वीक। तो नंबर 10 पे कौन सा गाना है? अ लॉट हैज चेंज्ड। नंबर 10 पे वो गाना है जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उन्होंने ये गाना गाया है, दोनों के दोनों मेरे फेवरेट्स हैं, दोनों के दोनों का ये जो लीथल कॉम्बिनेशन है ये इंडस्ट्री ने देखा और पूरी इंडस्ट्री ऐसे लगाई म्यूजिक की, स्पेशली हिप हॉप की, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। तो ये जो गाना है ये दो बहुत ही माहिर रैपर्स ने गाया है, एक है कृष्णा जो अपने नाम में एस को डॉलर साइन की तरह लिखते हैं और वो कहते हैं KR डॉलर साइन, मालूम है ना, तो KR डॉलर साइन, और साथ में है मारा भाई साहब सीधा हरियाणा थे ढांडा न्यूली वाला, गाना है बूम शाकलाका, हिला दे बूम शाकलाका। तो ये जो गाना है बहुत कमाल का है, एंड मैं बता रहा हूँ ये गाना जब ड्रॉप हुआ था ये दोनों के दोनों, कृष्णा भाई तो सीधा गुड़गांव से हैं और मारा भाई डांडा न्यूली वाला तो न्यूली वाला हरियाणा से, इन दोनों का एक साथ आना मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने हजम कर लिया था कि वो रफ्तार के साथ डांडा ने गाना बना लिया, विच इज ठीक है, वो एक्सेप्टेड भी है और अज्यूम भी कर लिया था मैंने कि ये होने ही वाला है, बट कृष्णा के साथ नहीं सोचा था। एंड एक और चीज नहीं सोची थी, जब ये गाना सुनेंगे आप, ये प्ले होगा तो कृष्णा का जो वर्स है, स्पेशली वो लोग जो रैप सुनते हैं, इतना कमाल का वर्स है भाई, इतना कमाल का फ्लो है, ये जिसकी हद नहीं, कैसे राइम करता है आदमी यार। मगर कृष्णा हमेशा आउटशाइन कर देते हैं सामने वाले रैपर को या साथ वाले रैपर को जो उनके साथ रैप कर रहा होता है, मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल टक्कर का मुकाबला, बिल्कुल टक्कर का मुकाबला है। डांडा न्यूली वाला ने जो रैप किया है भाई इसके अंदर, ओ फो, आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू डू डू दिस काइंड ऑफ रैप, क्योंकि इतना इंट्रिकेट फ्लो, इतना अच्छा फ्लो एंड फास्ट रैपिंग भी, इतनी क्लियर, मजाक, वीडियो भी बड़ा कमाल का है, एंड बूम शाकलाका। ये गाना जो है एट नंबर 10 दिस वीक, मैंने काफी मरतब अपने शो में चलाया है, कुछ लोगों को ऑफकोर्स हिप हॉप से थोड़ा सा परहेज होता है, विच आई अंडरस्टैंड, बट मेरी उनसे भी गुजारिश है एक बार सुन के देखिए, रैप में शायरी भी होती है, रैप में बातें बड़ी तगड़ी होती है और असली बातें होती हैं, एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक दिस ट्रैक हैज इज ऑलरेडी ब्लूमिंग, मजा आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया गाना है नंबर 10 बूम शाकलाका, ढांडा न्यूली वाला और KR डॉलर साइन, मालूम है ना। अब गाना नंबर 9 की बारी है, सो हिप हॉप के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उस शख्स की तरफ जिसे आप हिप हॉप करा लीजिए, एक्टिंग करा लीजिए, म्यूजिक बनवा लीजिए, पॉप गाने करवा लीजिए, कॉमेडी करा लीजिए, ये आदमी क्या क्या करके मानेगा भाई। ये वो शख्स है जिनके नाम को मैं जानबूझ के दिलजीत बोलता हूँ, लोग बोलते हैं दिलजीत है दिलजीत, हाँ पता है जी साणू, मैं जानबूझ के बोलता हूँ भाई, जानबूझ के मैं नाम को, थोड़ा मुझे मजा आता है, और आए दिलजीत ऐसे बोलने, तो दिलजीत दोसांझ का गाना रांझा, ये जो है नंबर 9th की पोजीशन पर है इस हफ्ते। साथ में उनके डेविड गेटा हैं और सिया हैं। ये कोलैबोरेटिव जो एफर्ट है इन तीनों का, स्पेशली मैंने डेविड गेटा को सोचा नहीं था कि वो कभी कोई इंडियन आर्टिस्ट के साथ काम करेंगे। इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े हैं, डेविड गेटा क्यों ही काम करेंगे, भाई हमारी इंडस्ट्री बहुत खतरनाक है उनके मुकाबले। इज दैट के सोचा नहीं था मैंने कि डेविड गेटा कभी इंडियन आर्टिस्ट के साथ जुड़ रहे होंगे, बट थिंग्स हैव बीन क्वाइट गुड लेटली एंड ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। साथ में सिया, जिन्होंने से पहले भी दिलजीत दोसांझ के साथ गाना किया है, वो भी बड़ा कमाल गाना था, बट रांझा इज ऑन अनदर लेवल। नॉट जस्ट द ट्रैक, मगर दिलजीत दोसांझ का प्रेजेंस ऑन स्क्रीन इज जस्ट अमेजिंग। कुछ लोगों में ना एक चार्म होती है, जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो आपकी नजरें नहीं हटती हैं, एंड दिलजीत दोसांझ हैज दैट। पता नहीं वो क्या चार्म है इस सरदार में अपने, एक कमाल का बंदा है। और वीडियो बड़ा कमाल का शूट किया है, बहुत कमाल का डायरेक्शन है। जब आप सुनने के बाद इसका कभी भी वीडियो देखेंगे निकाल के, तो आपको वीडियो देख के लगेगा ऐसा लग रहा है कि दिस इज आउट ऑफ सम मूवी और समथिंग। दे हैव यूज्ड एवरीथिंग, वो जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड होता है ना, ऐसा लग रहा है कि किसी 10-12 साल के लड़के ने कुछ इमेजिनेशन में सोचा और प्रोफेशनल्स ने मिलके उसे अपने हिसाब से बहुत फिटनेस के साथ प्रेजेंट कर दिया। If that makes sense to you. बहुत कमाल का गाना, बहुत कमाल का वीडियो। ये पिछले हफ्ते गाना हमारे लिस्ट में बहुत ऊपर था भाई, लेकिन सोच रहे हैं आप ये गाना 9th पे आने के बावजूद भी कितना बड़ा बैंगर है, और ये 9th पर आया है तो इसके बाद कौन कौन से गाने होंगे और क्या क्या कर रहे होंगे वो। तो दिलजीत पाजी का गाना विद डेविड गेटा एंड सिया इज एट नंबर 9th पोजिशन, एंड आई एम प्रिटी श्योर ये लिस्ट से तो नहीं जाएगा भी। ये गाना ट्रेंडिंग पे था, बहुत टाइम तक चला, और वो आर्टिस्ट जो बिलबोर्ड में भी जा चुका है, जो कोचेला में भी सब कुछ कर चुका है, वो आर्टिस्ट हल्का तो नहीं। दिलजीत दोसांझ जब भी गाएंगे, इवन द नेक्स्ट ट्रैक वुड कम, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत बढ़िया जाएगा। हालांकि उन्होंने एक मूवी करी अभी रिसेंटली, आई रिमेम्बर आई थिंक इम्तियाज अली के साथ करी, वापिस आऊंगा। वो मूवी के बारे में भी मैं साथ साथ बात करता हूँ, बिकॉज आर्टिस्ट बड़े कमाल के, ही ट्राइड इज लेवल बेस्ट। तो ऐसा लग रहा है कि दिलजीत दोसांझ बोला था हिलना नहीं है, जो जो बोल रहा हूँ वही वही लाइन बोलते रहो। दिलजीत इज डन अ गुड जॉब, फेल अ गुड जॉब, बट आई थिंक दिलजीत दोसांझ को थोड़ा सा बॉलीवुड से कट के अब एक काम करना चाहिए। एज अ फैन आई वॉन्ट हिम टू प्रोड्यूस एन एल्बम। हाई टाइम यार, दिलजीत पाजी प्लीज एक एल्बम निकाल दो तगड़ी सी, जिसमें 12-15 गाने हो। अगर आपको एल्बम नहीं भी निकालनी भाई, एक मिक्स टेप ही निकाल दो। मिक्स टेप नहीं निकालना, आप एक ईपी निकाल दो, कुछ भी निकाल दो। बस मैं चाहता हूँ एक अक्यूमुलेटिव, एक दिलजीत दोसांझ का ऊपर पोस्टर हो और अंदर भाई साहब 5-6-14-15 गाने, ये चाहिए। एनीवे, एज अ फैन मैंने अपनी गुहार लगा दी है, पता नहीं उन तक पहुंचे ना पहुंचे, पर मेरे दिल की आवाज से तो मैंने पहुंचा दिया, मेरी तरह बहुत सारे दिलजीत के फैंसीज शायद सोचते होंगे। तो दिस इज एट नंबर 9, दिलजीत दोसांझ, गाने का नाम है रांझा, साथ में सिया और डेविड गेटा। अब आ जाते हैं जरा नंबर 8 पे, ये थोड़ा क्रिटिकल मामला है भाई, ये थोड़ा क्रिटिकल मामला है। तो ये जो मूवी है, जिस मूवी का गाना है नंबर 8, ये है वेलकम टू जंगल। पहली बात मूवी के बारे में इतना कहूंगा, क्यों जरूरत पड़ रही है अक्षय कुमार को और फिर अजय देवगन की, हालांकि उनका गाना नहीं है, पर इन दोनों को क्यों जरूरत पड़ी है सीक्वल पे सीक्वल पे सीक्वल पे सीक्वल करने की। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। हाउसफुल पहली वाली हुई, वो करके बस था, मैं सही बता रहा हूँ, नहीं आ रहा मजा ट्रेलर देख के यार। मैंने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से हंसी आ जाए, और अगर आपने ट्रॉपिकल थंडर देखी है तब तो आप समझ जाएंगे मूवी का प्लॉट क्या है। हालांकि पूरा प्लॉट उन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया, खत्म कर दिया पूरा का पूरा प्लॉट बता के, लॉजी पिक्चर देख लिया आपने। एंड कहीं ना कहीं दो चीजों में बॉलीवुड को काम करने की जरूरत है, आई नो ये रिव्यू नहीं है, बट फिर भी एक है कॉमेडी और दूसरा है हॉरर भाई, दे रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। पर वेलकम टू जंगल के गाने ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। एक गाना बहुत अच्छा चल रहा है अभी, जो कि ऑलरेडी रीमेक है, पर गाना इज नाइसली रीमेड बाय द वे। गाना है उच्चा लंबा कद, और अक्षय कुमार को ये मुझे लग रहा है उनका सपना था कि मैं वापस जीना चाहता हूँ, ये गाना मुझे चाहिए, और ये गाना उन्हें वापस रिलीव करने का जो मौका मिला है उन्होंने हत्या लिया है। एंड वेलकम टू जंगल से ये गाना जो है ऊंचा लंबा कद इज एट नंबर 8th पोजीशन। आई स्टिल फील बॉलीवुड को काम करना पड़ेगा, नए नए गाने लाने पड़ेंगे, स्पेशली जब आपके पास इतना बड़ा स्टार हो. अब अक्षय कुमार को ठीक है अभी कुछ भी चल रहा है उनका करियर, बट स्टिल है तो बड़ा स्टार है. बनता है कि ओरिजिनल गानों पे उनको उन्हें दिए जाए. ही डिजर्व्स गुड म्यूजिक कैटलॉग. यू रिमेम्बर एयरलिफ्ट जब आई थी भाई, अक्षय कुमार क्या तवाही लग रहे थे मूवी के अंदर. मूवी में कंटेंट था, मूवी के अंदर गाने थे. फिर बेबी आई थी, मूवी में कंटेंट था, मूवी में गाने थे. तो पता नहीं क्या हुआ, ये एक लहर चल पड़ी है कि हम तो सीक्वल निकालते चले जाएंगे. 1, 2, 3, 4 अभी तो धमाल 4 भी आ रही है. पता नहीं क्या हो रहा है, बट ठीक है. हैविंग सेड दैट, ट्रैक लिस्ट में अपनी जगह बनाना भी कोई छोटी बात नहीं है. अगर यू वॉन्ट टू लिव, इसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं फैन सर्विस. तो ये फैन सर्विस है कि आपको जोर दिया जा रहा है आपके दिमाग में कि जियो जियो, नॉस्टैल्जिया फील क्यों नहीं कर रहे तुम, फील करो. तो उस नॉस्टैल्जिया पे फैंस को टांग दिया जाता है और उनको कहा जाता है देखो सुनो पहली मूवी याद है ना, याद है, याद है, उसी को जीते रहो. तो

0: फैन सर्विस इस गाने के जरिए की गई है जो कुछ दिनों तक चलेगी. एंड आई डोंट नो ये गाना लिस्ट में हमारे कब तक रहेगा, पर अभी ट्रेंडिंग है और अच्छा खासा व्यूज बटोर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वीडियो एज वेल. सो फैन सर्विस तो की है भाई, माननी पड़ेगी. क्रेडिट जहां पे देना चाहिए वहां में दे रहा हूँ. ऊंचा लंबा कद एट 8. ओके सो अभी तक हम 10, 9 और 8 बता चुके हैं आपको. गाना नंबर 10 है बूम शाकलाका विच इज डाना न्यूनी वाला एंड कृष्णा के एडोलेसेंट. मालूम है ना इन दोनों का गाना है. दोनों बहुत बढ़िया, बहुत चंगे रैपर है भाई. इसके बाद है नंबर 9 पे दलजीत. दलजीत दोसांझ का गाना जी रांझा, साथ में सिया और डेविड गेटा का म्यूजिक. अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक. एंड देन एट नंबर 8, नंबर 8 पे है ऊंचा लंबा कद. एज आई सेड फैन सर्विस. ये नडियाड वालों को कुछ नया डायरेक्टर ढूंढ लेना चाहिए. वेलकम टू जंगल से ये गाना ऊंचा लंबा कद वो है एट नंबर 8. अब लौट के आएंगे आप तो आपको पता लगेगा 7, 6 और 5 पे क्या पक रहा है. जाना नहीं आपको.
1: FM 107 Top 10, number 10.

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक टॉप 10 में मैं हूँ आपका मेजबानी मैं करूँ मेजबानी. आप मेहमान तो नहीं है, आप तो घर वाली हैं. तो टॉप 10 में आपका स्वागत है एक बार फिर से. और अभी हम 7, 9 और 8 गाने बता चुके हैं. अब जरा जरूरत है पढ़ने की 7, 6 और 5 पे. बहुत खराब मैथ से मेरी, आई एम रियली सॉरी. तो 7, 6 और 5 पे कौन कौन से? 7 पे है एक गाना जो मुझे बड़ा पसंद आया यार. गाने में ना वाइब होनी चाहिए. अब देखो ओरिजिनल गाने वाइब है कि नहीं, अब रीमेक रिप्राइज रिडक्स पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं गाने को परोस दिया जाता है, पर ओरिजिनल गाने की बात तो ओरिजिनली होती है. आरजू एक गाना है असीम अज़र का. क्या गाना है भाई. असीम अज़र जो है वो मुझे लगता है कि जैसे विशाल मिश्रा है ना, नॉट विशाल शेखर, विशाल मिश्रा जो है ना इंडिया की तरफ से, वैसे ही असीम अज़र हैं. अब मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, बस समझ लीजिए कि दोनों ऑलमोस्ट सेम स्टेचर पर राइट नाउ एंड बोथ ऑफ देम आर लाइक ग्रोइंग वेरी स्नीकिंगली. आपको अंदाजा नहीं लग रहा है, बस दोनों धीरे धीरे स्टार बनते चले जा रहे हैं. एक जमाने में मुझे कहना ही लगता था, पढ़ता भी था कि दोनों अंडररेटेड हैं, देखो देखो. बट राइट नाउ आई थिंक असीम अज़र जिनका ये गाना है नंबर 7 एंड ऑल्सो विशाल मिश्रा, आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव ग्रोन सो मच. असीम अज़र का मैं बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ. आई एब्सोल्युटली लव दिस मैन. असीम अज़र के और भी काम को मैंने देखा है, क्योंकि आरजू तो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक. गाने में वाइब है, लाइक यू कैन ड्राइव एंड आप इस गाने को लगा दीजिए, भाई साहब को लगेगा हाँ भाई ये ड्राइव वर्क करने वाला गाना, बहुत बढ़िया गाना है. असीम अज़र का कैटलॉग पॉप म्यूजिक से भी भरा हुआ है और उन्होंने रैप आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है, विच इज बियॉन्ड क्रेजी. एंड ऐसे आर्टिस्ट की कदर होनी चाहिए. सो असीम अज़र ब्रवाई कुडोस टू यू एट नंबर 7 आरजू, अ ब्यूटिफुल ट्रैक. ओके, आगे उन्होंने बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल बोल दिया ना, आज के लिए काफी है. ओके, सो गाना एट नंबर 6 नाउ. ये भी बड़ा कमाल का है. जब गाना नंबर 6 आता है तो मुझे लगता है कि एक मिडिल ग्राउंड आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर टॉप 5 की बात होने लगती है. और ये जो गाना है ये भी कुछ करके दिखाएगा भाई. ये मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये गाना भी अभी बढ़ेगा, लोग इसको पसंद करेंगे, क्योंकि 10 दिन के अंदर इस गाने ने अभी 1.1 मिलियन कर लिए हैं पूरे. एंड जो गाने की जो शूटिंग भी हुई है वो बड़ी कमाल की है. जिस तरीके से उन्होंने शूट किया है, कैब के अंदर, लोकल्स के बीच में, बसों में चढ़ के, एंड दैट रॉ फुटेज स्टाइल जो उन्होंने दिखाया है वीडियो के अंदर, वो बड़ा कमाल का. एक और बात मैं कहना चाहूँगा, असीम अज़र ने इसमें शर्ट पहनी, भाई सेम शर्ट पड़ी है मेरे पास और इनके चक्कर में भी पहन के घूमूंगा मैं. बहुत कमाल का गाना एंड वेरी वेल शॉट. गाने के अंदर वाइब है, गाने के अंदर वो सब कुछ है जो वीडियो में भी होना चाहिए और लिरिक्स से झलकना चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा. इट्स अ कंप्लीट पैकेज एंड वेरी वेल डिजर्व्ड 1.1 मिलियन व्यूज. ये गाना बहुत बहुत ग्राउंडेड गाना है, बहुत ग्राउंडेड गाना है. एंड असीम अज़र के फैन होने के लिए मेरे पास एक और वजह है ना. सो दिस इज एट नंबर 6 ऑन द लिस्ट. तू है वही.
2: तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा.
1: तू है वही, सुन के देखिए मजा आ जाएगा. ऑलराइट, नंबर 5 पे पहुंचेंगे कुछ देर में, लेकिन ये जो आपने गाने सुन लिए हैं मैं एक बार लिस्ट रिवाइज कर देता हूं. तो हमने सुना गाना नंबर 10 बूम शाकला का, डाना न्यूली वाला और क्या डॉलर साइन. नंबर 9 पे

0: दिलजीत दुसांज रांझा विद सिया एंड डेविड गेडा एंड उसके बाद ऊंचा लंबा कद आठ पे वेलकम टू जंगल से उसके बाद नंबर सात पे आरजू असीम अजहर एंड नंबर छह पे अगेन असीम अजहर विद तू है वही सो दिस इज द लिस्ट सो फार छह तक हम आ चुके हैं मगर आगे क्या होगा ये तो सस्पेंस है तो पांच चार तीन दो एक अगली बार आएंगे कुछ देर में अगली बार नहीं सोचेंगे लोग एपिसोड खत्म क्या नहीं खत्म अभी कुछ देर में बट सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar यहाँ आपको आने जाना है ताकि आप बता सकें कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है आप कौन सा गाना लिस्ट में चाहते हैं डोंट गो एनीवेयर आई विल बी राइट बैक विद 5 4 3 2 1 स्टे ट्यून्ड
1: FM 107 Top 10 Number 7

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक. मैं दोहावाला कबीर प्रेजेंट सर. टॉप टेन चल रहा भाई, टॉप टेन चल रहा है और हम अब आ चुके हैं गाना नंबर 5 तक. सारे के सारे फ्रेश गाने भाई, बहुत बढ़िया गाने हैं. सो गाना नंबर 5 ये मैंने बहुत रिसेंटली सुना है, बहुत रिसेंटली सुना है. गाने का नाम है पीछे तेरे और कुंवर साहब का गाना है. मैं ना इस गाने को जब मैंने सुना तो मुझे लगा इस गाने में कुछ ना कुछ बहुत पैपी हो रहा होगा, अगर वीडियो बनेगा तो कैसा बनेगा. पर मेरे इमेजिनेशन के बिल्कुल परे बनाया है भाई वीडियो, बिल्कुल परे. और वीडियो बहुत कमाल का शूट किया है. गाने की लिरिक्स और गाने का वीडियो जब सिंक में आता ना तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है. दैट्स व्हाई मैं बॉलीवुड को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करता हूँ. आप सीन से हटा के डांस के कपड़े पहना के क्यों खड़ा कर देते हो यार, ऐसे करो ना. दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल. कुंवर का जो ये गाना है पीछे तेरे, बहुत कमाल का है कुंवर साहब का. और जो लिरिक्स, अगर आप पंजाबी समझ लेते हैं, लिरिक्स और वीडियो विल मैच. बहुत सिंपल गाना है, बहुत ग्राउंडेड गाना है, बहुत क्यूट गाना है. एंड जिस हिसाब से शूट किया गया है उसी सादगी के साथ, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट फ्यू आर्टिस्ट जो अपने सादगी को खोते नहीं है. कोई चमकीले कपड़े नहीं, कोई फ्लैशी कपड़े नहीं. सेम विद आसिम अजहर जो अभी कुछ देर पहले मैंने गाना बताया. कोई फ्लैशी कपड़े नहीं, कोई चेने वेने नहीं है. वेरी नाइसली मेड और बहुत देसी और बहुत सादगी के साथ. और गाना भी बड़ा खूबसूरत है पीछे तेरे. गाना थोड़ा छोटा है, मेरी शिकायत इस गाने से सिर्फ यही है कि 2 मिनट पे जाके खत्म हो जाता है. 2 मिनट 5 सेकंड का आई थिंक गाना है. और मुझे लगता है कि ऐसे गाने थोड़े से लंबे होते, एटलीस्ट 3.5 मिनट तो वो जाना चाहिए. 2 मिनट में ना वो क्या हुआ कि मन नहीं भरा. पर गाना इनकम्प्लीट फिर भी नहीं लगेगा. इट्स अ कंप्लीट ट्रैक एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक. इट्स एट नंबर 5. ओके, नंबर फोर पे ये लिस्ट पे टिका हुआ है. बहुत सारे रीले बन चुके हैं एंड लोग इस पे नाच नाच के अपनी एड़ियां दुखा चुके हैं, क्योंकि बीट ही ऐसी है भाई. शुभ भाई का गाना है बाउंस. ऐसा म्यूजिक हार्डली गानों में मिलेगा आपको आज की तारीख में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रांस, वो ईडीएम वाले जो साउंड होते हैं वो मिल जाते हैं, मगर ये कुछ अलग है भाई. ये डबस्टेप ईडीएम सब मिला दिया है और कमाल की खिचड़ी पका के गाना पेश किया है. मुझे बहुत पसंद आया गाना, बहुत बहुत कमाल का म्यूजिक है. एंड उस बीट को फॉलो करना, मैं सही बता रहा हूँ, आई एम अ छोटा मोटा रैपर माई सेल्फ. मैं भी उस बीट को फॉलो नहीं कर सकता अगर मैं चाहूँ भी तो. समझ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा रैपर हूँ, मुझसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं हुआ, हो जाएगा. बट आई हैव ट्राइड. और ये बीट को फॉलो करना, जिस तरीके से शुभ ने एक एक अपने लफ्जों को फिक्स किया है इन दिस बीट, इन दिस होल म्यूजिक, वो बहुत कमाल का. एंड देन कम्स द वीडियो व्हिच इज फ्लैशी नाइस एंड पूरे गाने को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ वीडियो. सो शुभ भाई इज एट नंबर 4. कमाल का ट्रैक है, यू शुड लिसन टू इट. बाउंस नाम है, बाउंस. ओके, रेडी हैं आप गाना नंबर 3 के लिए? तो गाना नंबर 3, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था पूरे हफ्ते. हमने चर्चा करी, हमारी टीम बैठी हुई थी, हम लोग ऐसे बैठे थे चौपाल लगा के जैसे चार भाई बैठे हों, डिस्कस कर रहा हूं. यार एक गाना आया है मार्केट में, गाने का नाम है साड़ी सुन. साड़ी सुन सुन लिया होगा आपने, प्रीटी मच एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. बॉलीवुड से गाना नहीं है लेकिन भाई प्रॉपर हिट चल रहा है, प्रॉपर हिट. हर्ष नुस्सी का गाना है ये और हर्ष भाई ने जो गाना किया है बहुत कमाल का बना दिया है.

0: एक ही ट्रैक के दो डिफरेंट वीडियोस, दो डिफरेंट वर्जन्स. दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इट. मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना. और तुझे अगर पंजाबी गाने सुनते हो ना भाजी, एक नंबर गाना है, एक नंबर गाना है. मौज आ रही है कसम सा, एकदम चस आ जाएगी जब आप गाना सुनेंगे. वूफर बाजेंगे भाई गाड़ी के. हरियाणा में शिफ्ट हो गया मैं, सॉरी, मगर आप समझ गए मेरी फीलिंग को. तो साड़ी सुन, विच इज बाय हर्ष, इज एन अमेजिंग ट्रैक. एंड ये आप जरूर सुनिएगा. दिस इज एट नंबर 3 ऑन द लिस्ट. ओके, लौट के आते हैं दो टॉप के दो गानों के साथ.
1: FM 107 Top 10 Number 5.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। FM 107

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक वक्त से टॉप ऑर्डर का. तो ओपनिंग बैट्समैन तक अब हम पहुंचे हैं. टेल एंडर से होते होते अब सीधा टॉप ऑर्डर की बारी है. गाना नंबर दो और टॉप गाने की. गाना नंबर दो जो है ये उस मूवी का गाना जिससे मुझे उम्मीदें भी हैं, जिसकी रिलीज से मुझे डर भी लग रहा है और जिसकी वजह से मुझे डर है शाहिद कपूर को लेके भी. प्लीज शाहिद कपूर साहब, आप वाले एक्टर वापस बन जाइए जो हैदर कर रहा था. प्लीज मेरे भाई, क्या कौन दे रहा है इन्हें ये पिक्चर है. पर मैं फिर भी दिल से दुआ करता हूँ ये आदमी जो है अपने जोन से बाहर आए, बिकॉज उन्हें जागने की जरूरत है. शाहिद कपूर कॉकटेल के साथ वापस आ रहे हैं. कॉकटेल 2 इज गोइंग टू रिलीज. शाहिद कपूर को ले लिया. सबसे पहले शौक तो मुझे ये लगा इसमें. अब मैं ये नहीं कह रहा कि शाहिद कपूर ऐसी मूवी कर ही नहीं सकते. ऑफकोर्स ही कैन डांस और ही कैन डांस बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल इन बॉलीवुड. मगर गाना बहुत बढ़िया है यार कॉकटेल 2. मूवी के साथ जो भी हो, आई ऑल्सो विश हिम ऑल द बेस्ट. लेकिन गाना क्या बनाया भाई, कुछ यूनिकनेस है इसके म्यूजिक में. पूरे कॉकटेल की जो डिस्कोग्राफी है, इसका एक एक गाना बहुत कमाल का है. ऐसा म्यूजिक आप लोग, हाँ यार काफी टाइम बाद सुना है मैंने. रेगे म्यूजिक उन्होंने यूज किया, हिप हॉप यूज किया, उन्होंने पॉप म्यूजिक यूज किया. दे हैव डन अ ग्रेट जॉब. गानों के म्यूजिक का ही एक मिश्रण जो है वो आपको मिलेगा. वल्लाह गाने का नाम है एंड काफी एडिक्टिव हुक है इस गाने का. हुक के साथ साथ डांस हुक भी बड़ा एडिक्टिव है. ये गाना हिट नंबर 2. कृति सैनन भी है इसमें, वामिका भी है और गाने में वाइब भी है. जिस तरह से शूट किया गया गाना, स्पेशली आई लाइक द फैक्ट दैट दिस शॉट इट इन अ डिफरेंट वे. ऐसा लग रहा है कि किसी सिंगर का सिंगल गाना है. इफ दैट मेक सेंस. होता नहीं बॉलीवुड बड़ी मेहनत करता है, बड़े बड़े स्टेज लगाता, नहीं वैसा कुछ नहीं किया. दे हैव शॉट इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल. और बहुत कमाल की कलर ग्रेडिंग करी, काफी कलरफुल वीडियो निकल के सामने आया है. एंड वल्लाह ये गाने का नाम है इज एट नंबर 2. नाउ इज द टाइम. Top Gana of this week in Top 10. देखो साउंड इफेक्ट के खर्चे बचा रहा हूं मैं. नंबर 1 गाना ऑन द लिस्ट कौन सा हो सकता है? एनी गैसेस? प्लीज व्हाट्सएप आइए 6622107 पे, 6622107 पे. एंड ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar इफ यू कैन गैस इट. आई विल काउंट फ्रॉम 5 to 1. ठीक है, सबसे पहले लिस्ट को जरा रिवाइव कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं लिस्ट का. सो नंबर 10 पे है बूम शाकला का ढाणा न्यूलीवाला एंड खिया डॉलर साइन. देन नंबर 9 पे दिलजीत पाजी विद रांझा, डेविड गेटा एंड सिया साथ में. देन 8 पे था ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल से. उसके बाद 7 पे आरजू आसिम अजहर. 6 पे तू है वही आसिम अजहर. एंड देन 5 पे पीछे तेरे कुंवर साहब का गाना. नंबर 4 पे शुभ भाई साहब है विद बाउंस. नंबर 3 पे साडी सुन विद हर्ष. And number 2 pe tha Wallah from Cocktail 2. And now at number 1. Absolutely no guesses there. Maine kaha na uniqueness hai. Uniqueness chalti hai, bikti hai bhai. At least remake nahi hai. Gana hai Mashuka. Aye aye, kya gana bhai. Iska hook main bata raha hu dimag mein bajta hi rehta hai. To Mashuka From Cocktail 2 बहुत कमाल गया. वीडियो में आपको शायद वो कृति सैनन और रश्मिका, मैंने वामिका बोल दिया पिछले उसमें. रश्मिका प्रीतम दा का संगीत है एंड अमिताभ भट्टाचार्य की लिरिक्स हैं. क्या गाना बना दिया यार ये, क्या गाना बना दिया. मैं ऐसे गानों का वेट करता हूँ, कब आएंगे ऐसे गाने. कुछ तो ओरिजिनल कर रहे हैं. चलो सो थैंक यू भाई साहब कॉकटेल 2 के मेकर्स. आई डोंट नो कि आपने मूवी के साथ क्या किया, वो तो देख के पता लगेगा. पर गाना बहुत बढ़िया भाई. So this week's number 1 track is Mashuka from Cocktail 2. So this is our top order. And on that note, mere aapse ijazat lene ka waqt bhi aa gaya hai. Social media handles FM107 Qatar, FM107 Qatar. Aapse ijazat zaroor chahunga, lekin main ye bhi chahunga ki aap लगातार बताते रहें. यू नो आप बताते रहें कौन सा गाना आपको लिस्ट में चाहिए, कौन सा गाना आपको लगता है कि नहीं यार लिस्ट में नहीं होना चाहिए. डू लेट अस नो योर फीडबैक एज वेल. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar. और अगर आपको लगता है कि मुझ मासूम से भी आपको रابطہ कायम करना है तो प्लीज आइए दुहा वाला कबीर के नाम से, मैं आपको मिल जाऊंगा हर जगह. बट फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. मां सलाम. FM 107

अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और डिलिशियस और क्रिएटिव एपिसोड। अच्छा, आप कहेंगे ये क्या हो गया भाई। देखिए, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन हैबिट्स की जो सिर्फ एनवायरमेंट को सेव नहीं करती बल्कि किचन को भी ज्यादा स्मार्ट और फन बनाती हैं। तो भाई, हम आज बात करने वाले हैं लेफ्ट ओवर फूड से नए डिशेस बनाने की। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे बहुत पसंद है ये चीज। चलिए अब जरा एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, घर में अक्सर ये होता है कि भाई डिनर बनाना है या लंच बनाना है, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या बना लिया, बिरयानी बना ली, रोटी, सब्जी या पास्ता, एक्सरसाइज कुछ भी बना लिया आपने, ठीक है। सबने खा लिया लेकिन थोड़ा सा खाना बच जाता है, कभी कभी होता है, मोस्टली हो जाता है। और फिर फ्रिज में रख दिया जाता है वो बचा हुआ खाना, ये सोच कर कि भाई कल देखेंगे कि इसके साथ करना क्या है, खराब ना हो। लेकिन जब कल फ्रिज खोला जाता है ना, तो वही लेफ्ट ओवर्स या तो इग्नोर हो जाते हैं या फिर वो किसी फ्रिज के कोने में चले जाते हैं और हमें नजर नहीं आते, और फिर एंड में वो वेस्ट हो जाते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होती है फूड वेस्ट की साइलेंट स्टोरी। देखिए, अब थोड़ा सा रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेफ्ट ओवर फूड्स का मतलब ये नहीं कि वो खराब है, अक्सर वो बिल्कुल सेफ और एडिबल होते हैं, बस उसे दोबारा क्रिएटिव तरीके से यूज करने की जरूरत होती है। दुनिया भर में एक बड़ी क्वांटिटी में फूड सिर्फ इसलिए वेस्ट होता है कि भाई उसे नई डिश में कन्वर्ट नहीं किया जाता। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई इसके अंदर इको स्विच सिचुएशन में क्या है, तो सफा आपको आइडिया दे रही है। आइडिया बड़ा सिंपल है, लेफ्ट ओवर फूड को फेंका ना करें बल्कि उसे नए डिश में ट्रांसफॉर्म करें ना, मतलब किचन में क्रिएटिविटी यूज करना और खाने को वेस्ट होने से बचाना। देखिए, हम बात करते हैं कि लेफ्ट ओवर फूड को रियूज करने से क्या फायदा होता है। देखिए, सबसे पहला फायदा तो ये है कि फूड वेस्ट रिड्यूस होता है। फूड इज अ ब्लेसिंग, तो उसका वेस्टेज रिड्यूस होना इज अ गुड थिंग। हर रीयूज्ड मील का मतलब है एक प्लेट खाना लैंडफिल में जाने से बच जाता है। दूसरा फायदा ये है कि बजट सेविंग हो जाता है। आप नए इंग्रेडिएंट्स खरीदने के बजाय एग्जिस्टिंग खाना जो आपका होता है उसको रीयूज कर लेते हैं। तीसरा फायदा है टाइम सेविंग। लेफ्ट ओवर फूड से डिशेज जल्दी रेडी हो जाती हैं, स्पेशली बिजी डेज में। अब ये मेरे साथ परसों हुआ था। क्या हुआ था कि भाई सफेद चावल और दाल बनाई थी, दाल तो खत्म हो गई, चावल थोड़े से ज्यादा बन गए। अब वो एक ग्लास चावल जो ज्यादा बन गया था, उसका अगले दिन अगली सुबह को मैंने पता है क्या किया, रात को तो वो चावल रख दिए फ्रिज में। सुबह उठकर ऑफिस जब आने लगी, भाई 12 बजे सबको भूख लगती है दोपहर को, तो मैंने कहा ऑफिस के लिए कुछ नया ट्राई करते हैं। तो भाई हमने क्या किया, लेमन राइस बना ली उस वाइट चावल की। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वॉज वेरी टेस्टी। तो ये जल्दी बनाने वाली चीज हो जाती है, जल्दी बनने वाली चीज हो जाती है कि मुझे वापस से चावल कुक करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई जस्ट डिड सम सॉटे ऑफ इट विद सम वेजिटेबल्स और वो बन गया लेमन राइस। चौथा फायदा है क्रिएटिव बूस्ट। आप किचन में नए एक्सपेरिमेंट्स और रेसिपीज ट्राई करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, लेमन राइस बनाए थे, मैंने कभी सुना नहीं था लेमन राइस, लेकिन वो लेमन राइस है, अब वो है। तो मैंने कभी खाए नहीं थे, बट ट्रस्ट मी, इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। अच्छा, अगर इसकी एक और रिलेटेबल एग्जांपल दी जाए ना, जरा सोचिए, आपके पास रात का लेफ्ट ओवर चावल जैसे मेरे पास थे, वैसे आपके पास हैं, अगर आप उसे सिंपली इग्नोर कर देते हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं, चावल जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी चावल को थोड़ा वेजिटेबल, एग्स, स्पाइसेस वगैरह डालकर, या तो फिर आप अपनी मर्जी के वो चाइनीज फ्राइड राइस टाइप कुछ बना लें, तो वो भी बहुत जल्दी से बन जाता है। या लेफ्ट ओवर रोटीज जो होती है ना, चपाती जो होती है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसे रोल या रैप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मजे के बनते हैं। मैं तो अक्सर ये करती हूँ कि अगर कभी कभी मैं तंदूर की रोटी बाहर से लेती हूँ ना, तो मैं उसको थोड़ा सा अगले दिन थोड़ा सा पानी लगाकर, थोड़ा सा घी लगाकर फ्राई कर और वो खाती हूँ नाश्ते में। इट इज ऑसम, इट इज वेरी ऑसम। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं करना, उस रोटी को आपने हल्का सा पानी लगाना है और उसके ऊपर मस्त आपने देसी घी लगाना है और उसे आपने गर्म कर लेना है। ओ भाई, ऐसी मजे की बनती है ना वो रोटी। तो भाई सेम फूड लेकिन कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होता है। तो भाई दोहा जैसे बिजी लाइफस्टाइल वाली सिटी में लोग अक्सर टाइम सेविंग मील्स प्रेफर करते हैं, इसीलिए लेफ्ट ओवर फूड को रीयूज करना यहाँ और भी प्रैक्टिकल और हेल्पफुल हैबिट बन जाती है। अच्छा भाई, अगर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर की जाए तो आपके घर में आप इन्हें इजीली यूज कर सकते हैं। पहली टिप है प्रॉपर स्टोरेज करें लेफ्ट ओवर फूड को। जो लेफ्ट ओवर खाना है आपका, उसको हमेशा कवर्ड और फ्रिज सेफ कंटेनर में रखें। लेबल प्रैक्टिस करें। भाई देखिए, फ्रिज में रखे हुए जो खाने होते हैं उन पर डेट किसी तरह से आप लिख दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
क्रिएटिव थिंकिंग अडॉप्ट करें, हर लेफ्ट ओवर को नई डिश इंग्रेडिएंट्स मतलब न्यू डिश इंग्रेडिएंट्स की नज़र से देखने की कोशिश करें। और चौथी बात यह है कि मिक्स एंड मैच करें ना, राइस वेजिटेबल्स ब्रेड ये चीज़ें नई नई डिशेज में कंबाइन करने की कोशिश करें, बहुत बहुत क्रिएटिव बनती हैं इनसे चीज़ें। और भाई सेफ ड्यूरेशन फॉलो करें, यानी कि लेफ्ट ओवर जो खाना होता है उसको लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर कंज्यूम करें ताकि फ्रेशनेस मेंटेन रहे। तो भाई इसी के साथ अगर हम किसी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो कई प्रोफेशनल शेफ्स भी ना, आप माने ना माने मैं आपको बता रही हूँ, कई प्रोफेशनल शेफ्स भी लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट्स को यूज करके नई डिशेस बनाते हैं। यानी किचन वेस्ट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना एक प्रोफेशनल स्किल भी है। अच्छा आपने अपनी फेवरेट डिश, मेरी भी फेवरेट है बटर चिकन की स्टोरी सुनी है आपने कभी? नहीं सुनी? अभी वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन बटर चिकन की कभी आप जाकर स्टोरी चेक कीजिएगा कि बटर चिकन एग्जिस्टेंस में कैसे आया था। तो भाई बटर चिकन भी इसी चीज की एक मिसाल है प्रॉपर। अब एक रिलेटेबल बात ये कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि कल का खाना बोरिंग होगा, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन और स्टाइल चेंज कर दिया जाए ना तो वही फूड एक नई डिश बन जाती है जो इक्वली एंजॉयबल होती है। एंड भाई इसके अंदर मेरी अम्मी बड़ी एक्सपर्ट है। हमारे घर में जो एक तहलका मचा हुआ होता है ना कि भाई ये खाना मैंने कल वाला खाना नहीं खाना, कल जो बनाया था आपने वो नहीं खाऊंगा, हमारी अम्मी ऐसे प्रेजेंटेबल करके देती हैं कि भाई मजाले कोई पता लगा ले कि कल का खाना है। तो हैट्स ऑफ टू मदर्स। भाई अब थोड़ा सा बिहेवियर चेंज की एंगल की तरफ चलते हैं। देखिए जब आप लेफ्ट ओवर फूड को रीयूज करते हैं ना तो आप अपनी कुकिंग और कंजम्पशन माइंडसेट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं। आप खाने को सिर्फ कंजम्पशन आइटम नहीं देखते बल्कि वैल्यूएबल रिसोर्स समझने लगते हैं। तो भाई इसी के साथ इको स्विच बड़ा सिंपल है, लेफ्ट ओवर जो खाना होता है ना आपका बचा हुआ खाना उसको वेस्ट ना करें बल्कि उसे नई डिशेज में कन्वर्ट करें, शेफ बन जाए, मास्टर शेफ। तो भाई आज का चैलेंज ये है कि आज या नेक्स्ट मील के बाद अपने लेफ्ट ओवर खाने को डिस्कार्ड करने के बजाय उसे एक न्यू डिश में कन्वर्ट करने की कोशिश तो करो बाबू, कोशिश तो करो। और अगर आप ऑलरेडी ये हैबिट फॉलो करते हैं ना तो किसी और को भी तो इंस्पायर करो ना। तो भाई किचन में क्रिएटिविटी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होती बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए भी होती है। जब हम लेफ्ट ओवर फूड को रिसोर्स रीयूज करते हैं ना उसको एज अ रिसोर्स, तो हम सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो भाई मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। तारिक सलमान भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं इस कतर फुटबॉल स्क्वाड में, जो कि फीफा वर्ल्ड कप में दे आर रिप्रेजेंटिंग। तारिक सलमान कतर के सबसे भरोसेमंद डिफेंडर्स में शुमार होते हैं। उनका फुटबॉल का जो सफ़र है एस्पर एकेडमी से शुरू होता है और फिर वो असद और कतर नेशनल टीम का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तारिक की खासियत उनकी डिफेंसिव डिसिप्लिन, एरियल एबिलिटी और लीडरशिप है, और 2019 एएफसी एशियन कप की कामयाबी में उनका किरदार बहुत अहम था, जब कतर ने टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल कंसीड किया। एज अ सेंट्रल डिफेंडर की नंबर तारिक सलमान ने टीम को मजबूती देते हैं और मुश्किल मैचेस में भी पुरसुकून नज़र आते हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल और एएफसी कॉम्पिटिशन्स में उनका तजुर्बा कतर के लिए कीमती एसेट है, और तारिक सलमान को कतर फुटबॉल के सबसे मुस्तकिल और मेहनती डिफेंडर्स में से एक माना जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: वेलकम टू आवर सेगमेंट कॉल्ड वन स्टेप टू 2030। मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया।
2: वन स्टेप टू 2030।
1: आज मैं बात करने वाली हूं एक और नए टर्म पर, और ये है टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स। वेल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ग्रोथ करना लेकिन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, यानी ग्रो करो लेकिन आपकी ग्रोथ की वजह से एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कतर का नेशनल विजन 2030 एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने पर बहुत ज्यादा जोर देता है। आज के टाइम में इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस एनवायरमेंट पर बहुत असर डालते हैं, जैसे पोल्यूशन है, एनर्जी है, यूज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इन सारी चीजों को अब समझना गहराई से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसे में एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट में, और वो टर्म है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना आज के टाइम में चॉइस नहीं, इट हैज बिकम मैंडेटरी। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जरूरी हो गई हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज सेफ रहें। वहीं पर एक और वर्ड है ग्रीन इनिशिएटिव्स। ये क्या है? देखिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स में रिन्यूएबल एनर्जी, रीसाइक्लिंग और एनर्जी यानी इफिशिएंट सिस्टम्स शामिल हैं। जब कंपनीज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं तो वो सिर्फ प्लैनेट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती बल्कि अपनी सस्टेनेबिलिटी भी इम्प्रूव कर रही होती है। कतर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और एनवायरमेंटल पॉलिसीज के जरिए सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है। इससे ग्लोबल लेवल पर भी कंट्री की इमेज स्ट्रॉन्ग बन रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सस्टेनेबिलिटी अब चॉइस नहीं है, जरूरत बन चुकी है। जो कंट्रीज और जो बिजनेसेस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं यानी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म विजन से बाहर हैं। तो कतर का नेशनल विजन 2030 कहीं ना कहीं ग्रीन इनिशिएटिव्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर जोर देता है। कतर का विजन 2030 की ये अप्रोच जो है वो रिस्पॉन्सिबल और फॉरवर्ड थिंकिंग का एक खूबसूरत नतीजा भी है, जो कहीं ना कहीं इस बात पर जोर देता है कि हमें इन रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करना है, सेव करना है। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज मैं इस टर्म को आपके साथ शेयर करके कुछ हद तक थोड़ा बहुत समझाने में कामयाब रही हूँ। मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या वाकई आप मेरे इन सेगमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, क्या किसी तरह से कोई आपको इससे फायदा मिल रहा है। इफ यस, टू लेट मी नो ऑन द नंबर 666-22107। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि कोई और ऐसी टर्म या टर्मिनोलॉजी है जिसे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं, तो मैं भी पढ़ूंगी, आपको भी थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगी। बट फिलहाल के लिए यहाँ से जाऊंगी, मेरा मतलब इजाजत लूंगी. आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

स्कैम अलर्ट। दोस्तों वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स के बढ़ते क्रेज के बीच एक नया रियल स्टेट फ्रॉड मार्केट में आया है, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी प्रॉपर्टी का स्कैम। फ्रॉडस्टर्स अब वर्चुअल वर्ल्ड में फेक प्रॉपर्टीज, कमर्शियल लैंड्स और डिजिटल लग्जरी एसेट्स बेच रहे हैं। ये लोग आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करते हैं और बायर्स को झूठे डॉक्यूमेंट्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाकर फंसाते हैं। मासूम इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो किसी बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें मोटा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जब वो पैसा क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी में पे कर देते हैं तो वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही रातों रात गायब हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लूप होल्स निकल आते हैं। 2026 में मेटावर्स ओनरशिप के क्लियर लॉज ना होने की वजह से विक्टिम्स को लीगल हेल्प मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। डिजिटल एसेट्स खरीदते वक्त पूरी रिसर्च और वेरीफाइड प्लेटफॉर्म का ही सिलेक्शन करना आपको इस नए मेटावर्स फ्रॉड से बचा सकता है। कई बार फेक वर्चुअल ब्रोकर्स खुद को बड़े प्लेटफॉर्म के एजेंट्स बताकर सोशल मीडिया पर फेक लिंक्स शेयर करते हैं जो असल में फिशिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, और आपका पूरा डिजिटल वॉलेट लिंक होते ही साफ हो जाता है। दोस्तों आपको FM 107 पे सॉल्यूशन भी मिलता है। अगर कोई ब्रोकर आपसे आउट ऑफ प्लेटफॉर्म पेमेंट करने को कहे तो तुरंत रुक जाएं, क्योंकि ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। वर्चुअल एसेट्स की मार्केट रिलायबिलिटी चेक करने के लिए उनके कम्युनिटी फोरम और पास्ट ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री को ओपन सोर्स ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर जरूरी है कि वेरीफाई करें। दोस्तों ये था नए जमाने का नया स्कैम मेटा।

0: थैंक यू।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बच्चों, नौजवानों और बड़ों सबकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है और वो है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम से मुराद मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर, टीवी और जो दूसरे डिजिटल आलात के सामने गुजारा जाने वाला वक्त है। अगरचे टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सेहत के मुख्तलिफ मसाइल पैदा कर सकता है। सबसे आम मसला आंखों की थकन है। तवील वक्त तक स्क्रीन देखने से आंखों में खुश्की, जलन, धुंधलापन और सर दर्द हो सकता है। इस हालत को हम डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। स्क्रीन के सामने मुसलसल बैठने से गर्दन, कंधों और कमर का दर्द भी पैदा हो सकता है। गलत अंदाज में मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करने से हमारे मसल्स पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा ज्यादा स्क्रीन टाइम जिस्मानी सरगर्मियों में कमी का बायस बनता है। जब हम ज्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं तो हमारा वजन बढ़ने लगता है, यानी मोटापे की तरफ माइल हो जाते हैं। डायबिटीज और दिल की बीमारियों के खतरात में इजाफा हो सकता है। बच्चों में जरूरत से ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करना जिस्मानी खेल कूद को कम कर देता है, जिससे उनकी जिस्मानी नशोनुमा मुतासर होती है। तो अहम बात यह है कि हम अपनी सेहत का तहफ्फुज कैसे करें। तो लिसनर्स, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए तकरीबन 20 फुट दूर किसी चीज को देखिए। इसे हम 20-20-20 रूल कहते हैं। स्क्रीन इस्तेमाल करते वक्त आप सीधा बैठिए, मोबाइल या कंप्यूटर को आंखों की मुनासिब सतह पर रखिए और हर घंटे के बाद चंद मिनट के लिए खड़े होकर आप वॉक कीजिए। बच्चों को रोजाना जिस्मानी सरगर्मियों और बैरूनी खेलों की तरगीब देना भी बहुत जरूरी है। और ये याद रखना भी कि टेक्नोलॉजी हमारी मददगार है, लेकिन उसका मतवाजन इस्तेमाल ही सेहतमंद जिंदगी की जमानत है।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। तो आज हम जिस सुन्नत पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है हया। हया ईमान का जेवर है। जिस दिल में हया नहीं वो गुनाहों के करीब हो जाता है, और जिस दिल में हया हो वो बुराइयों से बचा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान की शाख करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली नबुवतों के कलिमात में से ये भी है, जब तुम्हें हया न रहे तो जो चाहो करो। यानी अगर दिल से हया निकल जाए तो इंसान बुराइयों में पड़ जाता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं। सबसे आला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, सबसे अतना रास्ते से तकलीफ देह चीज हटाना है, और हया ईमान की एक शाख है। तो सामीन, अपनी गुफ्तगू, लिबास और रवैये में हया अपनाना, ऐसे आमाल से बचना जिन पर अल्लाह और बंदों के सामने शर्मिंदगी हो, बच्चों और नौजवानों को हया की अमली तरबियत देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ईमान का एक अहम शोबा, एक अहम शाख करार दिया है। तो सामीन, आज की सुन्नत थी हया। आइए हम सब अपनी जिंदगी को बाहया बनाएं ताकि ईमान की शाख बाकी शाखों को संवार दे और हमारी दुनिया व आखिरत नूर और इज्जत से भर जाए। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: Gen Z Gen X Gen Alpha Millennials ये सब महज टर्म्स नहीं हैं ये अलग अलग ख्याल

0: आदतें और अलग इराज़ हैं। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा? जनरेशन टॉक दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
1: ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे आज के जनरेशन टॉक के लिए बहुत स्पेशल लोग हैं, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज दे आर लाइक फैमिली टू मी। एंड लाइक क्या, दे आर फैमिली टू मी। बहुत वक्त से हम एक दूसरे को जानते हैं, मिलना मिलाना कम होता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका ऐसी गिला शिकवा रहता है, तो इनको एंड में जाके कभी ना कभी पड़ोसी बना लेंगे हम। बट फॉर नाउ दे आर हेयर, एंड बड़ी ही टैलेंटेड फैमिली है, बहुत खतरनाक डायनेमिक है इस फैमिली का। और क्योंकि जो एक तरीके से मैं इनको हेड ऑफ द फैमिली बोल सकता हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स खवातीन तो सीईओ हो जाते हैं घर की ऑटोमेटिकली। सो आई वॉन्ट दिस टू गो द वे वी वॉन्ट।

0: मैं वाजिदा
1: समी सदीकी। हाँ वाजिदा जी, ये जो दो बैठी हैं इनमें से एक बात करेंगी। आपका नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सरीना समी सदीकी है।
1: हाँ ओके, तो आप दोनों जो हैं स्पेशली मुझे लगता है कि भाई साहब क्योंकि अकेले पड़ जाते होंगे, वो उन पे कितना दबाव रहता है पहले मुझे बताइए, क्या उन पे कोई प्रेशर रहता है, कितनी चलती है उनके घर में? यहाँ से शुरुआत करते हैं।
2: अब सब घर के राज तो आपके सामने नहीं खोल सकते।
1: नहीं, उनको उनका चेहरा, मैं उनका चेहरा मेरे सामने आ जाता है।
2: नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनकी भी चलती है
1: थोड़ा
2: भी, उनकी भी चलती
1: ऑन अ फ्राइडे और अ सैटरडे में।
2: या नहीं, उनकी कुछ चीजें स्पेसिफिक उसमें उनकी चलती है, जैसे इफ इट इज टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ऐसी कोई चीज खरीदनी हो या उसमें कुछ ओपिनियन,
1: हम इसी काम आते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा क्या कहना है कि किसका ज्यादा रहता है दबदबा या खौफ रहता है किसी घर में, किसी का? मम्मी का।
2: उसकी मम्मी का,
1: मम्मी का खौफ रहता
2: है सबसे ज्यादा।
1: लगती तो नहीं है यार,
2: देखने में लगती नहीं है मम्मी डरावनी।
1: बहन ये क्या हो रहा है ये बताइए।
2: नहीं, ये अभी थोड़ा अपसेट है मुझसे, इसलिए शायद थोड़ी उसकी पॉकेट मनी बढ़ानी पड़ेगी।
1: बढ़ाइए ये,
2: एक्चुअली वो काम मुझे पहले करके आना चाहिए।
1: पॉकेट मनी रिश्वत बन जाएगी बहुत जल्दी। बट टॉकिंग टू यू, ये बताओ मुझे, बिकॉज यू सो टैलेंटेड, इतना स्पोर्टिंग इवेंट्स में रिकग्निशन मिला है तुम्हें और तुमने कतर को भी रिप्रेजेंट किया, ऑल ऑफ दीस थिंग्स हैव हैपेंड, जो तुम्हारी जनरेशन है उसमें हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं निकलता है। अब ये नहीं कह रहे कि हमारे जनरेशन में सारे टैलेंटेड थे, बट द प्रॉब्लम आज की उसमें लोग कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, लाइक ऑफेंस ज्यादा हो जाता है, ऑफेंडेड ज्यादा हो जाता है ना, एंड द काइंड ऑफ ओवर इमोशनल सॉर्ट ऑफ पीपल। डू यू अग्री और डिसएग्री?
2: आई डू अग्री। इसके लिए एक टर्म भी है, स्नोफ्लेक्स।
1: हाँ, यस स्नोफ्लेक्स। हाँ,
2: सो आई डू अग्री। आई थिंक मेजॉरिटी हैव गॉटन सॉफ्ट, एस्पेशली द मेन। सॉरी,
1: गलत नहीं है, एकदम सही कह रही हो। मैं तो चौड़े पे कहूंगा, मैं इस मिशन को होने तो कोई टेंशन नहीं है
2: जी। सो आई डू थिंक दैट दे हैव गॉटन सॉफ्ट बिकॉज़ यू नो ऐसा लग्जरी मिल जाती है।
1: हाँ,
2: so you don't go through the hardship ऐसा।
1: पर क्या तुम्हारे साथ भी रहता है कि emotion आया तो चलो social media के जरिए subtle तरीके से किसी को बता दिया जाए कि नाराजगी है, वो चलता है, तुम्हारा भी चलता है ऐसा कुछ?
2: नहीं,
1: not really but are you active on social media?
2: I am.
1: Okay all right, coming back to you, are you there on social media?
2: I am there but only on Facebook and that too also not too much.
1: So क्या usage रहता है आपका social media का?
2: नहीं, अभी actually frankly speaking कुछ ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि मैं Facebook अगर open भी करती हूँ तो it is mostly you know to watch reels because I am quite introvert. I don't like to share. So
1: आज तो बोलना पड़ेगा।
2: अभी जो है ये बहुत सॉफ्ट पेरेंटिंग ये जो टर्म है, सो दैट इज वेरी कॉमन, तो ये बहुत ज्यादा इन है आजकल। लाइक यू नो बच्चों को डांटो नहीं, उनके ऊपर कुछ यू नो इमोशनली वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। My daughter is giving me looks from there. but that's true, you know. जैसे कि हमारे पेरेंट्स थे, वो हमेशा बोलने से पहले सोचते नहीं थे, एक दो लगा देने के बाद भी जोर से बुला लेते थे तो हम चले जाते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी ये है कि आपको बहुत ज्यादा बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है कि यू नो अगर आपने उनको ऐसा बोल दिया तो उनके दिमाग पे कुछ असर हो जाएगा, वो ऐसे सोचने लगेंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे। तो आई पर्सनली फील कि अभी ये जो पेरेंटिंग है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट पेरेंटिंग हो गई है, एंड टू सम एक्सटेंट आई थिंक दिस इज नॉट राइट, बट यू नो एवरीबॉडी इज डूइंग दैट। कि अभी इट्स वेरी इजीली अवेलेबल कि आपको कोई इशू हो रहा है आप थेरेपी करवा लो, यू नो यू गो टू साइकियाट्रिस्ट, यू गो टू साइकोलॉजिस्ट, और
1: हर थप्पड़ में साइकोलॉजिस्ट,
2: एक थप्पड़ में सब एक साथ में आ जाता था, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बट अब ये है कि हर स्कूल में है, लाइक यू नो इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, अगर आप थोड़े से चुप है बच्चे अगर कोई क्लास में, तो कहते अरे पेरेंट्स को बुला के बोलते कि अरे शायद यू नो ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, डू यू ECSES, सो डू यू थिंक दैट यू नो ही नीड्स टू टॉक टू समवन। ये चीज हमारे टाइम पे नहीं थी कि यू नीड टू टॉक टू समवन, ऐसा कुछ नहीं होता था। फ्रेंड्स है, कजन्स है, पेरेंट्स है, they were more than enough. Now it's like you know that approach has changed completely.
1: ना तो स्कूल में बिठाई हो रही है ना घर में बिठाई हो रही है,
2: बिठाई कहीं भी नहीं हो रही। और आप अगर कुछ आपने जोर से बोल भी दिए तो यू नो ये डर होता है कि अरे बच्चा कुछ एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले ले, तो मतलब वो एक तरह से कहते हैं ब्लैकमेलिंग टाइप।
1: बट जैसे मैं देख रहा था उस दिन, कभी ऐसा हुआ है कि मुंह से, जैसे आजकल मैंने देखा है कि बोल देते हैं मम्मी को भी, ब्रो व्हाट इज दिस, हैज इट एवर हैपेंड टू यू?
2: यस
1: इट हैपेंस।
2: आई फील लाइक मी एंड मम्मा

0: have that relationship. बोल सकते हैं दूसरे को and उनको बुरा नहीं लगेगा. She'll understand.
1: बड़े एक बड़ा खतरनाक सवाल है. This is a very tough question. Social media पे how comfortable are you on a scale of 1 to 10 adding her on your profile?
0: On my profile?
1: Yeah.
0: I would be pretty comfortable.
1: Pretty comfortable.
0: Yeah, ऐसा मतलब कुछ डर नहीं है. I don't
1: चलेगा कोई
0: चलेगा हाँ.
1: Okay, okay. But do you think के parents को usually add करना चाहिए मतलब
0: उनके perspective से तो करना ही पड़ेगा.
1: वो है.
0: नहीं आजकल बच्चों के पास एक account नहीं होते, दो तीन होते. So एक आध
1: क्या है उन्होंने सीधा देगा.
0: तो वो एक आध में आपको add करके आपको भी खुश कर सकते हैं. I'm sure you know most of the parents would agree with me.
1: But do you think add करना चाहिए मतलब बच्चों को या फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए. चलो यार कोई टेंशन नहीं.
0: I think
1: because as you said कि प्रोफाइल तो बन जाएगी. प्रोफाइल बनाने में क्या है, एक दिन में 10 बन जाएंगी.
0: Yes.
1: But do you think naturally एक natural instinct है कि add करना
0: चाहिए. I mean my personal opinion is कि मुझे ना ही करे तो better है. Because then I'll keep checking everything, then I'll keep questioning. So I'm that kind of a person, you know. It's better that, you know, I'm kept away from it. So it's okay, I'm happy.
1: So kabhi comment comment karti hai mummy?
0: Nahin. Ab I'm not on Facebook itna. Papa karte
1: hai.
0: Wo active hai, mamma nahi. Is yes, yes, yes. He's the, you know, cool guy. He doesn't mind. He's fine with everything.
1: Achso.
0: I'm a bit like, you know, jaise hoti hai mothers usually. Okay. I want to, you know, make sure everything is okay.
1: Har jagah.
0: Aankhe har jagah hai.
1: Ye
0: har jagah hai. Kaan bhi hote hai unhe kone mein.
1: Jo tumne nahi bhi post kiya wo bhi unko pata hai.
0: Ye unko pata rehta hai. Motherly instinct in bahut strong hai. बोलने से पहले पता है.
1: ममता बहुत गहरी. ओके वेरी नाइस. विच इज गुड इन अ वे. जरूरी भी एक आदमी थोड़ा सा हार्ट फ्लैश होना पड़ेगा वरना मसला हो जाएगा. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट हर एंड वन थिंग हेट तो नहीं. हेट इज अ वेरी बिग वर्ड बट तुम्हें लगता है यार ये थोड़ा सा मम्मी अगर मान जाए इस मामले में तो बढ़िया हो जाएगा.
0: समथिंग आई लाइक अबाउट हर इज दैट कभी कभार शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग. कभी कभार कीवर्ड
1: हां कीवर्ड
0: तो कि मतलब कंपेयर टू अदर पेरेंट्स वो अंडरस्टैंडिंग है. अभी यू नो देव नेवर स्टॉप मी इन माय स्पोर्ट्स. कुछ भी ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. जाओ करो
1: व्हिच
0: इज वेरी गुड. व्हिच आई डोंट सी वेरी ऑफन
1: इतना. इट डजंट हैपन एवरी.
0: हां कि पढ़ाई को थोड़ा साइड करके ठीक है स्पोर्ट्स कर रहे हो अच्छा कर रहे हो कंटिन्यू. दैट इज वो तो उनको मैं हमेशा बोलती हूं दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट हर. समथिंग आई वुडंट लाइक वो हेलीकॉप्टर मॉम है.
1: अच्छा
0: तो उनको कॉन्स्टेंटली शी नीड्स टू नो किधर कहाँ क्यों किसके साथ.
1: हुई, हुई, हुई.
0: वो तो उनको जानना ही जानना है. कब निकल रहे हो घर से, कब घर आ रहे हो, कैसे जा रहे हो, सब सब.
1: क्या बात है
0: जी. यू आई थिंक हम लोग ने लाइक वी स्पोक अबाउट दिस रिसेंटली एज वेल. मैंने भी उनको बोला था कि चलो आई एम 20 नाउ थोड़ा छूट दे दो थोड़ा सा लेट मी गो. बट वो
1: एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तुम्हारी.
0: हाँ उन्होंने बोली नहीं तुम यू आर माई चाइल्ड वो मुझसे नहीं होगा. Okay, this is love. It's okay. And I'm sure she'll understand it one day. I trust her completely. The only thing is I keep checking is just to make sure, you know, she's safe.
1: Just to make sure you know.
0: Yes.
1: Why is that? Achha. So, dad se kya rehta hai? Papa ka kya rehta scenes?
0: Papa ka to, abhi I drive.
1: Haan.
0: So, abhi gaadi bhi hai. Unka ye hai ki 9 baje ke baad ghar pe. मैं जब भी मैं बाहर निकली हूँ हमेशा झगड़ा होता है कि मैं 9 बजे तक तो नहीं आने वाली. हमेशा झगड़ा यही रहता है. घर आओ तो वही सीन है. सर्किल है खत्म ही नहीं होता. तो पापा का ये जाओ बाहर 9 बजे से पहले. अगर गाड़ी लेके जा रहे हो 9 बजे से पहले घर पे.
1: अच्छा
0: बोलते रात में सेफ नहीं है ये नहीं. तो पापा का थोड़ा वो उस साइड पे है कि पर इतना नहीं किसके साथ कहाँ.
1: हाँ.
0: पता भी चल जाता है मस्ती मजाक में
1: निकाल देते हैं.
0: हाँ बस.
1: हाँ अच्छा.
0: उनका बस ये है आई थिंक दोनों का मेन कंसर्न बस सेफ्टी है.
1: क्या बात. इज शी अ गुड ड्राइवर बाय द वे.
0: शी इज अ गुड ड्राइवर बट यू नो वो मुझे एक हमेशा डर रहता है ये जब भी जाती है तो आई मेक श्योर यू नो दैट आई कीप रिमाइंडिंग हर व्हाट ऑल थिंग्स टू डू एंड फॉलो. बट अल्हम्दुलिल्लाह शी ड्राइव्स.
1: दैट्स रियली गुड. पर ये फैमिली को बाउंड एक साथ रखने के लिए यू नो यू हैव दैट क्लोज निटेड फैमिलीज हमारी होती हैं इंडियन फैमिलीज. क्या उसके लिए कर रहे हैं आप. डू यू हैव एनीथिंग एट होम के जैसे कुछ लोग करते हैं कि साथ में खाना खाएंगे साथ में मूवी देखेंगे समथिंग रिलेटेड टू दैट. तो क्या रहता है बॉन्डिंग के लिए. क्या है
0: बॉन्डिंग के लिए. एक चीज हमारे पास है जो वो है पानी पूरी. ये एक चीज ऐसी है कि जब घर में पानी पूरी बनती घर में बनती है.
1: अरे क्या बात.
0: हाँ तब इट्स लाइक यू नो एवरीबॉडी इज टुगेदर बिकॉज़ वो एक ऐसी चीज है जो अकेले अकेले नहीं खा सकते. तो हमारे पास अगर मुझे ऐसा चाहिए कि यू नो आज सब साथ में बैठे तो पानी पूरी बना दो.

0: वहाँ देखिए ट्रिगर पॉइंट है।
1: यस ट्रू ट्रू।
0: कौन ज्यादा खाने वाला है पानी पूरी घर में? वैसे
2: सभी खाते हैं,
1: सबका एकदम इक्वल लेवल हो जाता है।
2: यस
0: ओके। क्या डू यू कुक को सीखा?
2: जी जी,
0: बिकॉज शी इज फैंटास्टिक, मतलब क्या मतलब जबरदस्त
2: सीखा है।
0: तो आई कैन दाल से आगे बढ़िए खानी।
2: जी जी, बस यू मेक्स चिकन करी।
0: ओके अरे क्या बात है।
2: यस यस, नेक्स्ट टाइम आ जा, हम सो गए ना तब सरीना बनाएगी।
0: ठीक है ये जरूर ट्राई करेंगे। बट क्या सबके घर में चॉइसेस अलग अलग हैं इन टर्म्स ऑफ मूवी सीरीज कुछ फॉलो करने में, या फिर ऐसा रहता है कि तुम भाई ये देखना जरूरी है? होता नहीं है समटाइम्स यू वॉच समथिंग अलोन एंड यू ब्रिंग दैट अप एज अ रिकमेंडेशन कि भाई तुम भी देखना, या फिर फैमिली का एक मेन सीरीज ये साथ में बैठते चलो, बट ऐसा कुछ है?
2: एक दो मूवीज है हमारी जो कॉमन है, जो आई फील द सेम वे, राइट?
1: फॉर मम्मा पापा इट्स मलयालम मूवीज
2: नाउअडेज। यस यस, ऑन नेटफ्लिक्स।
0: या दे थ्रिलर विलर देख रहे हैं।
1: हां, वीकेंड्स को लोग का यही चलता है टीवी, अगर बाहर जाके देखो तो दे आर वाचिंग अ मलयालम मूवी।
0: ओके,
1: हां
2: विद सबटाइटल्स डेफिनेटली।
0: ऑफ कोर्स सर, मैं भी आदरणीय का जाता हूं, अगर आप कहते मुझे समझ में आने लगी। अच्छा ठीक है, ओके।
1: और बिलाल एंड पापा का भी अलग डायनामिक है, दे विल वॉच थ्रिलर लाइक स्क्विड गेम्स, वो लोग ने साथ में देखा था।
0: ओके,
1: तो सबका मोस्टली विद पापा।
0: ओके,
1: एक एक एक एक ऐसा ही चलता है।
0: ही इज लाइक द कूल टेकी गाय एट होम, है ना? मूवी इज रियली रियली गुड। ये होना भी बहुत जरूरी है। घर पे कुछ ऐसे सर्टेन रूल्स हैं अपार्ट फ्रॉम यू कमिंग बिफोर 9, ऐसा कोई ऐसा रूल है जो
1: आजकल फिलहाल तो यही रूल है?
0: एवरीबॉडी फॉलोस,
1: एवरीबॉडी फॉलोस।
0: देखो कुछ घरों में होता है ऐसे चप्पल जो है अंदर नहीं आनी चाहिए।
1: हां यस,
0: इतने टाइम पे ये होना चाहिए, उतना होना चाहिए, ऐसा कुछ है?
2: चप्पल तो यस, वो पहले से ही बोला हुआ है कि भाई बाहर की चप्पल को आप घर नहीं, वो दरवाजा खोल के अगर शूज के साथ अंदर आ गए तो बेडरूम से आवाज आएगी, जूते निकालो जूते निकालो फिर अंदर घुसो।
0: ओके ओके। और कहाँ कहाँ घूमने को मिला तुम्हें, कहाँ कहाँ घुमाया आपने इंडिया में?
2: इंडिया में हम लोगों ने नॉर्थ का टूर किया था, लाइक यू नो अमृतसर, दिल्ली, कुल्लू मनाली,
1: ट्रेन लेके, ट्रेन का एक्सपीरियंस।
2: हां, दैट वाज राजधानी, वी केम फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे।
0: आपकी कोर जगह बताएं, आप है कहां से लोग, जरा ये बताएं पहले तो।
2: हम है बॉम्बे से।
0: बॉम्बे से मैं अक्सर बॉम्बे वाले सवाल पूछता हूं कि चलो हमारे हमारी हमारे लिए माफ है कि गोवा का प्लान हमारा नहीं बनता, आप लोगों क्यों नहीं बन रहा भाई?
2: बिकॉज माई पेरेंट्स दे आर यू नो फ्रॉम कोंकण रीजन व्हिच इज
0: वेरी नाइस,
2: क्वाइट क्लोज टू गोवा, लाइक यू नो 2 hours ड्राइव फ्रॉम माई पेरेंट्स प्लेस, नेटिव प्लेस। तो जैसे कि हम जब भी हमारे नेटिव प्लेस जाते हैं तो गोवा तो जाते हैं।
3: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर, ओनली ऑन FM 107।
0: एक जनरेशन गैप जो आया है वो आपके और आई एम प्रीटी श्योर आपके मम्मी पापा के बीच में होगा, लेकिन इतना बड़ा ड्रास्टिक नहीं, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स हैव कम इन। उस टाइम पे ये था कि चिल्ला दिया तो कोने में चले गए, एंड देन फिर जब भूख लगी तो फिर खाना तो खाना है,
2: खाना,
0: सो यू हैव टू कम बैक।
2: यस,
0: नाउ द थिंग्स आर डिफरेंट
2: ऑफ कोर्स।
0: तो अभी कोई ऐसा होता है कि मतलब झाड़ दिया उसका लग रहा है कि अभी मैं जाऊं पूछूं ये खुद आएगी, क्या क्या रहता है?
2: नहीं, अभी इट्स वेरी डिफरेंट, ट्रस्ट मी, बिकॉज अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ घर बड़े हैं।
0: yeah.
2: जब जैसे बॉम्बे में रहते थे तो इतने बड़े घर दिए,
0: कहाँ भागे यार,
2: तो भाग के जाए ये भी तो कहाँ जाए, पर यहाँ अभी चलो सब अपने अपने रूम में घुस जाते हैं, क्या फोन को नॉक करना पड़ता है कि आओ बाहर आओ, अगर खाना नहीं भी खा रहे हैं तो यू नो वी नो कि कुछ देर बाद ये लोग फोन से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेंगे।
0: थोड़ा मसला
2: डिपेंडेंसी भी चली गई कि भाई खाना अगर बाहर नहीं आए तो खाना नहीं मिलेगा, वो भी चली गई।
0: हाँ।
2: कि भाई ये लोग तो रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा वास्ट डिफरेंस है। ना पहले ऐसा होता था कि हम अगर अपसेट है गुस्सा है तो मम्मी आ रही है, अच्छा चलो बेटा आ जाओ खा लो, कोई बात नहीं चलो खा लो, पापा ने कुछ बोल दिए तो, बट अब वो चीज नहीं है। अब इनको गुस्सा आ गया, नहीं नहीं खाना है, भूख नहीं है।
0: डू यू वेट फॉर हर टू नॉक एट योर डोर, या फिर बात करने का वेट करते हैं, या फिर आपको लगता है अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा एंड ऑफ द डे बिकॉज माँ है, तो क्या रहता है?
1: फॉर मी इनका कैसा है, ये डांटती है उसके बाद में things just automatically खुद से ठीक हो जाती, कभी कभार, rarely she comes and she like अच्छा चलो sorry,
0: अच्छा okay,
1: कभी कभार,
0: नहीं बोला
1: इनका सॉरी, मतलब once in a blue moon होता है।
0: ठीक है,
2: ये अग्री नहीं करूंगी, नहीं क्यों नहीं नहीं बोलते सॉरी, मैं बोलती हूँ ज्यादा बोलती हूँ,
0: अरे रे रे रे रे रे,
1: ये हो गया क्लास, बोलती नहीं वो आती है और she'll just give a hug कभी कभार, वो इज
0: बिगर देन अ सॉरी,
1: हाँ सॉरी मुंह से नहीं निकलता, इनका है
0: वो सॉरी है,
1: वो सॉरी है,
2: But yes, some things, you know, sometimes you realize कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा फर्क है जो
0: पहले जंक फूड की डेफिनेशन वाज टोटली डिफरेंट फॉर अस मेजरली बट अभी

0: जंक फूड की डेफिनेशन बहुत अलग है, यू नो, यू काइंड ऑफ हैव एवरीथिंग. हेल्दी जंक फूड इज आल्सो कैटेगरी दीस डेज, राइट? हाउ हाउ डिड यू कोप जब ये छोटे होंगे? आई एम प्रीटी श्योर उनको शौक रहता होगा चटपटे चीजें खाने हैं जो भी, तो वो कैसे आपने बैलेंस किया या अभी भी बैलेंस करने की कोशिश जारी है?
1: नहीं, मुझे लगता है छोटे थे तब ज्यादा बेटर था, क्योंकि तब मैं अपने अपने हिसाब से इनको खिला सकती.
0: अच्छा, ओके.
1: यस यस, जब तक ये छोटे थे तब तक तो मैं सब खिला देती थी,
0: क्योंकि एक है वो अपने अपने बच्चे को ना वो कोल्ड ड्रिंक में पानी डाल के पिलाती है, इतनी सी कोल्ड ड्रिंक होती है और बाकी पूरा पानी होता है. जस्ट टू मेक श्योर उसको पता नहीं लगे कोल्ड ड्रिंक क्या.
1: यस यस,
0: हैव यू डन समथिंग ऑन दिस?
1: इसको मेडिसिन जो मुझे पिलानी होती थी एडोल बच्चों को, तो वो मैं जूस में डाल देती थी, इनको बोलती थी ये जूस है.
0: अच्छा,
1: तो वो मेडिसिन वैसे पिला देती थी. बट फूड का ये है कि जब तक छोटे थे तब तक तो दे एट एवरीथिंग, जो भी मैं खिलाऊं वो सब खा लेते थे.
0: ओके.
1: फिर जब थोड़े बड़े हो गए तब इनकी फिर प्रेफरेंसेस चेंज हो गए.
0: अच्छा, पर अभी रेशियो क्या है तुम्हारा कि घर का खाना वर्सेस फूड फ्रॉम आउटसाइड क्या रहता है?
2: चिकन
0: कैसे भी मिल जाए,
2: कैसे भी मिल जाए, बस चिकन मिल जाए तो मैं खा लूंगी.
0: और स्पाइसीनेस जो है वो क्या सीन है घर में? सब स्पाइसी खाने वाले हैं या
1: सब खाते हैं?
0: सब, which is good. ये तो बहुत अच्छी बात है. ये जो जनरेशन टॉक होती है हमेशा हम देखते हैं, तो उन्होंने बोला ना कि मैं भी पक गया उस दिन, हमारे टाइम पे होता था वो होता था वो होता था, हम भी सुन रहे थे कि हम पैदल जाते थे और होता था वो होता था. ठीक है, बट वॉट हैव यू गॉटन फ्रॉम दिस जनरेशन, हर जनरेशन? कुछ ऐसा लगता है कि यार इनके टाइम पे ये बढ़िया हो रहा था, इस टाइम पे नहीं होता तो चल जाता कुछ ऐसा?
2: I feel like उनके टाइम में the lack of technology was a good thing.
0: Was a good thing.
2: हाँ, कि ये लोग बाहर निकल पाते थे. अभी कैसा हो जाता है, मिलने की जरूरत नहीं होती है, फोन पे बात कर लिए हो गया, बस मिलना कम हो रहा है, like face to face वो conversation नहीं हो रही है. तो I feel like that is something which would have been good अगर उनके generation से हमारे इसमें आती.
0: हाँ, okay. तो क्योंकि सारे terms पता है, VHS वगैरह सब कुछ बताया तुम्हें, VHS क्या होते थे, you know? सुना है ना? चलो सुना है, ये बहुत बड़ी बात है. अगर तुम कहती कि नहीं पता भी पंगा हो जाता.
2: बिलाल को नहीं पता होगा,
1: वो सब भी बताते रहते उसको, यू नो, कि हमारे बिल्डिंग में हमारे घर में सबसे पहले आया था.
0: yeah.
1: फिर यू नो, जिसके घर पे भी वो हो तो वो थोड़ा बोलते ना, थोड़ा रॉयल हो जाता था.
0: yeah.
1: अभी वो कसेट आएगी, वो कसेट लगाएंगे. hmm. तो जब कसेट लगती थी तो ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ घर के लोग बैठ के देख रहे,
0: मोहल्ले के
1: और आस पास के बिल्डिंग के सब लोग आके बैठ जाते थे.
0: yeah, yeah, yeah.
1: तो वो एक अलग टाइप का माहौल होता था, शक्तिमान. हाँ. ये सारी चीजें, एक जायंट रोबोट, तो ये सब चीजें ऐसी थी कि यू नो एवरीबॉडी यूज्ड टू वेट फॉर इट. वो वंस अ वीक आता था और उसमें बिल्डिंग के बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे, तो वो एक थोड़ा सा
0: फोकस के साथ देख रहे हैं सब कुछ बना हुआ है,
1: अलग सा वो माहौल था. वो चीज डेफिनेटली अभी अभी तो पॉसिबल नहीं.
0: कुछ कुछ पहले का देखा है तुमने? कुछ
1: दिखाए हैं इनको,
2: बचपन में दिखाते थे.
0: अभी हैव यू सीन समथिंग?
1: आई रिमेम्बर शोइंग यू तेनाली रमन.
2: Yes, उसकी बुक्स, आई थिंक
1: बुक्स नहीं, उसकी सीरीज यूट्यूब पे मैंने दिखाई थी बीच. अभी
2: आई थिंक मोस्ट रीसेंट होल थिंग शी इज शोन अस इज एक मूवी, जब सैयार आई थी उनने बोली सैयार कुछ भी नहीं, तुम तेरे नाम देखो, तेरे नाम खा के भी.
1: यस यस,
2: हाँ.
1: सैयारा की इतनी हाइप की हुई थी, तो आई वॉज लाइक यार ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको एक्चुअल ट्रेजिक लव स्टोरी देखनी है तो तेरे नाम देखो, उससे भी ज्यादा देखिए तो सदमा देखो, कमल हसन वाली.
0: कहाँ ले गई यार, सदमा मत दिखाएगा प्लीज.
1: सैयारा इज लाइक यू नो, ये पूरा मेटा बेस पे कुछ है ही नहीं.
0: तो बट डू यू थिंक वीडियो गेम्स एंड सीरीज एंड मूवीज दोनों का ओपिनियन चाहिए मुझे, आप बताइएगा, डज इट समवट डिस्ट्रैक्ट youngsters, या फिर आपको लगता है video game is also good? Because मैं दो तीन चीजें इसके background backdrop में बता देता हूँ. जैसे कि अभी recently भी यहाँ की universities ने भी they have introduced courses which are for game developers and engine में जिसमें game बनता है उसमें सब कुछ है, and gaming has evolved. पर कहीं ना कहीं लोग अटके हुए हैं उस जमाने में जब उसमें सिर्फ एक गोली से चलाते रहते, तुम क्या करते रहते, राइट? तो वो एक एक गैप है जो समझना नहीं चाह रहे कुछ लोग. हैव यू सीन दैट, अंडरस्टूड इट, एंड देन लाइक ठीक है, गेमिंग इज नॉट दैट बैड ऑफ अ थिंग, क्या ओपिनियन है आपका? क्योंकि लोग अब अच्छे स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, 13-13 साल 14-14 साल के बच्चे ने अर्निंग, वेल अर्निंग की भी बात नहीं है, बट काइंड ऑफ एक कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप हो रही है, उस पर क्या कहना है आपका?
1: Games to some extent I don't mind, like you know my son, yeah. he plays, so it's okay if there's a limit to it, because I at the same time want him to go out and play as well, you know, physical activity bhi zaruri hai.
0: If he starts earning then what?
1: At this stage, I won't prefer, because you know I want him to focus on his studies. ठीक है, you want to earn, it's a good thing, enterprising skills है तो अच्छी बात है, but at the moment I think उसका पूरा focus studies पे होना चाहिए.
0: Okay, तुम्हारा क्या कहना है इसपे?
2: Somewhat I agree.
0: Okay,
2: but the one thing I remember is Bilal ने जब alphabet सीखा था, that was through the keyboard.
0: Yeah, that's what it is.
2: A, B, C, D. उसने पूरा type,
0: sounds,
2: reading, सब कुछ उसने through the keyboard, through his games, through YouTube. उसने सब उससे सीखा है. तो I feel like if it's used properly, हाँ, it's a good thing.
0: Okay, okay. Internet पे अगर कोई जैसे उसकी बिलाल की एज का हो या फिर let's say तुम जो कि पांच साल छोटा भी हो, if he starts earning, तुम्हारा क्या opinion रहेगा? What would you say to that?
2: I feel like इतनी छोटी उम्र में when you start earning and the gaming streamers वगैरह they earn in big amount, ऐसे नहीं कि लोग एकदम छोटा छोटा
0: दे,
2: that distracts you.
0: इसमें दो केसेस है ना, कि एक तो earning माँबाप तक पहुँच जाती है, because then you don't know what happened, and then there are things कि लोग advice देते हैं, भाई तुम्हें समझ नहीं है इतने सारे पैसे की ऐसे ऐसे खर्च करना, but एक और category जो कहती ठीक है कमाना कमान दो, क्या है, what is your opinion on this thing?
2: नहीं, I feel like अगर for example बिलो 18 ले लेते हैं,
0: या बिलो 18,
2: बिलो 18, इफ देयर अर्निंग वो फाइनेंसेस के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट लो, और इफ इट्स अ लॉट सी के फाइंड सम प्रोफेशनल उनका सपोर्ट लो, बिकॉज़ यू तब तक तो बिल्कुल समझ ही नहीं रहती है,
0: हां राइट,
2: हाउ टू स्पेंड योर मनी, हाउ टू सेव योर मनी,
0: कोई समझ नहीं आता,
2: हां कहां पैसे जाते, एंड मनी इज अ वेरी पावरफुल थिंग,
0: या अरे किसी का भी दिमाग घूम सकता
2: है, किसी का भी दिमाग घूम सकता है, कुछ भी यू कैन, और पैसों के लिए यू डू समथिंग एल्स एंड यू नो योर ब्रेन इज फॉर्मिंग. तो मुझे आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग.
0: ओके, एंड लास्ट सवाल दोनों से, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव है इसमें, सो इफ आई आस्क यू लाइक अभी क्या कुछ ऐसी चाह है मटेरियलिस्टिक जो तुम्हें चाहिए लाइक यू प्लानिंग टुवर्ड्स इट, प्रोबब्ली सेविंग, आई डोंट नो, वी डोंट नो, तो ऐसा कुछ है जो तुम्हें खरीदने की इच्छा है?
2: नो नो नथिंग, नो फॉर मी माय बिगेस्ट मटेरियलिस्टिक इच्छा वाज अ कार.
0: ओके,
2: बचपन से, बिकॉज़ आई हैव बीन हियरिंग इट सिंस लाइक यू नो आई वाज अ चाइल्ड. ठीक है, व्हेन यू आर 18 यू विल गेट अ कार, 18 यू विल गेट अ कार.
0: अभी कोई है, अभी कोई चीज ऐसी है माइंड में?
2: I feel like for most it will be like an iPad or laptop uni ke liye, because it will help me more.
0: Matlab aise koi ambitious position nahi hai tumhe chahiye?
2: Nahi, not as of right now. Okay. I feel like aage jaake I will have probably a car.
0: So what is your last message to your own generation? Tumhare generation ko tum kya bologe?
2: I feel like we need to be nicer. सबका भी अपना अपना लाइक सब अपना ही सोचते हैं. Everyone has gotten very selfish.
0: बिल्कुल.
2: कोई दूसरों का सोचता नहीं. For example, now I'll feel, you know, some people don't think about their parents. Some people don't think about their friends. So I think, you know, it'll be better for all of us. Okay, you know, we start being a little bit more nicer.
0: Yeah. Okay. That's a very nice message.
1: She's a nice person. She's a kind person towards her elders.
0: No, but very nice. She has she has inspired, and a lot of people like her are inspiring a lot of kids of her age, and we are really proud of you. So, क्या नहीं जरूरत है? देखिए, एक individualism एक माँ का ना खत्म हो जाता है, है ना?
2: True.
0: But वो जो थोड़ा सा अंदर बाकी कहीं ना कहीं होगा, उसको भी क्या चाहिए? What is your ambition? Family को बिल्कुल side कर दो. I know you are.
2: मैंने family आती.
0: You have done everything for them. कहने की बात ही नहीं है, बट अपने लिए एक इंडिविजुअल एक एम्बिशन या कुछ इच्छा है कुछ करने की, कुछ
2: ये कि आई वांट टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप.
0: वेरी नाइस. ये देखो, ये अच्छा जवाब है. ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं. किधर जाना है सोलो ट्रिप?
2: कहीं भी.
1: स्विट्जरलैंड? नहीं, स्विट्जरलैंड सभी के साथ जाना.
0: ये के अच्छा. स्विट्जरलैंड का जिक्र हुआ तो ग्रीनरी चाहिए, बर्फ चाहिए, क्या चाहिए?
2: ग्रीनरी
0: चाहिए. ओके, अकेले घूमने की इच्छा है. एंड व्हाट इज योर मैसेज टू योर जनरेशन?
1: थिंक अबाउट योरसेल्फ आल्सो, यू नो, है ठीक है, फैमिली है, बच्चे है, सब है, बट व्हाट आई फील कि हम इतने ज्यादा एंग्रोस्ड हो जाते हैं फैमिली में, घर में, बच्चों में, हस्बैंड में, दैट हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं. आई डोंट बिलीव इन दिस कि अभी अब क्या है, अब तो बच्चे हो गए, अब क्या है, वो नहीं. आई डोंट बिलीव इन दैट. आप जब तक जिंदा हो तब तक आपकी ख्वाहिशें भी होंगी.
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंंक यू सो मच फॉर कमिंग. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. यू गाइस आर नॉट जस्ट लिसनर्स और कंपेनियंस और व्हाटएवर, बट वी हैव दिस रिलेशनशिप जहां पे एक अपनापन लगता है. इट्स इजी टू से एनीथिंग एंड टॉक टू हर अबाउट इट. बट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड दिस इज V3 साइनिंग ऑफ राइट नाउ. एक्चुअली 4 बोला नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसके मन में बहुत सारे सवाल है. ख्याल रखिए अपना, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. अस्सलाम.
3: बस बहुत हो गया रूटीन. नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ. क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है।

0: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन एफएम 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे महावर्ष, और शो है ये हदीस टू हैबिट। आज हदीस टू हैबिट शो में हमेशा की तरह आज भी मैं खूबसूरत सुन्नत, खूबसूरत हदीस लेकर आई हूं, और उसके बारे में हम बात करेंगे जो सिर्फ इबादत नहीं

उनकी इज्जत कम हो जाए। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस्लाम में पहले सलाम करना आजजी की अलामत है, कमजोरी की नहीं, ये मजबूत किरदार की निशानी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ सलाम की तालीम दी बल्कि खुद भी हर उम्र हर तबके के लोगों को सलाम करते थे, बच्चों को सलाम करते थे, रास्ते में मिलने वालों को सलाम करते और घर में दाखिल होते वक्त सलाम करते। सोचिए, अगर हम इस एक सुन्नत को सच्चे दिल से अपनी जिंदगी में ले आए तो कितने घर बदल सकते हैं, कितने ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, कितनी गलतफहमियां कम हो सकती हैं। और आज जो सोशल मीडिया पे लोग गुड वाइब्स ढूंढते हैं, हालांकि एक मुखलिस सलाम खुद बजाते खुद एक बहुत ही बड़ी गुड वाइब है, ये दिलों में रोशनी पैदा करता है। और एक और अहम बात, सलाम सिर्फ जान पहचान वालों के लिए नहीं, सलाम हमें सिखाता है कि सलाम को आम करो, क्योंकि जब माशरे में सलाम बढ़ता है तो दिलों में नफरतें कम होती हैं। आपने कभी गौर किया, जहां लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं वहां सर्दमहरी बढ़ जाती है, और जहां लोग मुस्कुरा कर सलाम करते हैं वहां अपनाइयत पैदा होती है। आज के इस सफर में हम सिर्फ इस मौजू पे बात नहीं करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि सुन्नत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आदत के तौर पे ढालें, जैसे कि हमारे शो का मकसद है। क्योंकि हदीस टू हैबिट का मकसद सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि खुद को बदलना है, अपनी जिंदगी में छोटे छोटे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं उनको शामिल करना है। तो चलिए, दिल को थोड़ा खोलते हैं, आना को थोड़ा सा पीछे रखते हैं और इस खूबसूरत सुन्नत को समझने की कोशिश करते हैं कि जब सलाम की अहमियत बयान की गई है तो किस तरह से आज के मसरूफ थके हुए इमोशनली डिसकनेक्टेड दौर में कैसे सलाम पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है और कैसे आजकल के मसाइल से हमें बचा सकता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमान वाले ना बन जाओ, और तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि अगर तुम उसे करो तो आपस में मोहब्बत बढ़ जाए, आपस में सलाम को आम करो। कितनी गहरी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को सिर्फ एक तहजीब या माशरती आदत के तौर पर बयान नहीं किया बल्कि इसे ईमान, मोहब्बत और जन्नत से जोड़ दिया। यानी सलाम सिर्फ जबान से अदा होने वाले अल्फाज नहीं, ये दिलों को जोड़ने का जरिया है। आज अगर हम अपने माशरे को देखें तो एक चीज बहुत कॉमन हो चुकी है, इमोशनल डिस्टेंस। लोग साथ रहते हैं मगर दिल में फासला होता है, घर बड़े हो गए हैं मगर हमारे दरमियान गुफ्तगू छोटी हो गई, दोस्तों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है मगर सच्चे ताल्लुक कम हो गए। और इन सब के दरमियान इस्लाम एक निहायत सादा मगर ताकतवर हल देता है, सलाम को आम करो। जरा तसव्वुर करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का, लोग एक दूसरे से मिलते तो खुलूस से सलाम करते, उस सलाम में दुआ भी थी, मोहब्बत भी, तवज्जो भी और एहतराम भी। वो माशरा सिर्फ कानून से नहीं बल्कि अखलाक से जुड़ा हुआ था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है, फोन है, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स हैं, लेकिन सुकून कम हो गया है।

आज की दुनिया का एक बड़ा जो मसला बन गया ना, वो ये कि लोग एक दूसरे को अटेंशन भी स्टेटस के हिसाब से देते हैं। बड़े ओहदे वालों के साथ जरा अच्छी वाली मुस्कुराहट होती है और बाकी लोगों के लिए बस खामोशी, इग्नोर किया गुजर गए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स को इज्जत देते थे। एक सलाम किसी इंसान के दिल में अपनी वैल्यू का एहसास पैदा कर सकता है। कई लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं लेकिन कोई उन्हें इंसान समझकर बात तक नहीं करता, और फिर एक अच्छा लफ्ज, एक अच्छा सलाम उनका पूरा दिन बेहतर बना सकता है और इसका आपको बहुत ही अजर मिल सकता है। आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं। मैसेजिंग एप्स ने कम्युनिकेशन तो बहुत हद तक आसान कर दिया लेकिन खुलूस कम कर दिया। आज का चैलेंज यह है कि अपने मैसेजेस का आगाज सलाम से करें। सिर्फ आपको एक दूसरे से फॉर्मल बातें नहीं करनी बल्कि इस्लामी ग्रीटिंग को अपनी डिजिटल कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाएं। और एक और अहम बात, अपने वॉइस नोट कॉल्स में भी सलाम को महसूस करके अदा करें, क्योंकि बांस लोग इतनी जल्दी में सलाम करते हैं कि वो दुआ कम और फॉर्मल साउंड ज्यादा लगता है। और पूरे हफ्ते का सबसे शायद अब मुश्किल चैलेंज मैं आपको दे रही हूं। आज उस शख्स को सलाम करें जिससे दिल में डिस्टेंस हो। जरूरी नहीं कि लंबी गुफ्तगू करनी है, जरूरी नहीं कि सब कुछ फौरन ठीक हो जाए, सिर्फ सलाम करें। क्योंकि बाज औकात रिकंसिलिएशन सिर्फ एक लफ्ज से शुरू होती है। शैतान चाहता है कि लोग खामोश रहें, दिलों में दीवारें कायम रहें और ईगो बढ़ती जाए, लेकिन सलाम इन दीवारों में पहली दरार डाल देता है। हो सकता है सामने वाला फौरन से आपको वार्म रिस्पॉन्स ना दे लेकिन हैरान हो जाएगा, थोड़ा सोचेगा क्या हुआ भाई आज इसने मुझे सलाम किया। और कुछ दिन अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से रंजिशें नफरतें कम होती जाएंगी और आप देखेंगे कि आपके एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। ये है सलाम की ताकत। आप अपने ऑब्जर्व करना है, क्या आपके लहजे में फर्क आया, क्या लोगों के रिस्पॉन्सेस बदल रहे हैं, क्या आपके दिल में नरमी पैदा हो रही है, क्या घर का माहौल बेहतर महसूस हो रहा है, क्या किसी खामोश ताल्लुक में गर्मजोशी महसूस हो रही है। इस्लाम की खूबसूरती यह है, किसकी सुन्नतें सिर्फ आखिरत नहीं दुनिया भी खूबसूरत बना देती है। और इस आदत को आप नेचुरली आपने अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना है। ऐसे लोग ऐसा इंसान बने जिनकी मौजूदगी वार्मथ लाए, जो कमरे में दाखिल हो तो लोगों को सुकून महसूस हो, जो सलाम में पहल करने से अपनी इज्जत कम नहीं समझते बल्कि उनकी कोशिश होती है कि सलाम में पहल करें और अपने अखलाक को बुलंद करें। याद रखें, कुछ लोग अपने अल्फाज से पहचाने जाते हैं और कुछ अपने रवैये से। एक सच्चा मोमिन वो है जिसके सलाम से दूसरे लोगों को अमन महसूस हो। और शायद यही वजह है कि इस्लाम ने सलाम को भी इबादत बना दिया है। अब तक हमने हदीस, इसकी हिकमत और जो प्रैक्टिकली किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है इसकी बात की। अब जरा इसको जिंदगी की हकीकतों में देखते हैं, क्योंकि दीन किताबी बातें नहीं है, रोजमर्रा के छोटे छोटे लम्हों में जीता है और सलाम उन्हीं लम्हों में से एक ताकतवर लम्हा है। एक बड़ा सा ऑफिस है, कंप्यूटर की आवाजें, फाइलों की सरसराहट और मुसलसल काम का दबाव। लोग सुबह आते हैं, अपनी जगह पे बैठ जाते हैं, पूरा दिन सिर्फ वर्क मूड में गुजार देते हैं, ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई सलाम, ना ही कोई गर्मजोशी। एक नए एम्प्लॉय को पहला दिन यही महसूस हुआ कि शायद यहाँ लोग

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है, और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीद। सुनिए हदीद टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी।

0: Night Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है, अंदर से तू भी जानती, तेरा तेरे वाने कोई है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ, तू समझे मुझे अभी, तू जैसे कोई

0: FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
1: The radio station with more music. FM 107. दिल से देसी.
2: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है. हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो. याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें. अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते. आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है. फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है. सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है. ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है. तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.

उन भाइयों ने कहा, ये चोरी करे तो कुछ ताज्जुब की बात भी नहीं, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। यूसुफ उनकी ये बात सुनकर पी गया। हकीकत उन पर न खोली, बस इतना कहकर रह गया कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग, मेरे मुंह दर मुंह मुझ पर जो इल्जाम तुम लगा रहे हो उसकी हकीकत खुदा खूब जानता है। उन्होंने कहा, ए सरदार जी इख्तदार यानी अजीज, इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। यूसुफ ने कहा, पनाह खुदा, दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं, जिसके पास हमने अपना माल पाया है उसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। उनमें जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद तुमसे खुदा के नाम पर अहदो पैमान ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहां से हरगिज ना जाऊंगा जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दें, या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला फरमा दे कि वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने वालिद से कहो कि अब्बा जान, आपके साहबजादे ने चोरी की है, हमने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा, जो कुछ हमें मालूम हुआ है बस वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब की निगहवानी तो हम न कर सकते थे। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, उस काफले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं।

ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी बचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर खुदा के आज़ाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत यह है कि तेरा रब लोगों की ज़्यादतियों के

और जो कुछ उसमें कमी या बेशी होती है उससे भी वो बाखबर रहता है। हर चीज के लिए उसके हां एक मकदार मुकर्रर है। वो पोशीदा और जाहिर हर चीज का आलिम है। वो बुजुर्ग है और हर हाल में बाला तर रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स खास जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब यकसा हैं। हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल देती, और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। न अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है। बादलों की गरज उसकी हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते उसकी हैबत से लरजते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसाओकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है जब लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिर वाकई उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है।